0: तो चलिए आप भी सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के तमाम रंगों की। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है, शहर शहर गजानन की आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति पंडाल सज गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात दक्षिण की हो, या फिर आपको साउथ की तरफ लेकर चले, किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव अपने चरम पर है। तो बप्पा को सजा दिया गया है, पंडाल भी बिल्कुल तैयार है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप और स्वरूप हमें नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का खंडोबा अवतार दिखाई दे रहा है, तो कहीं गणपति धनपति रूप में विराजे हैं। एक पंडाल में तो बप्पा बच्चों के मनपसंद कैंडी रूप में ढले नजर आ रहे हैं, तो कहीं मां भवानी के लाडले पिता भोलेनाथ के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग रूपों के साथ गणपति बप्पा सोशल मैसेजिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूरत के साइबर थाने में बप्पा साइबर विघ्न हर कर डिजिटल सुरक्षा का आशीर्वाद देने पहुंचे। पुणे में तो भक्तों ने बप्पा की प्रतिमा को करोड़ों रुपयों के ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया। अब यूं समझिए कि गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की यात्रा पर। और शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां साकीनाका के राजा का भव्य दरबार सजा है और 43 फीट के बप्पा खंडोबा रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के उपनगर के नगरी में और यहाँ के सबसे बड़े बप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं इस समय मौजूद हूँ साकीनाका के महाराजा के दरबार में और उपनगर मुंबई से सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हें मानी जा रही है। और जो जानकारी है और जो देख हम पा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खंडोबा जो सबसे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चर्चित हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, उनके अवतार में गणपति बप्पा यहां पर विराजमान किए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उनका जो ये पैर है ना, ये पैर आप देख रहे हैं, पैर उसके ठीक मैं नीचे हूं, मेरी हाइट उनके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और फिर से मैं वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितने ऊंचे हैं बप्पा। 43 फीट ऐसे ही नहीं होता, सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो कितने ख्याल रखने के साथ साथ और कितनी व्यवस्था के साथ बप्पा को यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, लेकिन अब यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और साकीनाका के महाराजा का ये दरबार है, खंडोबा के अवतार में पहुंचे हुए शिवलिंग के साथ में विराजमान है। महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति दिखाते हुए उनकी ये उनके सर पे आप देख रहे हैं पगड़ी है बकायदा, और इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, तलवार है। साथ ही साथ ये जो आसपास का परिसर है, जो डेकोरेशन है, चलचित्र जिसे यहां कहते हैं, वो भी उन्हीं पर आधारित है। उनकी ही मंदिर की तस्वीरें जो है यहां पर लगा रखी है। और थोड़ा सा अब देखें, और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उस मूर्तिकार की जिन्होंने इतना भव्य ये मूर्ति बनाया है। सोचिए किस विशेष व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया होगा। 12वें दिन इनका विसर्जन होने वाला है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां भी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ भक्त है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो गणेश उत्सव होता है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए तमाम लोग, गणपति बप्पा आवाज नहीं आई, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। कैसे लगे बेटा पप्पा?
2: बहुत अच्छे।
0: चलिए अब आपको मुंबई से लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां भक्तों के प्यारे बप्पा कैंडी वेश में पधारे हैं। हैदराबाद में कैंडीज, टॉफी और चॉकलेट से बप्पा का यह अनोखा स्वरूप तैयार किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदक प्रिय का कैंडी अवतार कैसा है।
3: ये मोदक प्रिय का कैंडी स्वरूप है। हैदराबाद से आई इस तस्वीर में आपको शहर के सबसे अनोखे गणपति के दर्शन होंगे। हैदराबाद के भक्तों ने हजारों कैंडी और टॉफियों को जोड़कर बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। न केवल बप्पा कैंडी अवतार में विराजे हैं, बल्कि पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर ही की गई है। ऐसा लगता है बप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष पंडाल में उतर आया हो।
4: इस साल गणेश जी का थीम आके है कैंडी गणेश का लगा है, साल पूरा पूरा टोटल थीम आके कैंडीज, वेरायटी वेरायटी कैंडीज लगा है पूरा। हम लोग डेकोरेशन भी टोटल देख ले, देखे तो पूरा कैंडीज दिखेंगे आपको, पूरा पूरा बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और बच्चे भगवान के समान बोलते ना, वो हिसाब से हम लोग बच्चे के हिसाब से देख लेके वो थीम के हिसाब से हम लोग गणेश जी को डेकोरेट करें पूरे साल।
3: हैदराबाद का ये मंडल पिछले 18 सालों से गणपति स्थापना कर रहा है। हर बार पंडाल की थीम कुछ अलग कुछ खास होती है, लेकिन इस बार की थीम ने तो बप्पा के जूनियर भक्तों का दिल ही जीत लिया है। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे युवा बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। कैंडी वाले बप्पा के पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, जहां आस्था के साथ साथ बप्पा के आशीष की छाव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बप्पा के अनोखे पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वरूप बहुत निराले हैं और पंडालों की इस यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं हम विशाखापट्टनम, जहां महाशय गणपति पूरी भव्यता के साथ विराजे हैं। ये देखिए बप्पा का ये स्वरूप हजारों छोटे बड़े जीवित पौधों से तैयार किया गया है। बप्पा की ये अनोखी प्रतिमा लगभग 18 फीट की है। विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में प्रकृति और भक्ति का ये अद्भुत मेल दिखाई दे रहा है। इस सुंदर मेल के कारण ही इन्हें सस्य गणपति नाम दिया गया है। सस्य का अर्थ होता है वनस्पति या फसल। अनकापल्ली के श्री चिंतामणि गणपति दत्त क्षेत्र में बप्पा का ये भव्य रूप विराजित किया गया। बप्पा तो पौधों से बनाए ही गए हैं, साथ ही पंडाल के वातावरण को भी पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें पानी के सुंदर फव्वारे, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें शामिल हैं। इस उत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि त्योहार की समाप्ति के बाद मूर्ति में उपयोग किए गए सभी पौधों को भक्तों के बीच मुफ्त में वितरित कर दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें अपने घरों में लगा सके। इस पहल में न केवल आस्था शामिल है, बल्कि ये समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। बप्पा के ये स्वरूप पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के विघ्न को हरने वाला स्वरूप है। देखिए विघ्नहर्ता के जितने नाम उतने ही स्वरूप। विघ्नहर्ता का ये स्वरूप जहां फिजिकल वर्ल्ड के विघ्नों को हरने वाला है, तो वहीं सूरत में बप्पा के ऐसे स्वरूप की स्थापना हुई जो हमारी डिजिटल लाइफ के विघ्नों को हरने का आशीर्वाद दे रहा है। सूरत के साइबर क्राइम थाने में साइबर विघ्नहर्ता बप्पा दर्शन दे रहे हैं।

0: की पार्वती पिता महादेव।
1: नाम जिनका विघ्नहर्ता है वो अब जीवन के तमाम विघ्नों के साथ साथ आपकी डिजिटल लाइफ के विघ्न हरने का भरोसा भी दे रहे हैं। सुमुख जब स्वयं साइबर सेल प्रमुख की भूमिका में हो तो फिर साइबर सुरक्षा का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। बापा का ये पंडाल सजा है डायमंड सिटी सूरत शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में, जहां अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की स्थापना साइबर विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। इस अनोखे पंडाल में न सिर्फ संदेशों और प्रतीकों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि अनोखे स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
2: जिस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उस फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम की हमारी टीम ने एक साइबर गणपति, साइबर विघ्नहर्ता की स्थापना 5 दिन के लिए करी है। गणपति बापा खुद आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं, और गणपति बापा अगर खुद आपको बताएंगे तो लोगों में ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा कि हमें साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। पूरा एक पंडाल साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बनाया गया है, और गणपति बापा खुद यहाँ पे सभी भक्तों को उनके जो प्रश्न है साइबर क्राइम के बारे में उनका खुद आंसर भी बता रहे हैं, और जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे साइबर क्राइम से कैसे बचना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो सीख भी रहे, और जब वो यहाँ से आरती करके दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए उसका संकल्प भी लेके जा रहे हैं।
1: सूरत शहर के इस साइबर क्राइम पुलिस थाने में भगवान गणेश को साइबर विघ्नहर्ता के रूप में 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया है। अपने अलग अलग अवतारों में गजानन ने क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर जैसे जाने कितने ही दानवों का संहार किया, और अब साइबर विघ्नहर्ता के रूप में वे डिजिटल बुराइयों का नाश करने उतरे हैं। सूरत पुलिस की ये पहल धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन जागरूकता को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए गुजरात के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी भव्यता के साथ भरपूर हैं। वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई, जहां मोगरेश्वर गणपति का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आई हैं अंधेरी में मौजूद मोगरेश्वर के राजा की। इस पंडाल में गणपति बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानियों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाया जा रहा है। महादेव के विवाह की कथा, गणपति के जन्म की कहानी जैसे कितने ही पौराणिक प्रसंग आपको यहाँ वीडियो, फिल्म और झांकी के रूप में दिख जाएंगे। दरअसल वैदिक आदर्शों और पीढ़ियों से चली आ रही इन पौराणिक कहानियों में बप्पा के जीवन से जुड़ी जितनी ही कहानियां हमारे लोक जीवन में उतरी हैं। समय के साथ विकसित होती धार्मिक कथाओं, वैदिक प्रतीकवाद के बीच में गौरी नंदन के आदर्श भक्तों के बीच प्रचलित होते चले गए। आज आप गणेशोत्सव पर सजे पंडालों में इन्हें जीवंत स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मुंबई से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के महाराज का भव्य दरबार आपको दिखाते हैं, जहां गणपति के साथ उनके पिता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं।

0: धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो शहर शहर बाप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता की वजह से लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजा है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका भी एक छत के नीचे देखने को मिल रही है।
1: इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और एक बहुत ही शानदार पंडाल में आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको तस्वीर उसी के दिखा रहा हूँ और किस तरह से हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको न सिर्फ बप्पा के दर्शन होंगे, बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीमा शंकर की, और नीचे इस तरह से जो शिवलिंग है उसको रखा गया है। ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्या है, कहां पर है, उसके बारे में आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है, वो यहां पर आकर ना सिर्फ देखेंगे बल्कि जानकारियां पढ़कर बहुत कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में वो जान भी पाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ पर, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह का शिवलिंग है, ठीक उसी तरह का शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको तमाम दूसरे शिवलिंग यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर है, वो बैद्यनाथ मंदिर का है, उस तरफ महाकालेश्वर है, ऐसे ही तमाम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सब के दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं।
0: राजधानी के इस गणेश पंडाल में भक्ति भाव के साथ साथ भारत की विकास यात्रा और 2047 के भारत की झांकी को भी दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का श्री गणेश सेवा मंडल इस साल अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है, इसलिए आयोजकों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और इस बार महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकास करता रखी गयी। इस थीम के तहत यहाँ आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संवाहक भी दिखेंगे, तो वहीं नई तकनीक और वैज्ञानिक दक्षता का झरोखा भी यहाँ ब्रह्मोस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप के रूप में दिखेगा। गांव के विकास की झांकी से लेकर एआई रोबोट्स तक और बुलेट ट्रेन से लेकर इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान तक यहाँ हर दृश्य जीवंत है। यानी एक तरफ महादेव और गौरी नंदन तो दूसरी ओर देश के विकास का वंदन। बाप्पा के इस पंडाल में आपको सब कुछ एक साथ नजर आएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गणपति के पंडालों में समृद्ध होते भारत की झांकी आपने देखी, अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां ऐतिहासिक आभूषणों से सजी गौरी नंदन की झांकी आपको इस शहर की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाएगी। अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप गणेशोत्सव के दौरान भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको मुंबई के साकीनाका में गणपति के खंडोबा स्वरूप के दर्शन करवाए। साकीनाका में ही बप्पा का एक और भव्य पंडाल सजा है, जहां गणपति विठल स्वरूप में विराजे हैं। बप्पा का विठल अवतार गरुड़ पर सवार है, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं साकीनाका के विघ्नहर्ता गणेश जी के।

0: इंतजार के बाद आता है गणपति उत्सव, वो समय जब गजानन अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्तों के मन के साथ साथ शहर शहर पंडालों, मंदिरों और घरों में विराजते हैं। भक्तों की भावना के आधार पर अनगिनत रूपों में ढल जाते हैं। इस बार भी बप्पा के भक्तों ने उन्हें अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। बप्पा का एक ऐसा ही भव्य रूप सजा है मुंबई के साकीनाका में। साकीनाकायचा विघ्नहर्ता अब की बार विठल रूप में पधारे हैं। मानव शरीर वाले गरुड़ के ऊपर बप्पा के चरण टिके हैं। स्वरूप भले ही जो हो, लेकिन साकीनाका के विघ्नहर्ता को मुंबई प्यार से गोड बप्पा के नाम से बुलाती है। गोड बप्पा यानी प्यारे या मीठे। दरअसल साकीनाका के विघ्नहर्ता की प्यारी और निश्चल मुस्कान के चलते उन्हें भक्तों ने प्यार से गोड बप्पा नाम दिया है।
1: आपको बताएं कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई है। खास बात यह है कि मानव गरुड़ पर बप्पा विराजे हैं, विठल के अवतार में हैं, और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है, और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की, इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है। विठल का अवतार है और एक पैर पर गरुड़ पर खड़े हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह से मुंबई के कई पंडालों में बड़ी बड़ी जो गणपतियां होती हैं विराजमान की जाती है, बहुत मेहनत इस पर हुई है।
0: साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा हफ्तों की मेहनत से तैयार हुई है।
1: गोड़ गणपति के नाम से प्रसिद्ध है
2: जी, जरूर गोड़ गणपति। आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिस तरह से अंदाज में जो खड़े हैं, और जिनकी जो खूबसूरती की जो सीधे दिगोली जो सबसे मुंबई के लगभग सबसे बड़े मूर्तिकार है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से इस मूर्ति को गढ़ाने में कोशिश की है। जिस तरह से आप इनकी सुंदरता के लिए लोग दीवाने हो गए, जब आगमन की जिस दिन हमारा आगमन हुआ उस दिन लाखों लोगों का सैलाब इस रास्ते पे बह रहा था कि लोग सोच नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, क्योंकि बेसिकली ये मूर्ति ये हाइट और इनकी खूबसूरती परेल दादर की एक नहीं पहचानती, लेकिन अभी साकीनाका में भी इस मूर्ति के माध्यम से हमने दिखा दिया है कि साकीनाका भी आने वाले वक्त में लालबाग परेल से भी आगे चला जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे कि इस मंडल की खासियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा।
0: पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव पर यूं ही अपनी अलौकिक छटा के साथ विराजते आ रहे हैं। अब की बार भी साकीनाका के इन गणपति को तैयार करने में हर समाज, हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बापा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव का भी उत्सव है। साकीनाकाच्य विघ्नहर्ता यही संदेश देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, गणपति की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, वो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। गणेशोत्सव के दूसरे दिन गजानन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आई है पुणे से सामने, जो आपके सामने रखते हैं। पुणे में गणेश नाम का जय घोष सुनाई दिया। पुणे में आयोजित समारोह में ऊर्जा से भरे माहौल के बीच में हजारों महिलाओं ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पुणे में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से किया गया।

तो चलिए गणपति बप्पा के ऐसे ही अलग अलग रूपों और स्वरूपों के दर्शन जीएनटी पर लगातार आपको करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सत्ता, दौलत, रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, घाटकोपर ईस्ट के विधायक का पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक दिन एक शख्स न विधायक था, न करोड़ों का मालिक, न साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा था, मुंबई की सड़कों पर ये विधायक हाथ फैलाए दिखे। ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं था, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
3: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की, महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
4: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवा ना, तो ट्रैफिक करो जाए।
3: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
4: अरे वाह।
3: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।

0: लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुड।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: सप्ताह के कौन से दिन नौकरी शुरू नहीं करनी चाहिए? सप्ताह के कौन से दिन कर्ज देना मना है? और सप्ताह के कौन से दिन हर काम करने पर काम लंबे समय तक चलता है? सप्ताह के किस दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: माया नगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे। सोहेल खान के गणपति उत्सव में सलमान, सोनाक्षी सिन्हा, एली अवराम समेत पहुंची कई हस्तियां। लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, छात्रों से की मुलाकात, अपनी स्पेस यात्रा के अनुभव को किया साझा। पीएम मोदी के लिए काशी में विशेष तैयारी, बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी पीएम की मां हीराबेन की तस्वीर। कल है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दूसरे T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की जीत, जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले बने गेंदबाज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
1: अद्भुत हैं हमारे महादेव, इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया महाकालेश्वर हम गए इसलिए ये कथा नहीं बताई, भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या महत्व है? भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जरा और जोर से बोलो। भैया वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है? आहा हा, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? नारद जी। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसा कर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हम तुम्हें जानते हैं, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमाए। पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, महाराज मैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या? बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो? पार्वती जी बोले, बताओ वो कहाँ रहती हमारी सौतन। नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो अपन तो जय चले, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे, और कोई भी भाई धर्म पत्नी कोई भी हो, सौतन की बात आ जाए आग लग जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, चाहे कोई मजाक में भी कह दे आग लग जावे। बोलो जय हनुमान जी की। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। पार्वती जी बोली हमारी सौतम से करो सीताराम, हमसे मत करो। बोले बाबा बोले क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना वंदन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है। पार्वती जी बोली हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आप तक। भोले बाबा ने कहा ये कौन सी खाज फंस गई। भोले बाबा बोले देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे। पार्वती जी धीरे से हिला के बोली हाँ आए तो थे। शंकर जी बोले तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा है, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं, बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो। पार्वती जी बोली महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले सही बात है। पार्वती जी बोली महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं। शंकर जी बोले बताएंगे, और कोई प्रश्न। हाँ महाराज ये जो भस्म है ये किसकी है। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने, बैठो देवी जी आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका, किसके साथ महाराज। मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं तुम्हारे ही साथ हुआ, पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, महाराज ये मुंडों की माला किसकी है। भोले बाबा बोले ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज, हाँ जितने मुंड हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली महाराज रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भय। क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए। बोले बाबा बोले देवी जी हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है। बोले बाबा बोले दो लोगों की, कौन कौन की। एक बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारा देह तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं नहीं नहीं नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज कानों से कौन सी बूटी। अरे भैया, बोले बाबा बोले देवी जी वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा भैया, वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई,

कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या। कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों, बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या, एक काम करो इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ सबसे ज्यादा बुरा ना मानना, इंदौर के पागलों तन से पूजा कर रहे आज के डेट में लोग,

आजकल तन से पूजा कर रहे, मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। अबे कहते गुरुजी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी, बोलो जय बजरंगबली की। उपाय क्या है, मन से पूजा कर...

अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दस रथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, दस रथ हैं और दस रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी दसों इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई, अमर कथा

0: चेतनाएं आ गई और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गईं तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दई, हो हाँ जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही, बोलो जय बजरंग बली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो गए। घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में तीन घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है? बोले घर में रहो सो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरु जी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था। बोलो सीताराम
1: सीताराम।
0: तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, वह सुख

0: पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काव देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी, जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आ हा हा, जब भोले बाबा ने धरी ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी, इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेदव व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई और जैसे ही जमुहाई आई, वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेदव व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेदव व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेदव व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेदव व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेदव व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेदव व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है, वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा। तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, अब तो भैया हम जे चले, भोले बाबा चले गए। 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेदव व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पड़वा दोगे, हमें प्रपंच में पड़ना नहीं। वेदव व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंग बली। अब 12 वर्ष बाद जब वेदव व्यास जी की धर्म पत्नी के कोख से वह प्रकट भय तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब भैया जैसे ही प्रकट भय तो वेदव व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, आश्वासन प्रभु से पाए, तो महीना व्यापे माया कब हूं सुन के बाहर।
1: सप्ताह के कौन से दिन नौकरी शुरू नहीं करनी चाहिए? सप्ताह के कौन से दिन कर्ज देना मना है? और सप्ताह के कौन से दिन हर काम करने पर काम लंबे समय तक चलता है? सप्ताह के किस दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे हैं, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी बप्पा पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी गुड न्यूज टुडे के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी, पुणे में 21,000 पानीपुरी से बनी 13 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा। माया नगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के गणपति उत्सव में सलमान, सोनाक्षी, एली अब्राम समेत पहुंची कई हस्तियां। लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, छात्रों से की मुलाकात, अपनी स्पेस यात्रा के अनुभव को किया साझा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए काशी में विशेष तैयारी, बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी पीएम की मां हीराबेन की तस्वीर, कल है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दूसरे T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की जीत, जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेड इन ओवर डालने वाले बनेंगे।

प्रदेश के राजगढ़ में चिंतामण हरण गणेश मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया मंदिर। प्राचीन मंदिर की सजावट भी है अद्भुत, रासी ठाट के साथ सजा है बप्पा का पंडाल। बप्पा के भक्तों ने अपने आराध्य का भी किया अद्भुत श्रृंगार, महाआरती में शामिल हुए बप्पा के भक्त। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ बप्पा का भव्य स्वागत, विघ्नहर्ता की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में बप्पा के दर्शन भर से ही हो जाती है हर मुराद पूरी। 455 साल पहले हुई थी यहां बप्पा की स्थापना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र हुआ भक्ति में, विद्यार्थियों ने बांस से बनाई बप्पा की अद्भुत प्रतिमा। बैम्बू टू बप्पा नामक इस पहल के तहत बांस से बने बप्पा की छात्रों ने पूरे विधि विधान से की स्थापना और महाआरती। गणपति बप्पा की आरती, पूजा अर्चना और जय घोष के बीच प्रतिमा की स्थापना होते ही पूरा परिसर गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से गूंज उठा। छात्रों ने बांस से ही सजाया विघ्नहर्ता का दरबार, देखते ही बन रही है बप्पा के दरबार की सुंदरता। बांस से बप्पा की प्रतिमा बनाकर छात्रों ने दिया परंपरा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल, पंडाल में भगवान गणेश को समुद्र मंथन के रूप में निकलते हुए दिखाया गया। भगवान गणेश की सवारी मूषक को समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया, पंडाल देखने दूर दूर से आ रहे हैं यहां भक्त। गणेश चतुर्थी पर आगर मालवा में मोती सागर तालाब के किनारे बने प्राचीन मंदिर की अद्भुत छटा देखने को मिली। फूलों से किया गया बप्पा का भव्य श्रृंगार, बप्पा के दर्शन को बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं यहां भक्त। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की सुगंध से महक रहा है बप्पा का दरबार, महिलाएं कर रही हैं बप्पा की आरती। मुंबई के उपनगर में स्थापित की गई है बप्पा की 43 फीट ऊंची प्रतिमा, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। यहाँ गणपति महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर खंडोबा के अवतार में है, इसे साकीनाका के महाराज का अवतार भी बताया जा रहा है। बप्पा की इस विशाल मूर्ति के साथ ही छोटी प्रतिमा भी की गई है स्थापित, बप्पा के पंडाल में महाराष्ट्र की संस्कृति के दिख रहे हैं तमाम रंग। प्रयागराज में एक ही पंडाल में हो रहे बप्पा के साथ तीन देवताओं के दर्शन। गणपति का बाल रूप भी बच्चों को आ रहा है बेहद पसंद, बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है पंडाल, पूरे प्रयागराज में गणेश चतुर्थी की है धूम। सूरत में गणेश उत्सव के दौरान तापी नदी के बीचों बीच तैरते हुए मंडप में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। करीब 350 से 400 किलो वजन उठाने वाली एयरटाइट फाइबर शीट पर दीपक या लाइट हाउस के आकार का सुंदर मंडप भी बनाया गया। स्थानीय मछुआरा समाज और युवाओं ने 2006 में यह परंपरा विनाशकारी बाढ़ के बाद शुरू की थी। सिर्फ मंदिर के पुजारी और सेवक ही ताप्ती नदी में आकर करते हैं बप्पा की आरती, अन्य भक्त पंडाल में करते हैं बप्पा के दर्शन। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की कामना के साथ यहां अनूठे अंदाज में होती है बप्पा की भक्ति। जैसलमेर के 1500 साल पुराने चुंधी गणेश मंदिर में उत्सव की धूम, घर वाले गणेश जी के नाम से मशहूर है ये मंदिर। गणेश चतुर्थी पर पूरे मंदिर परिसर को अद्भुत रोशनी और फूलों से सजाया गया, बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं यहां भक्त।

0: सैकड़ों की संख्या में दर्शन को आ रहे हैं बप्पा के भक्त, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। मंदिर परिसर में बप्पा के भक्तों के लिए महाप्रसादी का भी आयोजन। मंदिर परिसर के पास ही मेले का भी हुआ आयोजन, बप्पा के दर्शन के बाद लोग मेले का भी ले रहे हैं आनंद। धर्मनगरी काशी में भी स्थापित की गई है लालबाग के राजा की रेप्लिका, बप्पा के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर ने ही बनाई है ये 6 फीट की भव्य प्रतिमा। पंडाल में हुई बप्पा के 5 दिन की स्थापना, 5 दिन तक होगा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। लालबाग के राजा के तर्ज पर ही सजा है वाराणसी का पंडाल, स्कूली बच्चे भी बप्पा के दर्शन को उमड़ रहे हैं। बप्पा की विसर्जन यात्रा में ढोल ताशा मंडली भी मुंबई से ही बुलाई जाएगी। पुणे के श्रीमंत डगडू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में दिखा भक्ति का अनूठा संगम, 35,000 महिलाओं ने सामूहिक रूप से किया अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण हुआ भक्ति में, महिलाओं के साथ छोटी बच्चियों ने भी पाठ किया। इंदौर में विघ्नहर्ता का अनूठी भक्ति देखने को मिली, 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय है। देश से ही नहीं विदेश से भी जुटाई बप्पा की मूर्तियां, 23 साल की मेहनत से बनकर तैयार हुआ है संग्रहालय। बप्पा के अलग अलग रूप वाली प्रतिमाओं के को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं और प्रशंसा करते हैं। बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन ने भी अपने घर बप्पा का स्वागत किया, महाआरती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी अपने फैंस को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने फैंस को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। अभिनेत्री मिनी माथुर के घर हुई बप्पा की स्थापना, इंस्टा पर तस्वीरें साझा कर अपने फैंस को दी पर्व की बधाई। अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी अपने फैंस के साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की, सभी को बधाई दी। '90s की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने भी पूरे भक्तिभाव के साथ गणेशोत्सव मनाया, सोशल मीडिया पर लिखा गणपति बप्पा मोरिया। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया, अपनी मां के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें साझा की। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी बप्पा के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा गणपति बप्पा मोरिया। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी तस्वीरें शेयर कर लिखा घर से दूर हूं लेकिन बप्पा से नहीं, इन दिनों लंदन में है कार्तिक, फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी के घर भी विघ्नहर्ता का आगमन हुआ, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बप्पा की तस्वीरें शेयर की। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, बद्रीनाथ धाम में रोजाना पहुंचे हैं 4,000 से अधिक श्रद्धालु। अब तक 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, मौसम साफ होने के चलते संख्या में इजाफा होने की उम्मीद। मौसम साफ और सुहाना होने के चलते सैलानियों की भी बढ़ रही है भीड़, बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ। श्रद्धालुओं और सैलानियों की बड़ी संख्या में आने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हैं। हेमकुंड साहिब में भी बढ़ रही है भक्तों की संख्या, हर रोज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 3,22,000 से अधिक भक्त टेक चुके हैं मत्था। दिल्ली में छात्रों के लिए 10,000 बेड वाले हॉस्टल बनाने की तैयारी में सरकार, छात्रों के सुरक्षित और बेहतर रहने की व्यवस्था पर है फोकस। तेलंगाना लिबरेशन डे के अवसर पर हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी और बाइक रैली। महिलाओं ने भगवा पगड़ी पहनकर इस रैली में हिस्सा लिया और नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। विनायक चतुर्थी के अवसर पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर में लगाई गई दुर्गा नाम की 5 वर्षीय मादा हाथी। अमन मंदिर में दुर्गा है सबसे नई सदस्य। पार्वती नाम की एक मादा हाथी पहले से ही है मौजूद। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम ने सड़क किनारे महिला से खरीदा मिट्टी का दिया। सीएम ने महिला को 1,000 रूपये देकर किया महिला के श्रम का सम्मान। यही दिया बनेगा आशीर्वाद का दिया। 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ के घर घर जलेगा। दिल्ली कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव दोगुना करने का फैसला लिया। 3,000 की जगह अब 6,000 प्रति माह मिलेंगे। यूपीआई से 2,000 रूपये तक का पेमेंट रहेगा फ्री, लेकिन 2,000 से ज्यादा पर यूपीआई पेमेंट पर लगेगा 0.4% चार्ज। रेलवे टेलीकॉम सर्विस इंश्योरेंस और ईंधन जैसी चुनिंदा कैटेगरी में 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 रूपये का फ्लैट चार्ज लगेगा।
1: सप्ताह के कौन से दिन नौकरी शुरू नहीं करनी चाहिए? सप्ताह के कौन से दिन कर्ज देना मना है? और सप्ताह के कौन से दिन हर काम करने पर काम लंबे समय तक चलता है? सप्ताह के किस दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से राकेश मेहरा ने अपने बप्पा की सुंदर तस्वीरें हमसे शेयर की हैं। खूबसूरत सजावट और रोशनी के बीच राकेश मेहरा के बप्पा झूला झूल रहे हैं। बेशक ये तस्वीरें दिल जीतने वाली हैं। सुखकर्ता की सुंदर तस्वीर अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर हमारे दर्शक राकेश मेहरा ने हमें भेजी है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर हमें गुरुग्राम की ज्योति गर्ग ने भेजी है। ये बेहद खूबसूरत चित्र है जिसमें बप्पा अपने मूषक के साथ दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत रंगों से इस तस्वीर को सजाया गया है। इस तस्वीर में बप्पा के प्रति ज्योति की आस्था भक्ति साफ दिखाई दे रही है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शकुन और अपशकुन के बारे में। अलग अलग तरह के शकुन अपशकुन क्या होते हैं और इनका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, चंद्रमा और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शकुन और अपशकुन के बारे में। क्या होते हैं ये? देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत लगातार हमको किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। अगर ये संकेत शुभ हैं, सकारात्मक हैं, तो इसको लोग शकुन कहते हैं और अगर नकारात्मक है तो इसको अपशकुन माना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख पाया जाता है। शकुन और अपशकुन कोई शुभ या अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते, ये केवल इस बात की सूचना देते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें भाग्य आपकी कितनी सहायता करेगा या भविष्य में जो होने वाला है उसका संकेत क्या है। शकुन अपशकुन कभी कभी सीधी तरह से घटनाओं के बारे में बताते हैं और कभी कभी शकुन और अपशकुन को समझना पड़ता है कि वो दरअसल क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। शकुन अपशकुन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि शकुन अपशकुन के लक्षण क्या हैं। देखिए, कोई भी संकेत अगर अचानक घटे, आकस्मिक रूप से घटे, तो उसको शकुन या अपशकुन समझना चाहिए। अगर कोई संकेत आपको बार बार मिल रहा है तो समझना चाहिए कि ये सत्य के ज्यादा निकट है, ये घटना के बारे में पूरी तरह बता रहा है। कभी कभी कुछ चीजों को हम शकुन या अपशकुन के लक्षण समझ लेते हैं, लेकिन हर बार हर संकेत शकुन अपशकुन नहीं होता। आम तौर पर हर बार ऐसा नहीं होता। ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित संकेत ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते। आपको स्वप्न में देवी देवता दिख गए, आप मंदिर में पहुंचे, फूल आपके हाथ में गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शकुन अपशकुन है, ये आपकी भावना है, आपका इमोशन है, जिसकी वजह से आप ऐसा समझ लेते हैं। अलग अलग शकुन और अपशकुन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको अलग अलग शकुन और अपशकुन के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। अचानक अगर आईना टूट जाए, दर्पण टूट जाए, गिर जाए, या कांच का कोई बर्तन या कांच टूट जाए, तो इसका मतलब जिस काम से जा रहे हैं उस काम में बाधा आएगी। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा के समय शव दिखना, मछली दिखना या पान का पत्ता दिखाई देना यात्रा की सफलता बताता है, ये शकुन है, बड़ा शुभ माना जाता है। यात्रा के समय अगर आपको दूध दिखाई दे जाए या खाली बर्तन, खाली बाल्टी दिखाई दे, तो ये यात्रा रद्द होने की या बाधा आने की सूचना देता है। आप सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं और आपने शर्ट के गलत बटन लगा लिए, उल्टे बटन लगा लिए, तो ये लापरवाही की वजह से असफलता की सूचना देता है। राह चलते हुए, सड़क चलते हुए आपको हेयर पिन मिले, बटन मिले, रुमाल मिल जाए, तो ये किसी नए संबंध की शुरुआत की सूचना देता है। ऐसा होने पर विवाह की, प्रेम की या नए मित्रता की संभावना जीवन में बनती है। आप कोई बात कर रहे हैं, उस समय अगर घंटी बजे या शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो काम जरूर बन जाता है। आपके बात करते समय मंदिर से या कहीं से भी शंख की आवाज आए, घंटी की आवाज आए, तो जिस काम की बात कर रहे हैं वो काम आपका बन जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, शकुन अपशकुन का जो नाम आया वो दरअसल शकुन नाम का एक पक्षी होता है। उस पक्षी के गति को देखकर यात्रा के समय, काम के समय, उस पक्षी की पोजीशन को देख करके भी गणनाएं शुरुआत में की जाती थी, और दरअसल वही वास्तव में शकुन अपशकुन होता था। आपने कथा पढ़ी होगी ना कि शकुंतला को शकुन नाम के पक्षियों ने पाला था, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा, क्योंकि शकुन पक्षियों ने उसका पालन पोषण किया था। तो मुख्य बात यह है कि पहले के समय में शकुन पक्षी की चाल को देखकर शुभता और अशुभता को जानते थे, और इसको शकुन अपशकुन कहा जाता था। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। शादी विवाह के या वैसे भी निमंत्रण पत्र जो होते हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं उनको इधर उधर मत फेंकिए, अन्यथा आपके जीवन से शुभता कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी, पुणे में 21,000 पानी पूरी से बनी 13 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा। माया नगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के गणपति उत्सव में सलमान, सोनाक्षी, एली अबराम समेत पहुंची कई हस्तियां। लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, छात्रों से की मुलाकात, अपनी स्पेस यात्रा के अनुभव किए साझा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए काशी में विशेष तैयारी, बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी प्रधानमंत्री की मां हीराबेन की तस्वीर, कल है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। दूसरे T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की जीत, जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मेड इन ओवर डालने वाले बने गेंदबाज।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल, सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास द बेस्ट है।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सप्ताह में आने वाले दिनों के बारे में। जी हाँ, किस दिन कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, उस पर विस्तार से हम लेंगे पंडित जी से जानकारी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: देखिए, बजरंग बाण का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो बजरंग बाण का पाठ अत्यंत कठिनाई होने पर, जीवन मरण का प्रश्न होने पर ही करिएगा। सामान्य रूप से रेगुलर लाइफ में बजरंग बाण का पाठ करने से बचना चाहिए।
3: और आइए अब जान लेते हैं 16 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:59 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 5:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से क्या है अलग अलग दिनों का महत्व और क्यों होता है ये महत्व।
4: जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। पहले ये जानते हैं कि अलग अलग दिनों का महत्व क्या है और क्यों है। देखिए, हर दिन का संबंध एक ग्रह से होता है। किस दिन का स्वामी कौन सा ग्रह है वो उस दिन की होरा से डिसाइड किया गया है। तो हर दिन का संबंध एक ग्रह से है। सोमवार का चंद्रमा, मंगलवार का मंगल, बुधवार का बुध, बृहस्पतिवार का गुरु, तो अलग अलग दिनों के अलग अलग स्वामी हैं। उस ग्रह के विशेष गुण उस दिन के अंदर पाए जाते हैं। अगर हर दिन के गुण को जानकर आप काम करें तो आप अपने काफी काम निपटा सकते हैं और तमाम छोटी छोटी चीजों में बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर दिन के स्वामी ग्रह के विपरीत काम किया जाए तो आपको असफलता मिलेगी, तब आप जीवन में सफल नहीं होंगे। इसीलिए आचार्यों ने, ज्योतिषियों ने एक तरीका बताया कि किस दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें।
3: तो चलिए जान लेते हैं कि सोमवार के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए।
4: देखिए, अगर सोमवार के दिन की बात करें कि सोमवार के दिन क्या करें क्या ना करें, देखिए सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है, चंद्रमा का दिन है, और सोमवार के दिन काम के परिणाम बड़ी तेजी से मिलते हैं। इस दिन वो काम करने चाहिए जिनको आप जल्दी निपटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस काम में गति बनी रहे, उस काम में स्पीड रहे। सोमवार के दिन वाहन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, यात्रा करना, सफेदी करवाना, भोज का, पार्टी का आयोजन करवाना शुभ होता है। और सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। सोमवार के दिन सामान्यतः नौकरी या कारोबार की शुरुआत ना करें, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें और काले वस्त्र धारण ना करें। अगर आप जल्दी जल्दी होने वाले काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो काम आप करें वो बड़ी स्पीड से हो जाए, तो सोमवार के दिन जल्दी पूरे होने वाले काम करने चाहिए।
3: और अब वक्त हो गया आज के राशिफलों के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या कहता है राशिफल।
4: मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए बनी रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और सोमवार के बाद अब बारी है मंगलवार की, तो आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन हमें कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए।
4: अब जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या करें क्या ना करें। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन माना जाता है और तीक्ष्ण स्वभाव का सामान्यतः 50% निगेटिव और 50% पॉजिटिव दिन है, मध्यम गति से परिणाम देता है। मंगलवार के दिन तकनीकी काम करना, टेक्निकल काम करना, भूमि यानी जमीन के काम करना, चिकित्सा की शुरुआत करना और सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना अच्छा होता है। मंगलवार के दिन ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से विशेष लाभ होता है। मंगलवार के दिन सामान्यतः शिक्षा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और मुकदमेबाजी करना भी मंगलवार के दिन अच्छा नहीं होता, मुकदमा और विवाद गंभीर हो जाता है। इस दिन नीले रंग का प्रयोग करना और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह हो जाने के बाद मंगलवार के दिन बालिका की विदाई नहीं कर सकते।
3: और अब बात करेंगे बुधवार के दिन के बारे में, तो चलिए जानते हैं बुधवार के दिन कौन से कार्य हम करें और कौन से कार्य हैं जो हम ना करें।
4: अब बात करते हैं बुधवार की। बुधवार का जो दिन है ये बुध ग्रह का दिन है, सरल, मनोरंजक और धन के कामों के लिए बड़ा अच्छा दिन माना जाता है, बड़ा शुभ दिन है। बुधवार के दिन छोटी यात्राएं करना, संगीत और कला संबंधी काम करना, धन का निवेश करना, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, लोहा खरीदना अच्छा है। प्रोफेशनल शिक्षा, लॉ है, मैनेजमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसकी शुरुआत भी बुधवार से करना अच्छा होता है। अगर आप नए कपड़े खरीद कर ले आएं और बुधवार से उसे पहनना शुरू करें तो आपको नए कपड़े बड़ी आसानी से मिलते रहेंगे। बुधवार के दिन भी चिकित्सा संबंधी काम किए जा सकते हैं। बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत ना करें, कर्ज मत बांटें। हालांकि धन का लेन देन कर सकते हैं, पैसा मिले तो ले सकते हैं, और भूमि संबंधी काम ना करें। उत्तर दिशा की तरफ बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, वार दोष है। उत्तर की यात्रा बुधवार के दिन अशुभ होती है।
3: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
4: कर्क राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: गुड लक में अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी, आज का पहला प्रश्न अभय जी ने हमें लिखा है, और अभय जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 8:10, जन्म का स्थान है दिल्ली। अभय जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब में जाने की मेरी संभावना बनती है। अभय जी, आपको मैं सलाह दूंगा, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कम से कम अब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, या कंप्यूटर संबंधी कोई अकाउंटिंग आदि की पढ़ाई कर लें। इस क्षेत्र में मैनेजमेंट, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, इसमें अच्छा करियर बना सकेंगे। गवर्नमेंट जॉब की संभावना उतनी प्रबल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा है, और अगर आप अभी से प्रयत्न करें तो 2028 से आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
3: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
4: जी अगला प्रश्न रीता ने हमें लिखा है और रीता जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखती हैं, अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1974, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो उनकी नौकरी कब तक बदलेगी और उनका भविष्य कैसा रहेगा। रीता जी, आपके पतिदेव की कुंडली के हिसाब से अभी मैं इनको नौकरी बदलने की कोई सलाह नहीं दूंगा। जहां पर हैं वहीं पर स्थितियां आने वाले समय में बेहतर होंगी और जून 2027 के बाद काफी अच्छा समय आ जाएगा, तो नौकरी में परिवर्तन का प्रयास ना करें, आने वाले समय में उन्नति की संभावनाएं अच्छी हैं। आप अपने पतिदेव के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइए क्योंकि उनका स्वास्थ्य आने वाले समय में बेहतर होगा, अक्टूबर के बाद से उनका जीवन ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। आप अपने पतिदेव को कहें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: और अब बारी है बृहस्पतिवार के बारे में जानने की, तो आइए जानते हैं उस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए।
4: अब बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी थर्सडे की। देव गुरु बृहस्पति का दिन है और सामान्य मान्यता ये है कि ये दिन बहुत शुभ है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। बृहस्पतिवार के दिन सात्विकता और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। इस दिन मूल्यवान धातुएं खरीदना, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, संतान की समस्याओं को दूर करना, पढ़ाई की शुरुआत करना और पितरों को, पूर्वजों को याद करना, उनका आभार करना उत्तम होता है। बृहस्पतिवार के दिन से पढ़ाई की भी और वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है। बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, वैसे तो कभी भी ना करें, और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से बचिएगा।
3: तो सप्ताह के अलग अलग दिनों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के बारे में हमने बात की, अब बारी शुक्रवार की। तो चलिए जानते हैं उस दिन कौन से कार्य हैं जो हमें करने होंगे और कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने होंगे।
4: बात करते हैं शुक्रवार यानी फ्राइडे की। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है, स्वभावतः कोमल और आनंददायक दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन पारिवारिक जीवन की शुरुआत, प्रेम की शुरुआत, हर तरह का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन लगभग सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। इस दिन पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। विवाह के मामले में और प्रेम के मामले में विवाद नहीं करना चाहिए, वरना मामला सुलझता नहीं है। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए।
3: और इसी के साथ जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
4: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
3: और चलिए अब जान लेते हैं शनिवार का दिन कैसा होता है, हमें उस दिन कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
4: अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन के स्वामी शनिदेव हैं, शनि ग्रह है। ये तेज स्वभाव का और धीमी गति का दिन माना जाता है। शनिवार

0: स्त्री की शुरुआत करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना और दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। शनिवार के दिन मुकदमा शुरू मत करिए, चिकित्सा की शुरुआत मत करिए। मजबूरी है तो बात दूसरी है कि जीने मरने का प्रश्न है, लेकिन सामान्य जीवन में चिकित्सा की शुरुआत ना करें और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदने और बेचने से बचना चाहिए।
1: और अब बारी है रविवार की, तो चलिए जान लेते हैं कि रविवार के दिन हम कौन से कार्य करें और कौन से कार्य हैं जो ना करें।
0: रविवार सूर्य ग्रह इस दिन के स्वामी हैं। तीव्र स्वभाव वाला लेकिन शुभ परिणाम वाला दिन माना जाता है। रविवार के दिन गवर्नमेंट से संबंधित काम की शुरुआत करनी चाहिए, चिकित्सा की शुरुआत करनी चाहिए, लकड़ी खरीदना, बेचना, फर्नीचर बनाना, लकड़ी के काम उत्तम होंगे। शिक्षा की शुरुआत करना रविवार के दिन काफी शुभ होता है। रविवार के दिन लोहा खरीदना और लोहा बेचना भी अच्छा होता है। रविवार के दिन वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए प्रयास ना करें, रिश्ते बिगड़ेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा भी ना करें और विवाह के बाद रविवार के दिन लड़की की विदाई नहीं की जाती, इसीलिए लोग शनिवार की रात में ही सूर्योदय के पहले विदाई कर देते हैं।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का। आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको

0: को नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: अगला प्रश्न नम्रता जी ने हमें लिखा है और नम्रता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 1994। जन्म का समय सुबह के 10:25। जन्म का स्थान है संत कबीर नगर खलीलाबाद उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि 2 साल पहले मेरा विवाह हुआ है लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नम्रता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका सेपरेशन नहीं होगा, आपकी शादी चलेगी और आने वाले समय में जीवन आपका बेहतर होगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: का जन्मदिन 16 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, शुरुआत में करियर में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि कहा जाता है कि सोमवार को नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, सोमवार के दिन जो भी काम आप शुरू करेंगे वो काम जल्दी समाप्त होंगे, स्पीड वाला दिन है। अगर नौकरी इस दिन शुरू करेंगे तो नौकरी में स्थिरता नहीं आएगी, बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। इलाज की शुरुआत सोमवार को करिए, बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और बहुत जल्दी इलाज आपका समाप्त होगा।
1: तो चलिए जानते हैं 16 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। ऐसा करने से आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 सितंबर शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु सूटेबल होती है, लाभकारी होती है। आज की गुडलक राशि है मीन। आपको चांदी अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है।
0: गणपति महोत्सव के पावन दिन चल रहे हैं, रोज आपको वरदान मिल सकता है। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? पीले रंग के गणपति की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको पीले फूल अर्पित करिएगा और रोज शाम को उनकी आरती करिएगा, लगातार 3 दिनों तक। और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे हैं, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी बप्पा पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी गुड न्यूज टुडे के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर अपनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। देखिए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गणपति उत्सव की खुशियां साझा की गई हैं। बप्पा को घर में विराजने का ये प्यारा सा वीडियो हमें भेजा है प्रांजल कुणाल शिंदे ने, जिन्होंने अपने परिवार संग पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया है। गजानन की इस मनमोहक मूर्ति को कैमरे में कैद कर हमारे साथ उन्होंने शेयर भी किया है। तो वही मुंबई के भांडूप से भी एक और जीएनटी दर्शक ने गणेशोत्सव की खुशियां हमारे साथ साझा की हैं। ज्योति महेश धेरेकर ने भी अपने घर में गणपति बैठाए हैं। उत्सवी माहौल में उन्होंने एक संगीत में झांकी बनाई और उसमें अपने प्यारे से बप्पा को स्थापित किया। देशभर में गणेशोत्सव की धूम है और जगह जगह भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। कई जगह पर आकर्षक पंडाल भी श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत भी गणेशोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश पंडालों के जरिए आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूरत के नानपुरा इलाके में तैयार किया गया एक अनोखा गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और खासकर युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की थीम पर विराजमान किया गया है। पंडाल में जिस तरह जलमग्न द्वारका नगरी का दृश्य तैयार किया गया है, उसे देखकर ऐसा एहसास होता है मानो श्रद्धालु समुद्र की गहराइयों में उतरकर प्राचीन द्वारका के दर्शन कर रहे हैं। सूरत शहर के नानपुरा इलाके में बनाए गए इस विशेष पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी थीम है और भव्य सजावट है। पंडाल के भीतर प्रवेश करते ही चारों तरफ समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण नजर आता है। प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टाने, प्राचीन स्थापत्य और समुद्र जीवों के मॉडल को बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल्स इफेक्ट इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कम बजट में बनी हनुमान अंश कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बना रही है जिसने फिल्मी दुनिया के जानकारों को हैरान कर दिया। अब हनुमान अंश की कामयाबी के बाद इसके मेकर्स ने जिस अगली फिल्म का ऐलान किया है उसके नाम ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राम बोला नाम सामने आते ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। इसकी वजह से इसी नाम से एक और फिल्मकार ने भी अपनी फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है, यानी एक ही टाइटल और दो दावेदार। सवाल है कि राम बोला टाइटल किसका है, इस नाम के पीछे छिपी कहानी क्या है।
2: हनुमान अंश पर कृपा थमने का नाम नहीं ले रही। फिल्म कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बना चुकी है जिसने बड़े बड़े फिल्मी पंडितों को दंग कर दिया है। 2 करोड़ के बजट से बनी फिल्म अब तक 223 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर चुकी है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 277.80 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। छठे सोमवार यानी रिलीज के 39वें दिन भी फिल्म ने करीब 8.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। हनुमान अंश की इसी कामयाबी से उत्साहित होकर फिल्म के लेखक और निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। प्रोड्यूसर महावीर जैन के साथ मिलकर बनने वाली इस फिल्म का नाम है राम बोला, लेकिन इस नाम के सामने आते ही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ महावीर जैन फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर राम बोला फिल्म की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी इसी नाम से अपनी फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया और इसी के साथ राम बोला टाइटल को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल राम बोला टाइटल के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का शुरुआती नाम राम बोला था, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। मान्यता है कि तुलसीदास को प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के आदेश के बाद राम बोला ने भगवान राम की कथा को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। यानी राम बोला सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि तुलसीदास के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहचान है। फिलहाल विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर रामबोला टाइटल पर पहला हक किसका है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि ये टाइटल उनके पास रजिस्टर्ड है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस फिल्म को लेकर महावीर जैन से पहले भी बातचीत होती रही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के मुताबिक उन्होंने मार्च में ईमेल के जरिए फिल्म से जुड़ी जानकारी भी भेजी थी, जिसमें करीब 8 मिनट का ऑडियो वीडियो भी शामिल था। रामबोला का नाम आते ही फिलहाल तो एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी महावीर जैन की ओर से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सत्ता, दौलत, रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। घाटकोपर ईस्ट के विधायक पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है, लेकिन एक दिन यही शख्स ना विधायक था, ना करोड़ों का मालिक, ना साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा था। मुंबई की सड़कों पर ये विधायक हाथ फैलाए दिखे। ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं है, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना है। इस प्रयोग से संदेश ये मिला है कि पद और संपत्ति केवल बाहरी आवरण है, सच्चा इंसान वही है जो जमीन की हकीकत को महसूस करे और अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित कर सके।
3: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
4: ओ, रिक्शा आठ मंदी देवाना, नजरा ट्रैफिक करता है।
3: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
4: तू पिन लो, ये वाले

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो, लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है, लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ये अपने काम को अंजाम दे रहा है, वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में यह रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है, जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं। लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारी अभी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है क्या? यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है क्या? यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है क्या? होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबागचा राजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। अकोला में 15 फीट की प्रतिमा ने मोहा भक्तों का मन, वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बनी बप्पा की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रूपों में विराजे गणपति। मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के घर भी पधारे बप्पा, सलमान सोनाक्षी समेत कई हस्तियां शामिल। मुंबई में अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई, जुहू चौपाटी पर गजानन की प्रतिमा का विसर्जन, अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास लैब, डिजिटल लाइब्रेरी को मिलेगी सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए काशी में विशेष तैयारी, बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी पीएम की माहिरा बहन की तस्वीर, कल है प्रधानमंत्री का जन्मदिन।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशोभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। जी हां, हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है, घर घर में गजानन विराजे हैं। गुड न्यूज टुडे पर हम मना रहे हैं गणेशोत्सव, हम गणपति पूजा भी करेंगे और बप्पा की प्रतिमा के विसर्जन का विधान भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चिंतामण हरण गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार हुआ, मंदिर रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। बप्पा का मंदिर राजसी ठाट के साथ सजा है, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ बप्पा का भव्य स्वागत, विघ्नहर्ता की भक्ति में झूमते नजर आए भक्त अपने आराध्य का अद्भुत श्रृंगार। जैसलमेर के 1500 साल पुराने चूंदी गणेश मंदिर में उत्सव की धूम है, ये मंदिर बहुत पुराना है और गणेश मंदिर में देने वाले गणेश जी के नाम से मशहूर है। गणेश चतुर्थी पर पूरे मंदिर परिसर को अद्भुत रोशनी और फूलों से सजाया गया, बड़ी संख्या में भक्त बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं। मंदिर परिसर में बप्पा के भक्तों के लिए महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। धर्मनगरी काशी में भी लालबाग के राजा की रेप्लिका स्थापित की गई, भक्त बप्पा के दर्शन को उमड़ रहे हैं। मुंबई में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर ने ही ये 6 फीट की भव्य प्रतिमा बनाई है। पंडाल में बप्पा की 5 दिन की स्थापना हुई, 5 दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 4 धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है, बद्रीनाथ धाम में रोजाना 4,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। मौसम साफ होने के चलते संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है, मौसम साफ और सुहाना होने के चलते सैलानियों की भी भीड़ यहां बढ़ रही है, बड़ी संख्या में सैलानी भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। औली में भारत और अमेरिका के बीच 22वें संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 शुरू हुआ है, दोनों देशों के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता बढ़ाना है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा करेंगे। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो सामने आया है और सिनेमाघरों में दस्तक देने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। खास बात यह है कि दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजू और तलवार जैसी दमदार फिल्में दे चुकी है डायरेक्टर मेघना गुलजार। जंगली पिक्चर्स की ये तीसरी साझेदारी है, फिल्म को जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे ज्यादा मेड इन ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने मैच का पहला ओवर बिना कोई रन दिए मेड इन फेंका, जो उनके टी20 करियर का कुल 13वां मेड इन ओवर था। भारतीय गेंदबाज श्री चरणी 800 से ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। वेमेंस एशिया कप फाइनल के बाद आईसीसी ने आज ताजा रैंकिंग जारी की। एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा की भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। दीप्ति 4 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में लियानजियांग के पास समुद्र में डॉल्फिन का झुंड नावों के पीछे तैरता दिखाई दिया। कभी डॉल्फिन पानी में गोता लगाती तो कभी उछलकर बाहर आती और पानी की बौछारें छोड़ती। मछुआरों ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया। यह नजारा इंसान और समुद्री जीवों के बीच खूबसूरत से अस्तित्व की तस्वीर पेश करता है।

0: तो शुभ समाचार में बात गणपति उत्सव की करेंगे। गली गली बप्पा का शोर है, शहर शहर गणपति विराजमान हो चुके हैं। सुंदर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे स्टूडियो में भी देखिए बप्पा विराजमान है। मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं शहर शहर से पूजा।
1: बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गणपति की गूंज शहर शहर सुनाई दे रही है। कहीं पर भव्य प्रतिमाएं भक्तों को अपनी ओर खींच रही हैं तो कहीं पर अनोखी कलाकारी ने सबको हैरान कर दिया है। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है, दिल्ली में बप्पा की भव्य दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भक्त लगातार उमड़ रहे हैं। तो वहीं गुजरात के द्वारका में भी गणपति बप्पा के दरबार में भक्तों की कतार लगी हुई है और इस बार बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है।
0: तो पुणे में पानीपुरी से गणपति बप्पा की अनोखी मूर्ति तैयार की गई है। उधर काशी में भी मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर लालबाग के राजा विराजमान हुए हैं, जहां बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। यानी देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक है। हर तरफ गणपति बप्पा की जय जयकार है। अलग अलग थीम पर सजे पंडाल बप्पा के उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं।
1: ये लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, गणपति की गूंज किस तरीके से सुनाई दे रही है, गणपति के जयकारे हर ओर सुनाई दे रहे हैं और इस उत्सव को हर कोई मना रहा है काफ़ी उत्साह के साथ। तो कहीं पर रंगों की धूम है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है और गणपति बप्पा मोरिया के नारे सुनाई दे रहे हैं। तो आज गणपति उत्सव का तीसरा दिन है और हम आपको मुंबई में लालबाग के राजा के अब दर्शन करवा रहे हैं। लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि लालबाग के राजा के दर्शन की मान्यता ही एक अलग है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं लंबी लंबी कतारों में। सीधी तस्वीरें आप लालबाग के राजा की देख रहे हैं। तो लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं गणेश उत्सव पर गणेश के दर्शन के लिए और ये सीधी तस्वीरें लालबाग के राजा की आप देख रहे हैं। काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है ये, जिसके लिए यहाँ पर सिर्फ आम ही नहीं काफ़ी खास लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं। अभी तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, गृहमंत्री अमित शाह आए थे यहाँ पर दर्शन के लिए।
0: तो मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति पंडालों में से एक लालबाग का राजा के खजाने की गिनती शुरू हो चुकी है। इस खजाने में 10, 20, 50, 100 और 500 के नोटों और विदेशी करेंसी के अलावा बड़ी संख्या में सोने चांदी के आभूषण शामिल हैं। दान की गई चीजों में चांदी के मोदक, चांदी के फूल, मंदिर की रेप्लिका समेत कई कीमती चीजें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन लालबाग का राजा के चरणों में 48,50,000 का दान श्रद्धालुओं ने किया। दान की गिनती बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विशेषज्ञ कर्मचारियों और मंडल के सदस्यों द्वारा की जा रही है। तो देखिए, ये है लालबाग की महिमा। भक्त पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से लालबाग के राजा को सोने चांदी से तोल देते हैं। लालबाग चराजा की भक्ति ही इतनी निराली है कि सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ लालबाग चराजा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
2: अभी आप देखते ही रहेंगे कि जो डॉलर का हार आया है, जो अपना ये जो पैसा है, तो ये सब गिनने के लिए हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टाफ से है, जीएस महानगर के स्टाफ से है, हमारे मंडल के सम्माननीय सदस्य सलाहकार सदस्य है और जो मेरे सहकारी काम करने वाले हैं, अभी हम लोग सब पैसा गिनेंगे। और
1: तो चलिए, तीसरा दिन है आज गणेश उत्सव का। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आज तीसरे दिन किस तरीके से क्या विधि होनी चाहिए पूजा की?
3: देखिए, विधि तो वही है जो आपकी प्रारंभिक दिन में है। प्रारंभ के दिन में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, बाकी सेम आप जो है जैसे भगवान का हमने पूजन किया है, भगवान को प्रसाद भोग आदि लगाया है और जो भी आपने देव स्थापित कर रखे हैं, गजानन गणेश हैं, कलश की स्थापना कर रखी है, षोडश मातृका, सप्तगत मातृका आदि की जो स्थापना कर रखी है, उनका जैसे भी हो सकता है संक्षिप्त रूप से पूजन कीजिए। देखिए, ऐसा गणनायक हमारे प्रथम पूज्य माने गए हैं और इनकी प्रथम पूजा ऐसा नहीं कि आम जनता करती है, भगवान ने भी प्रथम पूजन इनका किया है। आपको थोड़ा सा हम बता दें कि रामायण में जब माँ जानकी जी का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में माँ जानकी ने जो है प्रार्थना इन्हीं से की और कहा, हे गणनायक, पहले तो उनने भगवान शिव और माता पार्वती से कहा कि हमें आप आशीष दें, क्योंकि ये धनुष आपका है, वह धनुष उनका था जिस धनुष को प्रभु राम को तोड़ना था। तो पहले तो माता सीता ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि आप प्रसन्न हो। उसके बाद गणनायक गजानन की उनने प्रथम प्रार्थना की और बहुत अच्छे से उसी क्षण उनने जो है मानसिक प्रार्थना की, जिस क्षण भगवान प्रभु राम जो है धनुष तोड़ने के लिए आए, तो उनने उस धनुष की जो गरवाहट थी उस गरवाहट का हरण किया। हालांकि वो बोले कि मैं कैसे धनुष की गरवाहट का हरण कर पाऊंगा क्योंकि मैं स्वयं शरीर से इतना भारी हूँ, लेकिन उनका यह एक संदेश है कि जिनका शरीर इतना विशाल भारी है उनकी सवारी क्या है, मूंछ है। तो जो जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब जिसको कहने का छोटे से छोटा व्यक्ति जिनका वजन उठा ले, ऐसे गजनायक गजानन गणेश कि इस टाइम पे जो आपका जो है ये उत्सव गणेश जी का चल रहा है गणेश चतुर्थी से और अनंत चतुर्दशी तक, जो भी व्यक्ति मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं यदि कर पा रहा तो गजानन गणेश का सिर्फ और सिर्फ आप नाम जप लें, उसमें भी आपको बहुत अत्यधिक फल की प्राप्ति है। जैसे आज अपने यहाँ जो है विसर्जन होगा, तो विसर्जन में भी थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि गजानन गणेश का कभी विसर्जन नहीं होता है। देखिए भगवान शिव ने इस भूमंडल को दो भागों में बांटा था, तो जो उत्तर का भाग है वो गजानन गणेश के हिस्से में दिया था और जो दक्षिण का भाग है उसको कार्तिकेय के हिस्से में दिया था। तो उधर दक्षिण की भारत में ही गजानन गणेश का विशेष विसर्जन होता है, इधर विसर्जन नहीं होता। यदि आपने गजानन गणेश का विसर्जन कर दिया तो आपके घर में बचेगा कौन? तो इसलिए जब आप विसर्जन करें तो उस वक्त आप अपने दीवाल में दो जो है चंदन की बिंदी अवश्य लगाएं, कुमकुम की, एक रिद्धि की और सिद्धि की, रिद्धि सिद्धि के सहित भगवान गजानन गणेश रहें। और गजानन गणेश का परिवार भी आप बता दूं इतना जो है विशिष्ट है, भगवान गजानन गणेश, उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उनके जो है पुत्र शुभ और लाभ और उनके जो पोते हैं अमोद और प्रमोद और उनको उनकी जो पुत्र वधु हैं तुष्टि और पुष्टि, मतलब हरेक नाम में जो है हर तरह से हर्ष और जो है प्रसन्नता है, जो जो सदैव जो तुष्टि और पुष्टि, शरीर को हृष्ट मतलब जो है वर्धन करने वाले हों, शरीर को स्वस्थ करने वाले हों, और जिसका जो कह दे अमोद और प्रमोद, सदैव जो प्रसन्न रहने वाले हों, प्रसन्नता के साथ जो जीवन व्यतीत करने वाले हों। रिद्धि सिद्धि का आप लोग जान ही रहे हैं, शुभ लाभ का जान, मतलब जिनके परिवार के पूजन करने से जो है संपूर्ण सकलाचर ब्रह्मांड प्रसन्न हो, सुखद हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसलिए विघ्नहर्ता गजानन गणेश का आप जैसे जिस भाव से भी चिंतन कर सकें आप उस भाव से चिंतन करें, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान देंगे कि विसर्जन की जो प्रक्रिया है तो आप भगवान गजानन गणेश के इस पार्थिव शरीर का विसर्जन कर रहे हैं, बाकी वो सूक्ष्म शरीर से आपके घर में ही निवास कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी, कुबेर, रिद्धि, सिद्धि, गजानन गणेश, इनका विसर्जन कभी भी घर से नहीं होता है। ये तो हमारी जो प्रथा है ये वहां की हम प्रथा अपनाने लगे हैं। तो वहां गणेश जी अपने जन्म के बाद कुछ समय के लिए गए थे, तो वो जो कुछ समय के लिए गए थे वहां से उन लोगों ने विदाई की थी, उसको जो है लोग विसर्जन का रूप जो है विशेष ले लेते हैं। तो विसर्जन करते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि सूक्ष्म जो है शरीर से या सूक्ष्म अपने जो है भाव से भगवान गजानन गणेश को अपने घर में ही विराजमान रखें। बस ये प्रार्थना करें कि हम आपकी इतने दिन की सेवा विशेष कर पाए और इतने दिन में जो भी कुछ हमने आपकी सेवा की उस सेवा से आप प्रसन्न हों, प्रसन्न होकर हमें आशीष दें, क्योंकि किसी भी चीज के लिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो हम कामना करते हैं कि इस कार्य को कर रहे कोई विघ्न ना आए, इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं किसी तरह की कोई जो है दिक्कत परेशानी ना आए, तो इसलिए उनको जो है विघ्नहर्ता कहते हैं। और नहीं कुछ यदि बन पा रहा है तो आप गजानन गणेश का गणपत्यथर्व शीर्ष सुन लीजिए। जैसे जिन विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में जो है कठिनाई आ रही है, वो शिक्षा में अग्रणी नहीं हो पा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि चतुर्थी का व्रत, ये जो हमने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को रखा इसको विनायक चतुर्थी कहते हैं, और इसी में माघ महीने में जो एक गणेश चतुर्थी आती है उनको संकष्टी कहते हैं। इन दोनों चतुर्थी में यदि विद्यार्थी व्रत रहते हैं तो जो भी उनके शिक्षा के फील्ड में दिक्कत परेशानियां आती हैं वो नहीं आएंगी और बागम्बणी सरस्वती की कृपा विशेष होगी और ये वो माता पिता भी अपने विद्यार्थी मतलब बच्चों के प्रति ध्यान दें क्योंकि आने वाला टाइम अब एग्जाम का ही है बच्चों।
0: पंडित जी हम बप्पा को 3 दिन के लिए हमने विराजमान किया, आज तीसरा दिन है। जिस दिन हम लेकर आए थे तो आपने देखा ही था कितने ढोल नगाड़ों के साथ गाजे बाजे के साथ बप्पा आए थे और आज तीसरा दिन है तो मन उदास भी है क्योंकि बप्पा जो है चले जाएंगे। लेकिन जो विसर्जन है उसका महत्व हमें बताइए कि जब बप्पा को हम लाते हैं उसका जब विसर्जित हम इन्हें करते तो उसका महत्व क्या है।
1: पंडित जी ये भी बताइएगा कि 3 दिन की सेवा काफी है।
3: जी देखिए ऐसा है कि भाव से तो आप इनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं और किसी भी विसर्जित व्यक्ति के उसमें ढोल नगाड़ी नहीं होना चाहिए। जब वह व्यक्ति कोई आपके यहाँ से प्रस्थान हो रहा है तो वह प्रेम से आतुर हो के आपके प्रति भी भावुक हैं और आप उनके प्रति विशेष भावुक हैं। फिर ये तो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, इनके प्रति तो हमें अत्यधिक भावुक होना चाहिए। एक चीज़ का विशेष ये ध्यान रखें, जब आप विसर्जन करें तो विसर्जन में विशेष रूप से आप ये ध्यान दें कि बप्पा की जो तस्वीर है जिस वक्त आप उनको जो है जल में डुबाएं या उसमें करते हैं तो उनका जो पृष्ठभाग है वो आपकी तरफ रहे और उनका मुखमंडल और आपका भी मुखमंडल उत्तर और पूरब दिशा की तरफ रहे। और एक चीज और लोग गलत करते हैं, क्या गलत करते हैं कि नदी तालाब या किसी जगह ले जा करके वहां फिर आरती करते हैं, वहां फिर जो है तो और वो करते हैं, ये भी गलत नहीं करना चाहिए। आपने जैसी इस तस्वीर को यहां से उठाया वैसी वो विसर्जित हो गई, मतलब कहने का तात्पर्य कि वो तो अपने शरीर वो इस अपनी जगह से हिल गए ना, तो उसके लिए बाकायदे इसका उत्तर पूजन होता है। अपन उत्तर पूजन इसमें जो है करेंगे, जब विसर्जन करेंगे उत्तर पूजन में उसी प्रकार पूजन होता है जिस तरह से हमने बप्पा को बैठाया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पूजन किया और बाकायदे सभी का गौर गणपत और कलश का और उसके साथ साथ जो भी आप लोगों ने बैठा रखी, जैसे हमने यहाँ भगवान गजानन गणेश माँ गौरी उनकी साथ में है, कलश है, संक्षिप्त में जो है नवग्रह सूरज मातृका सप्तघृत मातृका आदि का पूजन किया। इसी तरह आपको पूजन करना है, घर में आप हवन करें, हवन यदि करना चाहते तो हवन कर लीजिए, हवन करने के बाद फिर जो है इनका विसर्जन करते हैं और बाकायदे मंत्रों के साथ यदि आप कर सकते हैं तो गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वासस्तेन गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वासस्तेन गच्छता और यान्तु देव गणा सर्वे पूजा माधाय मा चला, इस तरह के वैदिक मंत्रों से कर सकते हैं। और आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो आपको हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करनी है कि हे गजानन गणेश आपकी हम सेवा इतने दिन तक कर पाए, अब आप जो है इस पार्थिव शरीर से हम आपको विसर्जित कर रहे हैं, बाकी आपका सूक्ष्म शरीर हमारे घर पे ही रहे, हम पे हमारे परिवार पे और हमारे सकल संबंधियों पे आपकी सदैव कृपा बनी रहे।
1: ठीक है अरविंद जी, और भी जानकारी आपसे आगे लेंगे। देखिए देश भर में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की तरह ही उत्तर भारत के शहरों में भी एक से बढ़कर एक गणेश पंडाल सजे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में जहां मुंबई के लालबाग चौराजा की तर्ज पर मूर्ति की स्थापना की गई है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं।

0: गणेश उत्सव के इस पर्व के दौरान शहर शहर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल सजे हैं और इन गणपति पंडालों में बप्पा की खूबसूरत मूर्तियां लोगों का मन मोह ले रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से सामने आई है, जहां मुंबई के लालबागचा राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आलम यह है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कोई बप्पा के आगे शीश झुकाकर खुशहाली का आशीर्वाद मांग रहा है तो कोई बप्पा के इस मनोहारी स्वरूप को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है।
1: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान। और अगर आशीर्वाद मिले लालबाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लालबाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है। और ये जो स्थापना है, ये पूजा है, वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है, पहले अग्रवाल समाज की बिल्डिंग में, तो अब पिछले कुछ वर्षों से ये शेरवाली कोठी जो ठठेरी बाजार इलाका है वहाँ पर स्थापित की जाती है। और देख सकते हैं हूबहू ये पूरी जो रिप्लिका है ये लालबाग के राजा की होती है।
2: शिवपुर से आए हैं यहाँ दर्शन करने, लालबाग के राजा का नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके।
0: काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के संरक्षक संतोष पाटिल ने बताया कि उनके जैसे लगभग 150 परिवार महाराष्ट्र से यहां आकर काशी में सराफा कारोबार से जुड़े हैं, जो पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बप्पा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबागचा राजा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर पाए।
3: लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति है, वो हर साल जैसे पहले 18 साल पहले हर घर घर में बैठता था, तो घर में ना बैठा थे वो सार्वजनिक करवा दिए। ये भी बॉम्बे से ही आई है और उधर से ही बन के आई है।
0: वाराणसी की तरह ही संगम नगरी प्रयागराज में भी कई गणपति पंडाल सजे हैं, जिनमें मोहतसिमगंज इलाके का ये पंडाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक ही प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है। इस अनोखी प्रतिमा को मोहतसिमगंज के राजा का नाम दिया गया है।
4: प्रयागराज के मोहतसिमगंज में है और यहाँ मोहतसिमगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहतसिमगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: शहर शहर सजे इन गणपति पंडालों में न सिर्फ भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई है बल्कि कला और आस्था का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे उस उत्सव से जुड़िए। जी हाँ, इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना सिर्फ इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने बनाए हुए वीडियोज भेज रहे हैं। पहली तस्वीर हमें जयपुर से समीर गवारिया ने भेजी है, जिसमें बप्पा की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित है, बप्पा को चौकी पर विराजमान किया गया है, सुंदर श्रृंगार किया गया है और ये मनमोहक तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बप्पा को सजाया गया है। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, हमारे एक और दर्शक निशा देशमुख ने भेजी है। निशा महाराष्ट्र के शिरगांव की रहने वाली है। निशा के गणपति भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। निशा ने अपने बप्पा को सफेद फूलों की माला पहनाई है, गुलाबी रंग के साफे में सजे श्री गणेश बेहद ही आकर्षक लग रहे हैं।

0: तो ये तस्वीरें आपने देखी अपने घर पर, लोगों ने, दर्शकों ने बप्पा को विराजमान किया है. जगह जगह से तस्वीरें लोग हमें भेज रहे हैं. आपको भी अगर अपनी तस्वीर, अपने बप्पा की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखानी है तो आप भी हमें भेज सकते हैं. और इसी के साथ हमारे सहयोगी धनंजय सावले हमसे जुड़ रहे हैं अकोला से. धनंजय, किस तरह से लोग जो है वो गणपति का स्वागत कर रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का रंग है. धनंजय, आप सुन पा रहे हैं?
1: जी गीतिका जी, मैं सुन पा रहा हूँ. अब तक आपने देखा होगा अकोला में जो सार्वजनिक पंडाल में जो है बाप्पा विराजमान होते हैं, लेकिन गणपति बाप्पा का महाराष्ट्र में जो उत्सव होता है ना, ये महज उत्सव या आस्था का केंद्र नहीं होता, ये सामाजिक संदेश देने का भी काम होता है. हम उस घर परिवार में है जहाँ पर बाप्पा को जो है एक हर साल की तरह कुछ अलग थीम पर सजाया जाता है, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बापा की जो शाड़ू मिट्टी की इको फ्रेंडली मिट्टी की बापा की सुंदर मूर्ति बैठाई गई है. और इसमें खास बात यही बताया गया है कि ग्रामीण इलाका किस तरह का होता है. और सबसे अहम दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत जरूरत है इस जमाने में, क्योंकि इस कार्यकाल में, क्योंकि फिलहाल अलनीनो के चलते जो है वो बारिश जो है रूठी हुई है, लेकिन हम जो है

0: जो है गांव जो है खाली हो रहे हैं, गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों का ये सभी जो दृश्य बताया गया है, हमारे साथ सोनू ने है, क्या बताएंगे किस तरीके का ये दृश्य बताने का काम किया है आपने?
1: ये दृश्य पूरा ग्रामीण है, ग्रामीण का यानी जैसा ग्रामीण में पानी की समस्या रहती थी कम होती जाती है और शहर में ज्यादा पानी रहता है बारिश, रेन हार्वेस्टिंग शहर में करते, तो हमने ये बात लाया कि शहर में न करते हुए तुम ग्रामीण भाग में भी रेन हार्वेस्टिंग करो तो फायदा होगा। रेन हार्वेस्टिंग न करते हुए छत का पानी कुएं में डालो, कुएं का पानी बढ़ेगा तो वो आपके काम में आएगा।
0: देखिए संदेश बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा गीतिका जी और पूजा जी कि गणेश उत्सव न्यूज आस्था का और उत्सव का केंद्र नहीं है, वो जो है वो एक सामाजिक संदेश देने का काम करते हैं।
2: आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी तस्वीरें आगे आपके जरिए दिखाएंगे अपने दर्शकों को, और गणेश उत्सव पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज।

0: चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: थोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाग चराजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। अकोला में 15 फीट की प्रतिमा ने मोहा भक्तों का मन, वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बनी बप्पा की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रूपों में विराजे गणपति। महानगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, सलमान सोनाक्षी समेत कई हस्तियां हुई शर्म। मुंबई में अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई, जुहू चौपाटी पर गजानन की प्रतिमा का विसर्जन, अगले बरस जल्द ही आने की प्रार्थना की। यूपी के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। पूरा देश इस वक्त गणेशोत्सव के रंग में डूबा हुआ है। क्या नेता क्या अभिनेता, सबके घर में गणपति विराजमान है। बड़े ही जोरों शोरों के साथ बप्पा का आगमन लोगों ने अपने घरों में किया है। गुड न्यूज टुडे पर भी बप्पा विराजमान है। देखिए किस तरह से बप्पा को विराजमान किया गया है। पूजा आरती विधि विधान के साथ आज 3 दिन हो चुके हैं बप्पा को विराजमान हुए और आज 3रे दिन बप्पा का विसर्जन होगा। बप्पा की प्रतिमा को हम विसर्जित करेंगे और देखिए किस तरह के तमाम रंग हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं शहर शहर से।
1: ये महाराष्ट्र गुजरात में तो गणपति पूजा का अद्भुत उत्साह दिख रहा है। मुंबई में तमाम सितारे गणपति आराधना में जुटे हुए हैं। कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं मुंबई में अंबानी परिवार ने गणपति विसर्जन किया तो सड़कों पर श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट पूरी तरह से बप्पा की उपासना के रंग में रंगे नजर आए हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही पूरे विधि विधान के साथ बप्पा का विसर्जन किया। सलमान खान अपने भाई सोहेल खान और बहन अर्पिता के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए हैं।
0: तो वहीं शिल्पा शेट्टी, गुरमीत चौधरी और डेजी शाह ने भी बड़े धूमधाम से गणपति की आराधना की, पूजा अर्चना की।

सलमान खान अपने भाई सुहेल खान और बहन अर्पिता के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी बप्पा विराजमान हुए और सलमान खान गणपति बप्पा की पूजा में पूरे उत्साह के साथ शामिल भी हुए। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से बप्पा का आगमन हुआ और सलमान खान किस तरह से वहां मौजूद रहे, बप्पा की पूजा अर्चना की और गणेशोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।

0: गणपती बाप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ती
1: मोरया,
0: गणपती बाप्पा
1: मोरया,
0: मंगल।
2: मूर्ति विसर्जन किया, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने गणपति की आराधना की है। पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए।

तो वहीं अंबानी परिवार ने भी कल मूर्ति विसर्जन किया। विसर्जन के लिए जब बप्पा की सवारी निकली तो उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बप्पा की सवारी के साथ साथ चल रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबानी परिवार के गणपति की। साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति आराधना की है। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था के अद्भुत रंग नजर आए हैं।

0: तो स्टूडियो में हमारे साथ पंडित जी भी लगातार मौजूद हैं, और पंडित जी से पूछने से पहले पूजा और पंडित जी एक बार गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। तो पंडित जी आज तीसरा दिन है और बहुत से लोग हैं जो तीन दिन के गणपति विराजमान करने के बाद बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, तो शुभ मुहूर्त के बारे में बताइए, कौन सा शुभ मुहूर्त हो आज के दिन का?
1: प्रायः वैसी चौघड़िया मुहूर्त हैं, हर जो है तो आधा घंटे में, हर जो है 25 मिनट में या 45 मिनट में चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे, लेकिन आप विसर्जित जो करें बप्पा को, वो विसर्जित 4 बजे के बाद करें, तब का जो है मुहूर्त विशिष्ट अच्छा है। विसर्जित आप जल में जो करते हैं, देखिए आप लोग कभी अपने विषय में नहीं पूछते, जो कि आप लोगों का काम बोलने का ही है। मैं मतलब एक आपका ही नहीं, आप लोग तो भाषक भाषिका में आते हैं बोलने को, उसमें कहते हैं कि अनेन गणपति मभि सिंचति सवाक्मी भवति। आप लोग मात्र गणपति जी को सिर्फ जल चढ़ा दें तो अनेन गणपति मभि सिंचति सवाक्मी भवति। जो गणपति को जल मात्र चढ़ा देते हैं उनकी जिह्वा में बागम्बणी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। प्रायः जो टीचर हैं, जो वक्ता हैं, जो लॉयर हैं, वो जो है जल जरूर गणपति को अर्पित करें। अनेन गणपति मम सिंचति सवाक्मी भवति चतुर्थ्या मनसं जपति। जो चतुर्थी तिथि का व्रत रहता है सविद्यावान भवति। यो मोदक सहस्त्र नयति, जो मोदक आदि सहस्त्र अर्चन करता है सवांछित फल मवाप्नोति, उसको वांछित फल की प्राप्ति होती। यो मोदक सहस्त्र नयति सवांछित फल मवाप्नोति यह साज्य समित भिरेति सर्वम लभते सर्वम लभते अष्टो ब्राह्मणा सम्यक ग्राहित्वा। और जो यो दुर्वांकुरे रहती सबई श्रवणोपम होती, जो दुर्वा के साथ भगवान गजानन गणेश का पूजन करता है, जो दुर्वा अर्पण करता है, स कुबेरवान होती, वह कुबेर के समान धन से संपन्न होता है, इसीलिए दुर्वा वैसे उनको प्रिय भी है, चढ़ती है। विसर्जन में आप एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए आपको पूजन नहीं आता है, उत्तर पूजन नहीं कर पाते। देखिए एक होता है पूजन जो हमने अभी सुबह किया, ये पूजन है। जब बप्पा का विसर्जन होगा उस वक्त उनका उत्तर पूजन करेंगे। मान लीजिए आपको पूजन का विधान नहीं पता, क्योंकि घर घर में विराजे हैं, इतना हो सकता है आपके पास पंडित जी उपलब्ध ना हो, ना आप बुला पा रहे हो, तो आपने सिर्फ आरती कर लेनी है। आरती में आपका लगभग संपूर्ण वो प्रार्थना हो जाती है जो भगवान की पूजा में प्रार्थना में जो है प्रार्थना की जाती है। और जो आपके पास यथा घर में आपने भोग बनाया है या बाहर से आप जो है दुकान से उनको ला रहे हैं, वह भोग अवश्य विसर्जन से पहले आप उनको देंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की विदाई होती है उसको बाकायदे आप उसको खिला पिला करके उसका पूरे सम्मान के साथ आप विदाई करते हैं, तो जो आने में उसको स्मरण रहता है आपके यहाँ, उससे ज्यादा स्मरण रहता है जब उसकी विदाई होती है कि आपने विदाई किस प्रकार से की थी। तो कहने का तात्पर्य मेरे, तो मैं आम व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये तो परब्रह्म परमात्मा है, विदाई आप जितनी अच्छी तरह से करेंगे वो उतनी अच्छी तरह से आपको आशीष देंगे। और किसका आशीष देंगे? धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का आशीष आपको प्रदान कर देंगे, अर्थात धर्म का अर्थ का काम का मोक्ष का, ये चारों चीजें आपको प्रदान करेंगे। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के आपके जो है ताप नष्ट करते हैं। तो बप्पा के उत्तर पूजन के समय पे किसी व्यक्ति को यदि पूजन नहीं आता है तो कोई नहीं, आप प्रसाद चढ़ाएं और उनकी आरती करें।
0: चलिए ठीक है, देखिए अब अनोखे कुछ गणपति पंडालों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इसकी फेरिस्त में अगला नंबर उड़ीसा के गजपति के इस पंडाल का है, जो कि इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में मिट्टी की बने बप्पा की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और च्विंगम से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। जी हाँ, आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। तो तीन मुख वाले बप्पा की इस प्रतिमा में एक मुख सिक्कों से सुशोभित है, जबकि बाकी दो मुख च्विंगम से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। मूर्तिकार अरुण ने बताया कि उन्हें इस मूर्ति को बनाने में 5 दिन लगे हैं।
2: हम यहाँ पर्ला हिंडी शेरी मदरी स्टेट का हमारा गली का गणेश है। ये एवरी ईयर हम यहाँ एक डिफरेंट का गणेश मूर्ति करते हैं, क्योंकि एक एक मटेरियल नहा के यहाँ पर लगाते हैं हम। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में हम मल्टी कलर स्टोन में लगाया था और कर्पूर के साथ भी किया था, और इस ईयर हमने 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन के साथ लगाया है।
3: कितना पैसा लगेगा, कितना होगा
2: सर? ये 1 रुपये कॉइन का लगभग 5,000 का लगा है, और 5 रुपये कॉइन्स का लगभग 3,500 का लगा है, और ये मूर्ति हमको बनाने के लिए लगभग 5 दिन लगा है।
0: तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोदक यहाँ पर हैं और बप्पा को मोदक बहुत पसंद है। पूजा, आपको मोदक कितने पसंद है?
4: मुझे बहुत पसंद है।
0: तो देखिए, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन हम पंडित जी से बोलेंगे कि पंडित जी जरा आप बप्पा को मोदक का भोग लगाइए।
1: देखिए, भोग तो आपका जो है पहले ये लग चुका है और ये स्पेशल सभी लोगों के लिए प्रसाद के लिए भोग लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। थाली को आपको ऐसे लेना होगा
0: जी।
1: इससे पहले मुझे संख दे दीजिए
0: जी।
1: आपको थाली को लेना पड़ेगा, आप भी थोड़ा हाथ लगाइए अपना रेट। हाँ,

0: तुभ्यमेव समर्पयेत् नैवेद्यान्ते समर्पयामि आचमनीयं ज्वलन्ते समर्पयामि हरि ओं मां प्राणाय स्वाहा ओं पानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्मृते समर्पयामि। इस तरह से हमने जो है बप्पा का भोग लगा दिया और आप भी इसी प्रकार उनको भोग लगाएं, लेकिन एक चीज ध्यान दें कि भोग में कोशिश करें कि आप दूर्वा डालें। तुलसी भगवान विष्णु जी को जितनी प्रिय है उतनी ही इनको दूर्वा प्रिय है। तो इस तरह से हमने भोग लगाया, अब ये जो है प्रसाद बन गया। और कहते हैं प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसाद से देव प्रसन्न होकर के आशीष देते हैं। तो अब इसके बाद अपना शेष कार्य बचता है आरती का, जो संक्षिप्त में आरती करते हैं
1: जी।
0: तो उसको करें
1: जी
0: जी जी, जी। तो देखिए समय का अभाव, इसलिए आरती आपको बिल्कुल संक्षिप्त में करके बता रहे हैं, आप पूरी तरह से बृहद और बड़ी कर सकते हैं। हरि ओम मा इदगो हवे प्रजननम में अस्तु दशभि रग्गो सर्वगण गुस्वस्ताये आत्मा सानी प्रजा सानी लोक सन्य भय सानी हे प्रजम बहुलाम में

कर्पूरार्तिक्यन्ते समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवंदनम् आरोग्यार्ते आत्माधिवंदनम्। अब इस तरह से आपने आरती की लास्ट में थोड़ा सा आप जो है भगवान की प्रार्थना कर लें, और मैं बहुत ही जो है शॉर्ट शब्दों में जो बहुत ही कम जो है स्तुति में प्रार्थना कर रहा हूँ समय के अभाव के कारण। हरे ओम मां विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणना नमो नमस्ते। ये गजानन गणेश का है, उनकी माता जी का भी एक श्लोक से प्रार्थना करते हैं।

0: विरतम। ओम श्री माँ गौर्य नमः। ओम गंगणपतये नमः। आवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजाम चैव जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णं ततस्तु मे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पापमा सदा पाहि माम सर्वदा देवा सर्व पाप हरो भवा। हरे ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाज् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। इस तरह से आपने बप्पा की आरती की, प्रार्थना की, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है करें। और आप जब करेंगे, देखिए कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वो एक दिन दूध और घी खाने से उसके अंदर ताकत नहीं आती। जब वो हफ्ता 10 दिन खाएगा तब उसके शरीर की वीकनेस खत्म होगी, ताकत आएगी। जब आप भूख अच्छी लगी होती उस वक्त आपको खाने का स्वाद पता नहीं होता है, आप खाए जाते हो, जब थोड़ा सा खाना खा लेते हो तब फिर दिमाग आता है कि इसमें कितना नमक है, कितनी मिर्च है, कितना क्या ऐसा क्या है। उसी प्रकार जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, बप्पा के नज़दीक आएंगे, उनकी स्तुति प्रार्थना नाम का जाप करेंगे, तब आपको उनके फल की प्राप्ति होगी। तब अंतःकरण से आपका मन भाव, हमारी सबसे सूक्ष्म चीज क्या होती है, मन विवेक बुद्धि, उसको वो निर्मित करेंगे। जब वो मन विवेक बुद्धि को पवित्र करेंगे, निर्मित करेंगे, तभी आपके अंदर जो है, जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो किसी भी प्रकार के बुरी सोच और भावना है, वह आपकी खत्म होगी। कहते हैं ना कि जाको प्रभु दुख दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हरि लिन्हा। जिस व्यक्ति के भी जिंदगी में कोई विपदा, कोई परेशानी, कोई दुख आना होता है, तो सबसे पहले मति का हरण होता है। मति का जब हरण होता है तभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि का हरण होता है तभी व्यक्ति के जीवन में विनाश आता है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन गलत लेता है। तो बप्पा क्या है? मंगलमूर्ति, विघ्नहर्ता, और चतुर्थ्या मन संजपति सविद्यावान भवति, जो विवेक बुद्धि को देने वाले हैं, जिनने पूरे महाभारत 4 वेद 6 शास्त्रों को लिखा है वेदव्यास की भाषा। तो इस तरह से जो है उनको, इस तरह से उनको आप जो है भजें, निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है, वह खत्म होगी।
1: तो चलिए इसी के साथ एक बार फिर से जयकारा लगाते हुए सभी के साथ गणपति बप्पा
0: मोरया,
1: मंगल मूर्ति
0: मोरया।
1: तो बप्पा सभी के कष्टों का नाश करे, विघ्न हरे, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, वक्रतुंड कहा जाता है, मंगल मूर्ति कहा जाता है, गणपति है ये, गजानन है ये, सबके दुख हर लेते हैं। तमाम रंग हम आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, 12 बजे फिर लौटेंगे गणपति बप्पा के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गणपति उत्सव की रौनक, गणेशोत्सव के तीसरे दिन लाल बादशाह राजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। अकोला में 15 फीट की प्रतिमा ने मोहा भक्तों का मन, वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बनी बप्पा की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रूपों में विराजे गणपति। महानगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, सलमान सोनाक्षी समेत कई हस्तियां शामिल। मुंबई में अंबानी परिवार ने दी बप्पा की प्रतिमा को विदाई, जुहू चौपाटी पर गजानन की प्रतिमा का विसर्जन, अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शकुन और अपशकुन के बारे में, अलग अलग तरह के शकुन अपशकुन क्या होते हैं और इनका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:59 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र शाम के 5:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, चंद्रमा और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शकुन और अपशकुन के बारे में, क्या होते हैं ये। देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत लगातार हमको किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। अगर ये संकेत शुभ हैं, सकारात्मक हैं, तो इसको लोग शकुन कहते हैं, और अगर नकारात्मक है तो इसको अपशकुन माना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख पाया जाता है। शकुन और अपशकुन कोई शुभ या अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते, ये केवल इस बात की सूचना देते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें भाग्य आपकी कितनी सहायता करेगा, या भविष्य में जो होने वाला है उसका संकेत क्या है। शकुन अपशकुन कभी कभी सीधी तरह से घटनाओं के बारे में बताते हैं, और कभी कभी शकुन और अपशकुन को समझना पड़ता है कि वो दरअसल क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। शकुन अपशकुन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि शकुन अपशकुन के लक्षण क्या हैं। देखिए, कोई भी संकेत अगर अचानक घटे, आकस्मिक रूप से घटे, तो उसको शकुन या अपशकुन समझना चाहिए। अगर कोई संकेत आपको बार बार मिल रहा है तो समझना चाहिए कि ये सत्य के ज्यादा निकट है, ये घटना के बारे में पूरी तरह बता रहा है। कभी कभी कुछ चीजों को हम शकुन या अपशकुन के लक्षण समझ लेते हैं, लेकिन हर बार हर संकेत शकुन अपशकुन नहीं होता, आम तौर पर हर बार ऐसा नहीं होता। ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित संकेत ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते। आपको स्वप्न में देवी देवता दिख गए, आप मंदिर में पहुंचे, फूल आपके हाथ में गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शकुन अपशकुन है, ये आपकी भावना है, आपका इमोशन है जिसकी वजह से आप ऐसा समझ लेते हैं। अलग अलग शकुन और अपशकुन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको अलग अलग शकुन और अपशकुन के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। अचानक अगर आईना टूट जाए, दर्पण टूट जाए, गिर जाए, या कांच का कोई बर्तन या कांच टूट जाए, तो इसका मतलब जिस काम से जा रहे हैं उस काम में बाधा आएगी। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा के समय शव दिखना, मछली दिखना या पान का पत्ता दिखाई देना यात्रा की सफलता बताता है, ये शकुन है, बड़ा शुभ माना जाता है। यात्रा के समय अगर आपको दूध दिखाई दे जाए या खाली बर्तन, खाली बाल्टी दिखाई दे, तो ये यात्रा रद्द होने की या बाधा आने की सूचना देता है। आप सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं और आपने शर्ट के गलत बटन लगा लिए, उल्टे बटन लगा लिए, तो ये लापरवाही की वजह से असफलता की सूचना देता है। राह चलते हुए, सड़क चलते हुए आपको हेयर पिन मिले, बटन मिले, रुमाल मिल जाए, तो ये किसी नए संबंध की शुरुआत की सूचना देता है। ऐसा होने पर विवाह की, प्रेम की या नए मित्रता की संभावना जीवन में बनती है। आप कोई बात कर रहे हैं उस समय अगर घंटी बजे या शंख की ध्वनि सुनाई दे तो काम जरूर बन जाता है। आपके बात करते समय मंदिर से या कहीं से भी शंख की आवाज आए, घंटी की आवाज आए, तो जिस काम की बात कर रहे हैं वो काम आपका बन जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए शकुन अपशकुन का जो नाम आया वो दरअसल शकुन नाम का एक पक्षी होता है, उस पक्षी के गति को देखकर यात्रा के समय, काम के समय उस पक्षी की पोजीशन को देख करके भी गणनाएं शुरुआत में की जाती थी और दरअसल वही वास्तव में शकुन अपशकुन होता था। आपने कथा पढ़ी होगी ना कि शकुंतला को शकुन नाम के पक्षियों ने पाला था, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा, क्योंकि शकुन पक्षियों ने उसका पालन पोषण किया था। तो मुख्य बात यह है कि पहले के समय में शकुन पक्षी की चाल को देखकर शुभता और अशुभता को जानते थे और इसको शकुन अपशकुन कहा जाता था। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। शादी विवाह के या वैसे भी निमंत्रण पत्र जो होते हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं उनको इधर उधर मत फेंकिए, अन्यथा आपके जीवन से शुभता कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

अद्भुत हैं हमारे महादेव, इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया महाकालेश्वर हम गए इसलिए ये कथा नहीं बताई। भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या महत्व है? भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जरा और जोर से बोलो। भैया वेदव्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है? आहा हा, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? नारद जी। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसा कर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हम तुम्हें जानते हैं, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है? पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमाए। पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, महाराज मैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या? बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो? पार्वती जी बोले, बता वो कहाँ रहती हमारी सौतन। नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो, अपन तो जय चले श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे, और कोई भी भाई धर्म पत्नी कोई भी हो, सौतन की बात आ जाए आग लग जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, चाहे कोई मजाक में भी कह दे आग लग जावे। बोलो जय हनुमान जी की। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम राम राम राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। पार्वती जी बोली, हमारी सौतन से करो सीता राम, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले, क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना वंदन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आज तक। भोले बाबा ने कहा, ये कौन सी खाज फंस गई। भोले बाबा बोले, देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे? पार्वती जी धीरे से हिला के बोली, हाँ वो आए तो थे। शंकर जी बोले, तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो? पार्वती जी बोली, महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले, सही बात है। पार्वती जी बोली, महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं। शंकर जी बोले, बताएंगे, और कोई प्रश्न? हाँ महाराज, ये जो भस्म है ये किसकी है? अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने, बैठो देवी जी।
आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले, देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? बोले बाबा, बोले ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंडे हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली, महाराज रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भय। क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा, बोले देवी जी, हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली, महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंग बली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा, बोले दो लोगों की। कौन कौन की? एक, बोले जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारा देह, तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं, और दूसरा राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा, बोले वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है।

ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा भैया, वह मौत से परे हो जाएगा। मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा, पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया। वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई,

कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या। कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना कुंभकर्ण जैसे, ऐसा लगता है। हाँ बोले क्यों, बोले कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, जो भीतर पाप रहते उन्हें लगने लगता अब हमें हाउस खाली करना पड़ेगा क्या, अब हमें भागना पड़ेगा क्या, एक काम करो इसको ही कथा से उठा दो, ये कथा से उठ जाएगा तो हमें अंदर से भागना नहीं पड़ेगा। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए तुम देखना कथा में जितनी दुनिया की बातें याद आती कहीं नहीं आती। हाँ सबसे ज्यादा बुरा ना मानना, इंदौर के पागलो तन से पूजा कर रहे आज के डेट में लोग,

से पूजा कर रहे, और मन तो मार्केट में इंदौर के घूम रहा, चाट पकौड़ी खा रहा, इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है, बढ़िया खा रहा है। अबे कहते गुरु जी कृपा नहीं होती, ठटरी के बरे नक कटा है। भाई तन से पूजा करोगे तो कहां से कृपा हो जाएगी, बोलो जय बजरंगबली की। उपाय क्या है? मन से पूजा।

अच्छा ये दशरथ क्या है? दशरथ, दस रथ, ये दशरथ क्या है? दशरथ कोई आदमी नहीं है, दस रथ हैं और दस रथों के ऊपर बैठा है मन, जो अपनी दसों इंद्रियों के ऊपर रूपी मन से बोलता है राम राम, उसी को एक बार के राम कहने में ही करोड़ यज्ञ समान फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। भोले बाबा ने भैया अमर कथा सुनाई, अमर कथा में

चेतनाएं आ गई और चेतना इतनी प्रबुद्ध आई कि वो बुद्ध और प्रबुद्ध बन गया। तो जब पार्वती जी सो गई तो कथा में बीच बीच में जवाब देना चाहिए। हाँ महाराज, बढ़िया कह दी। ओ हो हाँ, जय हो। ये बीच बीच में बोलने से कथाकार का मन लगा रहता है कि तुम्हें समझ में आ रही। बोलो जय बजरंग बली। कुछ लोग तो वरना ऐसे बैठ जाते जैसे घर से पिट करके आए हो गए। घर से पिट करके आए हो अपनी, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आराम करने आए। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ, तुम कथा में क्यों इतनी ज्यादा क्यों कथा में जाते हो? बोले घर में तीन घंटा कम से कम बच तो जाते। हमका मतलब है? बोले घर में रहो सो पत्नी की बातें सुननी पड़ती, कम से कम पत्नी से तुम ठीक हो गुरु जी। बताइए, बाद में पता लगा वो भी मूसा खेड़ी का था।

पार्वती जी हुंकार भरती रही, पर मध्य में ही वह जब पार्वती जी सो गई तो तोता ने हुंकार भरी। जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काव देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी, जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? आ हा हा, जब भोले बाबा ने धरी ध्यान, देखो भोले बाबा जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया। दंडत करन हेतु शिव दौड़े, झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडत करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे, तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी, इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेद व्यास जी की पत्नी धान फटक रही थी, धान। उसी समय उनको जमुहाई आई और जैसे ही जमुहाई आई, वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के, वेद व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेद व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेद व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेद व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है, वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा। तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम राम राम राम राम राम राम राम, अब तो भैया हम जे चले, भोले बाबा चले गए। 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेद व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पड़वा दोगे, हमें प्रपंच में पड़ना नहीं। वेद व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंग बली। अब 12 वर्ष बाद जब वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के कोख से वह प्रकट भय तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब भैया जैसे ही प्रकट भय तो वेद व्यास जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे आस

को जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेद व्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए,

पीछे बहुत दूर तक भागे, पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन में आकर बैठ गए। पर भैया, जो बालक घर छोड़कर चला गया था वही बालक भागवत भगवान की कृपा से पुनः घर आया। कैसे? जब 18,000 श्लोकों की संगता भागवत लिख दी तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए, यहां वहां जाकर श्लोक गाओ, सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक गाने लगे। जहां सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे तो एक शिष्य ने, वेद व्यास जी के शिष्य ने श्लोक गाया, भगवान की सुंदरी रूप के बारे में गाया,

श्री सुखदेव जी के सन्मुख वेद व्यास जी के शिष्य ने गाया। क्या कहा? बोले बरहा पीडम नट बर बपु। कोई इतना सुंदर है, कितना सुंदर? बोले कोई सांवरा है, बड़ा प्यारा सलोना है, नंद नंदन है। भैया उनका उनके स्वरूप का क्या कहना, पीला पीतांबर पहन रखा है, सुनहरी कोर है जिस पीतांबर की बिजली सी चमक रही है, धारण किए हुए पीतांबर है, गले में काली कामरिया बांधे हुए हैं, सिर पर मयूर पंख लगाए हुए हैं, कानों में मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, बांसुरी की मधुर मधुर

0: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
23: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: उत्सव की रौनक, गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग चौराजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। अकोला में 15 फीट की प्रतिमा ने मोहा भक्तों का मन, वाशिम में सौफ सुपारी और इलायची से बनी बप्पा की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रुपए में विराज गणपति। मायानगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सुहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, शिल्पा शेट्टी ने पेपराजी संग किया डांस। मुंबई में अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई, जुहू चौपाटी पर गजानन की प्रतिमा का विसर्जन, अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना, चर्चा का विषय, जलमग्न द्वारका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते ही नजर आता है समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण, बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किए गए हैं प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टानें और समुद्री जीवों के मॉडल पंडाल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, पंडाल में प्रदर्शित झांकियों में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का संगम। नीली और हरी रोशनी के साथ पानी की लहरों और समुद्र की गहराई का प्रभाव किया गया तैयार। इसी जलमग्न द्वारका के बीच स्थापित की गई है भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के करीब लाने के लिए तैयार हुआ गणपति बप्पा का दरबार, बड़ी संख्या में दर्शन को आए लोग इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कर रहे हैं कैद। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सभी का ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल से बनी बप्पा की प्रतिमा, 13 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी गणपति की मूर्ति, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं विघ्नहर्ता के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन। ओडिशा के गणपति जिले में भी दिखा गणपति का अनोखा स्वरूप, सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई बप्पा की मूर्ति। यहां स्थापित की गई है त्रिमुखी गजानन मूर्ति, इसमें गणपति का शरीर बनाने में भारी मात्रा में सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि साइड के दोनों मुखों के निर्माण में चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। ये खास और इको फ्रेंडली मूर्ति बनी, आकर्षण का मुख्य केंद्र, दूर दूर से दर्शनों को आ रहे हैं भक्त, बच्चों में भी खासा उत्साह। मुंबई के वाशिम में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे भगवान गणेश, सौंफ सुपारी और इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति, इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग और इलायची का किया गया है इस्तेमाल। 80 किलो की उस मूर्ति को बनाने में लगे करीब 20 दिन। इस पंडाल में हर साल बनाए हैं पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति, पिछले साल भी दालों से बनाई गई थी गणपति प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर रचा गया है नया कीर्तिमान, 10 फीट की है गणेश भगवान की मुख्य प्रतिमा। 1999 में अष्ट विनायक के रूप में 8 प्रतिमाओं की स्थापना से शुरू हुई थी ये परंपरा। पंडाल की भव्य डिजिटल लाइटिंग और अनूठी कलाकृति को देखने दूर दूर से आ रहे भक्त। मुंबई में एक्टर सुहेल खान के घर गणपति उत्सव शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर किया डांस। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान उत्सव में शामिल हुए, बप्पा के सामने मत्था टेका, की उनकी आरती। गणपति उत्सव में हेलेन बहन अर्पिता का परिवार और अरबाज खान के बेटे भी साथ नजर आए, सभी ने गणपति से सुख समृद्धि की कामना की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में किया मूर्ति विसर्जन, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी साथ रहे। पूरे विधि विधान से सचिन ने की गणपति की आराधना, पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान से गणपति आराधना की। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था के अद्भुत रंग दिखे। मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन, एक्टर गोविंदा और उनके बेटे हुए उत्सव में शामिल। डेजी शाह ने भी किया गणेश विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते बप्पा को किया विदा। अंबानी परिवार ने भी किया मूर्ति विसर्जन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद, बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। टीवी एक्टर गुरमीत ने भी देवीना के साथ किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन, बप्पा से अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना की। मुंबई के बांद्रा पश्चिम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, गणपति बप्पा के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकली शोभा यात्रा, भव्य यात्रा के साथ गणेश चतुर्थी का समापन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में गणेश भक्त इसमें शामिल हुए। बालासोर के लारी क्लब में गणेश पूजा का जश्न, पारंपरिक विसर्जन जुलूस हुआ आयोजित। धार्मिक उत्सव के दौरान नजर आई भक्तों की भीड़, रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट। कश्मीर में भी दिखे गणेश उत्सव की रौनक, कश्मीरी पंडितों ने काजीगुंड के वेसु में मनाई गणेश चतुर्थी, कश्मीर में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मदुरई में किया गया सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच निकाली गई बप्पा की यात्रा। 17 सितंबर को होने वाले प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम के तहत फैसला, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। आस्था के रंग में रंगा मदुरई, जोरों पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर महाकुंभ अभिषेकम की तैयारी। पवित्र अनुष्ठान से पहले फूलों से की जा रही पूरे मंदिर परिसर की खास सजावट, 17 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है महाकुंभ अभिषेकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए काशी में विशेष तैयारी, बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी पीएम की मां हीराबेन की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा। बिजनौर में मुस्लिम युवक बना सीएम योगी का जबरा फैन, सीने पे मुख्यमंत्री के नाम का बनवाया परमानेंट टैटू, लिखा नेक्स्ट पीएम योगी जी। रायपुर में नवा रायपुर ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देवसाय और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष व पूर्व क्रिकेटर कपिल देव इसमें शामिल हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, छात्रों से की खास मुलाकात, अपनी स्पेस यात्रा के अनुभवों को साझा किया। श्रीनगर में पहला कश्मीर थिएटर सम्मेलन किया गया आयोजित, युवाओं में रंगमंच के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समृद्ध नाट्य विरासत को पुनर्जीवित करना था इसका उद्देश्य। कश्मीर में थिएटर के इतिहास के 70 साल पूरा होने के भी मनाया गया है जश्न, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, मशहूर कश्मीरी लोक नृत्य रऊफ की भी प्रस्तुति। 3 दिन का रहा यह शानदार सम्मेलन, एक्ट्रेस क्रिएटिव थिएटर ने जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी के सहयोग से आयोजित किया यह कार्यक्रम। 2 महीने की मरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए फिर से खुला सरायघाट पुल, गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है यह पुराना पुल। इस पुल के मरम्मत कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं खर्च, 13 जुलाई 2026 से बंद था यह पुल। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम ने सड़क किनारे महिला से खरीदा मिट्टी का दिया। मुख्यमंत्री ने महिला को 1,000 रुपए देकर किया महिला के श्रम का सम्मान, यही दिया बनेगा आशीर्वाद का दिया, 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ के घर घर चलेगा। दिल्ली कैबिनेट ने ESHA वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव दोगुना करने का लिया फैसला। 3,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है, इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ, अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग चौराहे दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। अकोला में 15 फीट की प्रतिमा ने मोहा भक्तों का मन, वाशिम में सौफ सुपारी और इलायची से बनी बप्पा की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रूपों में विराजे गणपति। मायानगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सुहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, शिल्पा शेट्टी ने पेपराजी के साथ किया डांस। मुंबई में अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई, जूहू चौपाटी पर गजानन की प्रतिमा का हुआ विसर्जन, अगले बरस जल्दी आने की भी प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा।

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को कोटि कोटि नमन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सनातन परंपरा में भगवान गणेश का स्मरण किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में किया जाता है। मान्यता है कि जहां गणपति का नाम लिया जाता है वहां शुभता, बुद्धि, विवेक और मंगल का वास होता है। बप्पा के यूं तो अनोखे नाम है और बप्पा का हर नाम अपने भीतर एक विशेष अर्थ, एक विशेष शक्ति और एक दिव्य संदेश समेटे हुए हैं। आज हम जानेंगे बप्पा के 21 पावन नामों की महिमा, क्योंकि गणेश जी के नामों का स्मरण केवल नाम जप नहीं बल्कि उनके अलग अलग स्वरूपों और गुणों का स्मरण भी माना जाता है। भगवान गणेश का प्रसिद्ध नाम एक दंत है। एक दंत यानी एक दंत वाले भगवान गणेश जी के इस नाम से अनेक धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस नाम का आध्यात्मिक भाव हमें एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। जीवन में जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो मन को भटकने से रोककर अपने उद्देश्य पर टिके रहना बताता है। इसी तरह किसी नाम का क्या अर्थ है बताएंगे आपको, बस आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ।

0: सनातन धर्म का चिंतन, मीमांसा और दर्शन शास्त्र इतना व्यापक और अप्रमेय है कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की पावन परिकल्पना से लेकर एकेश्वरवाद यहाँ तक कि अद्वैतवाद तक की अवधारणा समाहित है। सगुण साकार ईश्वर की उपासना आराधना से लेकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना तक का सहज समावेश सनातन की विशिष्ट पहचान है। सनातन की सगुण साकार और निर्गुण निराकार साधना आराधना की अनादि परंपरा के सबसे विशिष्ट देवता माने जाते हैं मंगल मूर्ति भगवान गणेश। निर्गुण निराकार रूप में ये प्रणव यानी ओमकार हैं और सगुण रूप में यही गणपति, गणेश, गजानन, लंबोदर, एकदंताय आदि के रूप में पूजे जाते हैं। सगुण रूप में भी भगवान गणेश के अनेक नाम और स्वरूप हैं। श्रद्धालु अपनी आस्था, श्रद्धा और मनोकामना के मुताबिक गणपति बाप्पा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं।
1: श्री गणेश पुराण के उपासना खंड में स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है कि भगवान गणेश ने अपने हजार नामों के समान फल देने वाले अपने 21 दिव्य नामों का वर्णन किया है। कहा जाता है कि यदि आप श्री गणेश पुराण का पाठ नहीं कर पाते हैं, उन स्तोत्रों का पाठ नहीं कर पाते हैं, स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो उनके समान फल प्रदान करने वाले भगवान गणेश के 21 नाम हैं। यदि इनका जप हो जाता है तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है।
0: भगवान गणेश के हर नाम और उस नाम पर आधारित स्वरूप में कोई ना कोई विशेष फलश्रुति निहित है। जैसे सुमुख नाम का जप और इस स्वरूप का ध्यान करने से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है। एक दंत नाम जप और उसका स्वरूप चिंतन करने वालों को धन, विद्या और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कपिल नाम का जप करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। लंबोदर नाम से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अत्यंत कठिन हालात में फंसे इंसान को विकट नाम के जाप और स्वरूप के ध्यान से लाभ मिलता है। विघ्नहर्ता के रूप में वो विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। सिद्धि विनायक के मंत्र जाप से असंभव जान पड़ने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। गणाध्यक्ष स्वरूप के दर्शन और पूजन से नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और संगठन की शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह बाप्पा के और भी कई नाम और नाम के अनुरूप कई स्वरूप भी हैं। श्रद्धालु अपनी कामना और आवश्यकता के मुताबिक उनका जाप और चिंतन करते हैं।
1: भगवान गणेश को निर्गुण निराकार रूप में प्रणव यानी ओमकार के रूप में माना गया है। भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, प्रथम देव माना गया है शास्त्रों में। गणेश जी के निर्गुण निराकार प्रणव ओंकार और सगुण साकार जिसमें गणपति, गजानन आदि नामों से जाना जाता है, आदि रूपों में पूजा जाता है और चिंतन किया जाता है। लेकिन मुख्य भेद के रूप में अगर देखा जाए तो निर्गुण और साकार की बात होती है। तो निर्गुण निराकार रूप में भगवान गणेश को ओंकार या प्रणव का चिंतन माना गया है।
0: गणपति बापा का महात्म्य ये है कि किसी भी देवता का आह्वान करने से पहले गणपति की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणपति को श्रद्धावश अनेक नामों से पुकारने की परंपरा चल पड़ी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गणेश के इन नामों में इतनी शक्ति है कि मन, क्रम, वचन से निरंतर नाम जाप करने वाले भक्त के सामने वे किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह मन क्षण मात्र में अनंत कोस दूर पहुंच जाता है, वैसे ही गणपति निरंतर नाम स्मरण करने वाले साधक के सम्मुख अनंत कोस दूर से उपस्थित हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि अपने हजारों नामों में से गणेश जी को कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है। गणेश पुराण के उपासना खंड में गणपति ने अपने हजार नामों के समान फल देने वाले 21 नामों का वर्णन किया है। ओम गणन जयो गणपतिर हेर रंबो धरणी धरह महागणपतिर लक्ष प्रदा क्षिप्र प्रसादन अमोघ सिद्धि रमितो मंत्रस्य चिंता मणिर निधि सुमंगलो बीज माशा पूरको वरद शिव काश्यपो नंदनो वाचा सिद्धो ढूंढि विनायक। गणेश पुराण में स्वयं गणेश जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन मोदक रूपी 21 नामों के जप करता है तो इससे मेरे सहस्त्र नाम की स्तुति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में गणपति के 21 नाम इस प्रकार हैं: गणंजय, गणपति, हेरंब, धरणीधर, महागणपति, लक्ष्यप्रद, क्षिप्र प्रसादन, अमोघ सिद्धि, अमित, मंत्र, चिंतामणि, निधि, सुमंगल, बीज, आशापूरक, वरद, शिव, काश्यप, नंदन, वाचा सिद्ध और ढूंढि विनायक।
1: सहस्त्र नाम जो पढ़ने का फल प्राप्त होता है उसके समान फल प्राप्त हो जाता है। इसका वर्णन श्री गणेश पुराण के उपासना खंड में हमें प्राप्त होता है कि यदि हम इन 21 नामों का जप करते हैं तो सहस्त्र नाम जपने का जो फल है वह इतने 21 नामों के जपने से ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश के सहस्त्र नाम का अगर पाठ किया जाए, पूजा किया जाए, अर्चन किया जाए, जप किया जाए और उससे भगवान गणेश को पुष्प से या ऋतु फल से अथवा पंचमेवा से अभिषेक किया जाए, अभिषेक किया मतलब क्रमशः चढ़ाया जाए प्रत्येक नाम से, तो उसका अद्भुत फल मिलता है।
0: गणपति बाप्पा के रूप लीला और गुणों की भांति ही उनके नाम भी दिव्य अलौकिक और चिदानंदमय होते हैं। गणपति की ही तरह उनके विभिन्न नामों में भी असीम शक्ति निहित है, इसीलिए नाम स्मरण या नाम जाप के प्रभाव से सुख संपत्ति ऐश्वर्य मोक्ष और भगवत प्रेम की प्राप्ति तक संभव है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु गणपति के निर्गुण स्वरूप का ध्यान और चिंतन करते हैं। दरअसल इस सृष्टि के मूल में विद्यमान प्रणव तत्व को गणपति का निर्गुण निराकार स्वरूप माना जाता है। प्रणव तत्व जब ध्वनि ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है तो ओम बन जाता है। ओम यानी एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। ओमकार स्वरूप होने की वजह से गणेश जी का एक नाम एकाक्षर भी है और इसी वजह से उन्हें सृष्टि का अनादि देव भी माना जाता है। भगवान गणेश वैसे भी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। जाहिर है उनकी चेतना के साथ स्वयं को एकाकार करने से हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी और मन में ज्ञान का संचार होगा। जिस इंसान की बुद्धि कुशाग्र है और जिसकी चेतना जागृत है वो इंसान देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। गणपति का महात्म्य इस अर्थ में बहुत ज्यादा है कि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले गुण की वजह से इनका एक नाम क्षिप्र गणपति भी है। क्षिप्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है त्वरित, तेज या शीघ्र। भक्तों का विश्वास है कि पंचदेवों में गणपति सबसे सहज प्राप्य हैं। भक्तों की पीड़ा देखकर वे तुरंत द्रवित हो जाते हैं और उनके लिए विघ्नहर्ता बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है लेकिन पुराणों में, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये कैसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि भगवान गणेश का जो अलौकिक स्वरूप है उसके अलौकिक मायने आखिर क्या हैं और वो हमारे जीवन में किस प्रकार गहरा जुड़ाव रखते हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चिंतामणि गणपति का जो विसर्जन है कई लोग आज कर रहे हैं। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई थी। 10 दिन का ये उत्सव होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंडाल जो है वो सज चुके हैं और आज जो है कई लोग बप्पा को विदाई दे रहे हैं लेकिन इसी वादे के साथ कि अगले बरस जरूर आना, आंखें नम है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके साथ ही ये वादा भी है कि गणपति बप्पा अगले साल जरूर आएंगे और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे। आपको बता दें कि गणपति बप्पा जो है वो प्रथम पूज्य हैं, यानी सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है, उनके तमाम नाम हैं और यही उन्हें सभी भगवानों में अलग बनाता है।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार कर्तव्य सरलता ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है, यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को यह संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए वो स्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी बिनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूल काय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी है। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा है, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम हैं शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियाँ तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन हुआ होगा। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने उन वीडियोस को भेजें और उन वीडियोस को स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, आपको बता दें, ये नंबर सिर्फ वीडियो और तस्वीरें भेजने के लिए ही है। जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपना शहर, गांव या फिर कस्बे का नाम भी जरूर लिखते। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर आप हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक जो है वो वीडियोस भी भेज रहे हैं। गुजरात के सूरत से गणपति उत्सव की खुशियां साझा की गई है। बप्पा को घर में विराजने का ये जो प्यारा सा वीडियो है हमें भेजा है विजय अंबादास बटकस ने, जिन्होंने अपने परिवार के साथ पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया। गजानन की इस मनमोहक मूर्ति को कैमरे में कैद कर हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। वहीं असम के बिहूबर से भी एक और दर्शक ने गणेश उत्सव की खुशियां हमारे साथ साझा की हैं। वैष्णवी एंड ग्रुप ने भी अपने घर में गणपति बिठाए, उत्सवी माहौल में उन्होंने एक संगीतमय झांकी बनाई और उसमें अपने प्यारे से बप्पा को स्थापित किया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेशोत्सव के तीसरे दिन लाल बादशाह राजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। अकोला में 15 फीट की प्रतिमा ने मोहा भक्तों का मन, वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बनी बप्पा की प्रतिमा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रूपों में विराजे गणपति। माया नगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, शिल्पा शेट्टी ने पेपराजी संग किया डांस। मुंबई में अंबानी परिवार ने दी बप्पा को विदाई, जुहू चौपाटी पर गजानन की प्रतिमा का विसर्जन, अगले बरस जल्द ही आने की प्रार्थना। यूपी के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, करीब 14,500 विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लास लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा।

0: चलिए एक बार फिर से आप सभी हमारे साथ बोलिए गणपति बप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरया।
0: तो देखिए गणपति उत्सव के ये निराले रंग आपको लगातार दिखा रहे हैं। जीएनटी संघ जीएनटी में भी बप्पा पधारे हैं। 3 दिन के हमारे गणपति जिनका आज विदाई समारोह होगा, वो तस्वीरें भी लगातार जीएनटी पर आपको दिखाएंगे।
1: बिल्कुल, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने प्रोग्राम की। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा, मेरी सहयोगी शगुफ्ता यहाँ पर मौजूद है। शगुफ्ता, कैसा लग रहा है आज तीसरा दिन और आज हम गणपति की विदाई करने
0: वाले? मुझे बहुत सारे इमोशंस हैं सच बताऊं, क्योंकि लेकर आई हूँ और शायद विदाई समारोह में शामिल होंगी, तो जैसे घर पे एक मेहमान आता है ना, कोई अपना आता है, अपनों से बिछड़ने का जो फीलिंग और इमोशन होता है वही है, आज पूरा भाव वही है।
1: तो देखिए, गली गली शहर शहर गणपति बप्पा की गूंज है। कहीं पर अलग अलग रूप में बप्पा पधारे हैं। अभिव्यक्त की जा रही भव्य प्रतिमाएं भक्तों को अपनी ओर खींच रही हैं, तो कहीं अनोखी कलाकारी ने सबको हैरान कर दिया है।
0: और देखिए, पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई है। तो वहीं वाशिम में भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वाशिम में सौंफ, सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर ही गणपति की प्रतिमा बनाई गई है। तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं।
1: संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। इसमें खासतौर पर यहाँ एक ही प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है। मतलब ये कि बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग काफी ज्यादा दिख रहा है। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। हर तरफ गणपति बप्पा की जय जयकार है। अलग अलग थीम पर सजे पंडाल बप्पा के उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं।

0: चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको अकोला से दिखाते हैं। हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ अकोला से जुड़ गए हैं। धनंजय, आज तीसरा दिन है गणेश उत्सव का, कैसी तस्वीरें अकोला में निकलकर सामने आ रही हैं? अभी आप किस पंडाल में मौजूद है, दिखाइएगा
1: जी। चलिए धनंजय के पास चलते हैं, मुंबई का एक बार रुख कर लेंगे। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त आप कौन से पंडाल में मौजूद हैं, जरा दिखाइए कैसी रौनक है यहाँ पर।
2: देखिए, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, हमेशा ही जब से गणेश उत्सव शुरू हुआ है तब से ही हम बड़े बड़े पंडालों के दर्शन करते आए हैं और अपने दर्शकों को करवाते आए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी ये भी जानना है कि भाई जो घर गुरु की गणपतियां होती हैं वो कैसी होती हैं और किस तरीके से चीजें होती हैं। मैं इस समय एक परिवार में हूँ, घाटकोपर इलाके, मुंबई का घाटकोपर इलाका है, जहाँ के एक तिवारी परिवार में इस समय मौजूद हूँ। और घर में किस तरीके से बप्पा विराजमान किए जाते हैं दिखाने की कोशिश हम करते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर बप्पा इस समय यहाँ पर विराजमान है। और वाकई में इस तरह से हजारों की तादाद में हर कोई मुंबई महाराष्ट्र और अपने घर में जो है बप्पा विराजमान करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएं कि एक बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पे इस समय गुडनेस टुडे चल रहा है। हर कोई देखता है गुडनेस टुडे, और स्पेशली जब फेस्टिवल का समय होता है परिवार भी हमारे साथ है। हम थोड़ा सा बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम है साहब आपका?
3: विजय प्रकाश तिवारी।
2: विजय जी, ये बताइए कि पप्पा कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी लाइफ में, गणेश उत्सव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितने साल से अपने पप्पा को आप यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं, थोड़ा बताएं प्लीज।
3: पप्पा तो भाई उसी तरह जीवन में हमारे विराजमान है जिस तरह हर बेटे के जीवन में उनके माँ बाप होते हैं। और हमारे यहाँ पे करीबन आज 8 साल से गणपति जी का आगमन हो रहा है। और जब से हमारे यहाँ पे गणपति जी का आगमन हुआ है सब कुछ अच्छा ही, सुख समृद्धि हमारे यहाँ पे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। और साल में जो कोई भी विघ्न या तो कष्ट हमारे जीवन में आता है वो गणपति जी आते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं।
2: क्या बात है, क्या बात है। मैम, क्या नाम है आपका?
4: संजू तिवारी।
2: अच्छा, ये बताइए कि जब से पापा विराजमान यहाँ पे हैं क्या कुछ पूरा का पूरा माहौल हो गया है, और कैसे आप इनको जी रहे हैं, क्या कुछ करते हैं इनके लिए, क्या बनता है, क्या मोदक वगैरह बनाया है?
4: हाँ, मोदक बनाते हैं। पापा जब से आए घर में चहल पहल मची है, मोदक लड्डू का भोग लगाए, जब से पापा आए अच्छा हो रहा है सब।
2: अच्छा, ओके। थोड़ा आप भी आए, क्या नाम है आपका?
5: चंदन तिवारी।
2: अच्छा, युवा हैं आप, जेंजी हैं? कितना ज्यादा मानते हैं गणपति?
5: बहुत ज्यादा। मैं ही बोल के इनको पहली बार हमने स्टार्ट कराया था, उसके बाद से कंटिन्यू अब जब तक चलता रहेगा।
2: अच्छा, कितने दिन के बाद में इनका विसर्जन?
5: पांच दिन
2: के बाद में होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ना कहीं गेट टुगेदर का माहौल हो जाता है,
5: बहुत आना जाना लगा रहता है,
2: तो कहाँ कहाँ आपने इन्वाइट किया रिश्तेदारों को यहाँ वहाँ, और वाकई में गणपति गणपति
3: इन्विटेशन?
0: धर्मेंद्र, श्रद्धालु से आगे भी बातचीत कीजिएगा, उनके उत्साह के बारे में जानेंगे। एक बार अकोला दोबारा लिए चलते अपने दर्शकों को, धनंजय वहां से जुड़े हुए हैं। धनंजय, आज तीसरे दिन क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अकोला से?
6: बिल्कुल, तस्वीरें जो है पूजा जी एकदम बेहतरीन है, क्योंकि सार्वजनिक पंडाल के साथ हम आज जो है सुबह से ही जो है घर के पंडाल कैसे सजे है, क्योंकि घर में जो है बापा की बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है आस्था के साथ उनकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पर जो है एक जो परिवार है उसने जो है वो पुणे के जेजुरी का गढ़, जिसे एक आस्था का केंद्र है, हमेशा से ही ये जो है महिला जो है ये यहाँ का ये परिवार जो है ये मल्हारगढ़, मानो जो पुणे में जेजुरी का गढ़ है वो बड़ा आस्था का केंद्र है, और वही गढ़ यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हमारी जो पुरानी परंपरा है, खासकर जो आस्था के केंद्र है उसे जो है साबित करने की यहाँ पर गणपति के साथ जो है ये सुंदर तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैंने सुबह ही कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि गणपति बाप्पा का उत्सव जो है महज जो है उत्सव के नाम पर नहीं है, महोत्सव के नाम पर नहीं है, तो वो एक जो है संदेश देने का काम है कि अपने जेजुरी का जो गढ़ है, खंडोबा का जो जेजुरी का गढ़ है वो यहाँ पर इन्होंने बनाया है। वो जो है शिल्पा हमारे साथ है जिसने ये सब कुछ बनाया है। शिल्पा, मुझे बोलिए कि हर साल आप जो है वो इस तरीके का गढ़ बनाती है या फिर अलग अलग आस्था का केंद्र बनाती है, क्या क्या महत्व है इसका?
7: ये जो झांकियां है हम वो जब जो श्रद्धा स्थान रहते हैं उनसे प्रेरित होके बनाते हैं। हर साल अलग अलग झांकियां बनाते हैं। पिछले साल हमने अष्टविनायक बनाए थे, उससे पहले हमने जो विठल जी का दर्शन बताया था
2: पांडुरंग का,
7: हाँ, जो हमारी शेगांव से पंडरपुर जो वारी जाती है,
6: पालकी
7: जाती है, तो वो बनाए थे हमने, तो झांकियां बनाई थी। इस साल हमने ये बच्चों जो स्कूल में रहते हैं वो उनको आइडिया रहती है। इस साल उन्होंने बोला कि मुझे जेजुरीगढ़ बनाना है, तो हम सबके आइडिया से हमने इस साल जेजुरीगढ़ बनाया है।
6: तो देखिए जेजुरीगढ़
1: किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है। धनंजय, लौटती हूँ आपके पास, ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन पुणे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुणे के FC रोड पर बप्पा की एक प्रतिमा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यहाँ 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की मूर्त तैयार की गई। तो वही मुंबई के अंधेरी इलाके में चित्रों के जरिए शिव परिवार से जुड़े अहम संदेशों को प्रस्तुत किया गया है। देखिए

0: बप्पा के इस रूप को निहारिए, अद्भुत अनोखे ये हैं पानीपुरी बप्पा। तस्वीरें पुणे के एफसी रोड की हैं, जहां 21,000 पानीपुरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 2400 घंटे कारीगर तैनात है। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का मानना है कि 21,000 पानीपुरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। ये मुंबई के अंधेरी इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ श्री मोगरेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने शिव परिवार से जुड़ी अहम लीलाओं का चित्रों के माध्यम से वर्णन किया है। साथ ही यहाँ लोगों को बप्पा के अद्भुत स्वरूप के दर्शन भी हो रहे हैं।
1: उपनगर मुंबई के अंधेरी इलाके में हम लोग इस समय मौजूद हैं और मोगरेश्वर राजा के दरबार में मौजूद हैं। थोड़ा सा सबसे पहले बप्पा का आप दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा प्यारे, बहुत ज्यादा सुंदर इस समय बप्पा लग रहे हैं। और खास बात ये है इस दरबार की कि हमेशा ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए अलग अलग तरह की थीम रखी जाती है, अलग अलग तरह की चलचित्र रखे जाते हैं और जिसमें वो सारी बातें बताई जाती हैं जो आज के युग को, जिनमें जेंजीज भी आते हैं, उन्हें नहीं पता है।
2: हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पुरातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ये सब पता होना चाहिए कि इस कारण हम लोग गणपति बापा को इस तरह देख रहे हैं। उसी के कारण हम लोग गणपति बापा का ये पंडा लगा के हम लोगों को 54 साल हो गए।
0: पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। इस दौरान अद्भुत अनूठे पंडाल गणेश भक्तों को लुभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन स्वरूपों के माध्यम से खास संदेश देने की भी कोशिश की गई है, लिहाजा आस्था भक्ति के साथ ही यहां आम जीवन से जुड़े अलग अलग पहलुओं की भी झलक देखने को मिल रही है। मुंबई में धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनोखे गणपति पंडालों की फेरिस्त में अगला नंबर ओडिशा के गणपति के इस पंडाल का है। तस्वीरें देखिए, इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है क्योंकि इस पंडाल में मिट्टी की बनी बप्पा की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्के और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा को तैयार किया गया है।
4: और देखिये, आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद के साथ उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बप्पा की इस प्रतिमा में एक मुख सिक्कों से सुशोभित है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के चलते ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमत्कार नजर आती है। मूर्तिकार अरुण ने बताया कि उन्हें इस मूर्ति को बनाने में 5 दिन लग गए।
5: हम यहाँ परला हिंदी शेर मदरी स्टेट का हमारा गली का गणेश है। ये एवरी ईयर हम यहाँ एक डिफरेंट का गणेश मूर्ति करते हैं, क्योंकि एक एक मटेरियल नहा के यहाँ पर लगाते हैं हम। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में हम मल्टी कलर स्टोन में लगाया था और कर्पूर के साथ भी किया था, और इस ईयर हमने 1 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन के साथ लगाया है।
6: कितना पैसा लगेगा, कितना होगा
5: सर? ये 1 रुपये कॉइन का लगभग 5,000 का लगा है और 5 रुपये कॉइन्स का लगभग 3,500 का लगा है, और ये मूर्ति हमको बनाने के लिए लगभग 5 दिन लगा है।
4: चलिए महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीरें भी देख लीजिए। 90 साल पुराने यहाँ पर मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। बप्पा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं।
3: देखिए, खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्टविनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है।

0: अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की तस्वीरें। देखिए यहाँ पर प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है, जिसमें कि 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल किया गया है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगे हैं।
1: और देखिए इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल की तरफ से तैयार किया गया है। क्या खास है इसमें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 रूपों में गणपति बप्पा विराजमान है। यहां साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव शुरू हुआ था और अब भक्तों के द्वारा 101 गणेश मूर्तियां स्थापित की गई। यहां स्थापित सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली बनाई गई हैं।
2: छत्तीसगढ़ का इस्पात नगरी भिलाई का हुड़को सेक्टर महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल के द्वारा गणेश पूजा धूमधाम से की जा रही, वो भी इको फ्रेंडली गणेश। जो मुख्य गणेश की मूर्ति है वो 10 फीट है और यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ भक्तों के द्वारा 101 गणेश विभिन्न आकृतियों की इको फ्रेंडली रखी गई है, क्योंकि भिलाई को मेन इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे सभी प्रदेश के लोग निवासरत है और भक्ति गणेश भगवान की करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश का स्थापना करके एक पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक ने जो गणेश पूजा की स्थापना की गई थी उसके नक्शे कदम पर भिलाई के ये गणेश भक्त चल रहे हैं। रघुनंदन पंडा, गुड न्यूज टुडे, भिलाई, छत्तीसगढ़।
3: तो भिलाई जिस चीज के लिए जाना जाता है, जो मिनी इंडिया कहते हैं, तो वाकई में ये मिनी इंडिया है। और यहाँ आप देख पाएंगे कि इस वर्ष मुझे याद पड़ता है जब मैं हम पहली बार आए थे, शायद यहाँ 21 गणेश जी की स्थापना हुई थी और आज मुझे लग रहा है 9-10 साल हो गए और आज इस वर्ष 101 गणेश जी एक ही पंडाल में बिठाए गए हैं। और इको फ्रेंडली ये जितने भी गणेश जी आप देख रहे होंगे, ये समिति का मतलब इतने कर्मठ समिति और इतना बढ़िया इनका अरेंजमेंट होता, एक एक जन से ये पूजा करवाते हैं और इको फ्रेंडली का एक संदेश जाता है हमारे भिलाई के लिए।
4: बस यही है, भगवान के दर्शन कीजिए। भगवान ऋषि जी के दाता है, बुद्धि के दाता है, भगवान मंगल करता है, तो बस उनसे प्रार्थना कीजिए सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो।
1: अब देखिए इतने सुंदर सुंदर पंडाल आपको दिखा रहे हैं, हर किसी के लिए एक पंडाल तो जरूर खास होता है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूजा, उसमें से कोई खास आपका फेवरेट पंडाल?
0: मुझे लालबागचा राजा
1: का पंडाल बहुत
0: अच्छा लगा।
1: चलिए, वो तो वैसे सबका पसंदीदा पंडाल में से एक है, लेकिन चॉकलेट से गणपति जो बनाए गए हैं, टॉफी से जहाँ पर तैयार किया गया है, वो बच्चों का सबसे फेवरेट पंडाल है।
0: वो बच्चों को आकर्षित करता है ना, चॉकलेट से गणपति बनाया है
1: और खाने का मन भी करता है। अब देखिए सूरत की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सूरत में एक और अनूठे गणपति के दर्शन आपको करवाते हैं। यहाँ तापी नदी के बीच कृष्ण रूपी गणेश पधारे हैं, भक्त नाव के जरिए बप्पा की इस अनोखी सूरत को निहार रहे हैं। यहाँ के मछुआरा समुदाय ने तापी नदी के बीच भगवान कृष्ण के जन्म की लीला को जीवंत करने की कोशिश की है।

0: और इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं। पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे ये थीम दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होंगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है। तो इस जो आयोजक हैं, जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके दिमाग में आइडिया कैसे आए, किस तरह से यहाँ पर उनकी स्थापना की गई है। ये जो स्थापना आपने तापी नदी में क्यों की है और इस थीम को कैसे लेके आए?
1: 2006 से पहले सूरत शहर में टाइम टू टाइम बाढ़ आती रहती थी। उसके बाद हमारे मंडल के सभ्यों के द्वारा एक प्लान लिया गया कि हम लोग तापी नदी के अंदर गणपति की स्थापना करते और गणपति जी को प्रार्थना करते कि सूरत शहर को बाढ़ से बचाए और सुरक्षा सुरक्षित रहे। उसके बाद हमने मंडल के द्वारा स्थापित करते हमारा 20वां साल है। और तापी नदी के अंदर हम लोग, ये हमारी तापी माता है, हम मछुआरे लोगों की और हमारी जीवा डोरी समान है, इसीलिए हम सब मछुआरे तापी नदी के अंदर तापी का जन्म उत्सव होता है, मत्स्य विश्व परिषद दिन होता है और ये गणेश जी का सब टेबल तापी नदी के अंदर हम लोग करते हैं। और ये प्लॉटिंग है जो हमने तापी नदी को बीच बिछाया है, उसको चारों ओर से लंगर बांधा और बीच में मैनुअल हमको एडजस्ट करते, इसीलिए प्रतिमा भी एक ही जगह रहती है।
0: अच्छा, तो जब आपको यहाँ पर पूजा पाठ करना होता है तब कैसे यहाँ पहुँचते हैं?
1: हम सुबह और शाम हमारे मंडल के सभ्यों के द्वारा नाव से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और किसी और को लेके नहीं आते, हमारे खाली मंदिर के सभ्य ही आते हैं तापी नदी के बीच में, क्योंकि पानी की गहराई ज्यादा है, इसीलिए दर्शन लोग के लिए ऊपर प्लेटफॉर्म बना है, वहीं से आप दर्शन कर सकते हैं भक्त लोग सब।
0: और इसको रोक कैसे रखा है कि पानी नदी का जो पानी है वो तो बह रहा है, तो उसमें कैसे रोक रखा है?
1: ये फाइबर का प्लेटफॉर्म है एयरटाइट, जो पानी नदी के ऊपर सहलाई से तैर सकता है, पर हम लोगों ने चार अलग अलग दिशाओं में एंकर डाला है जमीन पानी के नीचे और वो जो रस्सी होती है उससे बैलेंस किया हुआ है।
0: तो इस थीम को आपने क्यों यहाँ पे बनाया, क्योंकि हमने पंडाल में भी आपकी इस थीम को देखा है, तो क्या बताने की, क्या संदेश देने की कोशिश की गई?
1: हम वही सोच के ये थीम बनाया कि जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो जन्म कैसे हुआ था वो सब लोग को पता चले, खाली कृष्ण जन्म हुआ था वही पता है, पर कृष्ण जन्म होने से पहले जो 6 बच्चों को जन्म हुआ था वो मामा कंस ने हत्या कर दी थी, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। और श्री कृष्ण भगवान ने जेल में जन्म होने के बाद वासुदेव यमुना पार करके गोकुल ले गए थे, वही हम लोग दिखाना चाहते थे कि इसी तरह कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और यही कृष्ण भगवान के स्वरूप में हमने गणपति लाया है। और ये तापी में पूरे लोग को हम संदेश देना चाहते हैं कि तापी नदी को एकदम स्वच्छ रखो पहले की तरह।
0: और विसर्जन की प्रक्रिया क्या होगी इसकी, फिर विसर्जन की?
1: हम ये मूर्ति का विसर्जन नहीं करते हैं, हर साल हम लोग मूर्ति किसी और मंडल वाले को या कुछ चाहिए उसको हम डोनेट कर देते हैं, हम विसर्जन नहीं करते।
0: तुरंत में तापी नदी में मछुआरा समाज द्वारा अनोखे प्रकार से भगवान गणेश की भक्ति और आराधना तापी नदी के मध्य में की जा रही है। संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे, सूरत।
2: चलिए अब आपको सूरत में द्वारका के दर्शन कराते हैं। दरअसल सूरत के नानपुरा इलाके में जलमग्न द्वारका की थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें कि समंदर में डूबी द्वारका नगरी में बप्पा पधारे हैं। इस अनूठे पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, देखिए।
3: इस पंडाल के जरिए सूरत में द्वारका नगरी के दर्शन कीजिए। तस्वीरें सूरत के नानपुरा इलाके की हैं, जहां इस गणेश पंडाल के जरिए श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन कराए जा रहे हैं। शैलर युवक मंडल नाम के इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, खासकर युवाओं को ये पंडाल खूब भा रहा है। यहाँ गणपति को द्वारकाधीश की नगरी में विराजमान किया गया है। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हों।
0: और सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है। इस यहां पर दिखाया गया है गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
3: नानपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनूठी थीम और भव्य सजावट, जिसके जरिए एक अनूठी दुनिया गढ़ी गई है। खासकर लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समंदर की गहराई में होने का बोध कराती है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब भा रही है।
4: इस साल हमने द्वारका नगरी की थीम रखी है जो सोना की नगरी तरीके भी जानी थी है। और जैसे दिखता है कि कृष्ण भगवान जैसे पानी में ऐसे पूरी द्वारका नगरी डूब गई थी, तो ऐसे आज की हम जून पौराणिक कथाओं के अनुसार सबको संदेशा पहुंचे कि कैसे द्वारका नगरी डूबी थी दरिया में।
5: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए। बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
0: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
5: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल है।
6: श्री सिद्ध विनायक नमो नमः।
3: आयोजकों का मानना है कि जलमग्न द्वारका की थीम को चुनने के पीछे केवल पंडाल को भव्य बनाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके जरिए

0: पंडाल में स्थापना हुई तो यहाँ मानो उस ईश्वरीय देवता का वास हो गया है।
1: और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ उसी लुक में जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है उनकी ये छवि है, वही छवि जो है, वही सेम स्वरूप जो है वो यहाँ पर भी लाया गया है।
0: बप्पा के इसी अलौकिक और चमत्कारी स्वरूप के दर्शन, उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। हालांकि आयोजक और कार्यकर्ता पंडाल की साज सजावट को आखिरी रूप दे रहे हैं, मगर उससे पहले बप्पा के दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं।
1: जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से पंडालों को सजाया जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अभी भी जो है वो तैयारियाँ करते हुए लोग आपको जो है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे।
0: मयूर विहार के राजा का पंडाल में विराजने का ये पांचवा साल है, लेकिन इस बार गौरी पुत्र का ये विराट स्वरूप बीते चार साल से कुछ अलग है, खास है।
2: पाँच साल हो गए हमारे को अभी।
1: महाराष्ट्र से जो है मूर्ति लाई जाती है,
2: महाराष्ट्र से हम पहले छोटी सी लाते थे बॉम्बे, जी छोटी छोटी आती थी, लेकिन आपके बच्चों का मन था कि हम बॉम्बे से ही लेकर आएंगे,
1: तो इस बारी मूर्ति जो है
2: बॉम्बे से लाए।
0: फिलहाल तो इस गणेशोत्सव दिल्ली के मयूर विहार में भक्तों की अपने पप्पा को लेकर जैसी भावना रही, वैसे ही स्वरूप में उन्होंने सिद्धि विनायक को सजाया हुआ है।
1: महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर तो काफ़ी विशाल पंडाल जो है लगाए जाते हैं, सजाया जाता है उनको, और अलग अलग थीमों पर जो है उसको तैयार किया जाता है। लेकिन जब बात दिल्ली की हो तो दिल्ली भी उसमें किसी तरीके से पीछे होते हुए जो है वो नहीं दिखता, और उसी बीच जो है मयूर विहार के राजा को जो है बेहद ही खूबसूरत उनका स्वरूप जो है वो तैयार किया गया है।
0: तो देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग थीम पर गणपति भगवान के स्वरूप नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको अब तस्वीर दिखाते हैं हरिद्वार की, जहां अर्धकुंभ थीम पर बप्पा की स्थापना की गई है। गणेश चतुर्थी के साथ ही धर्मनगरी भी गणेशमयी हो गई है। यहां महामाया गणपति संगठन ने भगवान के इस विशेष स्वरूप को स्थापित किया। दरअसल साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए ही गीता भवन में अर्धकुंभ थीम पर बप्पा की मूर्ति विराजित की गई है। पौराणिक मान्यताएं भी कहती हैं कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बप्पा का स्वागत पारंपरिक विधियों के साथ हुआ। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ ही कुंभ के उद्गम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंगों को इस भव्य झांकी के माध्यम से बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है।
3: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है।
0: कहना गलत नहीं होगा कि गीता भवन में बप्पा का ये खूबसूरत पंडाल पूरी तरह से कुंभ मेले के रंग में रंगा हुआ है। फिलहाल तो गणेश चतुर्थी पर गणेशोत्सव के शुभारंभ के साथ शहर शहर बप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए हैं, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता के वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से भी चर्चा बटोर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना इतना है, अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए और हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं।
5: और देखिये महाराष्ट्र के नांदेड़ से गणपति उत्सव की खुशियां साझा की गई है। बप्पा को घर में विराजने का ये प्यारा सा वीडियो हमें भेजा है समर्थ गंगुलवार ने, जिन्होंने अपने परिवार संग पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया। गजानन की इस मनमोहक मूर्ति को कैमरा में कैद कर हमारे साथ उन्होंने शेयर किया।
4: वही मध्य प्रदेश के आगर मालवा से भी एक तस्वीर आप देखिए, जीएनटी दर्शक ने गणेश उत्सव की खुशियां हमारे साथ साझा की है। लोकेंद्र राठौर ने भी अपने घर में गणपति बिठाए, उत्सवी माहौल में उन्होंने शानदार लाइटिंग के साथ एक मनमोहक झांकी बनाई और उसमें अपने प्यारे से बप्पा को स्थापित किया है।
5: तो गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधार चुके हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते यही है कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे।

आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चलिए, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखिए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेशोत्सव के तीसरे दिन लाल बादशाह राजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सुहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, शिल्पा शेट्टी ने पेपराजी संग किया डांस। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, पहली बार 3,24,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके मथा, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट।
9: गर्ल कैडेट्स ने पूरा किया 250 किलोमीटर लंबा हाई एल्टीट्यूड ट्रैक, 30 दिनों तक चला अपराजिता परांगला 2026, हिमाचल से शुरू हुई यात्रा का लद्दाख में समापन।
8: यूपी में वीआईपी सिक्योरिटी होगी, हाईटेक एडवांस हथियारों की खरीद को मंजूरी, राम मंदिर समेत संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर्स की तैनाती।

0: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक है। गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, सुबह से श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लालबाग के राजा के दरबार की, किस तरीके से सजा हुआ है, ये भव्यता दिखाई दे रही है जहां पर श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं गणपति के दर्शन के लिए।
1: और चलिए अगली तस्वीर, मुंबई के उपनगर में स्थापित की गई बप्पा की 43 फीट ऊंची प्रतिमा की, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। यहाँ गणपति महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मंदिर खंडोबा के अवतार में सबको दिखाई दे रहे हैं।
2: गणपति बप्पा यहाँ पर विराजमान
0: किए। धर्मनगरी काशी में भी स्थापित की गई है लालबाग के राजा की रेप्लिका। तस्वीर देखिए, बप्पा के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। ऐसे में मुंबई में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर ने ही 6 फीट की ये भव्य प्रतिमा बनाई है।
1: तस्वीर देखिए, पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने सबका ध्यान खींच लिया। यहाँ 21,000 पानीपुरी शेल्स से बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है। इसमें 13 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी गणपति की

की तस्वीर देखिए, यहाँ पर नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पंडाल जलमग्न द्वारिका की जल थीम पर बना है। पंडाल में समुद्र के भीतर की दुनिया जैसे वातावरण देखने को मिल रहा है। की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सूरत में गणेश उत्सव के दौरान तापी नदी के बीचों बीच तैरते हुए मंडप में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। करीब 350 से 400 किलो वजन उठाने वाली एयर टाइट फाइबर शीट पर दीपक या लाइट हाउस के आकार का सुंदर मंडप भी बनाया गया।

ओडिशा के गजपति जिले में भी गणपति का अनोखा स्वरूप देखने को मिला, जहां सिक्कों और चॉकलेट से बप्पा की मूर्त बनाई गई। इसमें गणपति का शरीर बनाने में भारी मात्रा में सिक्कों का इस्तेमाल हुआ, जबकि साइड के दोनों मुखों के निर्माण में चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है।

छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर नया कीर्तिमान रचा गया। इस पंडाल में गणेश भगवान की मुख्य प्रतिमा 10 फीट की है। ये तस्वीर देखिए।

0: कश्मीर में भी गणेशोत्सव की रौनक दिखाई दी। कश्मीरी पंडितों ने काजी गुंड के वेसू में गणेश चतुर्थी मनाई, साथ ही कश्मीर में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना।
1: रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स अरविंद करवानी जी हमारे बीच मौजूद है।
2: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चिंतामण हरण गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया, साथ ही राजसी ठाट के साथ बप्पा का मंदिर सजा हुआ है।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें भी देख लीजिए। बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हुआ भक्तिमय, विद्यार्थियों ने बांस से बप्पा की अद्भुत प्रतिमा तैयार की। बैम्बू टू बप्पा नामक इस पहल के तहत बांस से बने बप्पा की छात्रों ने पूरे विधि विधान के साथ स्थापना की और उनकी महाआरती करते हुए सभी नजर आए।

वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की थीम पर बप्पा का पंडाल, पंडाल में भगवान गणेश को समुद्र मंथन के रूप में निकलते हुए दिखाया गया। वहीं भगवान गणेश की सवारी मूषक को समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया।

गणेश चतुर्थी पर आगरमालवा में मोती सागर तालाब के किनारे बने प्राचीन मंदिर की अद्भुत छटा फूलों से किया गया। यहां पर बप्पा का भव्य और दिव्य श्रृंगार, बप्पा के दर्शन को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचाए।

तो वहीं प्रयागराज में एक ही पंडाल में हो रहे बप्पा के साथ तीन देवताओं के दर्शन, गणपति का बाल रूप भी बच्चों को पसंद आ रहा है। बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है ये पूरा पंडाल। पूरे प्रयागराज में गणेश चतुर्थी की धूम सुनाई दे रही है।

जैसलमेर के 1500 साल पुराने चूंधी गणेश मंदिर में उत्सव की धूम दिखी। गणेश चतुर्थी पर पूरे मंदिर परिसर को अद्भुत रोशनी और फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन को लगातार भक्त आ रहे हैं।

वहीं बालासोर के लारी क्लब में गणेश पूजा का जश्न मना, पारंपरिक विसर्जन जुलूस हुआ आयोजित। वहीं धार्मिक उत्सव के दौरान भक्तों की भीड़ यहां नजर आई है। रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट भी की गई है।

और अब ये तस्वीर देख लीजिए, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया अपनी माँ के साथ। मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन ने भी अपने घर बप्पा का स्वागत किया, महाआरती की और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। '90s की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने पूरे भक्ति भाव के साथ गणेश उत्सव मनाया। सोशल मीडिया पर लिखा, गणपति बप्पा मोरिया।

अंबानी परिवार ने भी मूर्ति विसर्जन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए हैं अनंत अंबानी और राकेश अंबानी।

और हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति आराधना की। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था के अद्भुत रंग दिखाई।

मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी गणपति विसर्जन किया। एक्टर गोविंदा और उनके बेटे उत्सव में शामिल हुए। गोविंदा गणपति मोरिया के जयकारे लगाते नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी डेजी शाह ने गणपति की आराधना की। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी डेजी की आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दिए। ढोल नगाड़ों के बीच में नाचते गाते बप्पा को यहाँ पर विदा किया गया।

टीवी एक्टर गुरमीत ने भी बिबिना के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन किया। ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी, साथ ही बप्पा से अगले बरस जल्द आने की प्रार्थना की।

0: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपको गणपति दर्शन करवाते रहेंगे, अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे।
1: जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

तो पूरे देश में इन दिनों गणपति बप्पा के जयकारों की गूंज है। महाराष्ट्र गुजरात में तो गणपति पूजा का अद्भुत उत्साह दिखाई दे रहा है। मुंबई में तमाम सितारे गणपति आराधना में जुटे हैं। कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। अंबानी परिवार ने गणपति विसर्जन किया तो सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट पूरी तरह बप्पा की उपासना के रंग में रंगे नजर आए। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में पूरे विधि विधान के साथ बप्पा का विसर्जन किया। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। वहीं सलमान खान अपने भाई सोहेल खान और बहन अर्पिता के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए। शिल्पा शेट्टी, गुरमीत चौधरी और डेजी शाह ने बड़े धूमधाम से गणपति की आराधना की। वहीं सलमान खान अपने भाई सोहेल खान और बहन अर्पिता के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए। हर साल की तरह सलमान गणपति बप्पा की पूजा में पूरी उत्साह के साथ शामिल हुए। नाचते गाते हुए ये लोग आगे बढ़े।

0: गणपति बाप्पा
1: मोरया,
0: मंगल मूर्ति
1: मोरया,
0: गणपति बाप्पा
1: मोरया,
0: मंगल।
2: वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही मूर्ति विसर्जन किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने गणपति की आराधना की। पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल थे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश उत्सव के तीसरे दिन लाल बादशाह राजा दरबार में भक्तों की कतार, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। माया नगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में सराबोर सितारे, सोहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, शिल्पा शेट्टी ने पेपराजी संग किया डांस। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, पहली बार 3,24,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके मत्था, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। बीस एनसीसी कैडेट गर्ल्स ने पूरा किया 250 किलोमीटर लंबा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक, 30 दिनों तक चला अपराजिता परांगला, 2026 हिमाचल से शुरू हुई यात्रा का लद्दाख में समापन। यूपी में वीआईपी सिक्योरिटी होगी, हाईटेक एडवांस हथियारों की खरीद को मंजूरी, राम मंदिर समेत संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर की तैनाती।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाचा राजा दरबार में भक्तों की कतार, मुख दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। मुख्यमंत्री फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी, उन्होंने भी किए लालबाचा राजा के दर्शन, टेका माथा लिया आशीर्वाद। अकोला में सजा 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार, 15 फीट की गणेश प्रतिमा ने मोहा सबका मन। लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया बप्पा का दरबार, प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट, पानी के फव्वारों ने पंडाल की खूबसूरती में लगा दिए चार चांद। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक देखने को मिल रही एक झलक, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए उमड़ रहे भक्त। मुंबई के वाशिम में अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे भगवान गणेश, सौंफ, सुपारी, इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति, इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग और इलायची का इस्तेमाल किया गया। 80 किलो की इस मूर्ति को बनाने में लगे करीब 20 दिन। इस पंडाल में हर साल बनाई जाती है पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति, पिछले साल भी दालों से बनाई थी गणपति की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर रचा नया इतिहास और नया कीर्तिमान, 10 फीट की है गणेश भगवान की प्रतिमा। १९९९ में अष्ट विनायक के रूप में 8 प्रतिमाओं की स्थापना से शुरू हुई थी ये परंपरा। पंडाल की भव्य डिजिटल लाइटिंग और अनूठी कलाकृति को देखने दूर दूर से आ रहे भक्त। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल्स से बनी बप्पा की भव्य प्रतिमा। तेरह फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है गणपति की ये मूर्ति, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे विघ्नहर्ता के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन। ओडिशा के गजपति जिले में दिखा गणपति का अनोखा स्वरूप, सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई है बप्पा की मूर्त। यहां स्थापित की गई है त्रिमुखी गजानन की मूर्ति, इसमें गणपति का शरीर बनाने में भारी मात्रा में सिक्कों का इस्तेमाल किया गया। ये खास और इको फ्रेंडली मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से दर्शनों को आ रहे भक्त, बच्चों में दिखाई दे रहा उत्साह। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना चर्चा का विषय, जलमग्न द्वारिका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते ही नजर आता है समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण, बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किए गए हैं प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टाने, समुद्री जीवों के मॉडल। पंडाल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, पंडाल में प्रदर्शित झांकियों में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का संगम। नीली और हरी रोशनी के साथ पानी की लहरों और समुद्र की गहराई का प्रभाव किया गया तैयार, इसी जलमग्न द्वारका के बीच स्थापित की गई भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के करीब लाने के लिए तैयार हुआ गणपति बप्पा का दरबार, बड़ी संख्या में दर्शन को आए लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हुए। मुंबई में एक्टर सोहेल खान के घर गणपति उत्सव, शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर किया डांस। बॉलीवुड के भाई जान सलमान खान हुए उत्सव में शामिल, बप्पा के सामने टेका मत्था की महाआरती। गणपति उत्सव में हेलन बहन अर्पिता का परिवार, अरबाज खान के बेटे भी आए नजर, सभी ने की गणपति से सुख समृद्धि की कामना। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही किया मूर्ति विसर्जन, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी रहे साथ में। पूरे विधि विधान के साथ सचिन ने की गणपति की आराधना, पूजा पाठ में उनके परिवार के साथ रिश्तेदार भी हुए शामिल। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी पूरे विधि विधान के साथ गणपति की आराधना करती नजर आईं। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था के अद्भुत रंग देखे गए।

0: मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन, एक्टर गोविंदा और उनके बेटे हुए उत्सव में शामिल। डेजी शाह ने भी किया गणेश विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच में नाचते गाते हुए बप्पा को विदा किया। अंबानी परिवार ने मूर्ति विसर्जन किया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए मौजूद, बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। टीवी एक्टर गुरमीत ने दबीना के साथ किया गणेश प्रतिमा विसर्जन, बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की। मुंबई के बांद्रा में पश्चिम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, गणपति बप्पा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकली शोभा यात्रा, भव्य यात्रा के साथ गणेश चतुर्थी का समापन हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में गणेश भक्त हुए शामिल। बालासोर के लारी क्लब में गणेश पूजा का जश्न हुआ, पारंपरिक विसर्जन जुलूस हुआ आयोजित। धार्मिक उत्सव के दौरान नजर आई भक्तों की भीड़, रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट की गई। कश्मीर में भी देखी गणेश उत्सव की रौनक, कश्मीरी पंडितों ने काजी गुंड के वेसू में मनाई गणेश चतुर्थी, कश्मीर में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मदुरै में किया गया सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच में निकाली गई बप्पा की यात्रा। 17 सितंबर को होने वाले प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के महाकुंभाभिषेकम के तहत फैसला, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला। आस्था के रंग में रंगा मदुरै, जोरों पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर महाकुंभाभिषेक की तैयारियां। पवित्र अनुष्ठान से पहले फूलों से की जा रही पूरे मंदिर परिसर की सजावट, 17 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा महाकुंभ अभिषेकम। योगी कैबिनेट का जेन अल्फा के लिए बड़ा फैसला, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल, 300 करोड़ की धनराशि मंजूर। यूपी के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, टीचरों के हाथ में टैबलेट से पढ़ते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला, श्री ट्रॉन इंडिया लिमिटेड को स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित। यूपी में 15,012 पदों की शिक्षक वैकेंसी पर भर्ती शुरू, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर पीजीटी तक के पदों पर विज्ञापन जारी। 897 सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी, 11,508 सहायक अध्यापक शहरी और 2,607 प्रवक्ता पदों पर होगी भर्ती। पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए काशी में विशेष तैयारी, बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी पीएम की मां हीराबेन की तस्वीर। काशी की पारंपरिक उचंत कला के जरिए पूरी तरह से हाथ से तैयार की गई है वॉल हैंगिंग, इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा। बिजनौर में मुस्लिम युवक बना सीएम योगी का जबरा फैन, मुख्यमंत्री के नाम का बनवाया है परमानेंट टैटू सीने पर। रायपुर में नवा रायपुर ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देवसाय और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव हुए शामिल। लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, छात्रों के साथ की उन्होंने मुलाकात। श्रीनगर में पहला कश्मीर थिएटर सम्मेलन आयोजित हुआ, युवाओं में रंगमंच के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समृद्ध नाट्य विरासत को पुनर्जीवित करना उद्देश्य था। कश्मीर में थिएटर के इतिहास के 70 साल पूरे होने पर मनाया गया जश्न, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन भी हुआ। 3 दिन का रहा यह शानदार सम्मेलन, एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर ने जम्मू और कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकेडमी के सहयोग से आयोजित किया कार्यक्रम। दो महीने की मरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए फिर से खुला सराय घाट पुल, गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है ये पुराना पुल। इस पुल के मरम्मत कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। 13 जुलाई 2026 से बंद पड़ा था ये पुल। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम ने सड़क किनारे महिला से खरीदा मिट्टी का दिया। सीएम ने महिला को 1,000 रुपए देकर महिला के श्रम का सम्मान किया। यही दिया बनेगा आशीर्वाद का दिया। दिल्ली कैबिनेट ने आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव दोगुना करने का लिया फैसला। 3,000 की जगह अब 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यूपीआई से 2,000 रुपए तक का पेमेंट रहेगा फ्री, लेकिन 2,000 से ज्यादा पर यूपीआई पेमेंट पर लगेगा 0.4% का चार्ज। रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और ईंधन जैसी चुनिंदा कैटेगरी में 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपए का फ्लैट चार्ज लगेगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: तो गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन होगा। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए, आप अपने अपने घरों पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है 7303409922। ये नंबर कॉल के लिए नहीं है, ये आपको बता देते हैं, ये नंबर सिर्फ वीडियो भेजने और तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजते हैं तो साथ में अपना नाम और अपना शहर, गांव या कस्बे का जो भी नाम है वो जरूर लिखिए।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेशोत्सव के तीसरे दिन लाल बादशाह राजा के दरबार में भक्तों की कतारें, सूरत के गणेश पंडाल में बसी द्वारका नगरी। माया नगरी मुंबई में बप्पा की भक्ति में साराबोर से तारे, सोहेल खान के घर गणपति उत्सव की धूम, शिल्पा शेट्टी ने पैपराजी के संग किया डांस। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, पहली बार 3,24,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। बीस एनसीसी गर्ल कैडेट्स ने पूरा किया 250 किलोमीटर लंबा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक, 30 दिनों तक चला अपराजिता परांगला 2026, हिमाचल से शुरू हुई यात्रा का लद्दाख में समापन। यूपी में वीआईपी सिक्योरिटी होगी हाईटेक, एडवांस हथियारों की खरीद को मंजूरी मिली, राम मंदिर समेत संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर्स की तैनाती।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।
4: नमस्कार, मैं हूँ रिंकी भाभी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालेदार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
5: त्योहार के रंग में रंगे सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, अनुपमा के घर आएंगी खुशियां, लेकिन खुशियों पर लगेगा तमाशे का ब्रेक।

गणेशोत्सव के खास मौके पर जी कुटुम्ब आएगा साथ, होगा एंटरटेनमेंट भरपूर। देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

रियल सैराब में आया है सबसे बड़ा खुशी का मौका, जहां ईशान और नैनिका का शुभ विवाह हो रहा है। खास बात यह है कि इस शादी के लिए नैनिका की बेटी टिन्नी भी मान चुकी है और वो भी इस शादी में शामिल है। तो चलिए देखते हैं इनकी शादी के खूबसूरत नजारे

स्टार प्लस के सीरियल सैराब में भाई जिस दिन का इंतजार नौनिका और ईशान को था, भाई आज वो दिन आ ही गया। जी हाँ, क्योंकि हो रही है बड़ी ही सादगी से ईशान और नौनिका की शादी। जहाँ बंगाली दुल्हन बनकर पहुँच गई है नौनिका, तो वहीं बंगाली दूल्हा बन गए हैं ईशान।

जरा देखिए तो कैसे आज इस लाल कलर की साड़ी में नौ निकाल लग रही है, बेहद ही खूबसूरत। भाई इस शादी में चार चांद तब लगे जब तिन्नी ने भी इन दोनों

0: दूर किए पेपर्स एज विटनेस पेपर्स को साइन किया और करवाई अपने मम्मी और नए पापा की शादी। भाई लेकिन इसके पहले देखिए कैसे सभी को इंतजार था, साथ ही सवाल था कि नौनिका के साइड से मैरिज पेपर्स पर कौन साइन करेगा।
1: तीन लोगों की जरूरत है ना, मैं और मारिया तो यहाँ पर है। मुमका की तरफ से सर कौन करेगा?
2: यानिका की तरफ से हम देखते हैं कौन करेगा। आप दोनों कम से कम साइन करना शुरू तो कीजिए।
3: आप बाउली की तरफ से मैं साइन कर देता
2: हूँ ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स,
4: हमें पता है आप तो कर ही सकते हैं साइन, लेकिन कुछ देर रुक सकते हैं, बस कुछ देर।
3: क्यों, किसी और के आने की उम्मीद है?
4: नहीं, कोई और तो नहीं आ रहा है, पर छूट दे बस।
3: मुझे भी लगता है दिल्ली तो पक्का नहीं है। वैसे शीशु कहाँ है?
4: शीशु बाहर गया हुआ है, कुछ काम से गया हुआ था, फिर घर पे भी नहीं है बहुत देर से।
5: हाँ, हमें भी कोई आइडिया नहीं है, हमने तो उन्हें काफी देर से नहीं देखा, गए होंगे कहीं आ जाएंगे।
6: हमारे आशीर्वाद से क्या ही होगा, इनका जो ये शादी करने का डिसीजन है हमसे पूछ के थोड़ी ना लिया था, इनकी मर्जी, तो हम आशीर्वाद दे ना दे इनसे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इन सब में हमारी सहमति है।
7: काकी, आपके सहमति से किसी को फर्क नहीं पड़ता है।
6: रोमियो,
8: देखिए मैं चाहती हूँ कि दीदी अपनी लाइफ में हमेशा बहुत बहुत खुश रहे और आप दोनों एक दूसरे की इसी तरह ताकत बने रहे। पर प्लीज, मेरी एक डिमांड है।
9: बताइए।
8: कैसी डिमांड है? बोलो बोलो।
9: बोलो, मत रखो, बताओ।
8: मैं जानती हूँ कि रजिस्ट्री मैरिज ही लीगल मैरिज होती है, पर मैं चाहती हूँ कि ईशान हम सबके सामने दीदी की माँ होगी, उनसे सबको रहना है। ऋषभ होगी, आपने कभी अपनी दीदी को सिंदूर लगाए हुए नहीं देखा क्या? बिना चांद का सोना खोटा रे। ईशान तो बहुत पहले ही इनकी मांग भर चुका है, वो फोटो तो काफी वायरल भी हुई थी ना, हम सबने देखा था।
10: श्रेया, मैं उस फोटो के बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम सबके सामने तुम दीदी की मांग, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना?
9: बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी सारे अरेंजमेंट भी हैं।
10: अरे वाह, चलिए फिर।
11: हाँ, लेकिन उससे पहले ईशान, आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा।
9: बताओ, तुम लोग ही बताओ क्या काम है, बताओ क्या डिमांड है तुम्हारे?
10: आपको एक गाना गाना पड़ेगा।
9: हाँ, ओ ये बात है, देखो गाना वाना तो होगा ही,
11: लेकिन उससे पहले ये बताना कि हमारा बैंड कौन ज्वाइन कर रहा
10: है। मैं वो मेरी बात हो गई ईशान भैया, वो बोल रहे हैं कि वो मुझे अपने बैंड में ले लेंगे। आपको पता तो है मेरे माँ बापा नहीं मानेंगे, और आप यहाँ हो ना, अगर मैं आपके पास रह के अगर मैं आपके पास रहूंगा तो मुझे किस बात की टेंशन है, और वैसे भी मैं आपके पास रहकर ही शानदार
0: भाई। आज भी ताने तो कई मारे गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान तो सारा टिन्नी ले गई। भाई जरा देखिए तो कैसे टिन्नी की एंट्री से इमोशनल हो गई नौनिका, और आज उसने अपनी बेटी को गले लगाकर

शिफ्ट होना चाहते हो, और अगर तुम भी इनके साथ आके आ रहे होगी तो कितना खुश हो।

दिमाग घर को छोड़ से बच जाएगा। और वैसे मैं साल आधे साल में घर से बाहर है, इंडिया के बाहर रहता हूँ, उन्होंने कहा उन्होंने कहा अकेली रहे, और अगर तुम लोग सब साथ में हुए तो उसको लगेगा कि उसने कभी घर बदला ही नहीं था। फीलिंग ये जो घर है ना कि मैंने सिर्फ में रहने के लिए नहीं, ये घर मैंने बनाया ताकि मेरे अपने यहाँ रह सके, साथ में रह सके। मुझे गुस्सा कर सकते हो जितना तुम्हारा मन करे, गुस्सा कर लो, बुरा सोचो मेरे बारे में, पर तुम्हारी माँ की कोई गलत नहीं, सच बात है। प्लीज गुस्सा मत करो। देखा, मुझे पता आप कितनी आने वाली है, इसीलिए मैंने आपको साइन करने नहीं दिया। मुझे शीशु ने पहले ही बता दिया था तीन दिन को लेने जाना, हालांकि मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ, पर वो मैं अकेले लाना चाहता हूँ। पर अब तुम आ जाएगा, तुम्हारे साइन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।

0: जिन्नी, अगर तुम इस शादी से ओके थी तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या थी?
1: मुझे तब प्रॉब्लम थी, लेकिन अब नहीं। मैं अभी शादी से ओके थी, इसलिए मैं भागती हुई यहाँ आ गई।
2: खुश है कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही है और उसके परिवार वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने ये कॉल लिया। इनफैक्ट ईशान का बहुत बड़ा सा सपोर्ट होता है नोनिका के लिए कि अगर तुम धूमधाम से नहीं करना चाहती हो तो फिर आराम से जैसे तुम चाहते हो वैसे ही शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। तो एक छोटा सा जो रिचुअल होता ही है, जो बेसिक और कॉमन होता है, जो होना चाहिए शादी के लिए, तो बस हम वही कर रहे हैं। और नोनिका का मन नहीं था इतना तैयार होने का, तो उसने सीन में कहा भी कि मेरा मन नहीं है कि मैं पार्लर जाऊँ या ब्यूटिशियन, मैं सिंपल से ही तैयार होना चाहती हूँ। तो अब नाउ बिकॉज शी उसने तिन्नी को देख लिया, अब वो खुश हुई है कि तिन्नी ने मान लिया है, तिन्नी एक्सेप्ट कर चुकी है, तो अब उसका मन करेगी, अब वो धूमधाम से

0: कई बड़ी ही सादगी से ये शादी संपन्न हुई और एक हुए नोएनिका और ईशान। ऐसे में कैसी रहेगी अब इनकी ये प्रेम कहानी, मैं ये तो वक्त बताएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सकते तो है तो
2: अब नजर डालते हैं सीरियल्स की खबरों पर और देखते हैं कि किस सीरियल में क्या हो रहा है। तो हो जाइए आप भी सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर सवार।
3: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में रक्षित और अपराजिता की शादी तो हो गई है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा क्योंकि अपराजिता के ससुराल गेंदा फूल में सासुमा है जो अपराजिता से बेहद नफरत करती है। इसकी झलक मुंह दिखाई के दिन ही देखने को मिली जहां पर सासुमा देखिए कैसे अपराजिता की बहन आराध्या को इम्पोर्टेंस दे रही है और उसे ही मान रही है घर की बहुरानी। इतना ही नहीं आज तो सासुमा ने साफ साफ इनकार कर दिया अपराजिता की मुंह दिखाई की रस्म के लिए और कह दिया कि इस घर में मुंह दिखाई की रस्म सिर्फ आराध्या की ही होगी।
4: दो बहुएं हैं, दोनों की मुंह दिखाई ऐसी।
5: किससे कहा? अब मेरे घर पे पैसे तू लोगे? मान को रस्म दो। मेरी सिर्फ एक ही बहू है जिसका नाम आराध्या है। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मुंह दिखाई।
3: मानो अपराजिता का तो दिल ही टूट गया है, वो आंसू बहा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आराध्या की मुंह दिखाई की रस्म हो रही है जिसमें परिवार वाले और सभी मेहमान शामिल हो चुके हैं और सासुमा अपने हाथों से शगुन वाली चुनरी बहुरानी को उड़ा रही है।

0: आराध्या भी अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि दीदी ने उसका सबसे स्पेशल दिन खराब कर दिया सेम टाइम में शादी करके। तो आराध्या तो अपनी दीदी से चिड़ी बैठी है और जो सासू माँ है सुधा आंटी वो भी अपराजिता दीदी से बहुत चिड़ी हुई है क्योंकि उनके साथ उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। उन्होंने जो शर्त के बेसिस पे आराध्या और इवान की शादी कराई थी वो शर्त तोड़ी जा चुकी है। उनके पीछे जाके उन्होंने भाग के शादी करी तो उनके साथ भी बिट्रेयल हुआ है। तो अब आराध्या अपनी सासू माँ को थोड़ा पटाने की कोशिश कर रही है मस्का मार के और सासू माँ पट भी जाती है। और एट द सेम टाइम जो हमारी सासू माँ है वो अपराजिता दीदी की थोड़ी इंसल्ट कर देती है कि तुमने तो भाग के शादी की, मुँह छुपा के शादी की, तो अब मुँह छुपा के बैठे रहो, तुम्हारा मुँह दिखाई नहीं होगा। तो यही सब हो रहा है अभी।
1: वहीं दूसरी तरफ एक और बवाल शुरू हो गया है। असल में रक्षित ने अपराजिता को कार गिफ्ट की है जिस वजह से रक्षित की मम्मी और भी ज्यादा भड़क गई है। इतना ही नहीं आज तो वो अपराजिता के साथ साथ अपराजिता के मम्मी पापा को भी खरी खोटी सुना रही है। वैसे इस कार गिफ्ट की बात से आराध्या भी कहीं ना कहीं अपसेट हो गई है।
2: खुद को महान साबित करने का एक मौका नहीं छोड़ती ना, तो देख लिया ना आप लोगों ने, आपकी बेटी ने आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे लचाना शुरू कर दिया है, देख लीजिए ना हम क्या तकलीफ देंगे आपकी इस शातिर बेटी को, है ना इसकी ठाक रक्षित। और हमने आपकी बेटी को रात भर घर के बाहर नहीं रखा, दुबे जी के गांव के घर में आग लगी तो उन्हें मदद करने के लिए रक्षित उनके गांव जा रहा था तो यही निकल के आई थी बाहर भागी भागी उसके पीछे बेहुदा कपड़े पहनकर, और इसने खुद अपने आप को वहां घर के बाहर लॉक कर दिया था उन्हें कपड़ों में। तो क्या है तमाशा करने की तो आपकी आदत है, बल्कि मैं तो कहती हूँ शौक है आप लोगों का, लेकिन रहा सवाल हमारा तो हमारी तहजीब जरा अलग है। कल हमारे घर में जो तमाशा हुआ वो हमारे लिए 7 जन्मों के लिए काफी है।
0: कार एज अ गिफ्ट आती है और वो पूछते हैं कि नई दुल्हन कौन है मिसेस भारद्वाज, तो आराध्या को लगता है कि विवान उसके लिए गिफ्ट लेके आया है, बट एक्चुअली रक्षित सर अपराजिता दीदी के लिए मुँह दिखाई का गिफ्ट लेके आते हैं। तो ये भागी भागी जाती है गिफ्ट देखती है, उसको पता चलता है कि एक्चुअली अपराजिता दीदी के लिए आया है, तो बहुत अपसेट हो जाती है। तो वही वो सीन हुआ है।
1: तो भाई अपराजिता के लिए अपने ससुराल में लोगों का दिल जीतना काफी मुश्किल होने वाला है जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। अब देखना होगा अपराजिता अपनी जगह इस घर में और लोगों के दिल में कैसे बनाती है।
3: इसने दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसकी क्या ही मुंह दिखाई करनी।
4: वाह मम्मी जी देखिए विवान का मुंह दिखाई गिफ्ट।
5: वाह सुधा जी बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हैं आप अपने विवान के लिए।
4: नहीं पर आपके लिए गिफ्ट भेजा।
5: ये रक्षित की बीवी है, रक्षित ने कब शादी की और मुंह दिखाई भी तूने एक ही बहू की रखी है, हम सबसे कुछ छुपाना चाहती है क्या?
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में अंतरा सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बातें खटक रही है कि प्रथम तो अंतरा को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, उसके लिए तो राध्या ही सब कुछ है। ऐसे में देखिए कैसे वो गुस्सा हो रही है।
4: के साथ जाकर चेकअप करवाऊंगी, साथ में बच्चे की हार्टबीट सुनेंगे पहली बार, उसका उसका उसका पहला स्कैन देखेंगे, लेकिन नहीं प्रथम को तो राध्या की सेवा करने से फुर्सत नहीं है। मुझे अहम चीज और एकता दीदी के साथ भेज दिया, ये राध्या ज्यादा जरूरी है क्या बच्चे से? कहीं मैंने इस सरोगेसी करवा के गलती तो नहीं कर दी?
1: कहा तो अंतरा राध्या और प्रथम की मदद करने चली थी, लेकिन अब उसे प्रथम चाहिए। ऐसे में उसके इमेजिनरी वर्ल्ड में देखिए कैसे वो राध्या को इमेजिन कर रही है कि राध्या उसे खरी खोटी सुना रही है। ऐसे में अंतरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और शीशे में दिख रही राध्या पर वो ये गुलदस्ता फेंक देती है, क्योंकि अंतरा की नजर में तो राध्या नेगेटिव बन चुकी है।
6: के लिए।
7: अंतरज, आपने प्रथम जी के करीब आने के लिए सिर्फ किसी का रास्ता छोड़ा, लेकिन सच तो ये कि प्रथम जी के दिल और सिर्फ और सिर्फ हम ही उसे आप चाह कर भी हमसे दूर नहीं करते।
4: शट अप, जस्ट शट अप।
7: अभी चुप कराने से सच नहीं बदल जाएगी, पर आपने तो देखा ही है ना प्रथम जी हमसे कितना प्यार करते हैं। एक बार हमारा बच्चा हो जाए फिर आप वो प्रथम जी की जिंदगी और अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। प्रथम जी आपके कभी नहीं, रंगा जी कभी नहीं।
1: राध्या की नई सौतन अंतरा अब क्या खेल खेलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।
8: तुम इस फैसले से खुश हो?
9: हम इस फैसले को पूरी तरह से मान नहीं पा रहे हैं।
10: अब ये क्या नया नाटक लगा लिया तुमने राध्या? कल तक तुम ही सरोगेसी के लिए सबसे ज्यादा बेचैन थी।
8: अगर राध्या इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है तो हमें रुक जाना चाहिए।
11: अगर ये नहीं मानेगी तो मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा?
12: तरफ जहां पूरे देश में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं कई जगहों पर डेढ़ दिन के गणपति जी का विसर्जन भी हो रहा है। ऐसे में फिल्म और टीवी कलाकारों ने नाचते गाते कैसे भारी मन से किया अपने बाप्पा का विसर्जन, चलिए देखते हैं।
1: डेढ़ दिन के बाप्पा का विसर्जन, कोई नाच गाकर तो कोई नम आंखों से कह रहा है विघ्नहर्ता को बाय बाय। हुई सुखकर्ता की विदाई, भाई गणपति पापा अभी तो आए ही थे कि उनके जाने का समय आ गया। जी हाँ, डेढ़ दिन के गणपति बाप्पा का विसर्जन हुआ जिसमें बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने बाप्पा को अलविदा कहा। कोई नाच गाकर उन्हें बाय बाय कह रहा है तो कोई नम आंखों से उन्हें विदा कर रहा है। ये सारे नज़ारे आपके लिए सास बहू और बेटियां लेकर आया है, तो आइए देखते हैं कैसे शिल्पा शेट्टी अपने विघ्नहर्ता का विसर्जन कर रही है। भाई हर साल की तरह इस साल भी वो महाराष्ट्रीयन अंदाज में रंगी हुई है और ढोल ताशे पर नाच गाकर खुशी खुशी वो बापा को विदा करती नजर आई और साथ है उनका पूरा परिवार।

पिता के साथ साथ इस साल सुहेल खान ने भी गणपति बाप्पा को अपने घर बिराजा था और अब डेढ़ दिन के गणपति बाप्पा के विसर्जन के मौके पर ये कह रहे हैं अपने बाप्पा को अलविदा। ऐसे में सुहेल, अर्पिता और पूरा परिवार देखिए कैसे नाच गा कर बाप्पा को विदा कर रहा है। साथ ही यहाँ इस खास मौके पर शामिल हुए हैं सलमान खान।

इसके अलावा बाकी सितारे भी अपने बापा को विदा कर रहे हैं, जैसे कि देबीना गुरमीत अपने बच्चों संग आए हैं बापा को विदा करने के लिए।

0: उसके अलावा गोविंदा, डेजी शाह और आलिशा पनवर जो देर दिन के पापा की विदाई करते नजर आए।
1: और शुभेच्छा प्रदान करता हूं मैं, और हम सब पे कृपा रहे, किसी प्रकार का कष्ट बाधा और तकलीफ नहीं आए। खास तौर पे यश और टीना बहुत अच्छे से आगे निकल पाए, किसी प्रकार का कष्ट बाधा नहीं आए और विघ्न हरता है वो सुख करता है, दुख हरता है और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे। गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: डेजी शाह और आलिशा पनवर जो देर दिन के पापा की विदाई करते नजर आए।

0: डेढ़ दिन के पापा ऐसे लगता है कि आए कब और चले भी गए, बट अगेन ज़्यादा दिन तक रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वो, इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कुछ गलती हो गई पाठ पूजा में तो वो भारी पड़ सकता है. सो जितना है उतना ही कर सकते हैं. सो या जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे. सो
1: तो भाई हम तो यही कहेंगे कि विघ्नहर्ता का आशीर्वाद सब पर बना रहे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.

तरफ जहां पूरे देश में हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी जी परिवार रिश्तों का मेला के जरिए गणेशोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, जहां भक्ति के रंग के साथ मंच पर गेम और एंजॉयमेंट भी भरपूर है। देखते हैं इसके खास नजारे।

गणेश चतुर्थी के मौके पर जी टीवी की है ये खास पेशकश, जहां जी टीवी का पूरा परिवार जी रिश्तों का मेला सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच गया है गणेशोत्सव में, जहां पर सभी मिलकर न सिर्फ बप्पा के आगमन पर उनकी आरती कर उनका स्वागत कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं तैयारी डांस फ्लोर पर रंग जमाने की, प्यार बरसाने की, खेल खेल में एक दूसरे की टांग खिंचाए की, टशन दिखाने की और सभी यादों को एक माला में पिरोने की। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सेलिब्रेशन की, जिसमें कई सारे रंग बिखरे हुए हैं। रंग नंबर एक, बप्पा का स्वागत। जहां घर घर बप्पा पधार चुके हैं, वहीं जी रिश्तों के मेले में भी बप्पा का आगमन हो चुका है। ऐसे में बप्पा आए हैं और उनकी आरती ना उतारी जाए भला कैसे हो सकता है। ऐसे में देखिए कैसे एक साथ जमा हो गया है जी परिवार और एक एक कर सभी आ रहे हैं बप्पा की आरती उतारने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए।

0: रंग नंबर दो देवर वसुधा की तैयारी। भाई रिश्तों का मेला है, ऐसे में साज श्रृंगार तो बनता है और चमकना भी जरूरी है। इसलिए देखिए कैसे बैक स्टेज पर वसुधा और देव दोनों ही अपना जलवा बिखेरने की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए कैसे वसुधा उसका हो रहा है साज श्रृंगार और वो ढल रही है अपने अंदाज में।
1: जी का जो भी इवेंट होता है वो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे मिलना जुलना हो जाता है, बहुत सारी गप्पे लड़ाते हैं, बातें करते हैं, डांस होता है, तो एक्साइटमेंट तो पहले से ही रहता है। और जब रिहर्सल्स चल रही होती हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम परफॉर्मेंसेस के लिए, तो वो वहीं से ही शुरू हो जाता है कि हाँ चार दिन बाद, पाँच दिन बाद, एक महीने बाद, तो बस वो काउंटडाउन चलता है। और जिस दिन पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज जी रिश्तों का मेला है, तो आई थिंक कि दो चार महीने बाद कोई जी का ऐसा इवेंट होता है जहाँ हम सब मिलते हैं, तो इट्स अ लवली थिंग। मुझे लगता है कि अच्छा हो जाता है। ऐसे तो शूट में तो मिलना जुलना नहीं होता है, लेकिन हाँ जी रिश्तों के मेले के थ्रू हम सब बातें करते हैं, मिलते हैं, तो इट्स एक्साइटिंग। आज तो गणेश जी का इवेंट है और हम सब उसी के लिए यहाँ पे आए हैं, और सबकी परफॉर्मेंसेज है जो कि मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स गणपति बप्पा, और पूजा करेंगे, बैठेंगे, हंसी मजाक होगा, डांस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है।

0: परफॉर्मेंस करने को मिलता है, बहुत सारे डांस करने को मिलता है, सभी आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलता है जितने भी हमारे शोज हैं जी कुटुंब के. तो क्वाइट मैं तो कहूँगा कि एक छुट्टी वाला दिन होता है, ताकि बहुत अच्छा लगता है. बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस होती हैं, बहुत सारे गैग्स होते हैं और ऐसी बाइट्स होती हैं और फोटोशूट्स होते हैं और मीडिया इंटरेक्शन होता है. तो आई थिंक इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आर रेगुलर शूट्स. नहीं यही है, मेकअप एक जैसे मेकअप एक लड़की का गहना है, तो मेकअप मेरा भी गहना है, लड़कियों के लिए होता है. तो आई थिंक मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब. तो मेकअप इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और इट इज़ यूज्ड टू एनहांस योर फीचर्स एंड यू नो. तो मेकअप ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है. येस कंपेरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है, ऑब्वियसली मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट में मेरा मेकअप हो जाता है. एंड बट या इट इज़ एसेंशियल. चलो मैं तुम्हें ब्यूटी शॉट से देता हूँ. वो नाइस कजारिया, हर घर कुछ कहता है. तो ये मेरा परफॉर्मेंस वाला कॉस्ट्यूम है, क्वाइट रिलैक्स्ड और काफ़ी फेस्टिवल वाला माहौल है. तो शाइनी ग्लिटरी ग्लिमरी. तो इट्स ट्रायल हो चुके हैं एंड द कॉस्ट्यूम इज़ लॉक्ड. मैं आपको सिटिंग वाला कॉस्ट्यूम में दिखाता हूँ, आ जाओ. मतलब सिटिंग मतलब मैं परफॉर्मेंस उसमें करूँगा. परफॉर्मेंस करने के बाद जब हम बैठते हैं और बाकी लोगों की परफॉर्मेंस देखते हैं, दिस इज़ द वन विच आई विल बी वेयरिंग. एंड या सो काफ़ी अच्छी कॉस्ट्यूम्स आज हम पहन रहे हैं. ट्रेडिशनल माहौल है, गणपति जी के लिए हम ये कर रहे हैं.
1: रंग नंबर 3, देव और वसुधा की मोहब्बतें. भाई प्यार का पहला नाम है देव और वसुधा. जब भी प्रेमी जोड़े की नाम आती है तो देव और वसुधा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही एक जोड़ी है जो सारी परीक्षाएं पार कर अपने रिश्ते को निभा रही है. और यही रिश्ता जी रिश्ते के मेले में नजर आ रहा है, वो भी प्यार के साथ.

0: Well, हमारी दोनों की ड्रेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और काफी मेहनत से हमारे डिजाइनर्स ने बनाया है और ये पैटर्न वो पैटर्न मैचिंग है तो और काफी गणपति इवेंट है यहाँ लिखा है हाँ गणपति इवेंट है तो उसके हिसाब से काफी ट्रेडिशनल अटायर दिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है.
1: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम दोनों की आउटफिट जैसे देव ने कहा कि कॉम्प्लीमेंट कर रही है और गणपति स्पेशल है तो थोड़ा एथनिक का कॉम्बिनेशन किया है वेस्टर्न के साथ.
0: लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोगों ने देख भी लिया है और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं एंड आई लव ग्रीन कलर और काफ़ी रिलैक्स्ड है और परफॉर्म करने में भी काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है तो आई होप एंड आई लव दिस थिंग. मुझे इतनी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते हैं सो या आई लव दिस एंड या सो दिस इज द फाइनल आउटफिट. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही. मैं काफ़ी विशाल मूर्ति है और पप्पा के सामने परफॉर्म करना उनके आशीर्वाद के साथ परफॉर्म करना बहुत मज़ा आया. तीन गाने हैं हमारे और तीनों में बहुत बहुत बहुत मज़ा आया विद ऑल द प्रॉप्स एंड लाइटिंग एंड काफ़ी हमने रिहर्सल की थी तो उसके बाद अच्छा रिजल्ट आया.
2: रंग नंबर चार अनु का श्रृंगार. अब चाहे कोई भी त्योहार हो या फिर हो सेलिब्रेशन भला साज श्रृंगार करना तो बनता है. ऐसे में अनु कहाँ पीछे रहती. सीरियल में तो उन्हें सादगी भरा अंदाज दिया गया है लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ पर रिश्तों का मेला लगा हो वहाँ पर मेकअप शेकअप का लेवल सुपर से भी ऊपर होता है और ऐसे में आज अनु का मेकअप भी बहुत खास है जिसके लिए अनु बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रही है.

0: बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसे इवेंट्स में आपको बहुत मज़ा आता है, अपने सारे फ्रेंड्स से मिलते हो, डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं, रेगुलर शूट से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो आई एम लविंग इट. मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल्स है ये, क्योंकि मैं बप्पा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, एंड आई फील जब भी मैंने उनसे कुछ मांगा है उन्होंने मुझे हमेशा उससे ज़्यादा ही दिया है. तो आई लव बप्पा एंड आई लव दिस टाइम ऑफ द ईयर. आज बहुत कुछ होने वाला है, मैं 2 डांस परफॉर्मेंसेस कर रही हूँ, एंड देन फन इवेंट है, ये रिश्तों का मेला है, तो आपको बहुत सारे फन गेम्स, एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस देखने मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड. तो आज काफ़ी डिफरेंट लुक अलाउड है मुझे, क्योंकि आज मैं अन्नू हूँ भी और अन्नू नहीं भी हूँ. तो मोस्टली यू नो अन्नू काफ़ी सटल रहती है, नो मेकअप मेकअप लुक है उसका, बाल भी हमेशा बहुत नॉर्मल रहता है. तो आज मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला है, तो आज वी वेंट ऑल इन विद टॉन्ग्स एंड थोड़ा सा हैवी मेकअप से.
1: भाई अनु तो अपने मेकअप और परफॉर्मेंस के लिए इतनी एक्साइटेड है कि इन्होंने अपना व्लॉग बनाना भी शुरू कर दिया है, वो भी पर्दे के पीछे का.
2: हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग. आप सब जानते हैं मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो आज मुझे लगा इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है, जैसे रिश्तों का मेला एंड आपकी अनु निहारिका परफॉर्म कर रही है, एंड आई एम हियर विद माय टीम एंड वी आर गेटिंग रेडी, ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ रेडी, थोड़ा बहुत बाकी है तो सोचा दिखा दूँ, थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया, प्लीज बेयर विद मी. हाय, प्लीज से हेलो, सब आ जाओ. दिस इज माय फोटोग्राफर पिंटू. आरती प्लीज से हाय.
3: हाय.
2: सागर राजा, दिस इज माय पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, एंड दिस इज फॉर द डे माय पर्सनल हेयर ड्रेसर.
1: अनु का मेकअप हो गया है और हो गई है हेयर स्टाइलिंग भी. अगले ही पल अनु जी रिश्तों के मेले के लिए पूरी तरह से तैयार है.

नजर आ। मैं समझ नहीं आ रहा इसमें डांस कैसे हो पाएगा, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। देखो अच्छे दिखने के पीछे इतने सारे लोग रहते हैं, देख रहे हो आप, इतनी सारी टीम है और हम जाएंगे उस स्टेज पर, मतलब डांस करके, ऐसे नहीं।

रंग नंबर 5 परिवार संग अनु का डांस। भाई अनु जहाँ भी होती है उनका परिवार हमेशा उनके साथ रहता है। तभी तो देखिए कैसे आज अनु तो अपने डांस का जलवा दिखा ही रही है। साथ ही साथ उनके मम्मी पापा भी पहुंच गए हैं डांस में उनका साथ देने के लिए। और तो और एक नई मेंबर भी इनके घर में शामिल हो गई है और वो कोई और नहीं वीर राधिका की बिटिया रानी है जो इनके साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश में लगी है।

0: बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक है। मोस्टली अनु ऐसे ही कपड़े पहनती है, सिंपल सटल साड़ी, बट आज मुझे हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला तो मैंने वो कर लिया। बहुत प्यारी लगी है एंड आई थिंक अनु की ना सारी ही साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक सटल, मुझसे इतना हेवी कैरी भी नहीं होता है एंड आई थिंक मेरे फेस पे जाता भी नहीं है, तो आई एम फीलिंग वेरी नाइस। बप्पा के लिए डांस किया हम सब ने और जब आएगा तो आई होप आप लोगों को भी उतना अच्छा लगे, उतना मजा आए जितना हमें परफॉर्म करने में आया।
1: रंग नंबर 6, राधिका वीर की डांस मस्ती। यूँ तो सीरियल में राधिका हमेशा चुप चुप रहती है, लेकिन आज राधिका बेहद ही एक्साइटेड है क्योंकि वो तैयारी कर रही है जी रिश्तों के मेले में अपना जलवा बिखेरने की। ऐसे में देखिए कैसे राधिका के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है।
2: बहुत एक्साइटमेंट है, रीजन क्योंकि आज यूजुअली हम हमेशा शूट कर रहे होते हैं अपने सेट पे, आज हम हैं जी कुटुंब में जहाँ पे जी के बाकी सारे शोज के एक्टर्स हैं, सब लोग हैं, तो सारे कुटुंब आ रहे हैं। फाइनली आज हम उनसे मिलेंगे बिकॉज यही कुछ ओकेजन्स होते हैं जी के जहाँ पे सबसे मिलना मिलाना होता है, तो वो होगा। एंड ऑल्सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारा फन है, बहुत इवेंट्स हैं, बहुत एक्टिविटीज़ है, गेम्स हैं, तो मुझे वो देखने में बड़ा मज़ा आता है बिकॉज जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, इट्स ऑलवेज फन टू इवन वॉच एंड ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन इट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सो एज यू कैन सी ऑफकोर्स मेरी आवाज़ गई हुई है, आई एम इन अ बैड हेल्थ जोन, बट आई थिंक दिस इज नॉट गोना टेक अवे द फैक्ट कि मैं आज मज़े करने वाली हूँ। रीज़न क्योंकि ऐसा इवेंट, ऐसा पॉइंट बहुत कम होता है, इट्स लाइक अ ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस। हम रेगुलर वे शूट करते हैं, उस बीच में ये फन टाइम होता है जो हमारे लिए वी कंसिडर इट एज आ ब्रेक, तो आई एम श्योर आई एम गोना हैव फन इन दिस बैड हेल्थ टू, वी विल गिव इट ऑल 100% एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। तो आज मेरा आउटफिट है साड़ी राधिका, अब आप देखते हैं राधिका पहले सूट में होती थी, अब साड़ी में होती है आफ्टर शादी, तो आज भी मैं साड़ी ही पहनने वाली हूँ, वाइट गोल्डन साड़ी है। एज राधिका इट्स ऑलवेज वेरी सिंपल येट क्लासी, वील कीप इट दैट वे, बट हाँ आज हम थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, हम थोड़े से अलग बाल कर सकते हैं, हम थोड़ा सा अलग मेकअप कर सकते हैं, सो वील ट्राई, बट ऑफकोर्स राधिका के किरदार में रहते हुए एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आप वो लुक देखेंगे और आप इस पूरे लुक जर्नी में मेरे साथ होंगे।

वैसे राधिका को मेकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए देखिए कैसे राधिका झटपट तैयार है। उनका मेकअप हो गया है और हेयर स्टाइलिंग भी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा लुक अपने फैंस और वीर के लिए सरप्राइज रखा है। देख लीजिए कैसे राधिका अपने वीर संग इस गणेशोत्सव में ताल से ताल मिला रही है और खुशी से झूम भी रही है।

0: सो हम लक्ष्मी नवाज के परिवार यानी कि वीर राधिका और निया की थीम थी वाइट एंड गोल्डन, सिंपल वेरी क्लासी. तो हम लोग व्हाइट और गोल्डन में हैं. हमारी निया देखो गोल्डन गोल्डन क्यूट कलर की, देखो सिल्वर उसने ये भी लगा रखे हैं, वाइट वाइट बीट्स लगा रखे हैं. वीर पूरी शेरवानी में है, मैंने साड़ी पहनी है जिसपे एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन वर्क है, सिंपल क्लासी ज्वेलरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स किरदार भी उतने ही सिंपल है. तो उस हिसाब से हमने पूरा लुक लिया है.
1: भाई इनने तो 100% तो बता दिया है, 101% मैं बता देता हूँ कि वी ऑल आर लुकिंग ग्रेट एंड कलर सेलेक्शन बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा कि इन्होंने कहा इट्स वेरी क्लासी. और अभी जैसे इस फेस्टिविटीज़ के हिसाब से ये कलर मेरे हिसाब से बेस्ट है, बिकॉज इट्स ब्राइट, इट्स गोल्डन और बप्पा के साथ जाता भी है. सो वी आर मैचिंग बप्पा यार.
2: रंग नंबर 7 गेम्स की बहार. अब एक ही जगह पर सभी रिश्ते आकर मिले हैं तो ढेर सारी मस्ती होगी, ढेर सारा डांस होगा और साथ ही साथ ढेर सारा एंटरटेनमेंट और फन भी होगा, क्योंकि खेले जा रहे हैं जी रिश्तों के मेले में एक से बढ़कर एक खेल. बात करेंगे पहले खेल की, तो ये खेल है बॉल वाला, जहाँ पर दिलों को जीतने के लिए लड़कों को खानी पड़ेगी बाकी प्रतियोगियों से बॉल. अब बारी है वरमाला के गेम की, जहां पर लड़कों को गले की माला अपने गले से लड़की के गले में डालनी है. ऐसे में तीनों लड़के शुरू हो गए और एक एक कर अपनी पार्टनर्स के गले में माला डालने लगे.

0: डिसाइड करना कि विनर कौन है, पर हार कौन गया है नरेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां।
1: नरेंद्र जी।
2: रंग नंबर 8 कॉमेडी की बहार। भाई जब तक किसी भी सेलिब्रेशन में हंसी मजाक और जोरदार ठहाके ना लगे तो वो सेलिब्रेशन हमेशा अधूरा रहता है। ऐसे में इस सेलिब्रेशन में कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए पहुंच गए हैं सिद्धार्थ और गौरव, जिन्होंने ले लिया है लड़की का रूप। देखिए कैसे जमीन में लोटपोट हो रहे हैं और सामने वाले को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रहे हैं।

0: आप गए भैया बाहर चार उल्टी देखी आप एक टेम्पू खरीदी तो हम समझ कि आज पालतोष भैया भी आए
1: आज तो ये तो मिल गया वरना साड़ी पहन के मैं भी अच्छी चलती
2: रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू रोजेज आर रेड
0: वायलेट्स
2: आर
1: ब्लू रोजेज आर
2: रेड
1: रेड
2: वायलेट्स आर ब्लू
1: वायलेट्स आर ब्लू
2: जब मनीष पॉल था तो इसको बुलाया क्यों
1: इनका पैसे करने का तरीका
0: रोजेस आर रेड पिंक है लहंगा ये सस्ता और मनीष पड़ रहा था महंगा
1: रोजेस आर रेड रोजेस आर रेड वॉलेट है काला दिन भर ऐसी मेहनत करो तब मिलेगा रात करने वाला अक्कड़ के साथ बक्कड़ रखते हैं अक्कड़ के साथ बक्कड़ रखते हैं दो पेचकस एक पक्कड़ रखते हैं और दोबारा ऐसी शायरी की तो हम मुंह में गाली और हाथ में थप्पड़ रखते हैं
3: यानी गणपति बप्पा की भक्ति के साथ होगा रिश्तों का सेलिब्रेशन फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ तो तैयार हो जाइए जी के सितारों के साथ रिश्तों के मेले में शामिल होने के लिए जहां बप्पा के आशीर्वाद से हर रिश्ता और भी खूबसूरत नजर आएगा मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
4: चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर जहां अनुपमा की जिंदगी में आया है खुशी का मौका लेकिन सीरियल में कोई भी खुशी बिना ट्विस्ट के पूरी नहीं होती है ऐसे ही अनुपमा की खुशी में किसने लगाया ब्रेक और किस बात पर मचा बवाल चलिए देखते हैं

क्या अनुपमा की नई उड़ान में लगेगी किसी की नजर? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा जल्द ही फिर से अपनी नई उड़ान भरने वाली है, क्योंकि वो अपनी कोचिंग क्लास खोल रही है और ये सरप्राइज अनुपमा के घर वालों ने अनुपमा को दिया है, जिसे देखकर अनुपमा वाकई बेहद खुश है और अपनी ये नई शुरुआत अनुपमा पूरे परिवार के साथ खुशी से कर रही है।

0: भाई वाकई अनुपमा की जिंदगी में खुशियाँ झूम कर आई है। एक तो ये नई शुरुआत और दूसरा प्राची की कस्टडी अंश को मिलने वाली है और यही गुड न्यूज लेकर अंश और अनुपमा दोनों घर पहुँच गए हैं और देखिए कैसे खुशी से सभी को ये गुड न्यूज भी दे रहे हैं।
1: समझ लीजिए हम जीत गए। बाबू जी आपको मुझे प्रेम और राय ने गौतम के खिलाफ गवाही दी।
2: हाँ और इन दोनों ने भरे कोर्ट में जज के सामने बिंदास गौतम के सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख दिए। उसकी हर एक बात सच सच निडर होके सबको बताई।
1: इन्होंने बताया कि कैसे वो प्रार्थना को टॉर्चर करता था, कैसे कैसे वो अच्छा पाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं है।
2: हाँ बापू जी इन दोनों ने अंश की बहुत तारीफ की। सबके सामने ये कहा कि अंश सच में बहुत अच्छा फैमिली मैन है और प्रांशी के लिए यही सबसे बेस्ट पिता है।
3: प्रांशी मेरी बेटी जो है वो गौतम के अंडर थी, गौतम उसको संभालता था और मैंने कोर्ट में जाके अनुमा के साथ गया था, मैं वहाँ केस लड़ा और हम ऑलमोस्ट ऐसे वर्ज पे है कि जीत जाएंगे और प्रांशी मेरे साथ रहने लगेगी। सो ये खुशखबरी हम पहले थोड़ा सा नॉनचलांट बन के चुपचाप आते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपोज कर देते हैं सबको, मतलब एक्सपोज क्या हम बता देते हैं सबको कि हाँ ये होने वाला है और उसी की एक्साइटमेंट होती है। हम मीठा खा रहे होते हैं इतने में ही गौतम आ जाता है मोटिबा के साथ धमकी देने एज यूजुअल और फिर अनुमा एज यूजुअल उसे बता देती हैं कि तेरी धमकी किसी काम नहीं आएगी और बस फिर चला जाता है गौतम क्या करेगा। और
0: भाई अनुपमा अंश के साथ साथ सभी घर वालों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। ऐसे में अनुपमा अपने अंश को अपने हाथों से मिठाई खिलाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी गौतम की हो जाती है एंट्री, जो लेकर आ गया है घर में नया तमाशा।
4: सबके लिए मिठाई ली है, हमारे लिए भी जहर खरीद लेती आप।
2: अरे लेके कुछ पहली बार आपने मुझसे कुछ मांगा है गौतम जी, तो मैं मना कैसे करूं। एक मिनट अभी ऑनलाइन पे फटाफट ऑर्डर कर देती हूँ, 5 मिनट में आ जाएगा। बताइए कौन सी कंपनी का जहर खाएंगे।
4: क्या हाजिर जवाबी, महान भी हाजिर जवाबी। आप जैसी देवी को मेरा नमन।
2: वैसे ये देवी प्रसाद भी देती है।
0: भाई अनुपमा तो बड़े ही प्यार से गौतम को सबक सिखा ही रही थी कि तभी अंश गौतम को देख लेता है और उसका गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि गौतम बदतमीजी से उनसे बात जो कर रहा है, इसी के चलते दोनों के बीच झड़प हो जाती है।
4: और प्रेम राय को पट्टी बढ़ाई है, इनकी वजह से एक बाप अपनी बेटी से अलग हो रहा है।
2: आप प्रांशी से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उसकी कस्टडी इस नालायक को देने के लिए निकल पड़ी है। अरे ये बाप बने लायक भी है क्या? आप देखिए इसी प्रांशी के बारे में पता ही क्या है सिवाय उसके नाम के, इससे ज्यादा तो आपके पड़ोसी जानते होंगे प्रांशी के बारे में। जवाब दीजिए ना।

0: तरह जी, आप खुद सोचिए, ये लूज कैरेक्टर, ये प्रांशी अब किसी का भी बाप बनने के लायक है?
1: भाई अनुपमा ने तो कोशिश की है मोटी बा को समझाने की, लेकिन मोटी बा ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्राची गरीब घर में पले बड़े। इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि प्राची की कस्टडी गौतम को मिले, लेकिन यहाँ पर ये सुनते ही प्रेम और राही भी बगावत पर उतर आते हैं और मोटी बा के सामने ही गौतम को न सिर्फ खरी खोटी सुनाते हैं बल्कि उसकी असलियत भी बताते हैं कि वो पापा बनने लायक ही नहीं है। इस पर गौतम, प्रेम और राही दोनों पर गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसे बेइज्जती फील हो रही है, लेकिन अनुपमा उसे करारा जवाब देती है।
2: अरे जितनी इज्जत होती है ना हमारे घर में, हमें तो उसकी भी नहीं है। ये तो दोस्तों से भी बड़ा दूसरा है, ये तेरा नंबर वन।
3: ये हर पल में उस पर क्यों बात आ जाती है, तो समझ में नहीं
2: आती। अनुपमा जी, आपने मिठाई मंगवाने में अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, बाजी फिर पलटे।
4: गौतम गांधी से दुश्मनी महंगी पड़ेगी।
0: इस घटिया आदमी की जितनी इंसल्ट होती है ना, उतनी तो हमारे तोसु की भी नहीं होती। मतलब ये हमारे तोसु से भी ज्यादा गया गुजरा बेसर हमें।
3: अनुपमा
2: जी, आपने मिठाई मंगवाने में पूरी जल्दी कर दी, कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं हुआ। एक बात समझ, बाजी फिर
4: गौतम गांधी से दुश्मनी महंगी पड़ेगी।
5: ये सब जो डायलॉग तुम करते हैं होते हैं, मेहरबान करके जरा हाथ के रेंज में आके बोलो, बहुत लंबा पड़ता है। क्या बोल रहे थे तुम? क्या महंगी पड़ेगी, क्या सस्ता पड़ेगा? हाँ
1: भाई, अनुपमा तो हमेशा रेडी रहती है गौतम को जोरदार तमाचे लगाने के लिए, लेकिन आज अनुपमा न सिर्फ धमकी दे रही है बल्कि उसका काला चिट्ठा मोटी बा के सामने खोल रही है।
0: कुकी कॉम्पिटिशन में फिनाले में जो मेरे मेहमान स्वाद चला गया था यार, वो इनके मेहमान की ऐसे काले दाना में करेगा तो चेहरा तो सफेद पड़ेगा ही नहीं।
6: ये सब झूठ है।
0: अगर झूठ है तो एक काम करते हैं, अभी क्या पे पुलिस बुलाते हैं, दो बोर डाल ले तुझे और चोटू को पड़ेंगे तो अपने आप सब बाहर आ जाए।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, किसी को बुलाइए, ये सच है। मैं तो आपका गौतम बेटा हूँ, मैं गौतम की बातों बाकी इससे पैसे लेकर मैंने आपके खाने में ऑर्डर मिला दिया जिससे वो आपकी जीप की टैक्सी कैपेसिटी चली गई थी। ये सारा प्लान गौतम का था, गौतम मास्टर माइंड था। मैं तो आपका भोला भाला से ज्यादा खुश हूँ जिसकी बातों में आकर फंस गया।
0: आपको आपके लाडले गौतम जी का इतना बड़ा कारनामा नहीं पता था? वो जो कुकिंग कॉम्पिटिशन में मेरे मुंह का स्वाद चला गया था वो इन्हीं की मेहरबानी थी। देखिए देखिए सुनते रहते, इसका चेहरा कैसे सफेद पड़ गया। जब काले कारनामे करते हैं ना गौतम, तब चेहरा सफेद पड़ता ही है ऐसे।
6: ये सब झूठ है।
0: अच्छा झूठ है, तो एक काम करती हूँ, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस के दो डंडे तुम्हें पड़ेंगे, दो डंडे मेरे दोस्तों को पड़ेंगे, तो अपने आप सच बाहर निकल आएगा, है ना?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, किसी को मत बुलाइए मम्मी, ये सच है और ये सब गौतम सर की चाल थी। ये तो मास्टर माइंड है, मैं तो बस एक सीधा साधा छोटा सा भोला वाला दोस्तों जो इनकी बातों में आ गया था, वो पाउडर मिला दिया था, अरे जिससे मम्मी के जीप का टेस्ट चला गया था, और ये सब गौतम सर की चाल थी। ये तो मास्टरमाइंड है।
7: ये रिवील पहले ही हो चुका था, बट ये गौतम के साथ, मतलब गौतम कभी एक्सपोज नहीं हुआ था, स्पेशली मोटी बा, प्रेम और राही के सामने, बाकी हम सब तो जानते थे। तो ये बात पहली रिवील हो चुकी थी कि गौतम ने जब उसका फूड कंपटीशन का फिनाले था उसमें उसने कुछ मिलाया था खाने में और अनुमा को खिलाया था, उनके टेस्ट बड्स चले गए थे उससे। तो ये बात हमें रिसेंटली पता लगी थी, बट अब सबके सामने, मोटी बा, प्रेम, राही, हम सबके सामने ये बात आ जाई है, वो भी बातों बातों में। वो तो मेन टॉपिक था ही नहीं, मेन टॉपिक ही प्रांशी को लाना था, बट बातों बातों में निकल ही गई ये बात, और वो भी रिवील हो गया कि गौतम ने इसके अलावा क्या किया।
1: भाई गौतम का सच जानने के बाद मोटी बा हैरान तो है ही, लेकिन उनकी जिद अभी भी बरकरार है कि प्राची गौतम के साथ ही रहेगी। ऐसे में अनुपमा हैरान है ये जानकर कि गौतम की इतनी सच्चाई जानने के बाद भी मोटी बा उसका साथ क्यों दे रही है। खैर अनुपमा ने तो अपनी चेतावनी दे दी है, वो भी मोटी बा और गौतम को।
7: जिस तरह से कोर्ट में केस गया, हम सब एज्यूम कर रहे हैं कि मिल जाएगी, बट हो सकता है कि गौतम लास्ट में कुछ पलट जाए या कुछ खेल खेल दे और हमें कस्टडी ना मिले। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि गौतम ऐसे तो नहीं जाने देगा प्रांशी को, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और अनुमा और मैं और हम सब मिलके भी, हम भी ऐसे केस इतनी आसानी से हार नहीं जाएंगे। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या वो चाल चलता है, क्या हम उसके अगेंस्ट करते हैं, और कैसे अगर प्रांशी हमारे घर आती है तो कैसे आती है, और नहीं आती तो क्या होता है, वो सब आगे देखने को मिले।
1: फिलहाल तो मोटी बा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई है, लेकिन गौतम की बातों में आकर वो कोशिश करेंगी अनुपमा और अंश से उनकी प्राची छीनने की। फिलहाल तो अनुपमा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, और तो और उसे अपनी बेटी और दामाद का साथ भी मिल गया है। खैर प्रेम और राहिल अनुपमा से विदा लेते हैं, क्योंकि समय हो चला है उनके घर जाने का, और साथ ही साथ आगाह भी कर दिया है कि आगे की लड़ाई के लिए वो लोग तैयार रहें। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अनुपमा प्राची को पाने में कामयाब रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: पूरे देश में गणेश उत्सव की रौनक है, ऐसे में आपके फेवरेट सितारे भी अपने घरों में बाप्पा को लेकर आए हैं। किन सितारों ने इस साल अपने घर पर गणपति स्थापित किए हैं और वो किस तरह बाप्पा की भक्ति में लीन है, चलते हैं उन सितारों के घर और शामिल होते हैं उनकी खुशी में।

0: गंगा माई की आस्था। घर बिराजे बापा, शुभांगी की त्योहार की खुशियाँ। सी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटियाँ में गंगा माई का किरदार निभाने वाली शुभांगी अपने घर आई है खास गणेशोत्सव के इस त्योहार के लिए। और देखिए, आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि अपने रियल परिवार संग वो मना रही हैं गणेशोत्सव। उनके घर बप्पा बिराजे हैं, परिवार मिलकर पूजा कर रहा है और शुभांगी हो गई है बप्पा की भक्ति में लीन। तो आइए शुभांगी से ही जानते हैं कि इस बार क्या थीम है और ये साल कितना खास है उनके लिए।
1: सबसे पहले तो मैं इको फ्रेंडली रखती हूँ जिससे अपने नेचर को कोई हानि ना पहुँचे। तो ये सारे पेपर मैश के गणेश जी हैं, हमारे घर पे आते हैं। और ये सारी ज्वेलरी है, मेरी बहू है संपदा, उसने खुद वो एक एक स्टड जोड़ के उन्होंने वो सजाई है मूर्ति। और हर साल डेकोरेशन में मैं मेरा बहुत पार्टिसिपेंट मैं होती हूँ, लेकिन इस साल नहीं हो पाई और पिछले गणेश जी के टाइम भी, क्योंकि मेरी सीरीज चल रही है गंगा माई की बेटियाँ, तो हम लोग चंडीगढ़ में शूट करते हैं, तो मेरा एक्टिव पार्टिसिपेंट मैं हूँ नहीं। लेकिन यस, गणपति का जब चॉइस किया जाता है तब मैं होती हूँ। और हमेशा हम देखते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी हो और उनकी आंखें बड़ी सुंदर हो। तो आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी की आंखें बड़ी सुंदर है। मेरे हस्बैंड संजीव लाटकर, उन्होंने सब किया है और पूरी फैमिली, मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। तो वो लोग मेरे एब्सेंस में, मेरी एब्सेंटी दिखेगी नहीं आपको बहुत करते हैं। एवरी ईयर हाँ, हमारे पास एक एक अलग अलग थीम होती है, लेकिन इस बार हमने मेरा अभी अभी पोता हुआ है मल्हार रखा है उसका नाम, वो 4 महीने का है, तो इनविटेशन उसकी तरफ से था। और हमने वो बाल गणेश, हमने सोचा था कि बाल गणेश लाएंगे, लेकिन बाल गणेश आए नहीं हमारे घर पे। तो अगले साल पक्का जब वो थोड़ा सा समझ के उम्र में आएगा तो मेरा प्लान है कि बाल गणेश भी लाएंगे, तो उसको भी बड़ा मजा आएगा। ये उसका पहला गणपति था।
0: तो भाई शुभांगी ने तो बताया कि कैसे इनके लिए ये साल बेहद ही खास है और खुशी तो इस बात की भी है कि वो अपने घर आई हैं खास छुट्टी लेकर इस त्योहार के लिए। वैसे शुभांगी ने अपना घर दिखाया, शुभांगी को प्लांट्स का बेहद शौक है और उनके घर ढेर सारे पौधे हैं। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कैसा है उनका ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन।
1: ये बड़े फ्रैगनेंट फ्लावर्स है और फ्रैगनेंस गणेश जी को भी पसंद है और हमको भी बहुत पसंद है, तो ये सारे मेरे घर में आते हैं। मेरे घर में ये हरसिंगार के भी पौधे हैं, ये पौधा है और ये पौधा है, और इसके भी फूल आते हैं, बहुत सारा भर जाता है। लेकिन अभी बरसात का मौसम है, मैं हूँ नहीं तो कटिंग हुई नहीं इसलिए वो हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे फूल आते हैं और मैं हमेशा फ्रेश फ्लावर्स भगवान को रोज के रोज अर्पित करती हूँ। दिस इज एरेनियम, अभी मैं राखी के टाइम पे आई थी तो मैंने उसका कटिंग किया है, लेकिन दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 28 to 30 ईयर्स ओल्ड प्लांट। ये मेरा बोनसा है, बहुत खूबसूरत बोनसा है। ये मकई पत्ता जो खाने वाला है उसका है प्लांट। ये भी मतलब मैं घर पे जो पूजा होती है तो उसमें ये सारे मेरे फ्रेश पत्ते चलते हैं। ये कड़ी पत्ता है, ये भी बहुत पुराना है, बहुत सालों से मेरे पास है। और ये है, ये बोधी ट्री है, बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था तो ये मैंने ऐसा ही किया है, एक्चुअल बुद्धा रखा है। और यू कैन सी द एरियल रूट्स, ये एरियल रूट्स है इसको, बहुत सुंदर दिखता है ये। ये मिनी मिनिएचर बोनसा है, हाँ ये सारे लाइव प्लांट्स हैं। मेरा छोटे से इसमें जेड़ लगाया है और कितना मोटा है ये, मतलब ब्यूटीफुल। दिस इज मिनिएचर बोनसा, इसको बहुत संभालना पड़ता है।
0: भाई इतना ही नहीं, आज तो शुभांगी यानी गंगा माई ने हमें दिखाया अपने घर का ये कोना जहाँ है पेंटिंग्स, ढेर सारी तस्वीरें जिससे जुड़ी है शुभांगी की यादें।
1: मेरा जो घर है ये दो फ्लैट मैंने इकट्ठा किए 2022 में। मैंने ये घर खरीदा, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसको टेरेस है, पहले वाले में भी थी लेकिन ये काफी दो बड़ी बड़ी टेरेस है मेरे लिए। और ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए पेंटिंग्स हैं। ये जूट पेंटिंग है जो आप देख सकते हैं, ये जूट एक्चुअल जूट लगाया है मैंने। अभी इसको रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है लेकिन ये मेरा खुद का है। फिर ये हाथी जो प्रॉस्पेरिटी की साइन होते हैं, हाथी आना मतलब लक्ष्मी जी आती है घर में, इसलिए ये दोनों हाथी। इसके पीछे मेरा ये अवार्ड है, जी कुटुंब अवार्ड मुझे मिला था इस साल की बेस्ट मदर का, तो ये है। और इसके पहले जो मैंने एक सीरियल की थी उसका भी जी का ही अवार्ड है। ये जो वॉल है ये मेरी वॉल फोटोज की वॉल है जिसमें मैंने बहुत सारे कैजुअल पिक्चर्स लगाए हैं। मेरी फैमिली है, मेरा बेटा और बहू, मेरी बेटी और मेरा दामाद, और ये मेरा नातन है बेटी का बेटा, और बाकी बस हमारे ही कुछ पिक्चर्स है जैसे संजू और मैं हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ मेमोरेबल जो बहुत विथ मेकअप नहीं है या फिर मेरे पोर्टफोलियो के पिक्चर्स नहीं है। घर के बाहर की नेम प्लेट है जो मैंने खुद बनाई है, इसमें सबका नाम है, मेरी बेटी, मेरा दामाद, बेटा, मेरी बहू, मैं और संजीव। और जब भी मैंने ये बनाई तभी मेरे दोनों पोते नहीं हुए थे, तो अभी मैं उनका भी नाम इंक्लूड करने वाली हूँ। मैंने खुद कोलाज किया पुराने जो फोटोग्राफ्स थे, तो उसमें ये मेरा सेंटर में रखा है जो संजू का मेरा शादी का है। उसके बाद हमारे बच्चे छोटे थे तब के, फिर बड़े हो गए ऐसे धीरे धीरे। वो सबसे मतलब जब किया था बहुत साल पहले का ना, तो मेरा बेटा तब इतना था। ये भी मेरा शादी का ही है, ऐसे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वाले तब के पिक्चर है जब मैं कॉलेज में जाया करती थी।
0: तो देखा आपने, कुछ ऐसी है रियल लाइफ में शुभांगी। भाई हम तो यही कहेंगे कि गंगा माई बन वो ऐसे ही अपने दर्शकों का दिल जीतती रहे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: पूरे देश में गणेश उत्सव की रौनक है, ऐसे में आपके फेवरेट सितारे भी अपने घरों में बाप्पा को लेकर आए हैं। किन सितारों ने इस साल अपने घर पर गणपति स्थापित किए हैं और वो किस तरह बाप्पा की भक्ति में लीन है, चलते हैं उन सितारों के घर और शामिल होते हैं उनकी खुशी में।
0: सितारों की बाप्पा भक्ति, दिल से की विघ्नहर्ता की सेवा, त्योहार का मजा परिवार के साथ, चारों ओर गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में आप सबके चहेते सितारे भी बाप्पा भक्ति में लीन हो चुके हैं। सभी अपने घर पर बाप्पा को लेकर आए हैं और दिल से कर रहे हैं उनकी सेवा। वैसे त्योहार के ही मौके होते हैं जब फ्रेंड्स और फैमिली साथ साथ होती है, और ऐसे में त्योहार का मजा तो सबके साथ ही आता है ना। आप सभी के चहेते सितारे भी कुछ इस तरह गणेशोत्सव मना रहे हैं और चारों ओर बस बाप्पा की ही धूम है। सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है ये खास नजारे। अर्जुन बिजलानी के घर जोरों शोरों से बाप्पा की आरती हो रही है। सभी बाप्पा की भक्ति में लीन हो चुके हैं और इनके घर पर ढेर सारे मेहमान आए हैं खास बाप्पा के दर्शन के लिए, और ऐसे में सभी दिल से आरती कर रहे हैं और हो गए हैं विघ्नहर्ता की भक्ति में लीन। वह यहाँ पहुँचे हैं कई सितारे जैसे कि अंकिता विकी, ईशा, अविनाश, एरिका फर्नांडिस, पलक और कई और सितारे जो विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। भाई भक्ति का समा तो तब बन गया जब अर्जुन और नेहा आरती कर रहे हैं और सभी लोग इनकी आरती में हो गए हैं शामिल।

0: एक्चुअली बहुत सालों तक मैंने मिस किया क्योंकि मैं दुबई में थी और अभी शो चल रहा है यहाँ पे मेरा, तो मुझे वक्त मिला आने का. बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर सो लॉन्ग मुझे दर्शन करने मिल रहा है. एंड ऑफकोर्स दोस्तों के घर आना तो होता ही है. सो आई डोंट नो कि मैं वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन जब भी गणेश चतुर्थी आता है और यू नो एक मतलब एक फीलिंग दैट वॉर्म्थ एंड होम लाइक फीलिंग, तो वैसे ही फील होता है. एंड देन टू कम एंड डू दर्शन एंड एवरीथिंग इज वेरी स्पेशल, इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन.
1: तो चलिए चलते हैं विवेक और दिव्यांका के घर पर. भाई इस बार ये बाल रूपी गणेश अपने घर पर लेकर आए हैं क्योंकि ये साल इनके लिए बेहद खास है. इनके घर ट्विंस ने जन्म जो लिया है. इसी के साथ दिव्यांका और विवेक बता रहे हैं कि इस साल और क्या स्पेशल है.
2: इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज का खुलासा हुआ कल, हमको पता नहीं था. मैंने पिछले साल किसी के घर पे हम गए थे दर्शन करने के लिए और वहाँ पे मैंने कान में फूका था ऐसे, पप्पा देना तो एक बार में दुगनी खुशियां दे देना. और ये बात मैंने दिव्यांका को नहीं बताई और इन्होंने भी कुछ ऐसी मन्नत मांगी थी.
3: हुआ ये था कि मुझे किसी ने मैनिफेस्टेशन के लिए बोला था कि आप पानी पीते हो ना, तो ऐसा अपना सोचा करो कुछ जो आपको चाहिए और फिर पानी पी लो, तो वो चीजें पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है. तो मैंने शुरू में यही सोचा था कि अच्छा हमने कंसीव तो किया है, ट्विंस होने चाहिए. पता नहीं क्यों हर बार मैं यही मांग रही होती थी. एंड देन सडन वी गॉट द सरप्राइज कि अरे हमारे ट्विंस हो रहे हैं. एंड ये हमें अभी रिसेंटली पता लगा कि हम दोनों ही इस तरीके से अलग अलग से पापा से एंड पॉजिटिव एनर्जीज में मांग रहे थे ये ऑलरेडी. सो हमने जो मांगा हमें मिला, तो हमने इसलिए पापा को थैंक यू कहने के लिए घर को बुलाया.
4: गणपति बप्पा
3: बोरिया,
4: मंगल मूर्ति
3: बोरिया,
1: और अक्षय भी दिल से बापा की भक्ति में लगे हुए हैं. और आज तो श्रेणु का अंदाज बदला बदला है. आज वो बन गई हैं महाराष्ट्रीयन बहुरानी.

0: तो देखा आपने कुछ इस तरह आपके चहेते सितारे गणेशोत्सव मना रहे हैं और दिल से कर रहे हैं विघ्नहर्ता की सेवा। हम तो यही कहेंगे कि इन सभी पर पापा का आशीर्वाद बना रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सास बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है। अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, मुंबई के लालबाग राजा दरबार में भक्तों की कतार, पत्नी संघ क्रिकेट सूर्य कुमार यादव ने किए दर्शन। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, पहली बार 3,24,000 से अधिक श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, मानदेय में की 50% की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। सरकारी स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाने लगे मोतिहारी के डीएम, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आईएएस सौरभ सुमन का निराला अंदाज, 1 घंटे तक ली बच्चों की क्लास। कोची में हो सकता है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2027 का ऑक्शन, 28 अक्टूबर से खिलाड़ियों की लगेगी बोली, वेन्यू पर विचार कर रही है बीसीसीआई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: गणेश उत्सव के तीसरे दिन लाल बाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, मुख दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। लालबाग चौराहा दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी लगाई हाजिरी, पत्नी संग लिया आशीर्वाद, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी लालबाग चौराहा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, टेका मत्था लिया, बप्पा का आशीर्वाद। अकोला में सजा 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार, 15 फीट की गणेश प्रतिमा विराजमान, लकड़ी के महल भी थीम पर किए गए हैं तैयार। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेके अष्टविनायक के दर्शन तक की देखने को मिल रही है झलक, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के वाशिम में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे भगवान गणेश, सौंफ सुपारी और इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति, इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग और इलायची का किया गया है इस्तेमाल, 80 किलो की उस मूर्ति को बनाने में लगे करीब 20 दिन। इस पंडाल में हर साल बनाई है पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति, पिछले साल भी दालों से बनाई गई थी गणपति प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर रचा गया है नया कीर्तिमान, 10 फीट की है गणेश भगवान की मुख्य प्रतिमा। 1999 में अष्टविनायक के रूप में 8 प्रतिमाओं की स्थापना से शुरू हुई थी परंपरा, पंडाल की भव्य डिजिटल लाइटिंग और अनूठी कलाकृति को देखने दूर दूर से आ रहे भक्त। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सभी का ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल से बनी बप्पा की एक खास प्रतिमा। तेरह फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है गणपति की मूर्ति, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं विघ्नहर्ता के अनोखे स्वरूप के दर्शन। ओडिशा के गजपति जिले में भी दिखा गणपति का अनोखा स्वरूप, सिक्को और चॉकलेट से बनाई गई बप्पा की मूर्ति। यहां स्थापित की गई है त्रिमुखी गजानन मूर्ति, इसमें गणपति का शरीर बनाने में भारी मात्रा में सिक्कों का हुआ है इस्तेमाल, जबकि साइड के दोनों मुखों के निर्माण में चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। ये खास इको फ्रेंडली मूर्ति बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं भक्त, बच्चों में भी खासा उत्साह। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना, चर्चा का विषय जलमग्न द्वारका की थीम पे बना भव्य गणेश पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते ही नजर आता है समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण, बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किए गए हैं प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टानी और समुद्री जीवों के मॉडल। पंडाल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, पंडाल में प्रदर्शित झांकियों में देखा संस्कृति और आधुनिकता का संगम। नीली और हरी रोशनी के साथ पानी की लहरों, समुद्र की गहराई का प्रभाव किया गया तैयार। इसी जलमग्न द्वारका के बीच स्थापित की गई है भगवान गणेश की प्रतिमा। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के करीब लाने के लिए तैयार हुआ गणपति बप्पा का ये दरबार। बड़ी संख्या में दर्शन को आए लोग इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं। मुंबई में एक्टर सोहेल खान के घर गणपति उत्सव, शामिल हुए कई सितारे। विसर्जन के दौरान जमकर किया डांस। सोहेल खान के भाई और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान उत्सव में हुए शामिल। बप्पा के सामने टेका मत्था, उतारी उनकी आरती। गणपति उत्सव में खान परिवार यानी कि हेलेन बहन अर्पिता का परिवार और अरबाज खान के बेटे भी नजर आए। सभी ने गणपति से सुख समृद्धि की कामना की। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में किया मूर्ति विसर्जन। बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी साथ रहे। पूरे विधि विधान से सचिन ने की गणपति की आराधना। पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान से गणपति की आराधना की। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था थी अद्भुत रंग नजर आए। मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन। एक्टर गोविंदा और उनके बेटे हुए उत्सव में शामिल। डेजी शाह ने भी किया गणेश विसर्जन। ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते बप्पा को किया विदा। अंबानी परिवार ने भी किया मूर्ति विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे इस दौरान मौजूद। बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मौजूद। टीवी एक्टर गुरमीत सिंह ने भी पत्नी दिवीना के साथ किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। बप्पा से अगले बरस से जल्दी आने की प्रार्थना भी की। बुंदेलखंड की धरती पर गणेश उत्सव की धूम है। झांसी में 17वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक महाराज गणेश मंदिर में विशेष स्वागत। मंदिर में विराजमान है भगवान गणेश का विशाल श्वेत संगमरमर का विग्रह। गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि भी मौजूद। बुंदेलखंड की संस्कृति के साथ देखने को मिलती है महाराष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक। बुधवार को नारियल चढ़ावे पर पूरी होती है सभी मनोकामना। गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 11वें दिन विसर्जन करने की परंपरा। मान्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई के विवाह से पहले से मौजूद है ये मंदिर। 1842 में इसी मंदिर में हुआ था झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवलकर और लक्ष्मीबाई का विवाह। मुंबई के बांद्रा पश्चिम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। गणपति बप्पा के दर्शन कर लिए उनका आशीर्वाद। जयपुर के मोती डूगरी गणेश मंदिर से निकली शोभा यात्रा भव्य यात्रा के साथ गणेश चतुर्थी का समापन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में गणेश भक्त शामिल हुए। बालासोर के लारी क्लब में गणेश पूजा का जश्न। पारंपरिक विसर्जन जुलूस हुआ आयोजित। धार्मिक उत्सव के दौरान नजर आई भक्तों की भीड़। रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट। कश्मीर में भी देखिए गणेश उत्सव की रौनक। कश्मीरी पंडितों ने काजी गुंड के वेशों में मनाए गणेश चतुर्थी। कश्मीर में शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। मदुरई में किया गया सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन। ढोल नगाड़ों के बीच निकाली गई बप्पा की यात्रा। 17 सितंबर को होने वाले प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम के तहत फैसला। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। आस्था के रंग में रंगा मदुरई। जोरों पर मीनाक्षी अम्बन मंदिर महाकुंभ अभिषेकम की तैयारी। पवित्र अनुष्ठान से पहले फूलों से की जा रही पूरे मंदिर परिसर की सजावट। 17 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है महाकुंभ अभिषेकम। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, मानदेय में की 50% की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, मुंबई के लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, पत्नी संघ क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने किए दर्शन। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, पहली बार 3,24,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, मानदेय में की 50% की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 9,000 रूपए। सरकारी स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाने लगे मोतिहारी के डीएम, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये सौरभ सुमन का निराला अंदाज, 1 घंटे तक ली बच्चों की क्लास। कोची में हो सकता है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2027 का ऑक्शन, 28 अक्टूबर से खिलाड़ियों की लगेगी बोली, वेन्यू पर विचार कर रही है बीसीसीआई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। हमने आपको पार्वती पुत्र गणेश के कई रूपों के बारे में अक्सर बताया है, उनकी पौराणिक कथाएं भी बताई हैं, लेकिन आज हम आपको गणेश जी के सबसे मंगलकारी रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। गणेश जी का सबसे मंगलकारी रूप है सिद्धि विनायक स्वरूप। मान्यता है कि गणपति का सिद्धि विनायक रूप सभी रूपों में परम कल्याणकारी है। कहा जाता है कि इस रूप को पूजने से मन की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, सारे कष्ट गणपति खत्म कर देते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रभु सिद्धि विनायक के बारे में बताते हैं।

0: नमस्कार। सदियों से मनोकामना पूर्ति का है सिद्ध द्वार, वहां भक्तों पर बरसती है समृद्धि अपार। वे विघ्नहर्ता हैं और जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाओं और संकटों को नष्ट करते हैं। ये हैं सिद्धि समृद्धि देने वाले विघ्नेश्वर, जिनके दरबार में श्रीस नवानी भर से मिलती है सिद्धि और समृद्धि। देवों में जिनकी पूजा सबसे पहले होती है वो हैं श्री गणेश, और बाप्पा का एक रूप ऐसा है जो उनके सभी रूपों में सबसे ज्यादा शुभकारी और मंगलदाता है। बाप्पा का वो रूप है सिद्धि विनायक, ये है मन्नत पूरी करने वाले विनायक। माना जाता है कि सिद्धि विनायक पूजा की उपासना से तेज बुद्धि और पराक्रम की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति को जीवन में सफल बनाती है, क्योंकि गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप को सबसे ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। और क्या कहते हैं इस पर ज्योतिष के जानकार?
1: भगवान गणेश को सनातन परंपरा में विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण इसलिए किया जाता है क्योंकि गणपति उपासना का भाव है। बाधाओं को दूर करके शुभ कार्य की सिद्धि की ओर आगे बढ़ना, इसी कारण गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप को विशेष रूप से सिद्धि सफलता और कार्य सिद्धि से जोड़ा जाता है।
0: सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम महज गणेशोत्सव ही नहीं बल्कि वर्ष भर यूं ही रहता है। भक्तों की विनायक के स्वरूप के प्रति आस्था अधिक है। माना जाता है कि एक महिला की भक्ति ने सिद्धि विनायक को जिन जिन की आस्था में ला दिया है, जिससे जुड़ी है एक कथा, आप भी सुनिए। माना जाता है कि मुंबई के प्रभा देवी स्थित इस आधुनिक मंदिर की स्थापना 19 नवंबर 1801 को हुई थी। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ठेकेदार लक्ष्मण बिट्टू और देवू भाई पाटिल ने मिलकर कराया था। कथा कहती है कि देवू भाई पाटिल नाम की महिला यहीं पर रहा करती थी और उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसका उन्हें बहुत दुख था। एक दिन एक साधु ने उन्हें प्रेरणा दी कि गणेश जी का एक मंदिर बनवाएं, जिससे न केवल उनकी गोद भरेगी बल्कि अन्य निसंतान माताओं की भी मनोकामना पूरी होगी। कथा कहती है कि तब देवू भाई ने अपनी जमीन और गहने बेचकर शिल्पी लक्ष्मण बिट्टू पाटिल के साथ मिलकर इस मंदिर की नींव रखी थी, जो बाद में सिद्धि विनायक के नाम से मशहूर हुआ। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि दुखहर्ता भगवान गणपति का ये वो दरबार है जहां सिद्धि भी मिलती है और समृद्धि भी। महिमा तो यहां तक मानी जाती है कि जो यहां आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। चलिए आपको बताते हैं कि गणपति के स्वरूप को सबसे मंगलकारी क्यों माना जाता है। गणेश जी का सबसे मंगलकारी स्वरूप, गणेश जी के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं। इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद रहता है। अष्ट विनायक स्वरूप में सिद्धि विनायक सबसे ज्यादा मंगलकारी माने जाते हैं। सिद्ध टेक नामक पर्वत पर इनका प्राकट्य होने के कारण इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इनकी सूंड सिद्धि की ओर है, अतः ये सिद्धि विनायक हैं। मात्र सिद्धि विनायक की उपासना से हर संकट और बाधा को नष्ट किया जा सकता है।
1: गणेश उत्सव के दौरान किसी भी दिन प्रातः या संध्या के समय भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं, 21 दुर्वा श्रद्धा पूर्वक अर्पण करें और फिर भगवान गणेश जी का ध्यान करके ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें और अंत में भगवान से यह कहें कि हे सिद्धि विनायक, यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के हित में है तो मेरे मार्ग की बाधाओं को दूर करके मुझे सही दिशा और सफलता प्राप्त करें।

सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। कारण ये भी है कि ये सिद्ध पीठ है। सिद्धि विनायक रूप में भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है बप्पा की सूंड। आम तौर पर गणपति की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होती है, लेकिन भगवान सिद्धि विनायक की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होने से उन्हें नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणपति कहा जाता है।

मान्यता है कि जहाँ कहीं भी दाईं ओर सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति होती है वो सिद्धपीठ कहलाता है। तो आइए आपको समझाते हैं सिद्धिविनायक के स्वरूप की महिमा जिससे जुड़ी है पौराणिक कथा।

माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के पूर्व सिद्धटेक पर्वत पर विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी। इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना बिना बाधा के कर पाए। सिद्धि विनायक का स्वरूप चतुर्भुजी है। इनके ऊपर के हाथों में कमल और अंकुश है। नीचे के एक हाथ में मोतियों की माला और एक हाथ में मोदक का कटोरा है। इनके साथ इनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी हैं। मस्तक पर त्रिनेत्र और गले में सर्प का हार है। माना जाता है कि सूक्ष्म शिल्पकारी से परिपूर्ण गर्भगृह के चबूतरे पर स्वर्ण शिखर वाले चांदी के अद्भुत मंडप पर विराजे हैं भगवान सिद्धि विनायक, जिनके दर्शनों से भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। बाप्पा की ये प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। मूर्ति एक ही काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है, जो लगभग 2.5 फीट ऊंची है। उनका विग्रह चतुर्भुजी है। गणपति के दोनों और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन ऐश्वर्य सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक हैं। मंदिर परिसर में रखे चांदी के मूषक के कान में भक्त अपनी मन्नत कहते हैं। भगवान गणेश के स्वरूप की उपासना विशिष्ट महत्व रखती है। सिद्धि विनायक की उपासना से आप क्या क्या फल पा सकते हैं, कैसे करनी है बाबा के स्वरूप की पूजा, ये जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। मान्यता है कि गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाई तरफ मुड़ी होती है, वो सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है। उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं कि सिद्धि विनायक भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा कर देते हैं। हम आपको प्रभु सिद्धि विनायक के कृपा पाने की खास पूजा विधि विधान बताने जा रहे हैं और इस स्वरूप के पूजन से आपको मिल सकते हैं कौन से वरदान, ये भी जान लेते हैं।

धर्म ग्रंथों में हर शुभ कार्य का आरंभ गणपति की उपासना से करने की परंपरा रही है। भारत में गणपति के ऐसे कई मंदिर हैं जहां से भक्तों की अगाध आस्था जुड़ी है। ऐसा ही एक दिव्य दरबार है भगवान सिद्धि विनायक का।

सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त उनके दरबार में जाता है उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सिद्धि विनायक का अर्थ है सिद्धि देने वाला या सफलता का दाता। माना जाता है कि सिद्धि विनायक के दर्शन और पूजा करने से भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है।

0: सिद्धि विनायक का रूप ही ऐसा है कि उनको देखने भर से उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाती है। वैसे तो हर वक्त इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ ही मंदिर में पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। आस्था कहती है कि सिद्धि विनायक अपने भक्तों को हर विघ्न बाधा से दूर करते हैं। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि सिद्धि विनायक के चमत्कारी स्वरूप के दर्शन मात्र से ही आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और उनकी भक्ति करके संसार के सारे सुख हासिल कर सकते हैं।
1: दर्शकों, गणेश उत्सव केवल उत्सव नहीं है, यह भगवान गणपति के प्रति श्रद्धा, भक्ति और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने का संकल्प लेने का अवसर भी है। अगर गणेश उत्सव के दौरान आप प्रतिदिन गणपति जी के सामने दीपक जलाएं, दुर्वा चढ़ाएं, मोदक अथवा श्रद्धा अनुसार नैवेद्य अर्पण करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो यह आपकी आध्यात्मिक साधना को मजबूत कर सकता है।
0: चलिए हम आपको बताते हैं कि सिद्धि विनायक की पूजा उपासना से भक्त क्या क्या लाभ पा सकते हैं। सिद्धि विनायक की उपासना से हर तरह की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा और स्मरण लाभकारी होता है। इनकी उपासना से निश्चित संतान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से कर्ज से मुक्ति मिलती है और लाभ बढ़ जाता है। सिद्धि विनायक की नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। धर्म ग्रंथ और पुराण बताते हैं कि गणपति बप्पा को तेज बुद्धि और पराक्रम के लिए जाना जाता है। वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनका नाम लेकर शुरू किया गया कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहता।
1: परंपरागत मान्यता के अनुसार गणपति उपासना को बुद्धि विवेक शुभारम्भ कार्य सिद्धि और विघ्न निवारण से जोड़ा जाता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता चाहते हैं, जो व्यक्ति किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहा है, जो व्यापार में सफलता के लिए प्रयास कर रहा है, जो अपने जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं से परेशान है, वह गणपति जी की श्रद्धा पूर्वक उपासना कर सकते हैं।
0: जानकार बताते हैं कि भगवान सिद्धि विनायक के पूजन में कुछ सावधानियों का पालन करना भी आवश्यक है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे की जाए सिद्धि विनायक की उपासना, जिससे वो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होकर लुटाएं खुशियां अपार।
1: सिद्धि विनायक की पूजा कैसे करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और सबसे पहले दीपक जलाएं, फिर भगवान गणेश को जल, पुष्प और दुर्वा अर्पण करें। गणेश जी को मोदक या अपनी श्रद्धा अनुसार कोई सात्विक नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद भगवान सिद्धि विनायक का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना को अष्टपष्ट भाव से उनके सामने रखें, लेकिन मनोकामना के साथ एक संकल्प जरूर लें कि हे गणपति महाराज, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें और मेरे कर्मों को सफल बनाने की शक्ति दें। यही प्रार्थना साधना को सुंदर बनाती है।
0: भगवान सिद्धि विनायक की स्थापना गणेश महोत्सव या चतुर्थी तिथि को करें। बुधवार को भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। नित्य प्रातः उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें और आरती भी करें। जहां भी सिद्धि विनायक की स्थापना करें, वहां दोनों वेला घी का दीपक जलाते रहें।

भगवान गणेश के सबसे मंगलकारी स्वरूप की पूजा उपासना के साथ ही विशेष मंत्रों का जाप करना आपके लिए एक अमोघ कवच के समान हो सकता है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महाकल्याणकारी मंत्र जो भगवान सिद्धि विनायक की महाकृपा आपके जीवन में बरसाएंगे। प्रथम पूजनीय गजानन का सबसे मंगलकारी स्वरूप है सिद्धि विनायक के दर्शन। पूजन के समय आपको किन मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी हो सकता है, आइए अब इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं।

0: सिद्धि विनायक का अर्थ ही है सिद्धि यानी सफलता। माना जाता है कि जहाँ सिद्धि होती है वहाँ पूर्णता होती है, और जहाँ पूर्णता होती है वहीं जीवन की संचित उपलब्धि होती है। तभी तो गणेशोत्सव में हर कोई भगवान सिद्धि विनायक को रिझाने में लगा है। उनसे आशीर्वाद पाकर वो गणपति से जीवन में सफलता पाना चाहता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गणेशोत्सव में अगर आप भगवान सिद्धि विनायक की साधना के साथ ही उनके महामंत्रों का जप करते हैं तो इससे आपके मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है।
1: कई बार हमारी जिंदगी में समस्या इसलिए नहीं आती कि भगवान हमसे दूर रहें, बल्कि इसलिए आती है ताकि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। और भगवान गणेश हमें यही सिखाते हैं कि बुद्धि रखो, धैर्य रखो, सही कर्म करो और बाधाओं से डरकर पीछे मत हटो। इसलिए गणेश उत्सव भगवान सिद्धि विनायक के सामने एक बार जरूर बैठिए, अपनी परेशानियां बताइए, अपनी गलतियां स्वीकार करिए और फिर नए विश्वास के साथ अपने कर्मों की शुरुआत करिए। गणपति बप्पा आपके जीवन के सभी विघ्न को दूर करें, आपको सद्बुद्धि दें और आपके शुभ संकल्पों को सिद्धि प्रदान करें।
0: सिद्धि विनायक की पूजा की विधि हमने आपको बता दी। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अगर कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाए तो पूजा की सफलता तय हो जाती है। चलिए हम आपको उन मंत्रों के बारे में बताते हैं। विशेष मंत्र से करें सिद्धि विनायक की पूजा। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम नमो सिद्धि विनायकाय। सर्व कार्य कर्त्रे। सर्व विघ्न प्रशमनाय। सर्व राज्य वश्याकरणाय। सर्व जन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय। श्रीम ओम स्वाहा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर किसी को ये मंत्र जाप में कठिनाई हो तो गणपति के किन सरल मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, सुनिए।
1: भगवान गणेश के सरल और व्यापक रूप से प्रचलित मंत्रों में आप ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। श्रद्धा और एकाग्रता से इस मंत्र का जप करें और चाहे तो गणेश जी के ध्यान के साथ गणेश गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्।
0: माना जाता है कि बप्पा का ये रूप भक्तों की मन्नत जरूर पूरी करता है। किसी मुसीबत से निजात पानी हो या फिर शुरू करना हो कोई भी शुभ काम, भक्त सबसे पहले सिद्धि विनायक के दरबार में आकर भगवान के सामने शीश झुकाते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सिद्धि विनायक की पूजा अगर सच्चे मन से करें तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। यहाँ पर अर्जी लगाने वाले की हर मर्जी पूरी कर देते हैं बप्पा। तो गणेशोत्सव के पावन पर्व पर सच्चे मन से करें सिद्धि विनायक की उपासना, जिससे गणपति का यह अद्भुत स्वरूप पूर्ण करेगी आपकी सारी मनोकामना।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शक के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने उन वीडियोस को भेजें और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर आपको बता दें सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए ही है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेज रहे तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिख दें। चलिए अब आपको ऐसे प्राचीन गणेश मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसको लेकर मान्यता है कि यहाँ पे भगवान खुद स्थापित हुए। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के चुंदी गणेश मंदिर की, जो अपनी कुछ मान्यताओं को लेकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और अब क्योंकि इन दिनों गणेश उत्सव की जो छटा है वो यहाँ पर बिखरी हुई है, तो बप्पा के दर्शन पूजन के लिए आस्था श्रद्धा भी अपार है।

0: मंदिर में बाप्पा का मनोहारी स्वरूप है, जिनके दर्शन के लिए बाहर लाइन लगी है। ये जैसलमेर का चुंधी गणेश मंदिर है, जहां पूरे मंदिर परिसर में मेला सजा है और आस्था का मानो सैलाब सा उमड़ा है। दुनिया भर में जहां भगवान गणेश के कई मशहूर मंदिर हैं, तो करीब 1500 साल पुराना और चमत्कारिक कहे जाने वाला ये चुंधी गणेश मंदिर भी लोगों की आस्था से ही जुड़ा है। हाल ही में गणेश चतुर्थी पर मंदिर का गर्भगृह एक पारंपरिक पोशाक बागा और फूलों से सजाया गया, तो बप्पा के इस मनोहारी रूप के दर्शन पूजन के लिए भी अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे। मंदिर पहुंची इस भीड़ को देख चुंधी गणेश मंदिर वाले बप्पा को लेकर आस्था साफ झलक रही है। लंबी लंबी कतारों में खड़े आस्थावानों को कोई परेशानी न आए, इस लिहाज से दर्शन पूजन को लेकर भी खास व्यवस्था की गई। वहीं मंदिर परिसर में आयोजित मेले की रौनक भी देखते बन रही थी। यहां आने वाले लोगों के लिए जहां खाने पीने का प्रबंध किया गया, तो मनोरंजन के लिए मेला मैदान में कई तरह के खेल और झूले भी खासकर बच्चों को पसंद आ रहे थे। वैसे यहां आयोजित इस गणेशोत्सव के रंग यूं ही इतने गाढ़े नहीं हो गए। दरअसल चुंधी गणेश मंदिर को लेकर कई पुरानी मान्यताएं हैं। मसलन यहां काक नदी के पत्थरों से प्रतीकात्मक छोटे छोटे घर बनाने पर बप्पा अपने भक्तों को असल घर का आशीर्वाद देते हैं।
1: यहाँ चुंधी गणेश मंदिर आते हैं और घर में भी देखते हुए इतने सालों से घर में जब भी कोई अच्छा काम शुभ काम होता था तो पहले चुंधी गणेश के आशीर्वाद लेने आते थे। और आज मैंने यहाँ पर एक घर भी बनाया है। यहाँ पर ये मान्यता है कि जब भी अपन यहाँ घर बनाते हैं तो जिनके घर बनाने की इच्छा रहती है उनका घर जल्दी बन जाता है।
0: तो वही मान्यता ये भी है कि मानसून के समय जब इस रास्ते पानी का बहाव हद से ज्यादा होता है तो मंदिर परिसर तो डूब जाता है, लेकिन भगवान की मूर्ति अपनी जगह से इंच भर नहीं हिलती। कहते तो ये भी हैं कि यहाँ सिद्ध विनायक की मूर्ति भी पानी के बहाव के साथ ही खुद स्थापित हुई।
2: ये कोई मूर्ति स्थापित की हुई नहीं है, ये मूर्ति कहाँ से आई कैसे आई ये अपने आप में एक अलग ही चमत्कार है। और खासकर एक नदी के अंदर विराजमान है, ये जो नदी है ये काक नदी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो नदी है जो उस नदी के अंदर स्थापित है, तो इसकी एक अपरम अलग ही लीला है। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि कैसी भी कठिनाई मोर यहाँ पहुंच जाता तो उसकी हर कठिनाई दूर हो जाती।
0: इन्हीं मान्यताओं भक्ति और आस्था की बयार पूरे जैसलमेर में इन दिनों बह रही है। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी प्राचीन चुंधी गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक श्रद्धालुओं को आनंदित कर दे रही है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
4: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ये अपने काम को अंजाम दे रहा है वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में यह रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं, लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारियां भी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, मुंबई के लालबाग चौराजा दरबार में भक्तों की कतार, पत्नी संग क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने दर्शन किए।

लोकार्क षष्ठी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हरी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंचे भक्त। सुरक्षा में तैनात किए गए 1000 पुलिसकर्मी। यूपी के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात। मानदेय में 50% की बढ़ोतरी। अब हर महीने मिलेंगे 9000 रूपए। सरकारी स्कूल के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लगे मोतिहारी के डीएम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आईएएस सौरभ सुमन का निराला अंदाज। 1 घंटे तक ली बच्चों की क्लास। कोची में हो सकता है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2027 का ऑक्शन। 28 अक्टूबर से खिलाड़ियों की लगेगी बोली। वेन्यू पर विचार कर रही है बीसीसीआई।

0: बप्पा का दरबार चमत्कारिक योग का उपहार। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। बप्पा का दरबार सजा हुआ है हर ओर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इसी पर आज हम बात करेंगे। देश भर में गणेशोत्सव की रौनक बिखरी हुई है और इसी को लेकर जीएनटी पर सबसे बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। सोमवार को गणेश चतुर्थी पर बप्पा का भव्य स्वागत हुआ। बप्पा पधारे और उसके बाद से एक तरीके से कहा जाए तो आस्था का सैलाब हर जगह पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ जगहों पर बप्पा को विदाई भी दी जा रही है, क्योंकि परंपरा के मुताबिक तिथि के हिसाब से ही हर कोई बप्पा को विदाई देता है। वैसे 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी पर तमाम जो बड़े पंडाल है वो बप्पा को विदाई देते हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों में बप्पा को विराजमान करते हैं, बिठाते हैं, स्वागत करते हैं, वो अपने हिसाब से विदाई करते हैं। तो कल सचिन तेंदुलकर और अंबानी परिवार ने भी मूर्ति विसर्जन किया। वहीं सोमवार को जीएनटी के न्यूज रूम में भी बप्पा पधारे और अब आज विसर्जन हो रहा है और इसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। तो कहां कैसे गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है और इसी के साथ साथ बुध सूर्य की युति भी बहुत खास योग बना रही है, इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद रहेंगे। तो देखा जाए तो गली गली, शहर शहर गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति की जा रही है। प्रतिमाएं भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कहीं अनोखी कलाकारी ने सबका मन मोह लिया है, सबको हैरान कर दिया है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई है। बेहद खूबसूरत ये मूर्ति लग रही है। तो वही वाशिम की तस्वीर देखिए, सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। वहीं सूरत के तापी में भगवान गणेश को कृष्ण का रूप दिया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप का दर्शन कर रहे हैं। काशी से मुंबई के लाल बागचा राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा सजाई गई है। तो वहीं ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों की तस्वीर देखिए, जहां बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। इसमें खास तौर पर यहां एक ही प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूपों को दर्शाया गया है। मतलब यह कि बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा हुआ है और देश के अलग अलग शहर अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक ही। हर तरफ गणपति की जय जयकार, अलग अलग थीम पर सजे पंडाल ये भव्य उत्सव की रौनक को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, हर ओर आस्थामय भक्तिमय माहौल बना हुआ है। गणेशोत्सव पर भी विसर्जन हो रहा है। प्रतिमाओं के विसर्जन का खास महत्व माना जाता है। वैसे आमतौर पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को विसर्जन की परंपरा होती है। अनंत चतुर्दशी तिथि अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। कई जगह पर अनंत चतुर्दशी से पहले विसर्जन किया जाता है और विसर्जन की शुरुआत भी हो चुकी है। मान्यता यह है कि विसर्जन से भगवान फिर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। वेदव्यास ने 10 दिन श्री गणेश को महाभारत कथा सुनाई थी और 10 दिन श्रम के बाद गणेश जी का तापमान बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में स्नान करवाया था। चतुर्दशी तिथि को विसर्जन से गणेश जी शीतल होते हैं, तो इसका काफी महत्व भी है और इसी गणेशोत्सव में बुध आदित्य योग भी बन रहा है। सूर्य बुध की युति होने वाली है। गुरुवार को कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। वैसे अब तक सूर्य अपनी राशि सिंह में है और कन्या राशि में पहले से बुध विराजमान है। अब 18 सितंबर को बुध अपनी उच्च राशि यानी कि कन्या में उदित होंगे। लिहाजा इससे बुध की शक्ति, फल देने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन बदलावों से कई जातकों को फायदा होने वाला है। 26 सितंबर तक ये बुध आदित्य योग रहेगा। बुध 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये समय वाकई बहुत खास बताया जा रहा है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। वान्यार्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए गुड न्यूज टुडे लगातार आपको बप्पा के दर्शन करा रहा है और हमारे स्टूडियो में भी बप्पा पधारे हैं, हमारे ऑफिस में बप्पा पधारे हैं, लेकिन आज विदाई है और विदाई से पहले किस तरीके से आरती हो रही है, किस तरीके से पूजा हो रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त बप्पा के साथ ही हैं।
1: गणपति बप्पा
2: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
2: मोरिया,
1: गणपति बप्पा
2: मोरिया,
1: मंगल मूर्ति
2: मोरिया।
3: तो बिल्कुल जिस तरह से नवजोत ने कहा, आपको बता दें गुड न्यूज टुडे में भी बप्पा पधारे और हम सभी इसी कामना के साथ इस बार बप्पा को यहाँ पर लेकर के आए थे कि भाई हर किसी की जो भी मुराद है बप्पा पूरी करे और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। लेकिन वही बात है, आज विदाई का दिन है, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे हैं, थोड़ी मन में तकलीफ होती है, कैसा लग रहा है अभी बताइए गीतिका।
4: सुबही पंडित जी ने बताया कि जितने धूमधाम से आप बप्पा को लेकर आए उतने ही धूमधाम से उतने ही प्यार के साथ आपको उनको विदा भी करना चाहिए और इस कामना के साथ कि अगले बरस भी वो जल्दी आए।
3: अर्षा गुप्ता,
5: मैं आपको बताऊं जितनी एक्साइटमेंट हमने पहले दिन दिखाई थी ना बप्पा को लाने के लिए, जितने गाजे बाजे और नाच के साथ हम लेकर आए थे वैसे ही हम विदाई करेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़े से इमोशनल हैं क्योंकि जब घर पे कोई मेहमान आता है उनसे आपका प्यार पड़ जाता है, वैसे ही आज बप्पा को विदा करेंगे, ऐसे लग रहा है कि कोई अपना छोड़कर जा रहा है। लेकिन इस मनोकामना के साथ ही अगले बरस ये फिर से आएंगे।
3: तो शगुफ्ता ढोल भी है,
5: ढोल तैयारी सब है, सब नाचेंगे गाएंगे ढोल बजाएंगे, आप वेट कीजिए जरा।
6: लेकिन भावुक तो हो रहे हैं श्वेता, क्योंकि जैसे सब बता रहे हैं ना कि जब बप्पा यहाँ पर पधारे थे तो बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ हमने यहाँ पर उनको विराजमान किया था और आज जब उनका जाने का समय हो गया श्वेता, मन नहीं कर रहा बप्पा जाए।
3: बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता यहाँ किसी से भी आप पूछेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई भी कहे कि नहीं विदाई ठीक है कोई बात नहीं।
5: एक बार ना नवजोत का भी इमोशन पूछना चाहिए। नवजोत, आप भी इस पूरी जर्नी में हमारे साथ हैं, आपका इस टाइम इमोशन क्या है?
0: भावुक, जैसा आपका है वैसा ही हमारा है। और मैं अभी पिछले साल जब विदाई हुई थी मैं वो पल याद कर रही थी, फिर उसके बाद इसकी तैयारी, क्योंकि अगर आपको याद हो आप सब लोग साथ ही थे पूरी तैयारियों में, ये तैयारी जैसे हर जगह पर बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है ना, हमारे यहाँ भी बहुत दिन पहले से इसकी तैयारी हो रही थी, हम कैसे बप्पा लाएंगे क्या लाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि देखिए उत्सव से ज्यादा महत्व उत्सव की तैयारियां रखती हैं, तो जो तैयारियों की एक्साइटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब देखिए विदा करना है तो जाहिर सी बात है कि सभी का मन भावुक है, मेरा भी मन भावुक है।
3: बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तैयारियों की अगर हम बात करें तो देखिए अभी विदाई में समय है क्योंकि अभी अरविंद जी यहाँ पर मौजूद है। अरविंद जी, यहाँ पर आप देखिए हमने पूरी थाल सजा दी है, पूजा की थाली आपने सजा दी है, विशेष करके पहले दिन जब स्थापना होती है भगवान गणेश की, उस दिन जिस तरह से पूजा अर्चना होती है उसमें और आज के दिन में क्या फर्क होता है?
7: जी जी, बड़ा उत्तम प्रश्न किया आपने श्वेता जी। पहले दिन हम जो पूजन करते हैं वो हम पूजन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा का, उनके आवाहन का, उनके जो है यहाँ पे विराजमान होने का। आज हम जो पूजन करेंगे इसको कहते हैं उत्तर पूजन, अर्थात लास्ट का उनका पूजन होगा। तो जो हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित के बाद अब आज जो पूजन करेंगे वो करेंगे विसर्जन का। तो अभी उत्तर पूजन जैसे हम जो है किया और उत्तर पूजन करके इसके बाद जब आप मूर्ति को उठाएंगे, उठाने से पहले आरती करेंगे और आरती के बाद फिर विसर्जन करेंगे। और जो लोग घर में रहते हैं वो लोग हवन करने के बाद जो है फिर आप आरती करें और फिर विसर्जन करें, यही प्रक्रिया है।
3: एक और सवाल आपसे कि आज के दिन क्या क्षमा प्रार्थना जो है वो जरूरी होता
7: बहुत
3: है?
7: बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहते ना कि आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। हे गणनायक, ना मैं आपका आवाहन जानता हूँ, आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, जो गणेश जी का दुर्वा से अर्चन करते हैं मैं वह अर्चन भी नहीं जानता हूँ, और पूजाम चैव न जानामि, जो हम ये पूजन करते हैं रोली मोली अगरबत्ती धूप दीप कपूर नैवेद्य तांबूल आदि चढ़ाते हैं, तो पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा, हे परमेश्वर, हे गजानन, हे गणनायक, मुझे हर तरह से आप क्षमा करना क्योंकि मुझ में वह ज्ञान नहीं है कि मैं आपके पूजन को, आपके आगमन को, आपके विदाई को किसी भी प्रकार से अच्छी तरह से कर सकूं। तो जो मुझसे त्रुटियां हो, जो मुझसे भूल हो, उसको बप्पा क्षमा कर।
5: बिल्कुल। और एक और चीज, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन वही जो मनोकामनाएं हम सबके मन में है कि हमारे सबके विघ्नों को हर ले गणपति बप्पा, और वो इमोशन और भाव जो है ना पंडित जी इस वक्त मन में कि गणपति बप्पा जल्द आए, अगले बरस भी इसी धूमधाम के साथ लेकर आएंगे, और क्या संकल्प हमें लेना चाहिए जब इनकी विदाई करनी चाहिए? तो
7: देखिए विदाई में सबसे पहले तो ये इनकी देखिए विदाई में एक संकल्प जरूर होना चाहिए कि हे प्रभु गणनायक, आप हमें इतनी शक्ति देना कि आपकी भक्ति में कभी हम पीछे ना हट सके। यदि आप उनकी भक्ति करते रहे, कहने का तात्पर्य हृदय में श्रद्धा निष्ठा और आप के हृदय में उनके प्रति जिसको कहते हैं कि समर्पणता की भावना यदि बनी रही तो आपकी मति सही रहेगी। किसी भी व्यक्ति को आप नोट कर लीजिएगा जो धर्म से जुड़ा होगा, जो ईश्वर से जुड़ा होगा, उसकी कभी भी मति भ्रष्ट नहीं हो सकती। और जब मति भ्रष्ट नहीं होगी तब उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। जाको प्रभु दुख दारुण दीन्हा ताकि मति पहले हर लीन्हा। जब व्यक्ति के मति का हरण होता है, उसके विवेक बुद्धि का हरण होता है, तभी उसका विनाश होता है।
4: पंडित जी, जैसा कि आपने बताया था, जो शुभ मुहूर्त में हम बप्पा को लेकर आए थे उसी शुभ मुहूर्त में इनकी आरती होनी चाहिए, इनकी विदाई होनी चाहिए। तो शुभ मुहूर्त जो है शुरू हो चुका है,
7: शुरू हो चुका है, इनकी जो है आरती की शुरुआत करते हैं और आरती बिल्कुल करते हैं, आरती के बाद इनकी जो है विदाई करते हैं। आप लोग कुछ अपना चर्चा करना चाहते हैं?
0: तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीएनटी के बप्पा की विदाई हो रही है। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि शुभ मुहूर्त जो बताया गया वो 4 बजे से 6 बजे तक है, तो इस वक्त अब जैसा पंडित जी ने भी बताया कि पहले आरती होगी और फिर उसके बाद बप्पा की विदाई शुरू होगी। मेरे साथ इस वक्त राज मिश्रा जी भी मौजूद है। राज जी, देखिए हर साल बप्पा आते हैं और हर साल हम कहते हैं कि बप्पा आए हैं धरती के संकट हरने के लिए, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, सबको खुशियां देने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती है। बप्पा तो हर साल आते हैं पर सबकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? कहां पर ऐसी चूक रह जाती हमसे या कौन सी ऐसी त्रुटियां होती जो हम कर देते हैं? देखिए स्वागत किस तरीके से किया जाए वो तो हो गया, लेकिन अब क्योंकि आज हर जगह पर विसर्जन की तैयारियां भी हो रही हैं तो मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि किसी चीज की कमी ना रहे, हमसे कोई कमी ना रह जाए, क्या किया जाए ऐसा बप्पा की विदाई के समय में?
8: नवदुत जी, एक बात सबसे पहले इनको ध्यान रखना होगा इस विषय को लेकर के, जैसा कि हर साल जयंती के द्वारा भगवान गणपति का आवाहन, उनकी विग्रह का आवाहन करते हैं, उनका प्रॉपर पूजन करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। सबसे पहली बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसके लिए जयंती का धन्यवाद करता हूं कि हर बार आप लोग सिर्फ बोलते नहीं है, आप लोग करके दिखाते हैं। जीएनटी वो चैनल है जो एक्चुअली उस चीज को करता है। रावण ने एक शब्द कहा था कि पर उपदेश सकल बहुते जे आचरण चिंते नर न घने रे। एक वो है जो सिर्फ कहते हैं और एक वो है जो जीवन में पालन करते हैं और वही लोगों को दिखाते हैं, वही लोगों को कहते हैं। तो सौभाग्य की बात है कि आप लोग सिर्फ कहते नहीं है, आप करके दिखाते हैं। हम लोग इस समय सौभाग्यशाली हैं जो जीएनटी पर देख पा रहे हैं सामने गणेश जी का पूजन, गणेश जी का उत्सव, गणेश जी का विसर्जन। अब कहां पर गलती होती है? सबसे पहला विषय कि ना तो गणपति आते हैं और ना तो गणपति जाते हैं। भगवान गणेश सदैव हम सबके हृदय में हैं, भगवान गणेश सदैव रहते हैं, सिर्फ हम उनकी विग्रह को लेकर के आते हैं और उनके विग्रह को लेकर के हम विसर्जित करते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या ऐसा करना चाहिए उनके विसर्जन के समय जिससे कि मुझे पूरा फल प्राप्त हो जाए। यह सत्य है कि जितना भगवान गणेश जी की स्थापना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी विग्रह का विसर्जन। वहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अभी जैसा कि अरविंद जी चर्चा कर रहे थे कि प्रथम पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा, अगर तीनों पूजाएं प्रॉपर वे में होंगी तो ही पूजन का फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रथम पूजा होता है जब आप सामग्री भगवान की पूजा की तैयारी करते हैं पूरी तरीके से, मध्यम पूजा होता है जब आप भगवान की पूजा करते हैं प्रॉपर वे में, और उत्तर पूजा होता है जब उनका विसर्जन करते हैं। एक तो विसर्जन के समय सबसे पहला जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि विसर्जन के समय उसी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए जो प्रक्रिया उनका हम लोगों ने स्थापना के समय पर फॉलो किया है
0: जी।
8: प्रॉपर वैदिक विधि के साथ उनका पूरा पूजन, फिर विसर्जन में पान जरूर भगवान गणेश जी के साथ आपको भेजना चाहिए, सिंदूर भगवान गणेश जी के साथ आपको जरूर भेजना चाहिए, सुपारी भगवान गणेश जी के साथ जरूर भेजना चाहिए, दुर्बा भगवान गणेश जी के साथ जरूर भेजना चाहिए और मोदक भगवान गणेश जी के साथ जरूर भेजना चाहिए
0: जी, जी, जी।
8: ये बात जो है ये बड़ा स्पष्ट शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित है जी। नवदुत जी
0: बिल्कुल आती हूँ, एक बार वान्या जी को इंक्लूड कर लेते हैं। वान्या जी देखिए, कहा जाता है कि बप्पा को लाने से ज्यादा, राजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि केवल हम उनका विग्रह लेकर आते हैं, बप्पा तो विराजमान है हर जगह पर हैं, लेकिन लाने से ज्यादा विसर्जन बहुत अहम हो जाता है। जब हम मनोकामना पूर्ति करते हैं, जब हम बप्पा विदाई हो रही है, यहाँ पर भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विदा कर रहे हैं, हम बहुत कुछ मांग लेते हैं लेकिन फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं कुछ ना कुछ। क्यों अहम है विसर्जन? वान्यार
9: जी, तो यहाँ पर जो है आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि किस तरह, इस तरह से होता है कि जैसे राज जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो जो चीजें हम करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है अगर हम कुछ खास चीजों का अगर ध्यान रखें और कुछ त्रुटियां जैसे जो हमसे हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है जब भी आप बप्पा का विसर्जन करते हैं तो इट हैज टू बी फॉलोड बाय कि जो भी जगह है वहां से आप उनको थोड़ा सा खिसका दीजिए, थोड़ा सा उनका स्थान परिवर्तन जो है उस टाइम पर होना जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो ओवरऑल पूजा होती है जो थ्री फेजेस में होती है, हर फेज एक दूसरे फेज को जो है फॉलो करता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो है आपको क्षमा याचना मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप गणेश जी की आरती करते हैं। हम बहुत लकी हैं कि जीएनटी हमें एक एक स्टेप प्रैक्टिकल भी उस चीज का करके दिखा रहे हैं, जैसे आप पूरा जीएनटी जो है पूरा गणपति विसर्जन का पूरा प्रोसेस जो है वो हमें बता रहे हैं। इसमें जो है उनकी आरती जब आप उनको भेजते हैं, जब उनको विसर्जन करते हैं, तो आप उनको अक्षर जो है उनके साथ में जरूर भेजें, दूर्वा जो है वो जरूर भेजें, मोदक जरूर भेजें, उनका खाना जरूर भेजें, साथ में जो है पानी जरूर भेजें। और आप एक मंत्र कर सकते हैं कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, तो आप जो है एक तरफ विदाई करें और एक तरफ आप उनको नेक्स्ट ईयर के लिए इनवाइट जो है वो भी आप कर रहे हैं। इस टाइम पर आपके जो जो आप कपड़े डालते हैं वो बहुत क्लीन और नीट क्लोथ्स होने चाहिए, जो कलर्स होने चाहिए वो ब्राइट होने चाहिए। उस टाइम पर कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, आपने कोई उस दिन ब्लैक कलर ना पहने, कोई भी अल्कोहल वगैरह वो भी ना ले। और उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उस टाइम पर जो आप अपने जीवन से रिलीज करना चाहते हैं, आप बप्पा के साथ अपने जीवन की उन नेगेटिव इमोशंस को भी साथ साथ उनका विसर्जन करना भी जरूरी है। जब वहां से आप बप्पा का विसर्जन कर देंगे तो उसके बाद जो है पहले आप उनकी आरती करेंगे, उनके मंत्र करेंगे, ओम गण गणपते नमः या फिर गणपति बप्पा मोरया, ये आप जब आप मंत्र करेंगे, जब आप उनका विसर्जन कर देंगे तो उस जगह को आप फिर से एक बार क्लीन करेंगे, वहां पर जो है आप फिर से एक बार गंगा जल जो है वो आप जरूर डालेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, जितने आसपास के लोग हैं वहां पर जो है प्रसाद वितरण करेंगे। जब आप विसर्जन करेंगे तो वहां पर मेक श्योर की आपकी फैमिली का एक ईच एंड एवरी मेंबर का प्रेजेंस होना इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपकी फैमिली के सारे मेंबर विसर्जन के लिए जो है वो अवेलेबल है, उसमें जो भी आपका पूरा प्रोसेस है। क्योंकि इस बार जो है ये बुध आदित्य योग में हो रहा है, तो बुध बुद्धि प्लस फेज दोनों का कॉम्बिनेशन, तो अपने बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दिलवाएं, क्योंकि आपके बच्चों का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, जो इंटेलिजेंस है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बप्पा से आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए।
0: बिल्कुल, बप्पा से हम बहुत कुछ मांगते हैं। संजय शर्मा जी, हर साल बप्पा आते हैं, हर साल हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं होती है और हर कोई अपनी अपनी इच्छा चाहता है कि वो पूरी हो जाए और बप्पा उनको वैसा ही आशीर्वाद देकर जाएं। कमी कहां पर रह जाती है? खास तौर पर अगर आज हम मनोकामना की बात करें तो क्योंकि यहाँ जीएनटी पर भी विदाई हो रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों पर बप्पा को लेकर आए हैं घरों में और वो भी विदाई कर रहे होंगे, तो क्या ऐसा किया जाए कि बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दें?
10: शिवंती काम कुलचम भगवाप्त लाप्ते पुण्य गजाल करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी जल मांजलि भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि।
0: संजय जी शायद ऑडियो म्यूट है, एक बार ठीक कर लीजिए और अपनी बात फिर से रखिएगा सर।
10: गृहाणाम परमेश्वर।
0: संजय जी सुन नहीं पा रहे हम आपको। चलिए, ये तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं। देखिए, एक भावुक पल हम सब के लिए भी, क्योंकि बप्पा की विदाई हो रही है। राजमिश्रा जी, यही सवाल आपसे। देखिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए हर कोई बप्पा को प्रसन्न करता है, खुश करता है, भक्ति में पूरी तरह से लीन रहता है, बहुत विधि विधान के साथ बप्पा का स्वागत किया जाता है। विदाई हो रही है, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो तो हमने जान लिया, लेकिन जब हम मनोकामना पूर्ति की बात करते हैं, कैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सबसे बड़ा मंत्र क्या है?
8: देखिए, अगर सबसे बड़े मंत्र की बात की जाए, मैं दोबारा उसी विषय पर आऊंगा कि भगवान गणेश जी ही वो देवता हैं जो जिनको बुद्धि प्रदायक देवता कहा गया है। भगवान राम जी की जब स्तुति कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो कहते हैं मांगत तुलसीदास कर जोरे, और बसहु राम श्री मानस मोरे, हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे राम और सीता की जो भक्ति है उसको प्रदान कर दीजिए। एक दो नियम है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि यदि आपको निष्काम भाव से पूजन करना है, निष्काम कोई कामना मन में नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर यदि कोई त्रुटि रह दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके मन में मोक्ष की भी कामना है फिर आपके साथ पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता, मैं दोबारा श्री रामचरितमानस के उस उपाय का जिक्र करना चाहता हूं, ये कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सब छिद्र भावा। सबसे पहली चीज पूजा का पहला नियम है कि आपके मन की निर्मलता होनी चाहिए। जो आप हस्त क्रिया पूजा में करते हैं, जो हाथ से कुछ अर्पण करते हैं, शारीरिक चीजें जो अर्पण करते हैं, शरीर से जो अर्पण करते हैं परमात्मा, उसको स्वीकार करने के बजाय जो आप मन से अर्पण करते हैं, जो आपका मन कनेक्ट होता है परमात्मा, उसको सबसे पहले स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि विसर्जन पर आपकी ये इच्छा है कि मैं भगवान के विग्रह का जब विसर्जन करूं तो ऐसा आशीर्वाद वो पीछे हमें दे जाए कि हमारी प्रत्येक कामना पूरी हो जाए, तो मैं आपको बहुत ही प्रसन्नता से कह सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप कर्ज की परिस्थिति से किसी प्रकार से पीड़ित हो, यदि आर्थिक परिस्थितियां घर की बेहतर ना हो, तो क्या कीजिएगा, दो सुपारी लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये मैं जो बात चर्चा कर रहा हूं ये बाकायदा शिव पुराण के अंदर वर्णित जो विषय है उसकी चर्चा कर रहा हूं। दो सुपारी लीजिएगा, दोनों सुपारी में पीले सिंदूर लगा करके भगवान को बाकी चीजें अर्पण करना है, फल अर्पण करना है, भोग्य अर्पण करना है, सब कुछ अर्पण करने के बाद दो सुपारी लाल कपड़े में बांध करके जब विग्रह विसर्जन करें तो भगवान गणेश जी के साथ उस दो सुपारी का विसर्जन जरूर करें। मैं सत्य कह सकता हूं भगवान गणेश की कृपा से आपके घर की आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं नवजोत जी,
0: बिल्कुल,
8: अगर
0: बिल्कुल।
8: समय हो
0: जी। मैं लौटती हूँ क्योंकि देखिए राजी आज आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर भी, आज जेएनटी के बप्पा की भी विदाई हो रही है। मेरे तमाम साथी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। शगुफ्ता, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जरा एक बार अरविंद शुक्ला जी से भी ये समझिए कि पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, किन खास बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो इस समय बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वागत में तो बहुत ख्याल रखा जाता है लेकिन विसर्जन की प्रक्रिया, विसर्जन का विधान उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
11: सामने रखती हूँ, उन्होंने कहा है कि स्थापना की ये जो पूरी विधि हम करते हैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, कोई भी चीज हम आज के दिन मिस ना करें स्थापना से पहले, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पूरा ख्याल हमें रखना चाहिए स्थापना के दिन और स्थापना के दौरान?
12: जी देखिये, स्थापना के दौरान जो आपको चीज ख्याल रखनी चाहिए, जैसे आपने अपने घर में बप्पा को बुलाया है तो बुलाने के बाद आप उनकी सेवा का ध्यान रखें। मेन चीज होती है सेवा। जैसे किसी हम अतिथि को बुलाते हैं तो अतिथि का जो विशेष सत्कार करते हैं वही सत्कार बप्पा का होना चाहिए। एक ये, दूसरा ये है कि बप्पा का, देखिए मैंने सुबह भी कहा था, अभी फिर कहूँ कि भगवान शंभु त्रिपुरारी के दो संतान हैं, गजानन गणेश और कार्तिकेय। तो गजानन गणेश को उनने जो क्षेत्र दिया वो दिया उत्तर भारत, और जो उनने कार्तिकेय को दिया वो दिया उनने जो है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में चतुर्थी तिथि से और वो अनंत चतुर्दशी तक जो है रहे, तो इसलिए वहाँ पप्पा का विशेष जो है स्वागत होता है, विशेष उनकी सेवा होती है और वहाँ विसर्जन का विशेष जो है विधान है। वैसे पप्पा का विसर्जन नहीं होता है, ये हम जो है बड़े रूप में तस्वीर का विशेष जो है पार्थिव है, मिट्टी की तस्वीर है, तो इसका विसर्जन कर देते हैं। सूक्ष्म रूप में बप्पा हमारे घर ही रहते हैं, तो अभी हम यही
11: हमारे ही यहाँ
12: विराजमान रहेंगे, तो इसमें हम अभी यही कामना करेंगे, जैसे मंत्र बोलेंगे कि यान्तु देव गणा सर्वे पूजा माधाय मा चला, तो उसमें यही कहेंगे कि आप हमारे घर सूक्ष्म रूप में विराजमान होकर के हमारे हमारे बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। तो जब जिस दिन से लाए हैं और जिस दिन तक रखें उनकी सेवा का ध्यान दें, और कुछ भी नहीं यदि आपसे हो सकता है तो आरती अवश्य करें। आरती सर्वोपरि होती है जिसमें आप अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, जैसे कि आरती में आप जो हमने दीप प्रज्वलित किया यह अग्नि तत्व है, जो हमने धूप जलाया ये आपका वायु तत्व है, और जो शंख और हमने आचमनि से जल का जो है छिड़काव किया ये जल तत्व है, और जो हम पुष्प चढ़ा रहे हैं यह पुष्प मिट्टी से उगता है, ये हमारा जो है ये भूमि तत्व है, और जो कपूर हम प्रज्वलित करते हैं ये आकाश तत्व है। तो एक तरह से आरती में हम संपूर्ण पृथ्वी उनको समर्पित कर देते हैं और उस पृथ्वी के साथ साथ अपने आप को, और कहते भी हैं आरती में कि तन मन धन सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा क्या लागे तेरा तुझको अर्पण। तो कहने का तात्पर्य कि हम सब कुछ अर्पण कर देते
3: जो उन्होंने दिया है
12: जी, तो आरती मात्र से एक तरह से आपका लगभग पूजन हो जाता है।
3: एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी अरविंद जी, जैसे नवरात्र अब आने ही वाला है, नवरात्र के समय में हम घर में भी अगर पूजा करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं,
12: बिल्कुल,
3: लेकिन जब हम गणपति बिठाते हैं अपने घर में तो क्या कोई ऐसी पुस्तिका है या फिर किसी चीज का ऐसा हम पाठ करते हैं या सिर्फ हम आरती करते हैं सुबह शाम?
12: नहीं, जैसे गणपति की तो पूजा, देखिए श्वेता जी, किसी भी पूजन में पूजा होती है, जब भगवती का आप पूजन करेंगे तो उसमें बाकायदे दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, नवान मंत्र का जाप करेंगे, यदि नहीं कुछ होता है तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो भी जिससे बन सकता है। जहां गणपति की बात होती है तो गणपति का एक माला तो व्यक्ति को जपना चाहिए, ओम गं गणपतये नमः। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रामायण में ले चलूं, जब माँ जानकी ने जो है प्रतिज्ञा की कि यह धनुष जो तोड़ेगा मैं उसी को जो है वरण करूंगी, उस वक्त धनुष कोई तोड़ नहीं पा रहा था, तो माँ पार्वती ने भी, वो माँ जनक नंदिनी जानकी ने भी, जब स्वयंवर पे प्रभु राम आते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे गजानन गणेश को ही वो याद करती है कि इसकी जो गरुता है उसको आप हल्का करो। कहने का तात्पर्य कि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने भी गजानन गणेश से कामना की, और ये एक संदेश देते हैं कि इतना विशाल काय शरीर और चूहा जैसी सवारी, तो ये संदेश है कि हमें छोटे से छोटा प्राणी भी उठा सकता है, छोटे से छोटा प्राणी भी मेरे पूजन में वो हो सकता है।
0: बिल्कुल, अरविंद शुक्ला जी हमें बताई रहे बहुत सारी चीजें, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं बप्पा से। एक बार संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, और ये तस्वीरें जीएनटी के बप्पा की विदाई हो रही है, लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ, और ये भावुक पल सभी के लिए है। संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जानना चाहेंगे बप्पा की विदाई के समय किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं आज?
13: जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। कहा जाता है कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या कोई भी स्थापना करते हैं, कहते हैं कि एक तो आप घर पर लाकर गणपति को जो है स्थापित कर लें, और एक होता है पूर्ण रूप से स्थापित करें, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। जब स्थापित होती है मूर्ति तो उसको जो है पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल और फल से, चावल से, सब चीजों में रख करके और पंचतत्व में रख करके और फिर स्थापित किया जाता है। एक मूर्ति हम जो लाते हैं और 12 दिन या 10 दिन के लिए जो त्योहार के ऊपर लाते हैं गणपति की, क्योंकि उससे मोह हो जाता है। जब आप रोज सुबह शाम तिलक करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, और भगवान से देखो आप जब भी मांगोगे हमेशा मिलेगा, क्योंकि हर महीने में जो है चतुर्थी आती है, और ये जो मेन जो है अभी वाला जो फेस्टिवल है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, कि ये दिन जो है गणेश जी के ही होते हैं, और इनमें जब आप प्रार्थना करते हो गणेश जी से, कुछ भी मांगना चाहते हो, जैसे हर एक चीज का एक समय होता है, उसी प्रकार से इस जो समय है वो गणपति के 9 दिन या 10 दिन का जो समय है, इसमें आप जो भी प्रार्थना करते हो या जो भी मांगते हो भगवान को अर्पित कर करके, और कहते हैं कि पहले आपको भगवान को अर्पित करना है और उसके बाद में जो है आपने प्रार्थना करनी है, और सब मंत्रों को बोल करके भगवान के गणेश जी के जो मंत्र हैं उन सब का उच्चारण करके, या गणेश पंच महारत्नम बोलें, या गणेश चालीसा बोलें, या गणेश जी की आरती करें, या ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें, या फिर एक बड़ा मंत्र है गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंत्र है, मंत्र है ओम गणानन्द्वः गणपति गंगवामहे, पियाणान्द्वः पियपति गंगवामहे, निधि नान्द्वः निधिपति गंगवामहे, वसो मम आहं जान।

0: है,
1: तालाब पे
0: एक
1: जब आप
0: माला
1: यहाँ विसर्जित
0: इत्यादि, और
1: करेंगे
0: बड़े
1: तो
0: अच्छे
1: आप
0: तरीके से।
1: पूरे
0: और जब गणेश जी
1: विश्व
0: जाएं तो आप गणेश जी के पीछे
1: को
0: थोड़ा सा जो है जल का
1: विसर्जित
0: छींटा
1: करेंगे।
0: जरूर दें, और अपने घर पर भी जो है कुछ अक्षत जो है एक पात्र में रख करके, गणेश जी के स्थान पर रख करके, और उस अक्षत को जो है अपनी
1: एक
0: रसोई
1: माला,
0: में
1: एक
0: रखें
1: माला नहीं,
0: पीले
1: एक
0: करके
1: माला नहीं
0: अक्षत,
1: दिए हैं,
0: तो उससे आपका साल भर जो
1: माला
0: है अन्न जो है
1: साल भर
0: भरा पूरा रहता है, परिवार में लक्ष्मी का वास रहता है,
1: सब
0: और
1: कुछ
0: गणेश जी की पूर्ण कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहती है। और मैं तो कहूंगा कि सुपारी के गणपति भी जो है एक गणेश जी के साथ जरूर स्थापित कर लें, और उसको जो है साल भर तक अपने पूजा स्थान पर रखें, उससे विशेष करके लाभ की प्राप्ति होती है, मानसिक शारीरिक भौतिक सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। आप देखें जो स्वयं भू होते हैं या जहाँ जहाँ पर निकलते हैं, जैसे आप रणथंभौर कभी गए हो तो वहां पर जो है आप देखेंगे धरती से ही प्रकट हुए, और वहां पे एक आस्था है कि आप अगर वहां पर उनके कथों से जो है आप अगर
2: हम आपको दिखा रहे हैं हमारे जेएनटी ऑफिस में, जहां से अब बप्पा की विदाई शुरू हो चुकी है। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत बप्पा का हुआ था, लेकिन अब ये भावुक विदाई, यहां पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो कि इस वक्त बप्पा के विसर्जन की तकरीबन तैयारी पूरी हो चुकी है, और यहां से अब आगे बढ़ते हुए हमारे तमाम सहयोगी पहले आरती और आरती के बाद फिर अब विसर्जन की पूरी तैयारी। ढोल नगाड़ों के साथ विधि विधान के साथ गुड न्यूज टुडे पर पप्पा पधारे थे, और इस बार और अब विदाई।

0: ऐसे
1: पूरा की तरफ
2: आप ये पीछे करो।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: सूरत में एक और अनूठे गणपति के दर्शन आपको करवाते हैं। यहाँ तापी नदी के बीच कृष्ण रूपी गणेश पधारे हैं, भक्त नाव के जरिए बप्पा की इस अनोखी सूरत को निहार रहे हैं। यहाँ के मछुआरा समुदाय ने तापी नदी के बीच भगवान कृष्ण के जन्म की लीला को जीवंत करने की कोशिश की है।

0: और इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे ये थीम दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरे मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है। तो इस जो आयोजक हैं, जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके दिमाग में आइडिया कैसे आए, किस तरह से यहाँ पर उनकी स्थापना की गई है, ये जो स्थापना आपने तापी नदी में क्यों की है और इस थीम को कैसे लेके आए।
1: 2006 से पहले सूरत शहर में टाइम टू टाइम बाढ़ आती रहती थी। उसके बाद हमारे मंडल के सभ्यों के द्वारा एक प्लान लिया गया कि हम लोग तापी नदी के अंदर गणपति की स्थापना करते हैं और गणपति जी को प्रार्थना करते हैं कि सूरत शहर को बाढ़ से बचाए और सुरक्षित रहे। उसके बाद हमने मंडल के द्वारा स्थापित करते हैं हमारा 20वां साल है। और तापी नदी के अंदर हम लोग, ये हमारी तापी माता है, हम मछुआरे की और हमारी जीवा डोरी समान है, इसीलिए हम सब मछुआरे तापी नदी के अंदर तापी का जन्म उत्सव होता है, मत्स्य विश्व परिषद दिन होता है और ये गणेश जी का सब टेबल तापी नदी के अंदर हम लोग करते हैं। और ये प्लॉटिंग है जो हमने तापी नदी को बीच बिछाया है, उसको चारों ओर से लंगर बांधा और बीच में मैनुअल हमको एडजस्ट करते, इसीलिए प्रतिमा भी एक ही जगह रहती है।
0: अच्छा, तो जब आपको यहाँ पर पूजा पाठ करना होता है तब कैसे यहाँ पहुँचते हैं?
1: हम सुबह और शाम हमारे मंडल के सभ्यों के द्वारा नाव से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और किसी और को लेके नहीं आते, हमारे खाली मंदिर के सभ्य ही आते हैं तापी नदी के बीच में, क्योंकि पानी की गहराई ज्यादा है, इसीलिए दर्शन लोग के लिए ऊपर प्लेटफॉर्म बना है, वहीं से आप दर्शन कर सकते हैं लोग सब।
0: अच्छा, और इसको रोक कैसे रखा है कि पानी नदी का जो पानी है वो तो बह रहा है, तो उसमें कैसे रोक रखा है?
1: ये फाइबर का प्लेटफॉर्म है एयरटाइट, जो पानी नदी के ऊपर सहलाई से तैर सकता है, पर हम लोगों ने चार अलग अलग दिशाओं में एंकर डाला है जमीन पानी के नीचे और वो और जो रस्सी होती है उससे बैलेंस किया हुआ है।
0: तो इस थीम को आपने क्यों यहाँ पे बनाया, क्योंकि हमने पंडाल में भी आपकी इस थीम को देखा है, तो क्या बताने की, क्या संदेश देने की कोशिश की गई?
1: हम वही सोच के ये थीम बनाया कि जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो जन्म कैसे हुआ था वो सब लोग को पता चले, खाली कृष्ण जन्म हुआ था वही पता है, पर कृष्ण जन्म होने से पहले जो 6 बच्चों को जन्म हुआ था वो मामा कंस ने हत्या कर दी थी, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और श्री कृष्ण भगवान ने जेल में जन्म होने के बाद वासुदेव यमुना पार करके गोकुल ले गए थे, वही हम लोग दिखाना चाहते थे कि इसी तरह कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और यही कृष्ण भगवान के स्वरूप में हमने गणपति लाया है। और ये तापी में पूरे लोग को हम संदेश देना चाहते हैं कि तापी नदी को एकदम स्वच्छ रखो पहले की तरह।
0: और विसर्जन की प्रक्रिया क्या होगी इसकी, फिर विसर्जन की?
1: हम ये मूर्ति का विसर्जन नहीं करते हैं, हर साल हम लोग मूर्ति किसी और मंडल वाले को या कुछ चाहिए उसको हम डोनेट कर देते हैं, हम विसर्जन नहीं करते।
0: सूरत में तापी नदी में मछुआरा समाज द्वारा अनोखे प्रकार से भगवान गणेश की भक्ति और आराधना तापी नदी के मध्य में की जा रही है। संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे, सूरत।
2: तो गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी बप्पा पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे, गजानन का वीडियो या फिर फोटो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें अपना वीडियो फोटो भेज सकते हैं, नंबर है 7303409922। एक बार फिर से सुन लीजिए, 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, सिर्फ वीडियो और तस्वीर भेजने के लिए। तो जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए जीएनटी न्यूज रूम में बप्पा और उसके बाद आज बप्पा को विदाई दी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग, मुझे और दीपिका को छोड़ के आप सभी लोग बप्पा को विदाई देकर आए हैं। पहले तो आप सबसे हमने तस्वीरें लगातार दिखाई हैं, लेकिन अब क्योंकि ये सब स्टूडियो आ चुके हैं तो एक एक रिएक्शन एक एक इमोशन जो आपके थे वो बताइए।
5: मुझे जो मेरा सच्चा इमोशन इस वक्त ये है कि बप्पा आएंगे अगले साल, और इस साल जो मैंने उनके साथ मनोकामना की है, जो मेरी कामना दिल की थी कि हम सबके विघ्नों को अपने साथ ले जाएं और अगली बार एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे पास दोबारा से आए।
6: मुझे भी यही लगता है ना शगुफ्ता, कि जितने विघ्न आए हैं ना जीवन में इस साल अब तक वो सब हटा दीजिए, सब हर लीजिए, और अब अगले साल जब आएंगे तो हम खुशी खुश मिलेंगे।
1: बिल्कुल,
7: आप लोगों ने सारी बातें तो कह दी।
1: इमोशन बताओ।
7: मेरा इमोशन ये कि दुख तो थोड़ा हो रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, जैसे कि आपने भी न्यूज रूम से मतलब स्टूडियो से आपने कहा था कि तैयारी में बहुत ज्यादा टाइम हम लगाते हैं, लेकिन हाँ जब बप्पा जाते हैं तो तकलीफ होती है। बप्पा से यही कहूंगी और यही कहा है कि आगे अगर थोड़ी बहुत परेशानियां जीवन में आए भी तो इतने मजबूत बनाए रखो कि आप उसको पार कर ले, वो जरूरी है।
1: दीपिका क्या फीलिंग है? दर्शन तो आपने भी किए हैं।
8: दर्शन मैंने भी किए और मैंने इनको डांस करते हुए भी देखा, जो जोश था ना इन लोगों में वो स्क्रीन पर भी नजर आ रहा था, क्योंकि बहुत मजे कर रहे थे।
7: महाराष्ट्र की कमी पूरी कर दी यहाँ पे, लग नहीं रहा था कि
8: आपने मुझे बोला था ना कि महाराष्ट्र की कमी फील होने नहीं देनी चाहिए, तो मैंने पूरा ट्राई किया कि फील होना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नवजोत मन तो कर रहा होगा यहाँ नाचने का,
1: लेकिन स्टूडियो की जिम्मेदारी दी गई थी, बहुत इम्पोर्टेंट था, आप लोग अब वहां थे और यहाँ से बुलेटिन भी करना था, वो भी इम्पोर्टेंट था, तो ये जिम्मेदारी मैंने संभाली थी। बट मेरा एक बात मैं सीधे कहूंगी कि मैं ये मान के चलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहां पे मौजूद हो, जो मन के भाव है वो पहुंच जाते हैं। आई एम श्योर बप्पा ने स्टूडियो से मेरे मन के भाव पढ़े होंगे, तो कैसा रहा बप्पा का आगमन जीएनटी स्टूडियो में और कैसी रही विदाई आगे आपको दिखाएंगे।
7: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, बॉलीवुड में बप्पा का स्वागत इस बार भी पूरे जोश और धूमधाम से हुआ, जैसे हमने किया। तो सितारों ने गणपति की आराधना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जैसे हमने भी नहीं छोड़ी। लेकिन अब जितने भी अब जो है हर घर में बप्पा जो है वो लाए गए उल्लास के साथ, लेकिन उतनी ही श्रद्धा और भावना के साथ उन्हें विदाई भी दी जा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको।
8: ट्रस्ट मी, कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, पूरी कोशिश की है कि अपनी पूरी एक्साइटमेंट और जान डाल दे।
1: अच्छा, एक चीज सॉरी मैं रोक रही हूँ आपको, एक्साइटमेंट इनकी इतनी ज्यादा है कि इनको स्टूडियो का एसी भी कम लग रहा है।
8: पसीने क्योंकि टचअप तो हुए नहीं, सीधा उधर विदाई करके हम पधार गए हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए, गणपति के ऐसे अनोखे साधक हमारी तरह ही हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनके लिए बप्पा सिर्फ उत्सव नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। इनके घर में गणपति की एक दो नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद हैं। आपको उस घर की सैर करवाएंगे हम।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो गणपति का विसर्जन तो हो गया है, तो आस्था की तस्वीरें होंगी और बात मऊ की उस नन्ही बच्ची की भी आज हम करने जा रहे हैं जिसने अपनी हिम्मत और मासूमियत से डीएम के सामने सड़क की गुहार लगाई है। सड़क बनी और अब उसे ये तोहफा देने खुद डीएम उसके घर पहुंचे, ये खबर क्या है उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे।
7: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, बात उस हनुमान अंश की भी होगी जिसका चमत्कार बड़े पर्दे पर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म की कामयाबी के बीच अब इसके ओटीटी राइट्स को लेकर जबरदस्त हलचल है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: ढोल नगाड़ों के साथ जीएनटी न्यूज रूम में पधारे बप्पा की विदाई। अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन। जीएनटी संघ मनाइए उत्सव के रंग। देश भर में गणपति उत्सव की रौनक। मुंबई के लालबागचा राजा दरबार में भक्तों की कतार। पत्नी संग क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने किए दर्शन। काशी में लोकार्क षष्ठी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंचे भक्त। सुरक्षा में तैनात किए गए 1000 पुलिसकर्मी। यूपी के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात। मानदेय में की 50% की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए। सरकारी स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाने लगे मोतिहारी के डीएम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आईएएस सौरभ सुमन का निराला अंदाज। 1 घंटे तक ली बच्चों की क्लास। कोची में हो सकता है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2027 का ऑक्शन। 28 अक्टूबर से खिलाड़ियों की लगेगी बोली। वेन्यू पर विचार कर रही बीसीसीआई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: गणपति उत्सव के बीच अब बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अभी अभी हमने भी विसर्जन किया है और अब स्टूडियो में हम पहुंच चुके हैं। मन थोड़ा सा भारी है लेकिन ऐसा ही होता है। अगले बरस वो फिर से आए, सबके लिए खुशहाली का संदेश लेकर आए। इसी कामना के साथ गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन कई घरों में विराजे बप्पा को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ विसर्जित किया जा रहा है। बप्पा के आगमन पर जहां घर घर में खुशियां छाई, वहीं अब विदाई की बेला में भक्तों के दिल भावुक हैं।
1: और जीएनटी की टीम ने भी अपने गणपति को आज धूमधाम से विदा किया है। वैसे तस्वीरें देखिए कि कितना जोश था हमारी टीम में जब बप्पा को विदा कर रहे थे। भावुक तस्वीरें भी हैं और जोश भी है। वहीं बॉलीवुड सितारे जिनके घर बड़ी धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन हुआ और अब वक्त है उनके विसर्जन का, विदाई का, जश्न से भरपूर वो तस्वीरें भी। सलमान अपने भाई सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे। अंबानी परिवार ने भी विधि विधान धूमधाम के साथ बप्पा की विदाई की और विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार भक्ति में सराबोर नजर आया।

0: तस्वीरें देखी ना, कोई खोर कसर हमने छोड़ी नहीं है। विंडो जो सेंटर वाली थी उसमें साफ नजर आ रहा था कि किसमें भर भर के जोर से इस टाइम कौन एक्साइटेड है। वैसे देखिए, मैं इसमें इस त्योहार में ना स्पेसिफिकली बॉम्बे से जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि ऐसे त्योहारों में ना सब एकजुट हो जाते हैं। जीएनटी नहीं लग रहा था, जीएनटी ऐसे लग रहा था एक छोटा सा परिवार बन गया है और सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई है ना कि किसी को ये कहा, किसी को वो कहा, ये सब चीजें परे हो गई थी। बट ये था कि तुमने कर दिया, तुमने कर दिया, बप्पा आ गए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ।
1: बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त शुरू हो चुकी है ढोल नगाड़ों विदाई,
0: वो देखिए आपके पसंदीदा चैनल जीएनटी पर भी गणपति बप्पा का पूरे जोश और धूमधाम के साथ इस पूरे सेलिब्रेशन को हमने सेलिब्रेट किया है। गणपति बप्पा की विधि विधान के साथ स्थापना हुई, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ न्यूज रूम में भक्ति का माहौल बना। जीएनटी की पूरी टीम इस पावन उत्सव का हिस्सा बनी। किसी ने आरती में हिस्सा लिया, किसी ने बप्पा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।
2: बिल्कुल, देखिए न्यूज रूम की भाग दौड़ तो होती ही रहती है और इस भाग दौड़ के बीच, इस केओस के बीच कुछ पल ऐसे भी आए जब हर कोई बप्पा की भक्ति में रंग गया और ये जो तस्वीरें हैं वो उसी को बयां कर रही है। देखिए गणपति के जयकारों से गुड न्यूज टुडे का पूरा माहौल भक्तिमय उठा और हर चेहरे पर नजर आया उत्साह, उमंग और बप्पा के प्रति अटूट आस्था का।
3: सुनिए, ढोल की थाप भी सुनिए और शंगुप्ता ने जो जयकारे लगाए वो भी सुनी।
2: उसके बाद गला बैठ गया, इतने ज्यादा जोर से जयकारे लगाए और हम सबसे भी लगवाए शंगुप्ता, मुझे लगता है जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है।

0: दीक्षा गुप्ता, कैसा लग रहा था? और ये जो आपने किया, ये आपका शगुप्ता, मैं बोलूं ये आपका ना बिल्कुल अलग रूप है, पूरे साल ना नहीं दिखता है लेकिन इस समय दिखता है,
1: दिवाली पे नजर आ
2: रहा है। मैं कह रही हूँ आपने मुझे पार्टीज में देखा नहीं है क्या
0: जाने, लेकिन ये जो गणपति के समय उत्साह है ना आपका, मराठी समय देखने, मराठी
1: ये फेस्टिवल है ना, वैसे एनर्जी वैसे ही आपकी डबल हो जाती है।
3: और आपको कॉम्प्लीमेंट गीतिका भी कर रही है, हम गीतिका को बोल रहे हैं वो भी पूरा कॉम्प्लीमेंट, ये
1: गीतिका ने
0: वो भी मुंबई रही ना,
1: इक्वल जिम्मेदारियां हम सब ने जो जो रोल दिए गए थे बहुत अच्छे से निभाए,
3: उसी का शुरू हो चुकी है आपके साथ। सरगम कुछ कहना चाहिए?
4: मैं तो ये कह रही हूँ मेरा तो पहली बार था यहाँ पर और मजा आ गया शगुफ्ता, और मेरी तारीफ करिए, मैं ये कहूंगी मैं शगुफ्ता के साथ इतना जमकर नाची हूँ आज।
3: मैं उस पे आने वाली थी कि शगुफ्ता का साथ देने में, देखिए पिंक साड़ी वाली जो लड़की है ना उसने
1: देखो पता क्या है, कई बार ना एक बंदा नाचता है फिर दूसरों को हेजिटेशन होती है, फिर दूसरा एक चेन बन जाती है, ह्यूमन चेन है,
3: हमारे
1: बंदे के रिएक्शंस
3: पकड़ पकड़ के डांस करते
1: हैं, हमें तो वैसे ही आ जाता है ना, ढोल शुरू नहीं हुआ कि हम शुरू हो गए,
0: फ्रेम से बीच बीच में बाहर है कि वो पकड़ के लाए लोगों को,
2: इधर आओ, मैंने देखा था आप लोगों को पकड़ पकड़ के ढूंढ रही थी कौन रह गया है।
3: एक सेकंड, बॉयज कहाँ थे हमारी टीम के,
2: उन्हीं को तो पकड़ रही थी,
1: मैंने किसी को वैसे ट्राई किया कि कोई छूटे ना, ये मैंने कोशिश की है यार।
3: बहुत ही खूबसूरत,
1: आई थिंक कलर्स बहुत अच्छे लगे,
0: बहुत ही
1: कलर कॉम्बिनेशंस,
0: और हमने पूरी कोशिश की इस बार कि हम इको फ्रेंडली गणपति ही लाए, और देखिए हमने प्रांगण में ही ऑफिस का जो प्रमाइसिस है वहीं पे हमने विसर्जन भी किया, तो पूरी गुड न्यूज टुडे की टीम इस वक्त मौजूद थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जैसा कि आपको हमने दिखाया भी हर एक जो हमने पूजा पाठ जितनी भी प्रक्रियाएं थी सब कुछ हमने दिखाई, तो पूरे विधि विधान के साथ बप्पा के स्थापना से लेकर विसर्जन तक हमने यहां पर किया, और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरी टीम ने एकजुट होकर इसमें हिस्सा लिया।
3: चलिए ये तो गुड न्यूज टुडे की बात हुई, वैसे पूरे देश की बात कर लें तो हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात में तो गणपति पूजा का अद्भुत उत्साह दिख ही रहा है, लेकिन मुंबई में तमाम सितारे इस वक्त बप्पा की आराधना में लीन है और कुछ जगहों पर गणपति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है।
0: बिल्कुल, आपको बता दें कि सलमान खान अपने भाई सोहेल खान और बहन अर्पिता के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए, शिल्पा शेट्टी और डेजी शाह ने भी बड़े धूमधाम से गणपति को विदाई दी, सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही पूरे विधि विधान से बप्पा का विसर्जन किया।
5: सोहेल खान, अर्पिता शर्मा समेत सभी श्रद्धालुओं ने बारी बारी से बापा की आरती की। इस साल खान परिवार ने सोहेल खान के घर पर गणेश चतुर्थी का आयोजन किया था। सोहेल खान के बिल्डिंग परिसर में हुए गणेश विसर्जन में पूरा खान परिवार शामिल रहा और पूरी भक्ति और श्रद्धा से बापा को विदाई दी। हर साल की तरह शिल्पा शेट्टी के घर भी बापा पधारे थे। शिल्पा ने भी एक दिन पहले बापा का विसर्जन कर दिया। विसर्जन के दौरान शिल्पा पीली साड़ी में नजर आईं। उनके साथ परिवार के लोग भी मौजूद रहे। शिल्पा ने पूरे भक्ति भाव के साथ बापा की पूजा की और उन्हें विदाई दी। इस दौरान शिल्पा ने पेपराजी के साथ जमकर डांस भी किया। अनन्या पांडे ने अपने घर में ही बापा की मूर्ति का विसर्जन किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने गणपति की आराधना कर घर की छत पर ही उनका विसर्जन किया। गोविंदा भी अपने बेटे के साथ गणपति बापा को विदाई देने पहुंचे। बेटे के साथ मिलकर गोविंदा ने पूरे भक्ति भाव से बापा का विसर्जन किया। इस दौरान गोविंदा हाथ जोड़कर बापा की भक्ति में डूबे नजर आए।
6: गणपति भगवान की जो प्रार्थना की है और शुभेच्छा प्रदान करता हूँ मैं, और हम सब पे कृपा रहे, किसी प्रकार का कष्ट बाधा और तकलीफ नहीं आए, खास तौर पे यश और टीना बहुत अच्छे से आगे निकल पाए, किसी प्रकार का कष्ट बाधा नहीं आए और विघ्न हरता है वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है वो सदैव कृपा रहे, गणपति बापा से यही प्रार्थना है। गणपति बापा मोरिया मूर्ति मोरिया रे बापा मोरिया रे।
5: गणपति उत्सव का रंग डेजी शाह के घर में भी दिखाई दिया। डेजी शाह ने गणपति विसर्जन के दौरान महाआरती की। इस दौरान परिवार के अलावा उनके रिश्तेदार भी मौजूद रहे। डेजी खुद अपने हाथों में इको फ्रेंडली बापा को उठाकर कार तक लाई और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बापा को विदा किया। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आई।
7: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज मेक श्योर कि आप इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति लाए, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। एंड या जस्ट डू गुड, बी गुड टू योर सेल्फ, टू द एनवायरमेंट, टू द पीपल अराउंड, दैट्स अबाउट इट। आप अच्छे रहेंगे तो अच्छी चीजें अपने आप अपने साथ होगी।
5: सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही मूर्ति विसर्जन किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने गणपति की आराधना की। पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए, बप्पा के विसर्जन की तैयारियां भी लगातार शुरू हो गई है। मुंबई में कई जगह ऐसी हैं जहां पर विदाई समारोह भी शुरू हो चुका है। जेएनटी में भी बप्पा अब जा चुके हैं और अगली बार दोबारा आएंगे और खूबसूरत बप्पा लेकर आएंगे आप लोग। तो देखिए, मुंबई में गणपति बप्पा की विदाई का दौर जारी है, लेकिन जब बात अंबानी परिवार के इंटीलिया चराजा की होती है तो भक्ति के साथ भव्यता अलग नजर आती है। उनकी विदाई की वीडियोज आपने देखी, कितने ग्रैंड तरीके से वो लोग करते हैं, वो अलग ही रौनक होती है।
1: लार्जर देन लाइफ ही करते हैं जो, बिल्कुल है ना, पूरा घर परिवार साथ में आ जाता है और बॉलीवुड वाले वहां नजर आते हैं।
0: उनमें दिव्यता के साथ भव्यता होती है।
3: हमने अनंत की बिग फैट वेडिंग
1: कितनी कवर की,
3: बिल्कुल
1: हमने कोई तस्वीर छोड़ी नहीं थी वैसे, है ना, वैसी तस्वीर। आई थिंक परफॉर्मेंस देखी ना, परफॉर्मेंस देखी उनकी, राधा
0: का भरतनाट्यम।
1: मुझे पता क्या लगता है, इनको वैसे टाइम मिलता नहीं होगा क्योंकि इतनी प्रेपरेशन और इतने फंक्शन होते हैं इनके। एंटीलिया की चर्चा भी अगर हम करने पे आए ना, चार पांच लड़कियां, तो हमारे पास बहुत पॉइंटर्स हैं। पांच दिन के शोज तो निकाल देंगे, लेकिन
3: एक घंटा पूरा निकल जाएगा।
1: हाँ, आराम ना। देखिए, सितारों से सजी महफिल की तस्वीरें यहाँ से निकल कर आई, फूलों रोशनी से आलिशान एंटीलिया जगमगाया, ढोल नगाड़े यहाँ पर भी सुनाई दिए। बप्पा की विदाई कैसे हुई वो दिखाते हैं आपको।

मुंबई में जब गणपति विराजते हैं तो माया नगरी का हर कोना भक्ति और उत्सव के रंग में रंग जाता है। और जब बापा का स्वागत होता है अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में, तो भव्यता के साथ साथ आस्था का रंग भी देखते ही बनता है।

0: कई दिनों तक चले गणपति उत्सव के बाद अब बारी थी प्यारे बापा को विदाई देने की। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जयकारों के बीच अंबानी परिवार ने पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ गणपति को विदाई दी। विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार भक्ति में सराबोर नजर आया। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी बापा की भक्ति में जमकर झूमे तो ईशा अंबानी और श्लोका मेहता ने भी उत्सव में खूब रंग जमाया। नीता अंबानी गणपति बापा मोरिया के जयकारे लगाती रहीं। एंटीलिया से बापा को जिस अंदाज में विदाई दी गई, वो भी अपने आप में खास थी। भगवान गणेश की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाए गए रथनुमा फ्लोट पर विराजमान किया गया। फूलों और सजावट से सजे इस फ्लोट के साथ परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मेहमान आगे बढ़े। चारों तरफ बापा के जयकारे गूंजते रहे। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। हर तरफ गणपति बापा की भक्ति का रंग नजर आया। बापा की विदाई के दौरान नीता अंबानी भी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रथ पर नजर आईं। चेहरों पर खुशी थी, दिल में बापा के लिए श्रद्धा थी और आंखों में अपने आराध्य को विदा करने का भाव। एंटीलिया का ये गणपति उत्सव केवल सितारों की मौजूदगी या भव्य सजावट की वजह से खास नहीं था, बल्कि इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस पूरे उत्सव में अंबानी परिवार की परंपरा, आस्था और पारिवारिक एकजुटता की झलक दिखाई दी। इस साल एंटीलिया में गणपति उत्सव का स्वागत 13 सितंबर को किया गया था। परिवार बापा को प्यार से एंटीलिया चा राजा भी कहता है। विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए एंटीलिया को फूलों और रोशनी से बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया और विधि विधान से पूजा की गई। एंटीलिया में गणपति उत्सव का हर रंग देखने वालों का ध्यान खींचता रहा। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक कई नामी हस्तियां अपने परिवार के साथ अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में शामिल हुईं। मेहमानों ने सोशल मीडिया पर एंटीलिया के अंदर की झलकियां भी साझा की। बापा की पूजा से लेकर खूबसूरत सजावट और सितारों से सजे समारोह की तस्वीरें और वीडियो नजर आए। तमाम चकाचौंध के बीच सबसे खास रहा बापा के प्रति अंबानी परिवार का समर्पण। स्वागत से लेकर विदाई तक हर रस्म में दिखी श्रद्धा, हर जयकारे में दिखा उत्साह और विसर्जन के वक्त हर चेहरे पर था एक ही भाव, गणपति बापा मोरिया। अगले बरस तू जल्दी आ। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वैसे देखिए, इस बार बप्पा के इस उत्सव में ना आस्था के साथ अनोखी कलाकारी भी देखने को मिल रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में बप्पा को अलग अलग रूपों और अनूठे अंदाज में सजाया गया। कहीं पूजा सामग्री से बनी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है, कहीं पंडाल में गणपति के 101 स्वरूपों के दर्शन हो रहे हैं।
2: बिल्कुल, कहीं लकड़ी से तैयार किए गए भव्य महल में बप्पा का दरबार सजाया गया है तो कहीं गणपति पंडाल में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो लौंग इलायची से बप्पा की प्रतिमा खासतौर पर तैयार की गई है।

0: ये बाप्पा की भक्ति के रंग है, हर ओर गणपति बाप्पा मोरिया का जय घोष है। हर भक्त की आंखों में बाप्पा के दर्शन की आस है, हर दिल में गणपति के स्वागत का उल्लास है। गणेशोत्सव पर घर घर गणपति विराजे हैं, हर सुबह पर एक ही नाम है, गणपति बाप्पा मोरिया। शहर शहर भव्य पंडाल सजे हुए हैं। इन पंडालों में बाप्पा की अनोखी प्रतिमाएं अपनी भव्यता और कलाकारी से सबका मन मोह रही है। आस्था के साथ कलाकारी भी दिल जीत रही है। महाराष्ट्र के वासिम में गणपति बाप्पा का ये अनोखा रूप हर किसी का ध्यान खींच रहा है। यहाँ एक गणपति पंडाल में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग इलायची से बाप्पा की प्रतिमा तैयार की गई है।
1: इको फ्रेंडली जो गणेश है वही हम स्थापन करते हैं, तो उस पर हम लोग विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस बार हमारे यहाँ पान में जो यूज करते हैं हम सौंफ, सुपारी, लवंग, इलायची, धनिया डाल, और इसका हमने इस बार गणेश जी की स्थापना की है।
0: बेहद आकर्षक दिखने वाली बाप्पा की इस अनोखी प्रतिमा का वजन करीब 70 से 80 किलोग्राम है। सबसे खास बात तो ये है कि इसे तैयार करने में 15 से 20 दिनों का वक्त लगा है। ये भव्य दिव्य नजारा अकोला के 90 साल पुराने गणपति पंडाल का है, जहां लकड़ी से तैयार किए गए भव्य महल में बाप्पा का दरबार सजा है। आभूषणों से हुआ गणपति बाप्पा का दिव्य श्रृंगार उनकी भव्यता को और बढ़ा रहा है।
2: के 90 साल पुराने रहे मारवाड़ी प्रेस गणपति बाप्पा की ये भव्य आरती आप देख सकते हो कि यहाँ पर चल रही है। भव्य मूर्ति यहाँ पर है, इसकी सजावट जो है बहुत ही सुंदर तरीके से की, लगभग 15 फीट की ये जो मूर्ति है उसकी सजावट भी बहुत अच्छी तरीके से की है। यहाँ से सबसे अहम बात है कि इस वक्त तो है ये लकड़े का महल यहाँ पर बनाया गया है, ये अच्छी तरीके से इको फ्रेंडली माना जा रहा है।
0: पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्टविनायक के दर्शन तक की झलक देखने को मिल रही है।
2: कि इस पंडाल में आएंगे तो इस पंडाल में जो है वो आपको अष्टविनायक के दर्शन होंगे। मानो महाराष्ट्र में जो आज गणेश है वो अष्टविनायक के दर्शन होंगे, और साथ ही जो है यहाँ पर गणेश जी की जो उत्पत्ति हुई है, गणेश जी कैसे जन्मे थे, गणेश जी की कथा, बालपन के उनके उत्पत्ति की क्या है, ये सभी जो है ये यहाँ पर बताया गया है।
0: इसी तरह छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी गणपति बाप्पा के 101 रूपों के दर्शन हो रहे हैं। एक ही पंडाल में गणपति के अलग अलग स्वरूप, हर रूप में बाप्पा की अलग छवि और अलग भव्यता नजर आ रही है।
3: एक से अधिक शुरू से ही हम लोग ये मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं, और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो एक मूर्ति स्थापित की गई थी उसके द्वारा लोगों को जोड़ा था। हम लोग जो है एक से अधिक मूर्तियों को उनके अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे ला करके बैठाते हैं। विदेशों से भी यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की जाती है।
0: इस पंडाल में 10 फीट ऊंची मुख्य गणेश प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। गणपति के इन 101 रूपों में भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी नजर आ रहा है।
4: छत्तीसगढ़ का इस्पात नगरी भिलाई का हुड़को सेक्टर महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल के द्वारा गणेश पूजा धूमधाम से की जा रही, वो भी इको फ्रेंडली गणेश। जो मुख्य गणेश की मूर्ति है वो 10 फीट है, और यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ भक्तों के द्वारा 101 गणेश विभिन्न आकृतियों की इको फ्रेंडली रखी गई है।
0: गणपति उत्सव के मौके पर हर जगह बाप्पा की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इन पंडालों में भक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा है। हर भक्त बाप्पा से यही प्रार्थना कर रहा है कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हर घर में सुख समृद्धि आए। भिलाई से रघुनंदन पंडा, अकोला से धनंजय साबले और वासिम से जका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भक्ति का एक ऐसा अनोखा रूप सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। यहां एक ही घर में गणपति की 5000 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं।
6: और देखिए, शहर के उत्कर्ष स्टेट में रहने वाले सीए राजकुमार शाह ने अपने घर को ही गणेश जी की प्रतिमाओं के संग्रहालय में बदल दिया है। पिछले 23 साल से गणेश प्रतिमाएं जुटाने वाले राजकुमार शाह के पास आज 5000 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं। खास बात यह है कि इनमें देशी नहीं विदेशों से लाई गई प्रतिमाएं भी शामिल हैं।

0: अलग अलग आकार, डिजाइन और रंग की इन गणेश प्रतिमाओं का ये अनोखा संसार 23 साल की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। गणेश प्रतिमाओं से जुड़ी ये कोई दुकान नहीं है, बल्कि ये एक अनोखा म्यूजियम है, जहां 1000-2000 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा गजानन की मूर्तियों को एक छत के नीचे सहेज कर रखा गया है। यह अनोखा म्यूजियम बनाया है उत्कर्ष स्टेट में रहने वाले सीए राजकुमार शाह ने, जिन्होंने अपने घर को ही संग्रहालय में तब्दील कर दिया है।
1: कौन कौन सी कंट्रियां जहाँ से आप ये मूर्तियां?
2: सर, मैक्सिमम तो हिंदुस्तान में बॉम्बे, पुणे, जयपुर, उदयपुर, बैंगलोर, मैसूर, कोलकाता, इंदौर, और बाहर से हम लोग लेके आए हैं थाईलैंड, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, बाली, वहाँ से हम लेके आए। गणेश कलेक्शन जो है, हर भगवान का एक स्वरूप होता है, बट सिर्फ गणपति भगवान ऐसे हैं जिनके एन नंबर ऑफ स्वरूप हैं। तो दैट्स द रीजन कि भाई कलेक्शन जो है वो सिर्फ गणपति का हो सकता है। राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, तो वो एक उनका एक स्टाइल होता है, बट गणेश ऐसे हैं कि कुछ भी स्टाइल आप देखें, यहाँ पे भांगड़ा करते हुए गणपति है, सिंथेसाइजर बजा रहे हैं, डॉक्टर गणेशा है, बाला साहब ठाकरे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, साईं बाबा है, तो गणपति ऐसे हैं जिनके एन नंबर ऑफ स्वरूप हो सकते हैं।
0: राजकुमार शाह बताते हैं कि उन्होंने अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए हैं, जहां इन तमाम मूर्तियों को बेहद सलीके से सजाकर रखा गया है। इस अनोखे संग्रह की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। राजकुमार शाह के अनुसार बचपन में वो गणेश जी के कार्ड इकट्ठा किया करते थे। जब वो कार्ड खराब हो गए तो उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने गणेश प्रतिमाओं का संग्रह शुरू किया और धीरे धीरे ये शौक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया।
2: 23 साल से मैं ये कलेक्शन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गणपति के कार्ड्स का कलेक्शन करता था, बट वो कार्ड्स का कलेक्शन किसी कारण से मतलब डैमेज हो गया, मैं उसको सहेज नहीं पाया, तो अब मैंने 2003 से ये मूर्तियों का कलेक्शन स्टार्ट किया है।
0: दिलचस्प बात यह है कि राजकुमार शाह का ये जुनून अब सिर्फ उनका व्यक्तिगत शौक नहीं रहा, बल्कि पूरा परिवार ही इस अनोखी विरासत का हिस्सा बन चुका है।
3: गणपति का कलेक्शन तो 5,500 है। उसके बाद मुद्राएं तो खड़ी, बैठी, उल्टा लेटी हुई भी जो अपने शतरंज खेलती हैं, इस हिसाब से कुर्सी पे बैठी हैं, कुछ खटिया पे लेटी हुई, बहुत विभिन्न तरह की प्रतिमाएं हैं। फिर घर भी छोटे थे तो इतना उनका नहीं हो पाया, फिर लकीली घर बना तो पहले हमारा जो गोयल नगर में घर है वहां पे भी एकत्रित किए, और फिर यहाँ आने के बाद और उनका शौक बढ़ता ही चला गया।
0: 5000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का ये कलेक्शन सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये 2 दशक से ज्यादा समय से चली आ रही आस्था, लगन और समर्पण की अटूट कहानी है, जो गणेश भक्त को आकर्षित करने के साथ प्रेरणा भी दे रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो देखिए, गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घरों पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बता दें हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर आपको बता दें कि कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियोस और तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो हमें भेजें तो साथ में याद रखें कि अपना नाम और अपने शहर, गाँव या कस्बे का नाम भी साथ में जरूर लिखें।
5: तो चलिए, यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हनुमान अंश की रिकॉर्ड कमाई के बाद अब हनुमान अंश के गेम की तैयारी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: ढोल नगाड़ों के साथ जीएनटी न्यूज रूम में पधारे बप्पा की विदाई, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन, जीएनटी संग मनाइए उत्सव के रंग।

0: प्रसाद की, तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना। काशी में लोकार्क षष्ठी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंचे भक्त। सुरक्षा में तैनात किए गए 1000 पुलिसकर्मी। आरा में बाढ़ प्रभावितों के लिए अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ। लोगों को जाकर बांटी राहत सामग्री। तो गणपति उत्सव पर हमारी मेगा कवरेज जारी है। चलिए अब आपको सूरत में द्वारका के दर्शन करवाते हैं। दरअसल सूरत के नानपुरा इलाके में जलमग्न द्वारका की थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया, जिसमें समंदर में डूबी द्वारका नगरी में बप्पा पधारे। इस अनूठे पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।
1: यहाँ आकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हों। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब भा रही है।
2: इस पंडाल के जरिए सूरत में द्वारका नगरी के दर्शन कीजिए। तस्वीरें सूरत के नानपुरा इलाके की हैं, जहां इस गणेश पंडाल के जरिए श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन कराए जा रहे हैं। शैलर युवक मंडल नाम के इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासकर युवाओं को ये पंडाल खूब भा रहा है। यहाँ गणपति को द्वारकाधीश की नगरी में विराजमान किया गया है। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हों।
3: और सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है, इस यहाँ पर दिखाया गया है। गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहाँ पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक है उनके द्वारा किया गया है।
2: नानपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनूठी थीम और भव्य सजावट, जिसके जरिए एक अनूठी दुनिया गढ़ी गई है। खासकर लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समंदर की गहराई में होने का बोध कराती है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब भा रही है।
4: इस साल हमने द्वारका नगरी की थीम रखी है जो सोना की नगरी तरीके भी जानीती है। और जैसे दिखता है कि कृष्ण भगवान जैसे पानी में ऐसे पूरी द्वारका नगरी डूब गई थी, तो ऐसे आज की हम पौराणिक कथाओं के अनुसार सबको संदेशा पहुंचे कि कैसे द्वारका नगरी डूबी थी दरिया में।
5: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए। बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
3: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
5: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल है।
6: श्री सिद्ध विनायक नमो नमः।
2: आयोजकों का मानना है कि जलमग्न द्वारका की थीम को चुनने के पीछे केवल पंडाल को भव्य बनाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके जरिए नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और इन कोशिशों का नतीजा भी सामने है। ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे।
7: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हनुमान अंश का कमाल जारी है और कल का मंगलवार फिल्म के लिए मंगलमय साबित हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 करोड़ में बनी ये फिल्म जल्दी ही 300 करोड़ की कमाई के आंकड़े को पार कर लेगी।
8: बिल्कुल, आपको बता दें कि हनुमान अंश की कहानी सिनेमाघरों से निकलकर गेमिंग की दुनिया में भी पहुंचने वाली है। इसके जरिए दुनिया के करोड़ों लोगों तक हनुमान

0: चालीसा को पहुंचाने की तैयारी है। फिल्म से जुड़ी एक और खास खबर है, जिस फिल्म को पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रिजेक्ट कर दिया था, वही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब फिल्म को खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं।
1: जब बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बजट वाली फिल्में पहले ही हफ्ते में दम तोड़ देती हैं, तब एक छोटे बजट की गुमनाम सी फिल्म ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बजट वाली मल्टी स्टारर फिल्में भी नहीं कर पाती। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश के बारे में तो न किसी को पता था और न ही इसका ग्रैंड प्रमोशन हुआ था, लेकिन ये फिल्म 40 दिनों से सिनेमाघरों में कब्जा जमाए हुए है। हनुमान अंश के लिए हनुमान जी का दिन यानी कि मंगलवार काफी मंगलमय रहा। फिल्म ने रिलीज के 40वें दिन भी जमकर कमाई की। 40वें दिन हनुमान अंश ने देश भर में 8.25 करोड़ रुपए का शानदार नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 231.13 करोड़ रुपए और कुल ग्रॉस कलेक्शन 272.90 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों को मिलाकर हनुमान अंश का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 291.40 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है और जल्द ही 2 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर पिछले 40 दिनों से कमाल कर रही विशाल चतुर्वेदी की ये वो फिल्म है जिसको कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से निराशा मिली थी, वही फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का ऐसा डंका बजा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने बताया था कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि अब ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर चुकी इस फिल्म को खरीदने के लिए तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हनुमान अंश की प्रोड्यूसर रागिनी सोना ने बताया कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म उनकी फिल्म खरीदने के लिए लाइन में हैं। रागिनी ने कहा,
2: हाँ ऐसा ही हो रहा है, 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी फिल्में लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि लोगों ने हमारी फिल्म को अपना लिया है और वो भी जबरदस्त तरीके से।
1: दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में फिल्म को लेकर 100 करोड़ रुपए की ओटीटी डील की खबरें भी सामने आई थी, हालांकि रागिनी सोना ने इन दावों को खारिज कर दिया है। रागिनी ने कहा कि अभी ऐसी कोई डील फाइनल नहीं हुई है और फिलहाल टीम का ध्यान फिल्म के थिएटर रन पर है। हनुमान अंश की कामयाबी का फायदा वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनियां भी उठाना चाहती हैं। एक मशहूर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए फिल्म की निर्माता कंपनी से हाथ मिलाया है। ये कंपनी हनुमान अंश यूनिवर्स पर आधारित 3 शानदार वीडियो गेम्स को डेवलप और पब्लिश करेगी। इसके जरिए वो हनुमान चालीसा को दुनिया भर के अरबों लोगों तक पहुंचाना चाहती है। ये गेम एक एप्लीकेशन होगा जहां लोग पूरी हनुमान चालीसा के श्लोकों और चौपाइयों को एक एक लाइन करके खुद ही सीख और दोहरा सकेंगे। ये ऐप खास तौर पर पूरे परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें पहली बार चौपाई सीखने वाले बच्चे, उनके साथ खेलने वाले माता पिता और पहले से हनुमान चालीसा याद रखने वाले दादा दादी एक साथ शामिल हो सकते हैं। सभी के लिए ये गेम मुफ्त होगा। भारत में इस समय 50 करोड़ से अधिक गेमर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हनुमान अंश के आध्यात्मिक केंद्र और मुख्य प्रेरणा नीम करौली बाबा के भारत से बाहर विदेशों में भी करोड़ों भक्त हैं। यही नहीं, विदेशों में करीब 3.5 करोड़ NRI रहते हैं, यानी इस गेम के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर्शक वर्ग पहले से मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो देखिए, समंदर की लहरों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक देश की रक्षा का जज्बा अब एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। लहरों और तूफानों से मुकाबला करने वाले तटरक्षक बल के जाबाज अब 7,242 मीटर ऊंची माउंट मुकुट चोटी पर अपने हौसले की परीक्षा देंगे।
3: और देखिए, 19 सदस्यों की पर्वतारोहण टीम तट से पर्वत अभियान पर रवाना हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक चोटी की चढ़ाई नहीं बल्कि 2027 में माउंट एवरेस्ट फतह करने के बड़े मिशन की तैयारी है।

0: लहरों से लड़ना हो तो तटरक्षक तैयार है, तूफानों से टकराना हो तो तटरक्षक तैयार है। समुद्र की लहरों से लड़कर देश की हिफाजत करने वाले जाबाज अब हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराने को तैयार हैं, जहां हर कदम चुनौती है, हर सांस इम्तिहान है और जहां हौसला ही सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय तटरक्षक बल ने अब समुद्र से पहाड़ तक अपनी जाबाजी का परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी है। समुद्र तल से करीब 7,242 मीटर की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, कम ऑक्सीजन और पल पल बदलता मौसम, माउंट मुकुट की चढ़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन 19 सदस्यों वाली तटरक्षक बल की पर्वतारोहण टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम के सदस्यों में इस मुश्किल अभियान को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि ये सिर्फ एक चोटी को फतेह करने की कोशिश नहीं बल्कि एक बड़े लक्ष्य की तैयारी है। दरअसल तट से बर्फ अभियान को तटरक्षक बल की हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का अंतिम चरण माना जा रहा है। माउंट मुकुट की मुश्किल चढ़ाई के दौरान जवानों को अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बर्फीले मौसम और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलेगा, यानी हर कदम उन्हें उस चुनौती के करीब ले जाएगा जिसका लक्ष्य है दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारतीय तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को लेकर पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें समुद्र से लेकर पहाड़ की चोटियों तक नई ऊंचाइयां छूने के जज्बे का जिक्र किया गया है। तटरक्षक बल के मुताबिक 19 जवान 2027 में अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिस फोर्स की पहचान समुद्र में देश की सुरक्षा से है, अब वही जाबाज हिमालय की ऊंचाइयों पर अपनी ताकत और हौसले की परीक्षा देने जा रहे हैं। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान छूती चोटियों तक देश की रक्षा का ये जज्बा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। माउंट मुकुट से शुरू हुई ये चढ़ाई 2027 में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के बड़े मिशन की मजबूत नींव बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात यूपी में मऊ जिले की रहने वाली समरा नास की। उम्र महज 7 साल, लेकिन हौसला इतना बड़ा कि अपनी परेशानी लेकर सीधे डीएम के पास पहुंच गई। समरा ने डीएम से मोहल्ले की सड़क बनवाने की गुहार लगाई।
2: सड़क बनी, डीएम खुद समरा के घर पहुंचे और फिर जो हुआ उसने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खास बना दिया। जिस सड़क पर कभी समरा गिर जाती थी, आज उसी सड़क पर वो नई साइकिल लेकर फर्राटा भर रही है।
0: कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। 7 साल की समरा नाज ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। 1 सितंबर को ये नन्ही बच्ची अपने मोहल्ले की सड़क बनवाने की फरियाद लेकर सीधे डीएम दफ्तर पहुँच गई। समरा ने जिलाधिकारी को बताया कि उसके मोहल्ले की सड़क इतनी खराब है कि स्कूल आते जाते वक्त वो अक्सर गिर जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और स्कूल पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है।
3: कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हो कि बस में जाते हो? बस से जाते हो। बस से गिर जाते हो? किस क्लास में हैं आप?
2: क्लास
3: 20।
0: समरा की बात छोटी जरूर थी, लेकिन उसकी परेशानी बड़ी थी। डीएम आनंद वर्धन ने भी इस मासूम की बात को अनसुना नहीं किया, बल्कि हाथों हाथ लिया, बच्ची से वादा किया कि उसके मोहल्ले की सड़क जल्द बनेगी।
4: छोटे बच्चों द्वारा ये संज्ञान में लाया गया और निर्भीकता से अपनी बात को रखा गया, इस बात की हमें दाद देनी चाहिए। और जनता दर्शन में तमाम तरह की समस्याएं हम लोगों के संज्ञान में आती है, परंतु बच्ची ने अपनी बात को उठाया और उसको पूरा कराया, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं उनको भी।
0: सड़क बनी तो डीएम साहब भी अपना वादा पूरा होता देख खुद समरा के घर पहुँच गए, नई सड़क का निरीक्षण किया। डीएम ने समरा का हाथ थामा, उससे पूछा अब खुश हो? तब 7 साल की बच्ची के चेहरे की मुस्कान के साथ निकला सिर्फ 2 शब्दों का जवाब, यस सर।
4: बाबा बन गई सड़क ना, ठीक है, अब तो पानी नहीं लगेगा।
0: फिर शुरू हुआ खुशियों का सिलसिला। डीएम ने अपने हाथों से समरा को मिठाई खिलाई, चॉकलेट दी और फिर दिया ऐसा तोहफा जिससे समरा की खुशी पर चार चांद लग गए। वो तोहफा था एक नई साइकिल। जिस रास्ते पर कभी समरा गिर जाया करती थी, उसी रास्ते पर अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ साइकिल दौड़ा रही है। समरा साइकिल चला रही थी और डीएम और अधिकारी उसके साथ पैदल चल रहे थे।
5: डीएम सर ने मेरे घर का रास्ता बनवा दीजिए और सारे मीडिया वाले अंकल एंड आंटी लोग थैंक यू, मेरे घर का आप लोग मेरे वीडियो चलाने के लिए, और डीएम और यू सर और जे सर थैंक यू।
0: समरा ने दिखा दिया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन हौसला बड़ा हो तो आवाज सीधे जिम्मेदारों तक पहुंच सकती है। और दूसरी तरफ डीएम आनंद वर्धन ने भी ये दिखाया कि सिस्टम अगर संवेदनशील हो, अधिकारी एक्टिव हो और शिकायत पर तुरंत एक्शन हो तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान तलाशा न जा सके। मऊ से दुर्गा किनकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ओडिशा से रेस्क्यू हुए ओरांगुटान अभी किस हाल में है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में आए ओरंगुटान के नन्हे मेहमान इन दिनों क्वारंटीन में हैं। इनकी देखभाल बेहद खास तरीके से की जा रही है, लेकिन कैमरे में कैद इनकी शरारतें देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। कभी इधर उधर उछलते कूदते तो कभी एक दूसरे के साथ मस्ती करते ये नन्हे ओरंगुटान खूब धमाल मचा रहे हैं। उनकी ये अटखेलियां सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं, क्योंकि आम लोगों को इनसे मिलने या फिर इन्हें देखने की इजाजत नहीं है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में इन दिनों 5 नन्हे ओरंगुटान की खास देखभाल हो रही है। रेस्क्यू किए गए इन शिशु ओरंगुटान को सेंटर फॉर रेयरिंग ऑफ एनिमल बेबीज में क्वारंटीन में रखा गया है। हालांकि इन नन्हे मेहमानों को देखने की उत्सुकता में कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर की तरफ पहुंचने लगे थे, जिसके बाद नंदनकानन जू प्रबंधन ने साफ कर दिया कि आम विजिटर्स को यहां जाने की इजाजत नहीं है।
2: ओरंगुटान के बच्चों को सख्त क्वारंटीन में रखा गया है। इनकी देखभाल सिर्फ चुनिंदा केयर टेकर्स, वेटनरी अधिकारी और विशेषज्ञ ही कर रहे हैं। जू के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि 5 ओरंगुटान फिलहाल स्थिर हैं और लगातार उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। ओरंगुटान के बच्चों पर किसी तरह का तनाव न पड़े, इसके लिए इन्हें आगे चलकर बड़े और खुले एनक्लोजर में शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी है।
1: तो हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरें लगातार जारी है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, जहां आमतौर पर चमचमाती स्क्रीन और भागती दौड़ती भीड़ नजर आती है, वहां मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सड़क पर आमने सामने थी दो विशाल भैंसे। करीब 7 फीट ऊंची और 9 फीट लंबी इन भैंसों को देखकर ऐसा लगा मानो जंगल का कोई झुंड न्यूयॉर्क के बीच आ पहुंचा हो। खास बात यह है कि असली भैंसे नहीं बल्कि लाइफ साइज कठपुतलियां थी।
5: दरअसल ये सब हुआ रिटर्न ऑफ द बफलो नाम के एक पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट के तहत, जिसे खास तरह की जनजातीय कलाकारों ने तैयार किया था। इन कठपुतलियों को लकड़ी, धातु, रिसाइकिल किए जा सकने वाले सामानों से तैयार किया गया था। शुक्रवार को करीब इस तरह की 40 भैंसों का अनोखा काफिला न्यूयॉर्क के अलग अलग इलाकों से निकला और सबसे खास बात यह होगी कि इस नजारे को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगा। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ कल शाम 5 बजे चाय गुड न्यूज टुडे के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: ढोल नगाड़ों के साथ जीएनटी न्यूज रूम में पधारे बप्पा की विदाई, अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन, जीएनटी संग मनाइए उत्सव के रंग। देश भर में छाई गणेश उत्सव की धूम, चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, एक साथ हो रहे 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। धौलपुर में शाही स्नान के साथ देवछठ पर लगने वाले मचकुंड मेले का शुभारंभ, संतों ने बैंड बाजे के साथ की तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना। काशी में लोकार्क षष्ठी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंचे भक्त, सुरक्षा में तैनात किए गए 1000 पुलिसकर्मी। आरा में बाढ़ प्रभावितों के लिए अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों को जाकर बांटी राहत सामग्री।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं नारी शक्ति को नमन का भाव है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किए गए आस्था के भाव भव्य प्रतिमाओं में ढल गए हैं। इनकी अनोखी कलाकारी देखने वालों को हैरान कर रही है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। बप्पा भी एक है लेकिन रूप अनेक, और इस समय तो अनगिनत। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा के सबसे निराले रूप।

0: बाप्पा एक है, रूप अनेक है। देश में जगह जगह गणेशो उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बाप्पा शान से विराजे हैं। और पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ लगी है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बाप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। बाप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप सजा है मुंबई में, जहां बाप्पा की भक्ति करने पंडाल में मार्वल और डीसी के सुपर हीरो भी उतर आए हैं। भक्तों के लिए तो गजानन स्वयं ही सबसे बड़े सुपर हीरो है, लेकिन गणपति पंडाल में अवेंजर्स को देखना भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास है। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्स, वुल्वरीन और इन सब के बीच हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा। अपने जोरदार एक्शन से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बनाने वाले अवेंजर्स को बाप्पा के पंडाल में देखने के लिए बड़ी संख्या में बाप्पा के जूनियर भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को खास बनाने के लिए ये खास झांकी सजाई है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडरमैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: बाप्पा का एक और अद्भुत रूप सजा है गुजरात की सूरत में, जहाँ पंडाल में बाप्पा के साथ साथ भक्तों को द्वार का दर्शन भी हो रहे हैं। सूरत के नानपुरा में बनाए गए इस भव्य गणेश पंडाल को श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हो। नागपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समुद्र की गहराई में होने का आभास करवा रही है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई।
2: सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। छवि के जरिए आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है। इस यहां पर दिखाया गया है गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है, और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
0: यानी यूनिक थीम के चलते ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है, और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बाप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही है।
3: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
2: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
3: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा, और बहुत ब्यूटीफुल है।
4: द्वारका तो कई बार हम लोग गए हैं, मगर हमें सूरत में द्वारका मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है हमारे।
0: आप सबको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बापा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। ये है पानी पूरी से बने बाप्पा। तस्वीरें पुणे के FC रोड की है, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जुटे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणपति। इस प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल होसी गणेश मंडल ने ही बनाया है। अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में अगला नंबर ओडिशा के गजपति के इस पंडाल का है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बापा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बापा को इस प्रतिमा में 1 मुख सिक्कों से तैयार किया गया है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। अब आपको दिखाते हैं वो पंडाल जहां सूरत में ब्रज तीर्थ समाया है, जहां तापी यमुना हो गई है, जहां माँ गौरी के लाल, मैया यशोदा के बाल गोपाल बन गए हैं। ये ब्रज भूमि नहीं बल्कि सूरत है। सूरत में तापी नदी के ठीक बीच में गणपति की ये अनोखी झांकी तैयार की गई। इस झांकी में जन्म के बाद श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाते वासुदेव की छवि नजर आती है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रज की जगह सूरत है। वासुदेव जी की टोकरी में शेषनाग के फन की छाव में कन्हैया रूप में गजानन विराजमान है। सूरत के मछुआरा समुदाय ने गणेश उत्सव में कृष्ण लीला को जीवंत कर दिया है।
2: इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे ये थीम दिया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होंगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है।
0: चलिए अब महाराष्ट्र के अकोला, जहाँ 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। यहाँ बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में भक्तों को बैम्बू से बने बाप्पा के दर्शन भी हो रहे हैं। बाप्पा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार कर अनूठी सामाजिक पहल की है। बैम्बूजू बाप्पा नाम की इस पहल के तहत तैयार की गई गणेश प्रतिमा की विधि विधान और भक्ति भाव के साथ स्थापना की गई। बांस से बनी 3 फीट ऊंची श्री गणेश की मूर्ति देखते ही बनती है। प्रतिमा में श्री गणेश का मुकुट, सूंड, हाथ, पांव, वस्त्र और यहाँ तक कि मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। यहाँ सिर्फ मूर्ति ही बांस की नहीं है, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है। अब महाराष्ट्र से चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां बाप्पा एक नहीं बल्कि 101 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये पंडाल है जहां अब की बार 101 रूपों में गणपति बाप्पा विराजमान है। मंगल मूर्ति की 101 मूर्ति की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब इस पंडाल में एक साथ 101 मूर्तियों की आरती उतारी जाती है तो दृश्य देखने के लायक होता है। भिलाई के इस गणेश मंडल ने साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और अब की बार ये उत्सव बाप्पा की 101 प्रतिमाओं के साथ भव्य रूप ले चुका है। खास बात ये है कि यहाँ स्थापित की गई सभी 101 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। ये तस्वीरें प्रयागराज की गणपति पंडाल की है। प्रयागराज के इस पंडाल की ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि इस एक प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है।
5: प्रयागराज के मोत्सिमगंज में है और यहाँ मोत्सिमगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोत्सिमगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के दौरान संगम नगरी की तरह ही धर्म नगरी हरिद्वार भी गणेश मय हो गई है। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की थीम पर बाप्पा की मूर्ति तैयार की गई। पौराणिक मान्यता है कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बाप्पा का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्यम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंग को भव्य झांकी के जरिए जीवंत किया गया।
6: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो है आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है और गणपति महाराज का आशीर्वाद है।
0: गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी आई है, जहां मुंबई के लाल बाग 4 राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आलम ये है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।
7: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो स्थापना है, ये पूजा है, वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है।
8: दरअसल लगभग 150 मराठी परिवार सभी महाराष्ट्र से आकर काशी के सर्राफा कारोबार से जुड़े थे। ये परिवार पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बापा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबाग चौराजा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर ले। अगर लाल बागचा राजा मुंबई से काशी पहुंचे हैं तो चिंचपोकल की चिंतामणि का स्वरूप राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि मुंबई से विग्रहर्ता दिल्ली में मयूर विहार के राजा कहलाते हैं। मयूर विहार के राजा के पंडाल की सजावट शिवाजी महाराज की थीम पर की गई है। उनका सिंहासन भी राजसी है। दिल्ली के इस पंडाल में बापा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बापा के उत्सव की एक और सुंदर तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां एक कलाकार ने टू वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गणपति बापा की बेहद खूबसूरत आर्ट तैयार की है। ये कलाकार स्ट्रॉ, इलेक्ट्रिक वायर्स, मिरर, चुंबक, जूट, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ों से गिरे पत्ते, पुरानी मैगजीन के कागज और कतरन जैसे वेस्ट सामान से अब तक बापा की लगभग 4000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं।
9: आप ये गणेश जी देखिए, क्या लगता है आपको ये किस चीज से बने होंगे? ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पजल होते हैं उन पजल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो कि अलग अलग वेस्ट से तैयार की गई। तो सर, अब तक कितने अपनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं वेस्ट की?
10: मैंने 300 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ, 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके।
9: कुछ खास चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ आप दिखा दीजिए।
10: देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये घरों में हम जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज़ करके इसको बनाया है।
9: क्या होता है इन पेंटिंग्स का, आप बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं, क्या होता है इनका?
10: देखिए, अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
9: क्या बात है, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिशन मन में सोच रखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं कभी उनके लिए ये पूरी पेंटिंग्स को बेचकर सारा पैसा उनके नाम कर देंगे, और एक मिशन जो देखे अनदेखी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कूड़े का पहाड़ है उसमें वेस्ट और कम पहुंच रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसका इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बच्चों को भी लगातार सिखा रहे हैं। लगभग 28,000 बच्चों को वो ये कला सिखा चुके हैं, ताकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कूड़े का पहाड़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
11: बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के एक ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं, अनोखे रूप में तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर बप्पा से जुड़े ये वीडियो छाए हुए हैं, यानी बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। अब यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी सुपर हिट हैं बप्पा मौर्या।

और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि विघ्नहर्ता आप सबके विघ्नों का हरण करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: तो गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन हुआ होगा। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया में दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए तो नहीं है, ये भी आपको बता दें, ये नंबर सिर्फ वीडियोस भेजने या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: दो लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन, जीएनटी संघ मनाइए उत्सव के रंग। देश भर में छाई गणेश उत्सव की धूम। चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनूठा पंडाल। एक साथ हो रहे 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। धौलपुर में शाही स्नान के बाद देव छठ पर लगने वाले मचकुंड मेला का शुभारंभ। संतों ने बैंड बाजों के साथ की तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना। काशी में लोकार्का षष्ठी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन करने को पहुंचे भक्त। सुरक्षा में तैनात किए गए 1000 पुलिसकर्मी। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। आरामी बाढ़ प्रभावितों के लिए अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ। लोगों को जाकर बांटी राहत सामग्री।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार। भक्ता के दर्शन और चरण स्पर्श करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लालबाग चौराहा दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी लगाई हाजिरी। पत्नी संग लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी किए लालबाग चौराहा के दर्शन। टीका मत्था आशीर्वाद लिया। अकोला में सजा 90 साल पुरानी मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार। 15 फीट की ऊंची प्रतिमा। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की कथा की मिल रही है झलक। दर्शकों के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के वाशिम में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान गणेश। सौंफ सुपारी इलायची से बनी गई गणेश जी के

छत्तीसगढ़ के भलाई में 101 का इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना का रचा गया कीर्तिमान नया 10 फीट की है गणेश प्रतिमा। 1999 में अष्ट विनायक के रूप में 8 प्रतिमाओं की स्थापना शुरू की गई थी। इसकी परंपरा पंडाल की भव्य डिजिटल लाइटिंग। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सभी का ध्यान। 21,000 पानीपुरी शेल से बनाई गई प्रतिमा। 13 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है गणेश प्रतिमा। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन। उड़ीसा के गणपति जिले में भी देखा गणपति का अनोखा स्वरूप। सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई पप्पा की प्रतिमा। त्रिमुखी गजानन की मूर्ति बनाने में भारी मात्रा में सिक्कों का किया गया इस्तेमाल। साइड के दोनों मुखों पर निर्माण में चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया। ये खास और इको फ्रेंडली मूर्ति बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना चर्चा का मुख्य विषय। जलमग्न द्वारका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते ही नजर आता है समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण। बहुत कलात्मक तरीके से किया गया है निर्माण। पंडाल की खूबसूरती को बढ़ा रही है पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स। नीली और हरी रोशनी के साथ पानी की लहरों में समुद्र की गहराई का तैरता हुआ इफेक्ट तैयार किया गया है। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बनाया गया गणपति बप्पा के दरबार। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मुंबई में एक्टर सोहेल खान के घर गणपति उत्सव। शामिल हुए कई सितारे। विसर्जन के दौरान जमकर किया डांस। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी उत्सव में शामिल हुए। बप्पा के सामने टेका मत्था। गणपति उत्सव में हेलेन बहन अर्पिता का परिवार और अरबाज खान के बेटे भी शामिल हुए। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही मूर्ति विसर्जन किया। बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ सचिन ने गणपति बप्पा का सेवा की आराधना किया। पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की आराधना की। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था के साथ अद्भुत रंग देखने को मिले। मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन। एक्टर गोविंदा और उनके बेटे भी शामिल हुए। डेजी शाह ने भी किया गणेश विसर्जन। ढोल नगाड़ों के बीच नाचते हुए नजर आए। अंबानी परिवार ने भी किया मूर्ति विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। टेलीविजन एक्टर गुरमीत ने भी देवीना के साथ किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की। बुंदेलखंड की धरती पर गणेश उत्सव की धूम। झांसी में 17वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक महाराजा गणेश मंदिर में विशेष रौनक। मंदिर में विराजमान है भगवान गणेश का श्वेत संगमरमर का विशाल विग्रह। बुंदेलखंड की संस्कृति के साथ देखने को मिलती है महाराष्ट्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक। गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान के साथ गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 11वां दिन विसर्जन की परंपरा। मान्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई के विवाह से पहले से मौजूद है मंदिर। 1842 में हुआ था निर्माण। मुंबई के बांद्रा पश्चिम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। गणपति बप्पा के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा भव्य यात्रा के साथ गणेश चतुर्थी का समापन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में गणेश भक्त भी शामिल हुए। ओडिशा के बालासोर के लारी क्लब में गणेश पूजा का जश्न। परंपरा में विसर्जित की गई प्रतिमा। धार्मिक उत्सव के दौरान नजर आई भक्तों की भीड़। रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट। दिल्ली में कलाकार की क्रिएटिविटी का कमाल। बेकार समझी जाने वाली चीजों से बनाई गई गणपति बप्पा की कमाल की कलाकृति। कलाकार राजेश कुमार ने वीस मटेरियल से बनाई गणपति बप्पा की अलग अलग रूप वाली बहुत आकर्षक कलाकृति। एक कला प्रदर्शनी में गणपति बप्पा की 500 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित की जा चुकी है। आर्टिस्ट राजेश कुमार दुनिया के 9 देशों में बप्पा को पहुंचा चुके हैं। राजेश

0: कश्मीर में भी देखिए गणेशोत्सव की रौनक। कश्मीरी पंडितों ने काजीकुंड के वेसू में मनाई गणेश चतुर्थी। कश्मीर में शांति और खुशहाली की कामना। मदुरई में किया गया सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन। ढोल लगाड़ों के बीच निकाली गई बप्पा की यात्रा। 17 सितंबर को होने वाले प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के महाकुंभाभिषेकम के तहत फैसला। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला। आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आया मदुरई। आज जोरों पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर के महाकुंभाभिषेकम की तैयारियां। पवित्र अनुष्ठान से पहले फूलों से की जा रही है मंदिर परिसर की सजावट। 17 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है महाकुंभ अभिषेकम। राजस्थान के धौलपुर में शाही स्नान के साथ मचकुंड मेले का हुआ शुभारंभ। मेले में ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और दूसरे जिलों से आए संतों की सवारियां बैंड बाजों के साथ शामिल। मंगल भारती मंदिर से मचकुंड सरोवर पहुंचते ही संतों ने सरोवर में किया शाही स्नान। ऋषि पंचमी से देव छठ तक चलता है देव छठ के मौके पर लगने वाली ये मेले। देव छठ वाले दिन यहां पर स्नान से विशिष्ट पुण्य की मान्यता है। मान्यता है कि यहां सरोवर में स्नान करने के बाद सफल हो जाती है चारधाम यात्रा। देश भर के 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। कैबिनेट ने ईपीएफओ वेतन की ऊपरी सीमा 15,000 से 25,000 करने की मंजूरी दी। सरकार के फैसले के बाद 25,000 प्रति माह तक का मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन कवरेज होगी जरूरी। सरकार ने ईपीएफओ की वेतन सीमा द्वारा साल बाद किया है बदलाव। सरकार के फैसले से 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारियों को लाभ होगा। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जाएंगे कर्मचारी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में दिल्ली नंबर 1। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने में दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। मानदेय में 50% की बढ़ोतरी। योगी कैबिनेट का जैन अल्फा के लिए बड़ा फैसला। 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी और टीचर्स के साथ हाथ में टैबलेट से पढ़ते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में 15,012 पदों की शिक्षक वैकेंसी पर भर्ती हुई शुरू। 897 सहायक अध्यापक का संबंध प्राइमरी। 11,508 सहायक अध्यापक शहरी और 2,607 प्रवक्ता पदों पर होगी भर्ती। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा। 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। पहली बार 3,24,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर समेत हाई सिक्योरिटी प्रतिष्ठानों पर स्नाइपर तैनाती की तैयारी। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तारामंडल इलाके में आईएमए बिल्डिंग में चैरिटेबली ब्लड सेंटर का उद्घाटन हुआ। 20 एनसीसी गर्ल कैडेट्स ने सफलतापूर्वक पूरा किया हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता। उत्तराखंड की चमोली में भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास 2026 की शुरुआत। पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक क्षमता बढ़ाना मकसद। पौली में शुरू हुए युद्धाभ्यास में 22वें संस्करण के उद्घाटन में दोनों देशों के 600-600 सैनिक शामिल हुए। भारत और अमेरिकी सेना के अफसरों ने किया संबोधित। गोरखपुर को 40 करोड़ की लागत वाली कई विकास योजनाओं की सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार के रोहतास में कैमूर पहाड़ी पर रोपवे निर्माण की प्रक्रिया तेज। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण। बिहार के आरा में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के लिए काशी में विशेष तैयारियां। बुनकरों ने वॉल हैंगिंग पर उकेरी प्रधानमंत्री की मां हीराबेन की तस्वीर। काशी की पारंपरिक उचंत कला के जरिए पूरी तरीके से हाथ से तैयार की गई है वॉल हैंगिंग प्रतिमा। बिजनौर में मुस्लिम युवक बना रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरा फैन, नासीने पर मुख्यमंत्री के नाम का बनवाया परमानेंट टैटू। रायपुर में नवाब रायपुर ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष शामिल। लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, छात्रों से मुलाकात। श्रीनगर में पहला कश्मीर थिएटर सम्मेलन का आयोजन किया गया, युवाओं में रंगमंच के प्रति जागरूकता बढ़ाना मकसद। कश्मीर में थिएटर के इतिहास के 70 साल पूरे होने के मौके पर मनाया गया जश्न, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, मशहूर कश्मीरी लोकनृत्य रऊफ की भी प्रस्तुति। तीन दिन का रहा यह शानदार सम्मेलन, एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर में जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकेडमी के सहयोग से आयोजित किया गया कार्यक्रम। गुवाहाटी में 2 महीने की मरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए फिर से खुला सराय घाट पुल। इस पुल के मरम्मत कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च आए, 13 जुलाई 2026 से बंद था। शंघाई में तीसरे लाइट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू, शहर भर में एक मुख्य स्थल और 16 उपस्थल होंगे और कुल 158 थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे। तीसरे शंघाई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश महोत्सव का 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होगा आयोजन, दुनिया भर से सैलानी इस महोत्सव में होंगे शामिल। शंघाई कॉन्सर्ट हॉल के बाहर राज चौक में 10 दिन तक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा जिसमें दर्शकों के अद्भुत ऑडियो विजुअल्स का अनुभव होगा। बाओशान में चांगतान आईमैक्स डोम वाटर स्क्रीन लाइट शो का शुभारंभ। कार्यक्रम में सभी उम्र और वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना। अमेरिका की मशहूर फैशन डिजाइनर कैरोलिना हेरारा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने फैशन हाउस की 45वीं वर्षगांठ के लिए शानदार प्रस्तुति दी। न्यूयॉर्क स्थित इस फैशन हाउस ने अपने स्प्रिंग 2025 कलेक्शन को चमकीले रंग के ट्यूलिप से घिरे माहौल में पेश किया। रनवे शो की शुरुआत काले और सफेद रंग के तेल लुक्स के साथ हुई जिसमें पीले रंग का हल्का सा टच नजर आया। शो बोल्ड हेरेरा के लाल और पिस्ता कलर के साथ शुरुआत हुई। इस खास कलेक्शन में एंडी वारहोल के बनाए गए हेरेरा के चित्र को पहली बार लाइसेंस के तहत बैग और ड्रेस पर इस्तेमाल किया गया। चीन की फुजियान द्वीप समूह के तट से दूर समुद्र में देखा अद्भुत नजारा, समुद्र की लहरों के बीच डॉल्फिन का झुंड मछली पकड़ने वाली नाव के साथ रेस लगाता हुआ नजर आया। डॉल्फिन कभी पानी में गोता लगाती तो कभी उछल कर बाहर निकलने की कोशिश करती। दक्षिण पश्चिम चीन से सिचुआन प्रांत के यान शहर में पहाड़ों पर दिखा जंगली पांडा, लोग हुए हैरान। म्यूनिख का एलियांज एरेना और बार्सिलोना का कैंप नो 2028 और 2029 में होने वाली चैंपियंस लीग के फिनाले की करेंगे मेजबानी। यूरोप का सबसे बड़ा क्लब फाइनल कैंप नौ में तीसरी बार आयोजित होगा, तैयारियां तेजी से जारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: समंदर की लहरों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक देश की रक्षा का जज्बा अब एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। लहरों और तूफानों से मुकाबला करने वाले तटरक्षक बल के जांबाज अब 7,242 मीटर ऊंची माउंट मुकुट चोटी पर अपने हौसले की परीक्षा देंगे। 19 सदस्यों की पर्वतारोहण टीम तट से पर्वत अभियान पर रवाना हो चुकी है, लेकिन यह सिर्फ एक चोटी की चढ़ाई नहीं बल्कि 2027 में माउंट एवरेस्ट फतह करने के बड़े मिशन की तैयारी है।

0: लहरों से लड़ना हो तो तटरक्षक तैयार है, तूफानों से टकराना हो तो तटरक्षक तैयार है। समुद्र की लहरों से लड़कर देश की हिफाजत करने वाले जाबाज अब हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराने को तैयार हैं, जहां हर कदम चुनौती है, हर सांस इम्तिहान है और जहां हौसला ही सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय तटरक्षक बल ने अब समुद्र से पहाड़ तक अपनी जाबाजी का परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी है। समुद्र तल से करीब 7,242 मीटर की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, कम ऑक्सीजन और पल पल बदलता मौसम, माउंट मुकुट की चढ़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन 19 सदस्यों वाली तटरक्षक बल की पर्वतारोहण टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम के सदस्यों में इस मुश्किल अभियान को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि ये सिर्फ एक चोटी को फतेह करने की कोशिश नहीं बल्कि एक बड़े लक्ष्य की तैयारी है। दरअसल तट से बर्फ अभियान को तटरक्षक बल की हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का अंतिम चरण माना जा रहा है। माउंट मुकुट की मुश्किल चढ़ाई के दौरान जवानों को अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बर्फीले मौसम और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलेगा, यानी हर कदम उन्हें उस चुनौती के करीब ले जाएगा जिसका लक्ष्य है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारतीय तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को लेकर पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें समुद्र से लेकर पहाड़ की चोटियों तक नई ऊंचाइयां छूने के जज्बे का जिक्र किया गया है। तटरक्षक बल के मुताबिक 19 जवान 2027 में अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिस फोर्स की पहचान समुद्र में देश की सुरक्षा से है, अब वही जाबाज हिमालय की ऊंचाइयों पर अपनी ताकत और हौसले की परीक्षा देने जा रहे हैं। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान छूती चोटियों तक देश की रक्षा का ये जज्बा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। माउंट मुकुट से शुरू हुई ये चढ़ाई 2027 में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के बड़े मिशन की मजबूत नींव बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है, हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोस आ रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर से गणपति उत्सव की खुशियां साझा की गई। हमारे एक दर्शक विजय अंबादास ने उनके घर में विराजे बप्पा का वीडियो हमें भेजा है। इनके घर में विराजे बप्पा बहुत सुंदर लग रहे हैं, साथ ही साथ रंग बिरंगी रोशनी और बप्पा के श्रृंगार का अद्भुत नजारा है। वहीं पर देखिए असम के बिहोर से वैष्णवी एंड ग्रुप ने भी हमारे साथ उत्सव की खुशियां साझा की और अपने यहां बनाए जा रहे बप्पा की अद्भुत तस्वीरें हैं कैद करके हमें भेजी। वहीं पर देखिए असम के बिहोर से वैष्णवी एंड ग्रुप ने भी हमारे साथ उत्सव की खुशियां साझा की हैं, अपने यहां पर बनाए जा रहे बप्पा की अद्भुत तस्वीरें कैद की है। यहां पर छोटे छोटे बच्चे अपने प्यारे बप्पा का आकार देते हुए उनको नजर आ रहे हैं, बड़े प्यार से उनका दुलार कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: बदल रही है सूर्य देव की चाल। किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: ढोल नगाड़ों के साथ जीएनटी न्यूज रूम में पधारे बापा के विदाई, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे के साथ बापा की प्रतिमा का विसर्जन, जीएनटी संग मनाइए उत्सव के रंग।

0: देश भर में छाई गणेश उत्सव की धूम, चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, एक साथ हो रहे 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। धौलपुर में शाही स्नान के साथ देव छठ पर लगने वाले मचकुंड मेला का शुभारंभ, संतों ने बैंड बाजे के साथ की तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। आरा में बाढ़ प्रभावितों के लिए अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों को जाकर बांटी राहत सामग्री।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में गणेश उत्सव का महाउत्सव पूरे हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है और बप्पा अपने अलग अलग रूपों में भक्तों के बीच पहुंचे हैं। हर शहर हर पंडाल अपनी एक नई कहानी और भव्यता की तस्वीर पेश कर रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, अलग अलग रूपों में बप्पा। जी हाँ, अलग अलग जितने भव्य पंडाल बनाए गए हैं उससे ज्यादा दिव्य और अद्भुत बप्पा के रूप देखने को मिल रहे हैं। चारों ओर गणपति बप्पा की गूंज है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में तो गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लालबागचा राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई है। तोड़सा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। इसमें खास तौर पर यहाँ एक ही प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है। मतलब ये कि बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा हुआ है। अलग अलग थीम पर सजे पंडाल बप्पा के उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं।

0: गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, कला और रंगों का ऐसा समागम है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देता है। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के भिलाई तक मनमोहक नजारा है। केसरिया सिंदूर की चमक, गुलाल के उड़ते गुबार और जगमगाती लाइटों की सतरंगी छटा। गणेश उत्सव के इस पावन पर्व पर पूरा देश रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। हर शहर, हर पंडाल अपनी एक नई कहानी और भव्यता की तस्वीर पेश कर रहा है। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के भिलाई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गणपति बप्पा के 101 रूपों के दर्शन हो रहे हैं। एक ही पंडाल में गणपति के अलग अलग स्वरूप भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। हर रूप में बप्पा की अलग छवि और अलग ही भव्यता नजर आ रही है।
1: एक से अधिक शुरू से ही हम लोग ये मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो एक मूर्ति स्थापित की गई थी उसके द्वारा लोगों को जोड़ा था। हम लोग जो है एक से अधिक मूर्तियों को उनके अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे ला करके बैठाते हैं। विदेशों से भी यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की जाती है।
0: इस पंडाल में 10 फीट ऊंची मुख्य गणेश प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। गणपति के इन 101 स्वरूपों में भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी नजर आ रहा है।
2: छत्तीसगढ़ का इस्पात नगरी भिलाई का हुड़को सेक्टर महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल के द्वारा गणेश पूजा धूमधाम से की जा रही, वो भी इको फ्रेंडली गणेश। जो मुख्य गणेश की मूर्ति है वो 10 फीट है और यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ भक्तों के द्वारा 101 गणेश विभिन्न आकृतियों की इको फ्रेंडली रखी गई है।
0: अब आपको महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ गणपति बप्पा का ये अनोखा रूप हर किसी का ध्यान खींच रहा है। यहाँ गणपति पंडाल में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग इलायची से बप्पा की प्रतिमा तैयार की गई है। भक्ति के साथ साथ इस प्रतिमा में भारतीय मसालों और पूजा सामग्री की अनोखी कलाकारी भी देखने को मिल रही है। बेहद आकर्षक दिखने वाली बप्पा की इस अनोखी प्रतिमा का वजन करीब 70 से 80 किलो है। सबसे खास बात ये कि इसे तैयार करने में 15 से 20 दिनों का वक्त लगा है। ये भव्य दिव्य नजारा अकोला के 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति पंडाल का है, जहां लकड़ी से तैयार किए गए भव्य महल में बप्पा का दरबार सजा है। यहां बप्पा का दिव्य श्रृंगार कीमती आभूषणों से किया गया है, जो उनकी भव्यता को और बढ़ा रहा है।
3: अकोला के 90 साल पुराने रहे मारवाड़ी प्रेस गणपति बप्पा की ये भव्य आरती आप देख सकते हो कि यहाँ पर चल रही है। भव्य मूर्ति यहाँ पर है। इसकी सजावट जो है बहुत ही सुंदर तरीके से की, लगभग 15 फीट की ये जो मूर्ति है उसकी सजावट भी बहुत अच्छी तरीके से की है। यहाँ से सबसे अहम बात है कि इस वक्त तो है ये लकड़ी का महल यहाँ पर बनाया गया है, ये अच्छी तरीके से इको फ्रेंडली माना जा रहा है।
0: पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भी देखने को मिल रही है। पंडाल की भव्यता और रंगों की विविधता केवल आंखों को ही नहीं लुभाती, बल्कि यह हमारे समाज की विविधता और अटूट आस्था को भी दर्शाती है। ढोल ताशों की थाप पर थिरकते भक्त और आरती के समय जलते दियों की रोशनी इस उत्सव के हर पल को यादगार बना रही है। भिलाई से रघुनंदन पंडा, अकोला से धनंजय साबले और वाशिम से जका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक सब ओर गणेशोत्सव की धूम है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के कैंप में गणपति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े, बच्चे और वृद्ध सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है वो है कश्मीर में विनायक चोरम का उत्सव। आपको बता दें कि कश्मीर में गणेश चतुर्थी को विनायक चोरम के नाम से जाना जाता है। नाम भले ही अलग हो लेकिन त्यौहार का एक जैसा होता है। कुलगांव में गणेशोत्सव का उत्साह सबके सर चढ़कर बोल रहा है।
5: पूरे देश में गणेशोत्सव पूरे धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कांजीकुंड और उसके आसपास के क्षेत्रों के कश्मीरी पंडितों और स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा की भक्ति की जा रही है। गणेशोत्सव को यहाँ पर विनायक चोरम के रूप में मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर में ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। यहाँ पर इस त्योहार का नाम भले ही अलग हो लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह एक जैसा होता है। यहाँ के विस्सू कश्मीरी पंडित ट्रांजिट कैंप में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पर गणपति बाप्पा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर बाप्पा की भक्ति में भजन कीर्तन किया जा रहा है जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी हिस्सा ले रहे हैं।
6: गणेश चतुर्थी, ये हम बाबू साहब रंगारी जो पूना ट्रस्ट है उनके साथ कोलैबोरेट करके विश्व वेलफेयर कमेटी ये 3 साल से मना रही है और ये त्यौहार 5 दिन चलता है। 5वें दिन यहाँ पे यज्ञ होता है, फिर प्रसाद होता है, फिर विसर्जन के लिए हम यहाँ से विश्व से संगम जाते हैं विसर्जन के लिए। तो उस दिन भी बड़ा उत्साह रहता है बच्चों में, आप देख सकते हैं बुजुर्गों में, बिल्कुल एक भगवान की तरफ लीन है। भगवान से यही प्रे करते हैं कि आपस में प्रेम रहे, भाईचारा रहे और कश्मीर में शांति आए।
5: बापा की ये मूर्ति यहाँ पर पुणे से लाई गई है और यहाँ पर हर साल पूरे उत्साह के साथ स्थानीय लोग गणेश जी का पूजन करते हैं। इस त्योहार की खास बात स्थानीय मुस्लिम समुदाय का सहयोग है जो उत्सव की व्यवस्थाओं में आयोजकों की मदद करता है और कश्मीर की सदियों पुरानी कश्मीरियत और भाईचारे की मिसाल पेश करता है।
7: आम आवाम जो सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं लेकिन जो यहाँ की लोकल मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी वो भी हमारे साथ यहाँ पे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है और मैं समझता हूँ कि भगवान गणेश से हमारी ये प्रार्थना इन दिनों में रहेगी कि जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों में, घरों में जो भी मुसीबतें हैं, रोज़गार के हवाले से है, सेहत के हवाले से है, पैसों के हवाले से है, कोई भी मुसीबत जो है, जहनी अजाब है, उस सब का निवारण हो, उस सबसे उनको मुक्ति मिले और जम्मू कश्मीर एक खुशहाल और प्रॉस्परस जगह हम सब के लिए बने।
5: इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा, बिजली, पानी और साफ सफाई के कड़े इंतजाम किए जाते हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के गणपति की आराधना कर सकें। अशरफ पानी, कांजीकुंड, जम्मू कश्मीर, गुड न्यूज टुडे।
4: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भक्ति का एक ऐसा अनोखा रूप सामने आया है जो लोगों को हैरान कर रहा है। शहर के उत्कर्ष स्टेट में रहने वाले सीए राजकुमार शाह ने अपने घर को ही गणेश जी की प्रतिमाओं के संग्रहालय में बदल दिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 5000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का संग्रह, पिछले 23 साल से गणेश प्रतिमाएं जुटाने वाले राजकुमार शाह के पास आज 5000 से ज्यादा प्रतिमाएं हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इनमें देशी नहीं बल्कि विदेशों से लाई गई प्रतिमाएं भी शामिल हैं।
8: अलग अलग आकार, डिजाइन और रंग की इन गणेश प्रतिमाओं का ये अनोखा संसार 23 साल की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। गणेश प्रतिमाओं से जुड़ी ये कोई दुकान नहीं है बल्कि ये एक अनोखा म्यूजियम है जहां 1000-2000 नहीं बल्कि 5000 से ज्यादा गजानन की मूर्तियों को एक छत के नीचे सहेज कर रखा गया है। यह अनोखा म्यूजियम बनाया है उत्कर्ष स्टेट में रहने वाले सीए राजकुमार शाह ने, जिन्होंने अपने घर को ही संग्रहालय में तब्दील कर दिया है।
9: कौन कौन सी कंट्रियां जहां से आप ये मूर्तियां?
10: सर, मैक्सिमम तो हिंदुस्तान में बॉम्बे, पूना, जयपुर, उदयपुर, बैंगलोर, मैसूर, कोलकाता, इंदौर और बाहर से हम लोग लेके आए हैं थाईलैंड, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, बाली, वहाँ से हम लेके आए। गणेश कलेक्शन जो है हर भगवान का एक स्वरूप होता है बट सिर्फ गणपति भगवान ऐसे हैं जिनके एन नंबर ऑफ स्वरूप हैं, तो दैट्स द रीजन कि भाई कलेक्शन जो है वो सिर्फ गणपति का हो सकता है। राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे तो वो एक उनका एक स्टाइल होता है बट गणेश ऐसे हैं कि कुछ भी स्टाइल आप देखें, यहाँ पे भांगड़ा करते हुए गणपति है, सिंथेसाइजर बजा रहे हैं, डॉक्टर गणेशा है, बाला साहब ठाकरे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, साईं बाबा हैं, तो गणपति ऐसे हैं जिनके एन नंबर ऑफ स्वरूप हो सकते हैं।
8: राजकुमार शाह बताते हैं कि उन्होंने अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए अलग अलग कमरे तैयार किए हैं जहाँ इन तमाम मूर्तियों को बेहद सलीके से सजा कर रखा गया है। इस अनोखे संग्रह की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। राजकुमार शाह के अनुसार बचपन में वो गणेश जी के कार्ड इकट्ठा किया करते थे, जब वो कार्ड खराब हो गए तो उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने गणेश प्रतिमाओं का संग्रह शुरू किया और धीरे धीरे ये शौक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। 5000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं का ये कलेक्शन सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है बल्कि ये 2 दशक से ज्यादा समय से चली आ रही आस्था, लगन और समर्पण की अटूट कहानी है। जो गणेश भक्त को आकर्षित करने के साथ प्रेरणा भी दे रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा कदम उठाया है। मंदिर समिति ने इस बार मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 20 करोड़ रुपए का पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कराया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है गणपति भक्तों का 20 करोड़ का बीमा। आपको बता दें कि खजराना मंदिर समिति गणेशोत्सव के दौरान मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा है, लिहाजा इस बार उसने श्रद्धालुओं के पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कराया है और इस इंश्योरेंस की राशि 20 करोड़ रुपए रखी गई है। खजराना मंदिर में ये पहली बार नहीं है जब श्रद्धालुओं का इंश्योरेंस कराया गया है। इससे पहले श्रद्धालुओं का करीब 2 करोड़ रुपए का बीमा कराया जाता था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। दरअसल हर साल खजराना मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार बीमा की राशि को 10 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है। इसमें मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में पॉलिसी के नियम शर्तों के मुताबिक बीमा का लाभ दिया जाएगा।
11: दिनांक 14 सितंबर से लेकर 24 सितंबर से जितने भी श्रद्धालु मंदिर परिसर में आते हैं उनका 20 करोड़ रुपए का बीमा ओरिएंटल बीमा कंपनी की ओर से करवाया गया है। अगर मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, अनहोनी या किसी बैरिकेड टूटना या कोई पेड़ गिरना या कोई भी अप्रिय घटना होती है तो 20 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी ली गई है। यह बीमा पॉलिसी श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भक्तों के लिए कराई गई है।
12: इस बार इसमें एक पहल और भी रहेगी कि जो हमारा ये पूरा पवित्र जो त्यौहार चल रहा है इस दौरान हम लोगों ने सभी श्रद्धालुओं का बीमा भी कराया है और 20 करोड़ रुपए का जो उनका राशि क्लेम राशि रहेगा वो रहेगा और भगवान करे ऐसी कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन हम लोग सभी अपने श्रद्धालुओं के लिए ना सिर्फ उनकी सुविधाओं के लिए बल्कि उनके हर लिहाज से उनकी बेहतरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
4: और हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन यात्रा के अंतिम दौर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और अब तक रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां मत्था टेकने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है हेमकुंड यात्रा के अंतिम दौर में भक्तों का उत्साह। आपको बता दें कि इस समय हेमकुंड साहिब में जबरदस्त ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हेमकुंड साहिब में पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं।

0: हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। यहां अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में हर साल देश विदेश से सिख संगत मत्था टेकने पहुंचती है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। इस समय हेमकुंड साहिब में जबरदस्त ठंड के बावजूद यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। सितंबर का महीना चल रहा है और मौसम में ठंड बढ़ने लगी है। हल्की बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का हेमकुंड साहिब पहुंचने का सिलसिला जारी है। यात्रा का अभी 20 दिनों से अधिक का समय शेष है और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं में उत्साह कायम है।
1: हेमकुंड साहिब यात्रा का अब तीसरा चरण, अंतिम चरण जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गया है। हालांकि इस बार मानसून और यात्रा काल में जबरदस्त यात्री हेमकुंड साहिब में पहुंचे। देश और विदेशों से जो सिख संगत हैं वो हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने पहुंचे, वहीं रिकॉर्ड तोड़ अब तक की जो सबसे अधिक संख्या है, आज तक की बात करें तो 3,24,000 जो सिख श्रद्धालु हैं वो मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं, जो अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या है।
0: इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद अब गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट ने अगले साल की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। अगले यात्रा सीजन के लिए राशन और अन्य जरूरी सामग्री पहले से ही हेमकुंड साहिब और घांघरिया में पहुंचाकर स्टॉक किया जा रहा है।
2: लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं।
0: हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ ही चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की भी यात्रा शुरू हो गई है। बरसात के दौरान सड़क, पानी और बिजली से जुड़ी जो भी समस्याएं आ गई थी उन्हें प्रशासन द्वारा तेजी से ठीक किया जा रहा है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। यात्रा के दूसरे चरण में बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। चटक धूप के बीच सड़कों पर गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। लगातार गाड़ियां बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ रही है। मानसून के दौरान श्रद्धालु चारधाम यात्रा से परहेज करते हैं, लेकिन मानसून खत्म होने के बाद एक बार फिर से यात्रा में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कमल नयन सिलौड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
3: और अयोध्या में जल्द ही एनर्जी का क्षेत्रीय हब बनने जा रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर के लालखां गांव में इसके लिए 65 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है। यूपी की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है अयोध्या में बनेगा एनर्जी का रीजनल हब। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यूपी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के लालखां गांव में 65 एकड़ बंजर जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है। इस जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का क्षेत्रीय हब विकसित किया जाएगा। इससे अयोध्या केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस सेंटर पर जी की मौजूदगी से आतंकवाद निरोधक एक्शन और हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षित बल की तैनाती और ट्रेनिंग की सुविधा अयोध्या के आसपास उपलब्ध होगी।
4: अयोध्या के राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में एक अहम प्रस्ताव पास किया है। सबसे बड़ी बात है यह अहम प्रस्ताव 65 बीघे की बंजर जमीन पर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनेगा जहां पर ट्रेनिंग की जा सकेगी। महत्वपूर्ण यह भी कि सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में अगर बात करें तो इस समय विदेशी श्रद्धालु के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट और इसके साथ साथ अब उस श्रद्धालु की सुरक्षा को देखरेख किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा था कि तकरीबन 65 बीघे की बंजर जमीन पर एनएसजी का वो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहां पर ट्रेनिंग की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश यानी कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एनएसजी का क्षेत्र बनेगा, हब बनेगा।
3: मऊ जिले के नगर क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 17 की रहने वाली 7 साल की मासूम बच्ची समरा नाज ने 1 सितंबर को अपने मोहल्ले की टूटी हुई जर्जर सड़क को बनवाने के लिए डीएम दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई थी। समरा का अनुरोध डीएम ने मान लिया और उनके मोहल्ले की सड़क बन गई है। ऐसे में आज की जो हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है मऊ के डीएम ने सड़क बनाने का वादा निभाया। आपको बता दें कि समरा ने डीएम से कहा था कि टूटी सड़क होने की वजह से उसे स्कूल जाने में समस्या होती है। इसके बाद जिलाधिकारी ने बड़े ध्यान से इस मासूम बच्चे की बात सुनते हुए बच्ची से कहा था कि बेटा आप जाइए और पढ़ाई करिए, हम आपकी सड़क बनवा देंगे। उस सड़क को अब बनवा दिया गया है।
5: कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। 7 साल की समरा नाज ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। 1 सितंबर को ये नन्ही बच्ची अपने मोहल्ले की सड़क बनवाने की फरियाद लेकर सीधे डीएम दफ्तर पहुंच गई। समरा ने जिलाधिकारी को बताया कि उसके मोहल्ले की सड़क इतनी खराब है कि स्कूल आते जाते वक्त वो अक्सर गिर जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और स्कूल पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। समरा की बात छोटी जरूर थी लेकिन उसकी परेशानी बड़ी थी। डीएम आनंद वर्धन ने भी इस मासूम की बात को अनसुना नहीं किया बल्कि हाथों हाथ लिया, बच्ची से वादा किया कि उसके मोहल्ले की सड़क जल्द बनेगी।
6: छोटे बच्चों द्वारा ये संज्ञान में लाया गया और निर्भीकता से अपनी बात को रखा गया, इस बात की हमें दाद देनी चाहिए। और जनता दर्शन में तमाम तरह की समस्याएं हम लोगों के संज्ञान में आती है, परंतु बच्ची ने अपनी बात को उठाया और उसको पूरा कराया, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ उनको भी।
5: सड़क बनी तो डीएम साहब भी अपना वादा पूरा होता देख खुद समरा के घर पहुँच गए, नई सड़क का निरीक्षण किया। डीएम ने समरा का हाथ थामा, उससे पूछा अब खुश हो? तब 7 साल की बच्ची के चेहरे की मुस्कान के साथ निकला सिर्फ 2 शब्दों का जवाब, यस सर।
6: अब तो पानी नहीं लगेगा।
5: फिर शुरू हुआ खुशियों का सिलसिला। डीएम ने अपने हाथों से समरा को मिठाई खिलाई, चॉकलेट दी और फिर दिया ऐसा तोहफा जिससे समरा की खुशी पर 4 चांद लग गए। वो तोहफा था एक नई साइकिल। जिस रास्ते पर कभी समरा गिर जाया करती थी उसी रास्ते पर अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ साइकिल दौड़ा रही है। समरा साइकिल चला रही थी और डीएम और अधिकारी उसके साथ पैदल चल रहे थे।
7: डीएम सर ने मेरा घर का रास्ता बनवा दीजिए और सारे मीडिया वाले अंकल एंड आंटी लोग थैंक यू मेरे घर का, आप लोग मेरे वीडियो चलाने के लिए। और डीएम और यू सर और जी जे सर थैंक यू।
5: समरा ने दिखा दिया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन हौसला बड़ा हो तो आवाज सीधे जिम्मेदारों तक पहुंच सकती है। और दूसरी तरफ डीएम आनंद वर्धन ने भी ये दिखाया कि सिस्टम अगर संवेदनशील हो, अधिकारी एक्टिव हो और शिकायत पर तुरंत एक्शन हो तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान तलाशा ना जा सके। मऊ से दुर्गा किनकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
3: 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303-409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजिए तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
14: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
16: बोल लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई, अगले बरस तू जल्दी आके जयकार के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन GNT संग मनाइए उत्सव के रंग। घर में छाई गणेश उत्सव की धूम, चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, एक साथ हो रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। धौलपुर में शाही स्नान के बाद देव छठ पर लगने वाले मचकुंड मेले का शुभारंभ, संतों ने बैंड बाजों के साथ की तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। आरा में बाढ़ प्रभावितों के लिए अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों को जाकर बांटी राहत सामग्री।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
16: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदलती जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे पर कहने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सिर्फ सीमित नहीं है बल्कि हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए, आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस दोनों वीडियो की जिसको शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम की अनुमति लेने के भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने सवर्ण समाज से ताल्लुक रखने वाले एक अधिकारी को पीट दिया। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो की है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो जो है इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी में हुए हालिया विस्फोट का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
16: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसमें इसके जरिए जो है ये कहा जा रहा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम की अनुमति लेने गए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने

0: किसी दफ्तर का ये वीडियो है जहाँ नीले रंग का झंडा लिए कुछ लोग खड़े हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में जूता लिए एक दूसरे शख्स की पिटाई करता नजर आता है। इस दौरान दोनों में तीखी नोकझोंक भी होती है। इस दौरान कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता, मानो वहाँ पर मौजूद लोग ऐसा तय करके बैठे हैं कि जो हो रहा है वो होना ही था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि भीम आर्मी के कुछ समर्थकों ने किसी सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट की क्योंकि वो सवर्ण समाज से आते हैं। वीडियो को एक्स और फेसबुक पर शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के एक कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेने गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि संबंधित अधिकारी सवर्ण समाज से आते हैं तो उन्होंने अधिकारी की पिटाई कर दी। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भीम आर्मी के समर्थक एक कार्यक्रम में आयोजन के दौरान गए और प्रशासन से अनुमति लेने गए थे। वहां पर उन्होंने एक अधिकारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो सवर्ण था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। ऐसे में जो दावा किया जा रहा है वो सही है या गलत, ये जानना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि हमारा मकसद है फैक्ट चेक के जरिए सच और झूठ को बेनकाब करना। तो देखिए, वीडियो की जांच हमने की। वीडियो किसी चैम्बर का लग रहा है और वहां नीला झंडा लिए हुए कुछ लोग आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। वहां एक बुजुर्ग शख्स भी नजर आ रहा है, जो कुछ सेकंड्स के बाद ये बुजुर्ग शख्स सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे व्यक्ति पर हमला कर देता है। लेकिन इस दौरान एक बात गौर करने वाली है, बुजुर्ग अधिकारी पर हमला किया गया लेकिन इस दौरान वहां खड़े लोगों ने कुछ भी वहां पर प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला और ये हमको देखने में थोड़ा अटपटा लगा। अगर भीम आर्मी के समर्थक किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने गए थे और एक अधिकारी ने अगर अनुमति देने से आनाकानी की होती तो सभी लोग एक्शन में जरूर नजर आते, तू मैं देखने को मिलती, लेकिन वहां पर सिर्फ एक बुजुर्ग शख्स गुस्से में नजर आ रहा है और वो हमला कर रहा है। इसके अलावा अगर अधिकारी को उनके चैम्बर में पीटा गया होता तो शोर भी मचता और शोरगुल सुनकर अधिकारियों के साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी वहां पर जरूर पहुंचते, कुछ प्रतिक्रिया देते। अधिकारी के साथ हुई हाथापाई और कुछ मिनट के बाद वो एक कमरे के अंदर घुस गया। यह देखकर हमें वीडियो की सत्यता पर संदेह हुआ। वीडियो में कुछ आवाजें हमको सुनाई दे रही हैं। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो यह सामने निकल कर आया कि यह कन्नड़ भाषा है, यानी वायरल वीडियो कर्नाटक के किसी इलाके का हो सकता है। ऐसे में देखिए, हमने चंद्रशेखर की आजाद पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला। इस दौरान हमें यह जानकारी जरूर निकलकर मिली कि पार्टी कैडर स्थानीय स्तर पर दक्षिण भारत और कर्नाटक में संगठन विस्तार की कोशिशें जरूर करता रहता है, लेकिन फिलहाल वहां किसी बड़ी जनसभा या राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना नहीं आई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर भीम आर्मी के समर्थकों ने सवर्ण समाज से ताल्लुक रखने वाले अधिकारी को पीटा तो यहां सिर्फ एक शख्स ही पिटते हुए क्यों नजर आ रहा है। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये आपसी विवाद का वीडियो हो सकता है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो हालिया है तो इसके बारे में किसी आधिकारिक स्रोतों से जानकारी निकलकर सामने क्यों नहीं आई, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक कन्नड़ चैनल के यूट्यूब चैनल पर मिला जिसे 13 जून को अपलोड किया गया था। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कर्नाटक के बगलकोट टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का है। 20 साल से ज्यादा समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे एक किसान ने गुस्से में आकर दफ्तर के एक अधिकारी को चप्पल से मार दिया था। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार खोजबीन के बाद इस साल 13 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो के दृश्य मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कर्नाटक के बागलकोट के नवनगर इलाके में स्थित बागलकोट टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालय में हुई थी। घटना के समय दलित संघर्ष समिति के कार्यकर्ता बीटीडीए कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों के लिए साइट आवंटित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान किसान बसप्पा दोड्डामणि ने भी अपनी जमीन के मुआवजे का मुद्दा उठाया। किसान का कहना था कि उनकी 4 एकड़ कृषि भूमि करीब 10 साल पहले कृष्णा नदी में डूब गई थी, लेकिन बीटीडीए अधिकारियों की ओर से उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया था। इसी दौरान किसान की बीटीडीए के फर्स्ट डिवीजन क्लर्क नीलकंठ अंकत से बहस हो गई। बहस बढ़ने के बाद किसान ने अपनी चप्पल उतारकर नीलकंठ अंकत पर हमला कर दिया।

0: मामले पर बीटीडीए कर्मचारी नीलकंठ ठंकर ने नवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहीं भी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और सामान्य वर्ग के अधिकारी के साथ मारपीट का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। सर्च के दौरान हमें 13 जून 2026 की एक वीडियो रिपोर्ट भी मिली। इस रिपोर्ट में भी वायरल क्लिप वाले दृश्य मौजूद हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक के बागलकोट में मुआवजा मिलने में देरी से नाराज एक किसान ने एक अधिकारी पर चप्पल से हमला कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। ये मामला कर्नाटक के बागलकोट जिले का है, जहां एक किसान ने सालों से मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया और गुस्से में एक अधिकारी को पीट दिया। वायरल वीडियो का भीम आर्मी या चंद्रशेखर आजाद से कोई लेना देना नहीं है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है खूब वायरल हो रहा है। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऊंचे उठते लावे और भागते लोगों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जो है इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो जो है इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी में हुए हालिया विस्फोट का है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। देखिए,
0: चार सितंबर की रात को इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। इसकी वजह से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। इससे लाखों यात्री प्रभावित हुए। ये कदम ज्वालामुखी विस्फोट के चलते एयर स्पेस में बाधा पैदा होने की वजह से उठाया गया था। इसी घटना से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऊंचे उठते लावा और भागते लोगों को देखा जा सकता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो इंडोनेशिया के अनाका क्राकाटुआ ज्वालामुखी में हुए विस्फोट का है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इंडोनेशिया में हाल ही में अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है। इससे निकली राख बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई, जिससे कई हवाई अड्डे बंद करने पड़े। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर पड़ता है, इसी कारण यहां कई ज्वालामुखी एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। सेमेरू, इली, लेवोटोलोक और इबू जैसे दूसरे ज्वालामुखी भी पिछले कुछ दिनों से सक्रिय है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी में 4 सितंबर की रात विस्फोट हुआ था। अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी में विस्फोट से निकली राख का असर नए इलाकों में भी देखने को मिला, महसूस किया गया। अनाक का क्राकाटुआ के अलावा 3 और ज्वालामुखियों नॉर्थ मुलुक में माउंट इबू, ईस्ट जावा में माउंट सेमरू और ईस्ट नुसा तेंगारा में भी विस्फोट के कारण लावा देखने को मिला। और इसी से जोड़ते हुए ये वीडियो जो है वायरल किया जा रहा है। इसमें ज्वालामुखी में विस्फोट होता हुआ आपको नजर आएगा और वहां से लोग भागते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था हमारे लिए, लेकिन वीडियो की जांच के दौरान फैक्ट चेक की टीम को कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें दावे के पर शक हुआ और इसके असली होने पर हमको संदेह पैदा हुआ। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वीडियो के शुरू में ज्वालामुखी विस्फोट के समय लोग निश्चिंत खड़े हुए साफ तौर पर नजर आते हैं और थोड़ी देर बाद वहां खड़ी गाड़ियां भी अचानक दौड़ने लग जाती हैं और वहां पर एक कार में ड्राइवर नहीं दिख रहा है, जबकि सड़क पर भागते एक शख्स के पैर गायब हो जाते हैं और वो खुद के पीछे बैकग्राउंड में मर्ज होता हुआ हमको नजर आया। साथ ही साथ अचानक क्राकाटुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के बीच जिस द्वीप पर मौजूद है वहां लोग नहीं रहते हैं। सबसे नजदीक आबादी सुमात्रा के लामपुंग या जावा के बांतीन में रहती है, जबकि वायरल वीडियो में रिहायशी ज्वालामुखी फटने के साथ स्थान से काफी नजदीक दिखाई देता है, ऐसा देखने को हमको लगता है। ज्वालामुखी फटने का समय रात के करीब 11:20 का बताया गया, यानी विस्फोट रात में हुआ। और वीडियो को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि ये अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी विस्फोट का ये वीडियो है। तो ऐसे में हमारा पहला सवाल यही है कि अगर विस्फोट रात में शुरू हुआ है तो वायरल वीडियो में दिख रहे दृश्य दिन के कैसे नजर आ रहे हैं। वीडियो में जो गाड़ियां देखने को मिल रही हैं उनके नंबर प्लेट अजीब तरीके से नजर आ रहे हैं। अमूमन ये असली वीडियो में नहीं होता। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल भी यही उठता है कि कहीं जानबूझकर एडिटेड मॉफ्ड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटने का बताकर वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच में हमें किसी भी विश्वसनीय इंडोनेशियन मीडिया आउटलेट पर मौजूद रिपोर्ट में वायरल वीडियो से जुड़ी तस्वीर नहीं मिली। सर्च के दौरान हमें एक इंडोनेशियन इंस्टाग्राम अकाउंट से 5 सितंबर को अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटने के दृश्य अपलोड किए हुए मिले और ये कहीं से भी वायरल वीडियो में दिख रहे दृश्यों से मेल नहीं खा रहे थे। इस अकाउंट पर हमें अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटने की घटना से जुड़े दो और वीडियोस भी अपलोड किए हुए मिले। इनमें से एक वीडियो में एक इंडोनेशियन क्रिएटर ये कहते हुए भी सुनाई दे रही हैं कि 4 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हुए थे। इतना ही नहीं, हमें इंडोनेशिया के आधिकारिक जियोलॉजी एजेंसी के एक्स अकाउंट से भी 5 सितंबर 2026 को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इसमें भी ज्वालामुखी फटने का समय रात के करीब 11:20 का ही बताया गया था, जबकि वायरल वीडियो में दिख रहे दृश्य दिन के हैं। अब तक की पड़ताल से ये साफ हो गया था कि वायरल वीडियो में मौजूद दृश्य असल घटना वाले दृश्यों से किसी भी तरह से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में हमने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो हमें उसमें मौजूद लोग अजीब तरह से भागते और अचानक गायब होते दिखे। ये सब वीडियो के सिंथेटिक होने की तरफ इशारा कर रहे थे। हमने वीडियो को एआई डिटेक्टर टूल हाइव मॉडरेशन से चेक किया तो इसे 94% से अधिक एआई संभावित बताया गया। हमने वीडियो के की फ्रेम्स को वॉज इट एआई से चेक किया तो टूल ने इसे 97% एआई निर्मित बताया। हमने वीडियो के की फ्रेम्स को इमेज विस्परर टूल पर भी चेक किया। इस टूल ने वीडियो के की फ्रेम्स के एआई निर्मित होने की संभावना जताई। इससे ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो एआई निर्मित है। इसके बाद हमने अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के असली वीडियो को निकाला। एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 6 सितंबर 2026 को इस घटना का वीडियो अपलोड किया हुआ मिला। वायरल हो रहे वीडियो और इस असली वीडियो का जब हमने मिलान किया तो फर्क साफ साफ नजर आ गया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटने का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में एआई जनरेटेड है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: भक्ति के लिए बड़े इंतजाम नहीं, सच्ची भावना जरूरी है, जो वायरल हो रही वीडियो में बखूबी नजर आ रही है।
3: कुछ बच्चों ने अपनी मेहनत और कल्पना से एक छोटा सा घर बनाया और उसमें गणपति बप्पा की स्थापना की। साधारण से इंतजाम के बीच बच्चों की श्रद्धा और खुशी देखकर लोग भावुक हो रहे हैं।

माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हों। बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। इस वीडियो में भी माँ की ममता का ऐसा ही खूबसूरत अंदाज नजर आया। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, लेकिन इसे बेच अपने लाल को दुलारना भी नहीं भूल रही। कभी प्यार से उसे छूती है तो कभी अपने आंचल के करीब कर लेती है, और बच्चा भी माँ का प्यार पाकर खिलखिला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो माँ बच्चे के इसी अनमोल रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है।

काम मोहताज नहीं होता, और जब हाथों में कला हो तो साधारण दीवार भी खूबसूरत कलाकृति में बदल जाती है। चीन के जेंजी पीढ़ी की एक लड़की इन दिनों अपने अनोखी हुनर की वजह से वायरल हो रही है। सीमेंट की मदद से वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी बेहद असली दिखने वाली रिलीफ म्यूरल कलाकृतियाँ बना रही है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल से दीवार पर उभी हुई नक्काशी करती है। उसका ये अनोखा अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी चमकर तारीफ कर रहे हैं।

इस वीडियो ने लोगों का ध्यान आधुनिक चीजों से हटाकर मिट्टी और पारंपरिक कारीगरी की ओर खींच लिया है। शख्स मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए बोतल तैयार कर रही है। जिस तरह से वे अपने हाथों से मिट्टी को आकार देते हैं वो देखने में काफी दिलचस्प लगता है। बिना किसी आधुनिक मशीन या चमक दमक के तैयार की जा रही ये बोतल अपनी सादगी में ही खास नजर आती है। लोग उनकी कला और हुनर की सराहना कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ों पर तैनात भारतीय जवानों ने मुश्किल हालात के बीच जमकर भांगड़ा किया। कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जवानों का जोश और उत्साह देखने लायक था। जवानों के इस अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया और भाईचारे की मिसाल पेश की।

0: कर रही, हाँ तप मैं कर रही, त्याग मैं कर रही, करती रहूंगी चाहे।
1: हनुमान अंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील बन चुकी हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने की बोल पर जो जवाब दिया है उसे देख कर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे। आप भी इन्हें सुनिए।
0: बस शिव को चाहिए।

जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था तो दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। ये जज्बा खेल को खास बनाता है क्योंकि मैदान में ट्रॉफी को एक जीतता नहीं है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं।

0: वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। वह नाले से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। वह जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और इस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ ही कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के देवता श्री गणेश की भक्ति के रंग दिखाएंगे। साथ ही उत्तराखंड में भक्ति का दूसरा चरण, चार धाम मार्ग पर आस्था अपार दिख रही है। इसके अलावा गुरु की तपोस्थली हेमकुंड साहिब, जहां पहुंचने के लिए होती है धैर्य साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा, तमाम खबरें होंगी। लेकिन पहले हेडलाइंस
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: ढोल नगाड़ों के साथ जेएनटी न्यूज रूम में पधारे बप्पा की विदाई। अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे के साथ बप्पा की प्रतिभा का विसर्जन, जेएनटी संग मनाइए उत्सव के रंग। देश भर में छाई गणेश उत्सव की धूम, चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, एक साथ हो रहे 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। संसद बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। आरा में बाढ़ प्रभावितों के लिए अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बढ़ाया मदद का हाथ, लोगों को जाकर बांटी राहत सामग्री। और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात विघ्नहर्ता की। देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा छाई हुई है। परंपरा और श्रद्धा के अनुसार लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं। इसलिए अब बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेएनटी के बप्पा की भी पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ विदाई हुई। इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जय घोष से पूरा देश गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। पप्पा के दिव्य रूपों का तो कहना ही क्या, अद्भुत रूप, जबरदस्त श्रृंगार और दिव्य छटा। मुंबई में अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहाँ पर आके बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं।
0: महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जेएनटी न्यूज रूम में विराजे पप्पा को भी पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। गणपति विसर्जन में हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुआ। पप्पा की विदाई का ये पल भावुक करने वाला भी रहा। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी के सितारे पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन में शामिल दिखे। सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान का पूरा परिवार और दूसरे सितारे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। चाहे अभिनेत्री डेजी शाह के घर विराजे बप्पा हो या फिर अभिनेता गोविंदा के घर के गणपति, सबने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदाई दी।
2: विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे, गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: अपने घर विराजे गणपति के विसर्जन में भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ठीक उसी रंग में नजर आई जैसा कि बप्पा की स्थापना को लेकर दिखा था। बॉलीवुड सितारे हो या फिर टीवी स्टार, सभी बप्पा को हंसी खुशी विदाई देते दिखे, हालांकि उनमें भावुकता भी दिखाई पड़ी।
3: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
0: अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। गणेशोत्सव से जुड़ी भक्ति के बीच बप्पा के अलग अलग स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा शहर भाजी बाजार परिसर में विराजे बप्पा को देखिए। श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल ने हर वर्ष की तरह इस साल भी पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाई है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का उपयोग किया गया है। वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहौरा गांव में गणेश उत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यह एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चुचपल्ली स्थित बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर दिख रहा है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बास से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
4: बांबू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है।
0: पुणे के फर्गुसन रोड से जुड़ी इस भव्य प्रतिमा को देखिए। 13 फीट ऊंची बप्पा की ये प्रतिमा 21,000 पानी पूरी से तैयार की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में बप्पा की ये प्रतिमा सिक्को और चॉकलेट से बनाई गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लोगों को लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठठेरी बाजार इलाके के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई भगवान गणेश के इस भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं।
5: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लालबाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लालबाग के राजा की स्थापना का है जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो पूरा उत्सव है वो 5 दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा।
0: प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कहीं बप्पा का बाल स्वरूप बच्चों को आकर्षित कर रहा है तो कहीं एक ही प्रतिमा में 3 भगवानों के दर्शन हो रहे हैं।
6: मोहसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है, और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: हरिद्वार के गीता भवन में श्री महामाया गणपति संगठन की ओर से इस बार विशेष गणपति की स्थापना की गई है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ की थीम पर यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है।
7: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है।
0: गणेश उत्सव के दौरान ऐसे ही दिव्य रंग देश के दूसरे हिस्सों में भी छाए हुए हैं, जिसमें भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाशिम से जका खान, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात चारधाम यात्रा की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या 50 लाख से कहीं ज्यादा बढ़कर अब 51 लाख की ओर बढ़ रही है। बारिश के मौसम को लेकर चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा के इस दूसरे चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो चुकी है।

0: बद्री विशाल का दरबार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरम में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर यात्रा मार्गों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। बारिश का दौर पूरी तरह थमने और मौसम के साफ होने के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: चार धाम यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम ने जहां अब राहत दे दी है, चटक धूप खिली हुई है, वहीं गाड़ियों की कतार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जितनी कठिन ये यात्रा है, इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यात्रा मार्गों पर बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
0: चार धाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी समस्याएं हुई थी, उन सभी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है।
2: बरसात खुल गई है और बरसात के बाद हमारी यात्रा हमेशा बढ़ती है, बड़ी अच्छी संख्या में यात्री आते हैं, क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी हमारा शुरू हो जाता है। तो पिछले और उससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इस बार भी आएंगे ऐसी उम्मीद है और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य यात्रा समय है, उस समय भी जो रोड और जो अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, उस पर बड़ा अच्छा काम किया गया था। और बरसात के बाद काफी जगह पे रोड जो जैसी थी उस पर काम कंप्लीट कर दिया गया है और यात्रा रोड हमारा सुचारू है। अन्य व्यवस्थाएं जो पेयजल, बिजली और जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी सुचारू रूप से संचालित हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
0: मानसून के दौरान चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लिहाजा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का लोगों को इंतजार रहता है। बद्रीनाथ धाम में अब प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री पहुंच रहे हैं। यह यात्रा के सीजन में अब तक दर्शनार्थियों की संख्या 17,36,000 को पार कर चुकी है। वहीं केदारनाथ में 14,98,000 से ज्यादा, तो गंगोत्री में 7,89,000 और यमुनोत्री में 7,08,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
3: हेलीकॉप्टर यात्रा भी 15 सितंबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले ही दिन 9,000 के करीब टिकट बुक हो गए और ये 15 तारीख से 30 सितंबर तक का पहले फेज में ये टिकट बुक हुए। तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
0: मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में कुछ समय के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब ये भी शुरू हो चुका।
3: पहले फेज में ये टिकट बुक हुए, तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
0: मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में कुछ समय के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब ये भी शुरू हो चुका है। 15 से 30 सितंबर तक के लिए टिकट की बुकिंग हो चुकी है।
4: पर किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं।
0: यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 15 से 15 दिनों के लिए टिकट बुकिंग का फैसला लिया गया है।
5: तकरीबन 8,900 टिकट 15 सितंबर से 30 सितंबर की हमने लाइव अभी तक करी हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम हमने यही डिसीजन लिया कि फेज वाइज ही हम टिकट्स को लाइव्स को 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की टिकट्स को लाइव करेंगे। 22 अक्टूबर को भी है ठीक 11 बजे IRCTC वेबसाइट पर ही टिकट्स आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से और 15-15 दिन के अंतराल में हम लोग टिकट्स को लाइव करते रहेंगे ताकि एक साथ पूरे सीजन की टिकट एग्जॉस्ट ना हो और जो भी यात्रीगण श्रद्धालुगण चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त समय मिले टिकट्स को बुकिंग करने।
0: यात्रा के इस दूसरे चरण में अब श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी सुविधा का भी कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लिहाजा इस सीजन में चार धाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और देहरादून से अकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुनिश्रे।
6: और अब बात चार धाम यात्रा के साथ चल रहे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जिसके समापन की तारीख नजदीक आ रही है। 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का समापन हो जाएगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच और बढ़ती ठंड के बीच सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना प्रकृति को चुनौती देने जैसा है। फिर भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु साहिब के दर्शन कर चुके हैं। पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का पांचवा सबसे पवित्र धाम माना जाता है।
7: श्री हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। करीब 2.5 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास, श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जहां दर्शन करने पहुंचना साक्षात तपस्या की तरह है। ज्यादा ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के कारण श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर पर अपनी हाजिरी लगाना, किसी भी श्रद्धालु के लिए यहां तक पहुंचना उसके धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा के समान है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब तक आध्यात्मिक सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि किसी भी श्रद्धालु की आत्मा और शरीर को झकझोर देने वाली एक कसौटी है। हेमकुंड साहिब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। इसके समापन में करीब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहिब के दरबार में माहौल पहले से ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। आधा सितंबर बीत जाने की वजह से हेमकुंड साहिब के आसपास ठंड बढ़ती जा रही है। अटूट आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से आस्था के इस कठिन मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह बरकरार है। गुरु साहिब के दर्शन के लिए उनकी श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है। गुरु के प्रति समर्पित भक्तों के कदमों को मार्ग की रुकावटें और मौसम की मार भी रोक नहीं पा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार इस साल 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं।
8: आज तक लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, भले हल्की बारिश भी हो रही है लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यात्री जो हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आ रहे हैं।
7: हर बार की तरह मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से इस बार भी अगले साल होने वाली यात्रा को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ये पवित्र धाम सर्दियों में भारी बर्फबारी की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से रास्तों के बंद होने से पहले राशन, ईंधन और दूसरी जरूरी मेडिकल और लॉजिस्टिक सामग्री को घांघरिया और हेमकुंड साहिब के बेस कैंपों में सुरक्षित रूप से स्टॉक कर लिया जाता है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की ये दूरदर्शिता अगले साल मई में कपाट खुलने पर तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर और ठहरने की व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने में मदद करती है।
8: ट्रस्ट के द्वारा इस यात्रा के लिए तो जो काम करने थे वो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए अगले साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब है घाघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है ताकि जो अगले साल की यात्रा का सामान जो है, क्योंकि जून माह में आपको पता है कि पूरा बर्फ से ट्रैक लबालब भरा होता है तो उसमें घोड़ा खच्चर आदि नहीं जाता, तो ये सारा हेमकुंड साहब में लगभग 1.5-2 महीने का स्टॉक है जो पहले ही यात्रा के समय ही स्टॉक करना पड़ता है।
7: गोविंद घाट से शुरू होने वाली ये यात्रा गोविंदा धाम यानी घाघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक जाती है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुँचते हैं। इस दौरान उनको सरकार और प्रशासन की तरफ से पालकी घोड़ा खच्चर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वहीं ये गुरुद्वारा स्थापित हुआ। गुरुद्वारे के साथ ही अमृत सरोवर भी मौजूद है। गुरुद्वारे में गुरु साहिब के सामने माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु नियम से बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में पुण्य कमाने के लिए स्नान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ भारी बर्फबारी होती है जिसकी वजह से ये पवित्र धाम करीब 7 से 8 महीने तक कई फीट बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि गुरुद्वारे के कपाट केवल गर्मियों के महीने खासकर मई या जून से अक्टूबर तक के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। फिर करीब 6 महीनों के लिए गुरुद्वारे के कपाट बंद रहते हैं, तब तक अगली यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन की और इसके प्रभाव की। इसके अलावा बताएंगे आपको 12 राशियों का दैनिक राशिफल और एक विशेष उपाय बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 7:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या संक्रांति के बारे में, यानी सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। ये पूरी स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि सूर्य की बड़ी फेवरेबल राशि नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से सूर्य

इसका प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा दुनिया के लिए और लोगों के लिए। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा और अलग अलग राशियों के जीवन में ये परिवर्तन अगले एक महीने तक असर डालेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो जैसा आपको बताया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। कैसा प्रभाव होगा? मेष राशि की अगर बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। राशि परिवर्तन शुभ है। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं, सतर्क रहें। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पारिवारिक अशांति हो सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, इस समय चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, मिथुन वाले दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर के लिए अच्छा है, करियर की समस्या आपकी हल होगी, नया मौका नया अवसर मिल सकता है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से बन जाएंगे, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है, शांत रहें और चोट

चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि इस समय आप चोट चपेट दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें दे सकता है, और अगर लापरवाही करेंगे तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कन्या वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जरा भी लापरवाही इस समय मत करिएगा, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखें बिगड़ सकती हैं, धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का और धन का लाभ होगा, करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में बदलाव दिखा रहा है और आगे चल करके ये बदलाव फायदेमंद साबित होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ऑफिस के कार्यों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पैरों में चोट चपेट लग सकती है,
वाहन सावधानी से चलाइएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन चोट चपेट दे सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। इस समय करियर के मामले में, विवाह के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें ला सकता है, करियर में समस्या आपके आ सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें, लीवर की दिक्कतें और डाइजेशन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको 12 राशियों के बारे में बताया कि किन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा खराब है। तो अगर राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। बड़े सारे मंत्र मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, सरलता से आप जप सकें उस मंत्र का जप करिएगा। और सबसे सरल मंत्र आप जानते हैं,
ओम आदित्याय नमः, ये मंत्र रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़िएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन का खराब प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस किसी दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है उस दिन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। तो जिस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, संक्रांति वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन वाले दिन, तो इससे सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: ढोल नगाड़ों के साथ जीएनटी न्यूज रूम में पधारे बापा की विधाई, अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे के साथ बापा की प्रतिमा का विसर्जन। जीएनटी संघ मनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। देश भर में छाई गणेश उत्सव की धूम, चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, एक साथ हो रहे 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। संसद बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बनारस में तैयार प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट की भी है।
7: उपहार ऐसा हो जो दिल को छू जाए, उसमें आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत और कोशिश भी झलके। काशी के बुनकरों द्वारा तैयार इस उपहार में वो सब है। कहने को तो ये बस सजावट का सामान है, वॉल हैंगिंग, लेकिन इस पर जो चित्र उभारे गए हैं वो लोगों का दिल छू रहा है। असल में ये तोहफा पीएम मोदी के लिए है। 17 सितंबर को उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए काशी के बुनकर और कश्यप सृजन फाउंडेशन के ट्रस्टी सर्वेश कुमार ने ये सुंदर तोहफा तैयार करवाया है। सर्वेश कुमार के मुताबिक बनारसी कपड़े पर पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन की तस्वीर वाली ये खूबसूरत वॉल हैंगिंग 5000 साल पुरानी पारंपरिक उचंत हस्तकला से तैयार की गई है। इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा है और इसकी कीमत करीब 25,000 रुपए है। अब इस खास तोहफे के जरिए वो काशी की पारंपरिक कला और बुनकरों की मेहनत को पीएम तक पहुँचाना चाहते हैं। तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हैं। सरकारी स्कूल है सरस्वती विद्या निकेतन, छात्राएं हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक सामने नहीं साइड में खड़े हैं, क्योंकि आज शिक्षक बनकर आए हैं खुद जिलाधिकारी सौरभ सुमन। विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए थे, कक्षाओं में जाकर पढ़ाई लिखाई का जायजा लेने लगे तो बच्चों से बातचीत हुई, और फिर तो इन्होंने अपनी क्लास ही लगा दी। किसी कक्षा में गणित तो किसी में अंग्रेजी और किसी में हिंदी की क्लास। बच्चों ने भी उनकी क्लास में खूब दिलचस्पी दिखाई, यहाँ तक कि उनसे फिर से आने का वादा भी ले लिया। जिलाधिकारी की ये सादगी इलाके में खूब सुर्खियां बटोर रही है। त्योहार एक ही है, बस नाम अलग है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ये विनायक चोरम त्योहार की रौनक है। भगवान गणेश की प्रतिमा है, साज सज्जा है, भजन कीर्तन है और भक्तों का जमावड़ा। असल में यहाँ गणेश चतुर्थी को विनायक चोरम के नाम से मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित इस त्योहार को पिछले 4 सालों से यहाँ धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस बार भी कांजीगुंड के वेसू में बनी माइग्रेंट कॉलोनी में त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग भक्तिभाव से गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली का आशीर्वाद मांग रहे हैं। यहाँ गणेश चतुर्थी 5 दिनों तक मनाया जाता है।

ये देखिए, गणपति की पूजा हो रही है तो उनकी सवारी मूषक का वहाँ होना तो बनता है। सो आ विराजे हैं, अपने आराध्य के चरणों में बैठकर वो भी पूजा स्वीकार रहे हैं। ये दिलचस्प नजारा आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आदिवासी लड़कियों के लिए बने सिलोरू आश्रम स्कूल की है। बच्चे गणपति की आराधना कर रहे हैं और ये मूषक महाराज चुपचाप बैठकर उनकी आराधना सुन रहे हैं। स्कूल के लोग कह रहे हैं कि विनायक चतुर्थी के शुरुआत से ही ये छोटा चूहा इस गणेश प्रतिमा के आसपास चक्कर लगा रहा है। लोग इस बात से भी हैरान हैं कि यहाँ के शोर, तेज संगीत और लगातार हो रही पूजा अर्चना के बावजूद चूहा बिल्कुल भी डर नहीं रहा, न ही भागने की कोशिश कर रहा है। इस दिलचस्प घटना के इलाके में खूब चर्चा है।

जम्मू कश्मीर अब अपनी समृद्ध विरासत को एक बार फिर से जी रहा है, अपने पुराने रंग रूप में लौटने लगा है। ये थिएटर सम्मेलन उसी की एक बानगी है। कश्मीर की समृद्ध थिएटर विरासत को फिर से जीवित करने के लिए यहाँ पहली बार थिएटर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये तस्वीरें उसी की हैं। 11 से 13 सितंबर तक चले इस आयोजन में रऊफ और पारंपरिक लोक रंगमंच बांड पाथर जैसी कलाओं के साथ साथ तीन प्रमुख नाटक जू कदम कैथिस्ताम कॉन्फ्लिक्ट और पागल कौन मंचित किए गए। श्रीनगर के टैगोर हॉल में हुए इस समारोह का आयोजन जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी ने मिलकर किया।

और अब बात करते हैं बॉलीवुड के सितारों ने दी बप्पा को कैसे विदाई। जी हाँ, इन दिनों हर ओर गणपति बप्पा की भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड सितारे हर साल बहुत ही धूमधाम से गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने घर गणेश जी की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी का विसर्जन भी किया। वहीं सलमान खान अपने भाई सोहेल खान और बहन अर्पिता के साथ गणपति विसर्जन में शामिल हुए और सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में पूरे विधि विधान से बप्पा को विदाई दी। इन सितारों के अलावा कई और सितारों ने भी गणेश मूर्ति की स्थापना की और गाजे बाजे के साथ बप्पा को विदाई दी। देखिए

0: ये विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति बाप्पा की भक्ति के रंग हैं। हर ओर गणपति बाप्पा मोरिया का जयघोष है। बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जयघोष से पूरा देश गूंज रहा है। हर भक्त की आंखों में बाप्पा के दर्शन की आस है, हर दिल में गणपति के स्वागत का उल्लास है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। गणेशोत्सव के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बाप्पा के दर्शन के लिए आम से लेकर खास तक हर कोई बाप्पा के दरबार पहुंच रहा है, चाहे वो मुंबई के लालबाग के राजा का दरबार हो या फिर सिद्धिविनायक मंदिर। वहीं गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बाप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ भक्त प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं।
1: गणपति बाप्पा मोरिया।
0: कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बाप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। आम लोगों के साथ बॉलीवुड और टीवी के सितारे भी पूरे भक्तिभाव के साथ बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता गोविंदा भी गणपति विसर्जन करते नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा और परिवार के साथ इको फ्रेंडली बप्पा का स्वागत किया था और नाचते झूमते हुए पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन किया।

0: शिल्पा शेट्टी गणपति विसर्जन के दौरान पीली साड़ी में नजर आए और उनके साथ परिवार के लोग भी मौजूद रहे। शिल्पा ने पूरे भक्तिभाव के साथ बप्पा की पूजा की और उन्हें विदाई दी। इस दौरान शिल्पा ने परिवार के सदस्यों और दूसरे लोगों के साथ जमकर डांस किया। वहीं अभिनेता गोविंदा भी अपने बेटे के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे। सामने आए वीडियो में गोविंदा हाथ जोड़कर बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। उनके बेटे भी गणपति की मूर्ति को लेकर विसर्जन के लिए जाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगाए।
1: हम सब पे कृपा रहे, किसी प्रकार का कष्ट बाधा और तकलीफ नहीं आए। खास तौर पे यश और टीना बहुत अच्छे से आगे निकल पाए, किसी प्रकार का कष्ट बाधा नहीं आए और विघ्न हरता है वो सुख करता है, दुख हरता है और प्रथम पूजन के देवता है वो सदैव कृपा रहे। गणपति बापा से यही प्रार्थना है। गणपति बापा मंगल मूर्ति मोरिया रे बापा मोरिया रे।
0: मंगलवार को सलमान खान भी अपने भाई सोहेल खान के घर पर गणपति विसर्जन के लिए पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। बहन अर्पिता, अलवेरा, माँ हेलन समेत परिवार के बच्चे इस उत्सव में हिस्सा बने। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए।

हर किसी पर गणपति बाप्पा की भक्ति का रंग चढ़ा नजर आया। सलमान खान, सोहेल खान, अर्पिता शर्मा समेत सभी श्रद्धालुओं ने बारी बारी से बाप्पा की आरती की। इस साल खान परिवार ने सोहेल खान के घर गणेश चतुर्थी का आयोजन किया था। सोहेल खान के बिल्डिंग परिसर में हुए गणेश विसर्जन में पूरा खान परिवार शामिल रहा और पूरी श्रद्धा और भक्ति से बाप्पा को

0: गणपति उत्सव का रंग एक्ट्रेस डेजी शाह के घर में भी दिखाई दिया। डेजी शाह ने गणपति विसर्जन के दौरान महाआरती की। इस दौरान परिवार के अलावा उनके रिश्तेदार भी मौजूद रहे। डेजी खुद अपने हाथों में इको फ्रेंडली बापा को उठाकर कार तक लाई। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पापा को विदा किया। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए।
1: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति लाए, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। एंड या जस्ट डू गुड, बी गुड टू योर सेल्फ, टू द एनवायरमेंट, टू द पीपल अराउंड, दैट्स अबाउट इट। आप अच्छे रहेंगे तो अच्छी चीज़ें अपने आप अपने साथ होगी।
0: टीवी एक्टर गुरमीत ने भी दोबिना बैनर्जी के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन किया। ढोल नगाड़ों के साथ बापा को विदाई दी, साथ ही बापा से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की।
2: बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
3: मुझे पहले ऐसा लगता था डेढ़ दिन काफी लंबा है, पर अब ऐसा लगा कि खत्म हो गया। और स्पेशली बच्चों ने फील कराया, जब मैं आज सुबह उठा रही थी और मैं बोल रही थी उठ जाओ आज पप्पा का विसर्जन है, क्यों नहीं पप्पा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अभी तक उन लोगों का वो नहीं है कि वो रोक सके। आई एम श्योर एक दो साल में 3 दिन का गणपति हो जाएगा हमारे घर पे।
0: अरण्या पांडे ने अपने घर में ही बापा की मूर्ति का विसर्जन किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने गणपति की आराधना कर घर की छत पर ही उनका विसर्जन किया। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही मूर्ति विसर्जन किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने गणपति की आराधना की। इस पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी बापा की भक्ति में जमकर झूमे, तो ईशा अंबानी और अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता ने भी उत्सव में खूब रंग जमाया। नीता अंबानी गणपति बापा मोरिया के जयकारे लगाती रही। एंटीलिया का ये गणपति उत्सव सिर्फ सितारों की मौजूदगी या भव्य सजावट की वजह से खास नहीं था, बल्कि इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस उत्सव में अंबानी परिवार की परंपरा, आस्था और पारिवारिक एकजुटता की झलक दिखाई दी। इस साल एंटीलिया में गणपति का स्वागत 13 सितंबर को किया गया था। अंबानी परिवार बापा को प्यार से एंटीलिया चराजा भी कहता है। विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए एंटीलिया को फूलों और रोशनी से बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया और विधि विधान से पूजा की गई। हर साल की तरह इस बार भी गणपति उत्सव में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब बापा की विदाई देते हुए सितारों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: सीएम योगी ने यूपी के 57,000 से अधिक पंचायत सहायकों को दी बड़ी सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: सीएम योगी ने यूपी के 57,000 से अधिक पंचायत सहायकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनके मानदेय में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अभी पंचायत सहायकों को 6,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी मिलेगी। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अभिनेता अनंत नाग को सम्मान के लिए बधाई दी है। काशी के प्राचीन लोलारकेश्वर महादेव मंदिर में लोलार्क षष्ठी को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब अभी से उमड़ने लगा है। बारिश के बीच भी श्रद्धालु लंबे लंबे कतारों में खड़े नजर आए। यहाँ स्थित लोलार्क कुंड को लेकर मान्यता है कि लोलार्क षष्ठी के दिन कुंड में स्नान करने और बाबा लोलारकेश्वर के दर्शन पूजन से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। गुरुवार की मध्यरात्रि में लोलारकेश्वर की भव्य आरती के बाद लोलार्क कुंड में मुख्य स्नान का क्रम शुरू होगा। राजस्थान के धौलपुर में आज से देव छठ पर लगने वाले मचकुंड मेले की शुरुआत हो गई। इसका शुभारंभ आज संतों के शाही स्नान से हुआ। इस मौके पर ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा एवं अन्य जिलों से आए हुए संतों की सवारियां बैंड बाजों के साथ मंगल भारती मंदिर से शुरू होकर मचकुंड सरोवर पहुंची, जहां संतों ने सरोवर में शाही स्नान किया। शाही स्नान के बाद संतों ने तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना कर 2 दिन तक चलने वाले तीर्थराज मचकुंड मेला का शुभारंभ किया। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास में आज M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप को लेकर विशेष गतिविधियां आयोजित की गई। इसमें सैन्य कर्मियों की जिम्मेदारियों, तोप की तैनाती की प्रक्रिया और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझाया गया। दोनों सेनाओं का ये अभ्यास राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र औली से लेकर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज तक एक साथ चल रहा है। अभ्यास में भारत और अमेरिका के करीब 600 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं।
0: बॉलीवुड सितारों के बप्पा की विदाई के बाद अब बात गणेश उत्सव की। देश भर में गणेश उत्सव का महाउत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पंडालों में बप्पा अपने अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई भी 101 रूपों में विराजे गणपति बप्पा भक्तों का मन मोह रहे हैं। तो वाशी में सौंफ, सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरती मूर्ति बनाई गई है और उड़ीसा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं।

0: देश भर में गणपति उत्सव की धूम है, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। गणपति उत्सव के रंग हर तरफ बिखरे हैं। गणपति बाप्पा के स्वागत में कहीं आरती तो कहीं भजन हो रहा है। केसरिया सिंदूर की चमक, गुलाल के उड़ते गुबार और जगमगाती रोशनी की सतरंगी छटा। गणेश उत्सव के इस पावन पर्व पर पूरा देश रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। हर शहर और हर पंडाल अपनी एक नई कहानी और भव्यता की तस्वीर पेश कर रहा है। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के भिलाई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गणपति बप्पा के 101 रूपों के दर्शन हो रहे हैं। एक ही पंडाल में गणपति के अलग अलग स्वरूप भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। हर रूप में बप्पा की अलग छवि और अलग ही भव्यता नजर आ रही है।
1: 1 से अधिक शुरू से ही हम लोग ये मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं, और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो एक मूर्ति स्थापित की गई थी उसके द्वारा लोगों को जोड़ा था। हम लोग जो है 1 से अधिक मूर्तियों को उनके अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे ला करके बैठाते हैं। विदेशों से भी यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की जाती है। 2017 में हमारी संस्था ने 108 गणपति के जो नाम होते हैं वो विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ 108 मूर्तियों के नाम से बैठाई थी, जिसमें हमारी संस्था को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारी संस्था का नाम दर्ज हुआ है। और इसका सारा जो श्रेय है यहाँ के जो दानदाताओं के ऊपर जाता है और हमारे यहाँ के कर्मठ जो कार्यकर्ता है उनको जाता है।
0: इस पंडाल में 10 फीट ऊंची मुख्य गणेश प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। गणपति के इन 101 स्वरूपों में भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है।
2: छत्तीसगढ़ का इस्पात नगरी भिलाई का हुड़को सेक्टर महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल के द्वारा गणेश पूजा धूमधाम से की जा रही, वो भी इको फ्रेंडली गणेश। जो मुख्य गणेश की मूर्ति है वो 10 फीट है, और यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ भक्तों के द्वारा 101 गणेश विभिन्न आकृतियों की इको फ्रेंडली रखी गई है।
0: ये दिव्य नजारा अकोला के 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति पंडाल का है, जहाँ लकड़ी से तैयार किए गए भव्य महल में बप्पा का दरबार सजा है। यहाँ बप्पा का दिव्य श्रृंगार कीमती आभूषणों से किया गया है, जो उनकी भव्यता को और बढ़ा रहा है।
3: 90 साल पुराने रहे मारवाड़ी प्रेस गणपति बप्पा की ये भव्य मूर्ति यहाँ पर है। इसकी सजावट जो है बहुत ही सुंदर तरीके से की, लगभग 15 फीट की ये जो मूर्ति है उसकी सजावट भी बहुत अच्छी तरीके से की है। यहाँ से सबसे अहम बात है कि इस वक्त तो है ये लकड़े का महल यहाँ पर बनाया गया है, ये अच्छी तरीके से इको फ्रेंडली माना जा रहा है।
0: इस पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक देखने को मिल रही है।
3: तो इस पंडाल में जो है वो आप तो अष्ट विनायक के दर्शन होंगे, मानो महाराष्ट्र में जो आज गणेश है वो अष्ट विनायक के दर्शन होंगे। और साथ ही जो है यहाँ पर गणेश जी की जो उत्पत्ति हुई है, जी गणेश जी कैसे जन्मे थे, गणेश जी की कथा, बालपन के ऊपर उनकी उत्पत्ति की क्या है, ये सभी जो है ये यहाँ पर बताया गया है।
0: अब आपको महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ गणपति बाप्पा का ये अनोखा रूप हर किसी का ध्यान खींच रहा है। यहाँ एक गणपति पंडाल में 15 किलो सुपारी, 1 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग इलायची से बाप्पा की प्रतिमा तैयार की गई है। भक्ति के साथ साथ इस प्रतिमा में भारतीय मसालों और पूजा सामग्री की अनोखी कलाकारी भी देखने को मिल रही है। बेहद आकर्षक दिखने वाली बाप्पा की इस अनोखी प्रतिमा का वजन करीब 70 से 80 किलो है। सबसे खास बात यह है कि इसे तैयार करने में 15 से 20 दिनों का वक्त लगा है।
4: इको फ्रेंडली जो गणेश है वही हम स्थापन करते हैं, तो उस पर हम लोग विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस बार हमारे यहाँ पान में जो यूज करते हैं हम सौंफ, सुपारी, लवंग, इलायची, धनिया डाल, और इसका हमने इस बार गणेश जी की स्थापना की है, तैयार किया है। और हर साल हम लोग कभी मोर पीस का, कभी रेती का, तो कभी डायमंड एंड पेंसिल्स का, इसका भी हम लोग स्थापन किए हुए है।
0: वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहोरा गांव में गणेशोत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यहाँ एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बाप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चिचपल्ली स्थित बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बांस से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
5: यहाँ पर बांस से गणपति बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो मूर्ति बिल्कुल पूरी तरीके से बनके तैयार है। बाम्बू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है।
0: पंडालों की ये भव्यता और रंगों की विविधता केवल आंखों को ही नहीं लुभाते बल्कि ये हमारे समाज की विविधता और अटूट आस्था को भी दर्शाती है। ढोल ताशों की थाप पर थिरकते भक्त और आरती के समय जलते दियों की रोशनी इस उत्सव के हर पल को यादगार बना रही है। गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, कला और रंगों का ऐसा समागम है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देता है। भिलाई से रघुनंदन पंडा, अकोला से धनंजय साबले और वाशिम से जका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स 333 अंक ऊपर 74,336 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 99 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 23,218 पर पहुंच गया। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 95 पैसे हो गई। त्योहारों और शादियों के सीजन से ठीक पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने सोने के गहनों और आर्टवर्क पर लगने वाली हॉलमार्किंग फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब ज्वेलर्स को प्रति आर्टिकल 45 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। ये बदलाव BIS हॉलमार्किंग संशोधन नियम 2026 के तहत लागू हुआ है।
6: फिल्म लव लॉटरी अब 25 सितंबर को रिलीज होगी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
0: साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा एक बार फिर अपने लोकप्रिय किरदार मुकुथी अम्मन के रूप में वापसी कर रही हैं। उनकी नई फिल्म महाशक्ति का टीजर हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा दिया है। 2020 में आई फिल्म मुकुथी अम्मन में नयनतारा ने देवी के किरदार में दर्शकों का दिल जीता था। अब इसके सीक्वल में वो इसी लोकप्रिय किरदार को आगे बढ़ाती नजर आएंगी। नवम्बर में रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन सुंदर सी कर रहे हैं।

0: एक्टर अमित साध और ईशा देओल एक साथ बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं। उनके फिल्म प्रताप का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस सस्पेंस थ्रिलर के राइटर और डायरेक्टर सचिन सराफ हैं, जबकि प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स ने मिलकर इसका निर्माण किया है। फिल्म में अमित साध एक अनुभवी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म 20 नवम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सस्पेंस थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा फिल्म लव लॉटरी की रिलीज डेट बदल गई है। ये फिल्म अब 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म आधुनिक रिश्तों, शादी, विश्वासघात और पुरुषों के अधिकारों के कानूनी दाव पेंच पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाली की नई जोड़ी देखने को मिलेगी।
1: माता पिता, यार, परिवार, रिश्तेदार, इन सब के बीच खोसा जा रहा है एक मर्द। सारे कानून लड़कों के पक्ष में बन रहे, बनने भी चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इसका गलत फायदा ना उठाया जाए।
0: द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू होने की घोषणा हो गई है। इस लोकप्रिय शो का 5वां सीजन 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा। इस शो में कपिल शर्मा अपने साथी कलाकारों सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वापसी करेंगे। अनाउंसमेंट में जो गाना आया है उसे भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।

0: अर्चना जी, सांता गिफ्ट देते हैं, लेते नहीं।
1: न्यूज पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: ढोल नगाड़ों के साथ जीएनटी न्यूज रूम में पधारे बप्पा की विदाई। अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन। जीएनटी संघ मनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्टइंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी, आकिब और नमन धीर को मिला मौका। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
3: कहते हैं भक्ति के लिए ना बड़े बड़े इंतजाम चाहिए, ना पैसों की जरूरत, बस दिल में सच्ची आस्था होनी चाहिए। इन बच्चों की भक्ति को देखकर यही बात सच होती नजर आती है। बच्चों ने अपने हाथों से गणपति की प्रतिमा बनाई, अपने हिसाब से पंडाल सजाया और पूरे प्रेम से बाप्पा को विराजमान किया। इनके पास साधन भले कम हो, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। बच्चों ने साबित कर दिया कि बप्पा तक पहुंचने का रास्ता दिल से होकर जाता है। हाथों में बप्पा की प्रतिमा, आगे बच्चों वाला छोटा सा ढोल और उसके पीछे नाचते गाते नन्हे भक्त। ये नजारा भले ही छोटा हो, लेकिन बप्पा के प्रति इन बच्चों का प्रेम बेहद बड़ा है। खुशी ऐसी कि कदम खुद ब खुद थिरक रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है और दिल में बप्पा के लिए अपार श्रद्धा। अपने प्यारे गणपति को विदाई देने निकले ये बच्चे नाचते गाते विसर्जन के लिए जा रहे हैं, मानो हर कदम के साथ बप्पा से अपना रिश्ता और गहरा कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच खुला आसमान और बच्चों के चेहरे पर जन्मदिन की चमक। यहाँ बर्थडे पार्टी किसी बड़े होटल में नहीं, बल्कि प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच मनाई जा रही है। नन्हे बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर जन्मदिन की खुशियां बांट रहे हैं। केक काटा गया, तालियां बजी और फिर शुरू हुआ केक खिलाने का सिलसिला। मासूमियत से भरे इन पलों ने हर किसी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर भी लोग बच्चों की इस प्यारी दोस्ती और प्यार को खूब पसंद कर रहे हैं।
4: आप बर्थडे मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे क्या है यार, मुझे पता नहीं। अभी तक पता नहीं चला। हैप्पी बर्थडे ना केक काटते भी खाते हैं। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं ना, उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना, उस वक्त हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है ना, उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं।
3: देखने में ये खेल जितना आसान लगता है, खेलने में उतना ही मुश्किल है। पहिए के आकार के इस गोल चक्कर को अपनी तय लाइन में ही घूमना है। जरा सा संतुलन बिगड़ा, जरा सा पहिया लाइन से बाहर हुआ और खिलाड़ी सीधे गेम से बाहर। यही वजह है कि इस खेल में ताकत से ज्यादा जरूरी है संतुलन, फोकस और सही टाइमिंग। प्रतिभागी पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती को पूरा करने में जुटे हैं। खेल का रोमांच ऐसा है कि देखने वालों की नजरें भी टिकी रह जाती हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों की। हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश भर से लाखों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इन छात्रों की संख्या को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की संख्या काफी कम है। ऐसे में अधिकतर छात्र महंगे किराए वाले प्राइवेट पीजी में रहने को मजबूर होते हैं। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 10,000 छात्रों के लिए नए हॉस्टल बनाने की घोषणा की है, ताकि बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को रहने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पढ़ने वाले कई छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाता। ऐसे में बाहरी छात्रों को महंगे पीजी या किराए के कमरों में रहना पड़ता है, जहां उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार अब ऐसे हॉस्टल तैयार करेगी जहां छात्र कम खर्च में सुरक्षित माहौल में रह सकेंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा सत्यनिकेतन इलाके में प्राइवेट पीजी बिल्डिंग गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के कुछ दिन बाद की है। सरकार के अनुसार नए हॉस्टल में वाईफाई, 24 घंटे बिजली और पानी, पढ़ाई के लिए स्टडी रूम, लाइब्रेरी और साफ सुथरी मेस जैसी सुविधाएं होंगी। छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था रहेगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि कई सरकारी संस्थाओं में हॉस्टल निर्माण का काम शुरू हो चुका है या उसकी योजना तैयार की जा रही है। इनमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इन नए हॉस्टल का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा। साथ ही सरकार उन कॉलेज का सर्वे भी करेगी जहां हॉस्टल बनाने के लिए पर्याप्त जमीन है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 2.5 लाख रेगुलर छात्र पढ़ते हैं, लेकिन हॉस्टल की सीटें केवल 7,200 हैं। जाहिर है डीयू में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में हॉस्टल की सुविधा काफी कम है। ऐसे में दिल्ली सरकार का नया कदम कई छात्रों को बड़ी राहत दे सकता है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में छात्रों से बात की और उनकी राय जानी।
5: जो बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है, उनको इसमें कितनी राहत मिलने वाली है? 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनवाना रिलीफ है या कम फिगर है? ये
6: इसको ऐसे देख सकते हैं कि गुड से बेटर हुआ है। जो पहले हॉस्टल की स्थिति रही है, यहाँ पे प्रवासी छात्र छात्राएं जो दिल्ली में आकर के रह रहे हैं उनको दिक्कत तो हो रही है। अभी जो यहाँ पे घटना हुई है सत्यनिकेतन में, उस घटना को भी देख करके अगर ये फैसला दिल्ली सरकार ली है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ गुड से बेटर हुआ है। मतलब चीज़ें जिनको, लेकिन इस पर हम लोगों को काम करने का और भी ज़्यादा ज़रूरत है।
5: चीज़ें ठीक थी लेकिन अभी थोड़ी जो है आगे और भी अच्छा है कि एक पुश मिला है, एक तरीके से बोल सकते हैं। आप पहले तो ये बताइए कि दिल्ली से हो या दिल्ली के बाहर?
6: नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश
5: से। कानपुर से? हाँ। तो आपके लिए भी, आप भी कहीं ना कहीं हॉस्टल में तो डेफिनेटली।
6: हाँ भाई, और मेन चीज़ ये है ना कि मतलब दिल्ली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहने के लिए। अगर आप पीजी लेने जाओगे तो मतलब यही होगा आपको 14,000 पर बेड ऐसा समथिंग पड़ता है। और हम मतलब बेसिकली हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लाइक इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक मतलब कॉलेज की फीस तो कम है, उससे ज़्यादा रहने का ही हम लोग का खर्च चला जा रहा है। मतलब अगर ऐसे हॉस्टल वगैरह
5: किराया अभी
6: अभी अभी तो हम लोग 15,000 देते हैं। लाइक मतलब अगर इंडिपेंडेंट भी रहोगे जाकर के, अगर पीजी लोगे जाकर के, खाना भी लाइक पीजी का खाने लायक होता नहीं है। कोई भी पीजी हो खाने लायक बिल्कुल भी खाना नहीं होता है, कितना भी अच्छा वो लोग बोले। स्टार्टिंग वो लोग सेप्टेम्बर तक खिलाते हैं अच्छा, जैसे पता चल जाता है नए बच्चे नहीं आएंगे तुरंत ही वो अपना असली मतलब दिखाने लगते हैं कि एकदम बेकार सा खाना देते हैं।
5: से आए हो तो हर महीने की अगर मैं बात करूँ लगभग कितना खर्चा लग जाता होगा?
6: मोस्टली 20 समथिंग, 20,000।
5: और अभी तो आप लोग कमा भी नहीं रहे हो।
6: अभी हम लोग वही चीज़ है कि अभी तो हम लोग मतलब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। और अगर मतलब बेसिकली मतलब सब लोग और भी भाई बहन होते, सिबलिंग्स भी होते, वो लोग भी पढ़ रहे होते, तो किसी को ऐसे अफोर्ड करना तो मतलब नहीं कर पाएंगे। मेनली मतलब जो जितने भी बच्चे दूर दूर से आते सब यही सपना लेके आते मैं दिल्ली जाके पढ़ूंगा और ऐसे करके, पर यहां रहना ही मुश्किल हो रहा है तो लोग पढ़ कहां से पाएंगे?
5: कहां से पाएंगे? आप कहां से सर?
7: मैं लखीमपुर खीरी से हूं।
5: अच्छा, लखीमपुर से।

0: आई क्योंकि यहाँ पे मिलना ही मुश्किल है, उसके बाद मिल भी जा रहा है तो उसकी फैसिलिटीज नहीं है, कहीं पानी की समस्या आ रही है, कहीं बारिश में भर जा रहा है ना। अभी बहुत सारी घटनाएं भी हो गई, पिछले वर्ष जो है एक क्या नाम है कोचिंग का भी हुआ था, वहां तो बेसमेंट में पानी चला गया तो वहां तो कई बच्चों की जान चली गई।
1: मैं जेन्युइनली बताऊं कि जो अभी हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी में है अभी प्रेजेंट में, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हॉस्टल्स पुराने बने हुए हैं उनकी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, कई बार जो लेंटर होता है वही गिर जाता है, कई बार पंखे गिर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स की मेस की इतनी गंदी हालत है, कभी कॉकरोच निकल रहे हैं खाने में, कभी छिपकली है, कभी मेंढक है। तो यूनिवर्सिटी को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि वो जिसे टेंडर दे रहे हैं फूड के लिए, कम से कम एक ऐसी कंपनी को दें जो ट्रस्टेड हो, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मारने के लिए नहीं है, क्योंकि कभी कोई बिल्डिंग के नीचे दब रहा है, कभी कोई जल के मर रहा है, कभी कोई डूब के मर रहा है, इस तरीके की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है।
2: देखो जिस हर एक का अपना एक्सपीरियंस अलग है, मेरा ये मानना है कि DU में 2 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं, लॉ फैकल्टी में करीब करीब 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से अगर 100 ही बच्चे अगर हॉस्टल अफोर्ड कर पा रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बहुत स्पेस है, और वहाँ पे जो हॉस्टल एस्टेब्लिश करे गए हैं वो लिमिटेड स्टूडेंट्स को है।
3: अगर आप फीस है
2: वहाँ की भी 10,000 से ऊपर या लगभग 10,000 के करीब है,
3: शेयरिंग होती है।
2: हाँ शेयरिंग होती है।
3: कितने बच्चे एक कमरे में होते
2: हैं? वो हॉस्टल वाइज अलग होता है, जैसे आप ग्वायर हॉल चले गए तो एक में 2 है, PG मेंस चले गए तो वहाँ पे सिंगल शेयरिंग है, तो वो हॉस्टल वाइज डिपेंड करता है। पर यहाँ के हॉस्टल जो है, अगर आप ग्वायर हॉल का सीन देखोगे तो एक कलेक्टर रेसिडेंस जैसा है, तो मतलब ये डिफरेंस क्यों कि कुछ बच्चों के लिए इतनी VIP सुविधा कर दो कि वो बहुत ही ज़्यादा, और कुछ लोग यहाँ पे विजयनगर रह रहे हैं, कमला नगर रह रहे हैं, बहुत ही जर्जर परिस्थिति में, बहुत ही खराब परिस्थिति में रह रहे वो।
3: तो नए हॉस्टल जब बनेंगे तो कितना लाभ जो है हर एक बच्चे को मिलने वाला है, सिर्फ दिल्ली सरकार की जो ये मतलब जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इसकी बात नहीं कर रही, बाकी भी सब यूनिवर्सिटी के बच्चे उसका लाभ क्यों उठा पाएंगे?
2: देखिए दिल्ली में रहने के लिए तो सभी को बहुत ही अड़चन होती है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरा दिल्ली में कोई है नहीं, जब मैं आता हूँ तब PG माफियों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज ए लॉ स्टूडेंट हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई रेगुलेशन आए, जैसे कोई भी कहीं भी बच्चे को लूट लेता है, जो स्टार्टिंग में आ रहा है 1,00,000 रुपये बच्चे से लूट ले रहे हैं, तो जो ये 10,000 हॉस्टल्स बनेगी इसमें कहीं ना कहीं राहत बच्चों को मिलने वाली है। और इसका नंबर मतलब ये ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, जब तक बच्चे दबते नहीं है तब तक कुछ होता नहीं है। 10,000 हॉस्टल्स बनने का जो निर्णय है बहुत अभिनंदन वाला निर्णय है, पर बच्चे मरने दबने के बाद अगर ये हो रहा है तो मतलब इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम ये राजनीति के माध्यम से सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं या नहीं ला रहे। 10,000 से जरूर राहत मिलेगी, पर ये नंबर बढ़ना चाहिए।
4: हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन यात्रा के अंतिम दौर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है, और अब तक रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां मत्था टेकने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं मानसून की रफ्तार थमने के बाद अब चारधाम की नियमित यात्रा भी दोबारा शुरू हो गई है। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्गों पर भी रौनक लौट आई है।

0: हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। यहां अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में हर साल देश विदेश से सिख संगत मत्था टेकने पहुंचती है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। इस समय हेमकुंड साहिब में जबरदस्त ठंड के बावजूद यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। यात्रा का अभी 20 दिनों से अधिक का समय शेष है और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं में उत्साह कायम है।
1: हेमकुंड साहिब यात्रा का अब तीसरा चरण, अंतिम चरण जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गया है। हालांकि इस बार मानसून और यात्रा काल में जबरदस्त यात्री हेमकुंड साहिब में पहुंचे। देश और विदेशों से जो सिख संगत हैं वो हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने पहुंचे, वहीं रिकॉर्ड तोड़ अब तक की जो सबसे अधिक संख्या है, आज तक की बात करें तो 3,24,000 जो सिख श्रद्धालु हैं वो मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं, जो अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं अब

0: 20 दिनों से कुछ दिनों का अंतर शेष रह गया है जब हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे, वहीं अब अगले वर्ष की जो यात्रा की तैयारियां हैं वो भी इसी वर्ष शुरू हो गई है।
1: इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद अब गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट ने अगले साल की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। अगले यात्रा सीजन के लिए राशन और अन्य जरूरी सामग्री पहले से ही हेमकुंड साहिब और घांघरिया में पहुंचाकर स्टॉक किया जा रहा है।
2: लगभग 324,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए अगली साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब घांघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है।
1: हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ ही चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की भी यात्रा शुरू हो गई है। बरसात के दौरान सड़क, पानी और बिजली से जुड़ी जो भी समस्याएं आ गई थी उन्हें प्रशासन द्वारा तेजी से ठीक किया जा रहा है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। यात्रा के दूसरे चरण में बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। चटक धूप के बीच सड़कों पर गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। लगातार गाड़ियां बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ रही है।
0: इतनी कठिन ये यात्रा है इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यात्रा मार्गों पर बद्रीनाथ धाम में हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
1: मानसून के दौरान श्रद्धालु चारधाम यात्रा से परहेज करते हैं, लेकिन मानसून खत्म होने के बाद एक बार फिर से यात्रा में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कमल नयन सिलौड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मचाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: विमेंस प्रीमियर लीग का 5वां सीजन अगले साल 14 जनवरी से शुरू होगा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: विमेंस प्रीमियर लीग का 5वां सीजन अगले साल 14 जनवरी से शुरू होगा जो 7 फरवरी तक चलेगा। बीसीसीआई ने आज इसकी जानकारी दी। 5 फ्रेंचाइजी वाले इस लीग का ऑक्शन 28 अक्टूबर को कोची में होगा। खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर तय की गई है। भारत के मिस्टर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब युवा लेग स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। 22 साल के निगम आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने अब तक लीग में 19 मैच खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं। कल यानी 17 सितंबर से जापान में एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत होने जा रही है और क्रिकेट इस बार एशियन गेम्स में चौथी बार शामिल हुआ है। ऐसे में भारतीय महिला टीम की नज़र दूसरी बार भारत की झोली में गोल्ड लाने की होगी। भारत पिछली बार यानी 2023 हांगझू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुषों से पहले शुरू होगी और इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की है श्वेता गुलाब ने। उन्होंने बप्पा का फूलों से बहुत सुंदर श्रृंगार किया है और बप्पा का मंदिर भी बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है। गणपति की बड़ी प्रतिमा के साथ ही छोटी प्रतिमा भी स्थापित की है। अपने प्यारे बप्पा की तस्वीरें श्वेता ने कैमरे में कैद करके हम तक भेजी हैं। वहीं गुजरात के भुज से धनसुख कापड़ी ने पर्व की खुशियां जीएनटी के साथ साझा की। इन्होंने भी अपने घर में बप्पा की एक छोटी प्रतिमा स्थापित की है। इनकी भेजी इस तस्वीर में बप्पा बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: हो रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। किस राशि को सूर्य देंगे वरदान, किस राशि की समस्या का करेंगे समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी, गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी, आखिर और नमन धीर को मिला मौका।
9: एवरेस्ट शुद्ध केसर।
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की। मुंबई महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति पूजा धूमधाम से हो रही है। गणपति पूजा के दूसरे दिन मुंबई में अंबानी परिवार और फिल्मी सितारों ने धूमधाम से बप्पा की विदाई की, नाचते झूमते बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन किया गया। और आज आपको बप्पा की भक्ति की ऐसी ही खूबसूरत तमाम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हम। इसके बाद आपको लिए चलेंगे पुणे, जहां दगड़ूशेठ मंदिर में गणेशोत्सव के लिए मथुरा के प्रेम मंदिर का सेट बनाया गया है। पुणे के इस विख्यात मंदिर की अद्भुत सजावट और यहां गणेशोत्सव के रंग आपको तमाम दिखाएंगे। और आखिर में आपको मिलाएंगे एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने घर की बेकार समझी जाने वाली चीजों से ऐसे गणपति बनाए हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। पत्तों, छिलकों और इलेक्ट्रिक वायर से बनाए गए गणपति असल में समाज और देश को पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। बप्पा के आने की खुशी तो हर घर में होती है। जैसे ही उनका आगमन होता है तो घर घर आंगन खुशियों से पूरी तरीके से भर जाते हैं। लेकिन घरों में स्थापित किए गए बप्पा की दूसरी दिन विदाई भी होती है। बॉलीवुड के सितारों ने अपने आराध्य को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ विदाई दी। शिल्पा शेट्टी ने नाचते झूमते बप्पा का विसर्जन किया तो सलमान खान के परिवार में भी भक्ति भाव से बप्पा को विदाई दी गई। इसी तरह अंबानी परिवार भी विसर्जन के दौरान उत्साह और उमंग से भर गया। रिपोर्ट देखिए।

0: खुशियाँ लाए, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। अब वक्त उनकी विदाई का है। पर जैसे धूमधाम से गणपति आए थे, वैसे ही नाचते झूमते उनको विदाई देनी है। सामान्य भक्त हो या सितारे, बप्पा की विदाई का ये पल सभी के लिए खास होता है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर बप्पा की जब विदाई हुई तो माहौल ढोल नगाड़ों और बैंड बाजा की आवाज से गूंज उठा। विधिवत पूजा अर्चना हुई, बप्पा की आरती हुई, बप्पा से अगले साल फिर आने और जल्दी आने की करबद्ध प्रार्थना हुई। बप्पा से मिलकर उन्हें जी भर के निहार कर बहुत प्यार से भक्ति भाव से सिर झुकाकर भावुक विदाई दी गई। बप्पा के लिए असीम भक्ति उत्साह और उमंग में भी नजर आई जब शिल्पा शेट्टी झूम कर नाची। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ नाचते झूमते खुशी मनाते बिल्डिंग परिसर में बप्पा का विसर्जन किया गया। इसी तरह सलमान के भाई सोहेल खान के घर बप्पा को विदाई दी गई। सलमान समेत पूरा परिवार जुटा, ढोल नगाड़ों की गूंज से सभी नाचे झूमे और बप्पा की पूजा अर्चना हुई। बप्पा की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए हर साल मंगल मूर्ति को भक्त अपने घर लाते हैं। बॉलीवुड के सितारे भी बप्पा का स्वागत करते हैं, पूजा अर्चना होती है और दूसरे दिन उनकी विदाई। एक्टर गोविंदा भी अपने बेटे के साथ गणपति को विदाई देने पहुंचे। बेटे के साथ मिलकर गोविंदा ने पूरे भक्ति भाव से बप्पा का विसर्जन किया। इस दौरान गोविंदा हाथ जोड़कर बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए।
1: और हम सब पे कृपा रहे, किसी प्रकार का कष्ट बाधा और तकलीफ नहीं आए। खास तौर पे यश और टीना बहुत अच्छे से आगे निकल पाए, किसी प्रकार का कष्ट बाधा नहीं आए और विघ्न हरता है वो सुख करता है, दुख हरता है और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे। गणपति बापा से यही प्रार्थना है। गणपति बापा मंगल मूर्ति मोरिया रे,
0: बापा मोरिया रे, मोरिया रे। बापा आते हैं तो पूरा घर उनकी भक्ति में लीन होता है, उनकी मौजूदगी में अपनत्व का एहसास होता है, इसलिए तो उनकी विदाई पर मन भावुक हो जाता है। डेजी शाह खुद अपने हाथों में बप्पा को उठाकर कार तक लाई और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ बप्पा को विदा किया।
2: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति लाए, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। एंड या जस्ट डू गुड, बी गुड टू योर सेल्फ, टू द एनवायरनमेंट, टू द पीपल अराउंड, दैट्स अबाउट इट। आप अच्छे रहेंगे तो अच्छी चीज़ें अपने आप अपने साथ होगी।
0: इसी तरह सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही मूर्ति विसर्जन किया। पूरे विधि विधान से उन्होंने गणपति की आराधना की। पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी शामिल हुए। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर जब बप्पा आए तो रौनक देखने लायक थी। उनकी विदाई भी भव्यता के साथ हुई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जयकारों के बीच अंबानी परिवार ने पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ गणपति को विदाई दी। विसर्जन के दौरान पूरा अंबानी परिवार भक्ति में सराबोर नजर आया। सभी की नजरें परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी पर ठहर गई, क्योंकि राधिका बप्पा की विदाई के दौरान पूरे भक्ति भाव के साथ खूब डांस करती दिखाई दी। लाल गुलाल उड़ाते और बप्पा की भक्ति में लीन राधिका का ये अंदाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया। भगवान गणेश की प्रतिमा को हजारों रंग बिरंगे ताजे फूलों से सजे एक विशाल ट्रक पर रखा गया। राधिका अंबानी अपनी सास नीता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ट्रक पर सवार थी। पूरे रास्ते राधिका ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकती और बप्पा की जयकार लगाती नजर आई। अंबानी परिवार का गणपति विसर्जन जुलूस एंटीलिया से निकलकर गिरगांव चौपाटी पहुंचा। यहां अनंत अंबानी और राधिका ने बप्पा की आरती की और पूरे विधि विधान से बप्पा का विसर्जन किया गया, इस प्रार्थना के साथ कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़ टुडे।
3: प्रेम की नगरी वृंदावन, राधा कृष्ण की भक्ति और गणपति बप्पा का दरबार, जब ये तीनों एक साथ नजर आए तो नजारा अपने आप में खास हो जाता है। पुणे के दगड़ूशेठ गणपति में इस बार कुछ ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। बप्पा के दरबार में वृंदावन की प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की भव्य प्रतिकृति सजाई गई है। करीब 100 फीट ऊंची ये प्रस्तुति श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और साथ ही प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश भी दे रही है। रिपोर्ट देखिए।

0: दरबार चमक रहा है, जय घोष गूंज रहा है, माथे पर मुकुट की चमक, चेहरे पर तिलक की दबक, बाप्पा की प्रतिमा की भव्यता अद्वितीय है और उनकी भक्ति का रंग भी बेजोड़ है। ये दरबार है पुणे के दगड़ूशेठ गणपति का, जहां इस साल सिर्फ रोशनी और सजावट नहीं बल्कि हर झलक में प्रेम है, हर दृष्टि में भक्ति है और पूरी प्रस्तुति में छिपा है शांति का संदेश। क्योंकि इस बार विघ्नहर्ता के दरबार में वृंदावन के प्रेम मंदिर की दिव्य छवि उतारी गई है।
1: पुणे के श्रीमद दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में है, इस बार इसे प्रेम मंदिर कहा जा रहा है। आप देख सकते हो भीड़ जुटी है भक्तों की और गणपति मेरे महादेव का जो उनका मुकुट है वो पहने हुए हैं, गणेश जी है हाथ में मोदक है और पुणे का सबसे बड़ा गणेशोत्सव यहाँ किया जाता है। पुणे में 5 मानाचे गणपति यानी कि पहले 5 रेप्यूटेड गणपति है, उनके अलावा ये अहम गणेश है जहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। हर साल लाखों भक्तगण यहाँ जमते हैं और गणेश को यहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ट्रस्टीज हमारे साथ है।
0: पुणे का श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति वैसे भी हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ बाप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। इस बार उत्सव का 134वां वर्ष है और श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट ने इसी मौके पर प्रेम मंदिर की ये विशाल प्रतिकृति तैयार करवाई है।
2: प्रेम मंदिर है, ये वृंदावन का है और प्रेम का संदेश हर जगह जाना चाहिए, इसलिए इस बार ये थीम बनाई थी प्रेम मंदिर और सफेद रंग उसको दिया है। सफेद बोले तो शांति का प्रतीक है, इसलिए ये बार हमने प्रेम मंदिर बनाया।
1: मुझे याद है कि पिछली बार आपने वो कमल विष्णु ये सब कुछ महल बनाया था, इस बार आप शांति का प्रतीक देना चाहते हो, किस तरीके से इस बार आप भक्तों को अपील करेंगे और क्या एग्जैक्टली विशेषताएं हैं?
2: एग्जैक्टली ये जो विशेषता है शांति का, हर जगह अभी अराजकता युद्ध है चालू, तो हर दुनिया में माहौल ठीक नहीं है, तो ये शांति का संदेश हम सबको देना चाहते हैं और सब शांत अच्छा चले, इसलिए हमने ये प्रेम मंदिर बनाया है।
0: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुबह 11:11 पर वृंदावन स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर के 18वें तिलकायत अधिकारी श्रीहित मोहितम राल गोस्वामी जी महाराज के हाथों श्री गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस भव्य प्रस्तुति के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना ही नहीं बल्कि एक खास उद्देश्य भी जुड़ा है। दुनिया में मौजूद परिस्थितियों के बीच प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। भाव यही है कि इंसान एक दूसरे के साथ अपनापन रखे, सम्मान से पेश आए और मुश्किल हालात के बीच भी प्रेम को सबसे ऊपर रखे। यानी यहाँ तैयार किया गया प्रेम महल सिर्फ एक आकर्षक झांकी नहीं बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है।
3: दुनिया में भाईचारा बना रहे, बंधुभाव बना रहे
1: जी,
3: ताकि सब लोग मिलजुल के रहे, क्योंकि हमारे भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम,
1: राइट,
3: इस सोच से हम चल रहे हैं। इसीलिए हमने ये गणेश उत्सव के माध्यम से जो 150 देशों में ये मनाया जाता है, इतनी बड़ी व्यापकता इस गणेशोत्सव की है, तो इसके माध्यम से यह संदेश हम देना चाहते हैं, प्रेम के माध्यम से ही सब दुनिया का कारोबार अच्छा हो सकता है और सब आगे बढ़ सकते हैं।
1: एग्जैक्टली क्या क्या विशेषताएं हैं इस बार, कोई अलग भगवान की मूर्त इसमें बिठाई गई है या क्या है?
3: ये आप देख सकते हैं जो गर्भगृह है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी की जो प्रमुख लीलाएं हैं उसमें गोवर्धन है, कालिया मर्दन है, रास लीला है, त्रिभंग मुरारी है, ये सब स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यहाँ दर्शाए हुए। देखिए कालिया मर्दन ये अहंकार पे विजय का प्रतीक है,
1: राइट,
3: जो रास लीला है वो सभी जाति धर्म के लोग ये इकट्ठा आ सकते हैं, ये मैसेज है उसमें। और जो गोवर्धन पर्वत है ये भगवान श्री कृष्ण मैसेज दे रहे हैं कि वो पालन करता है सभी के, किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वो है गणेश जी के रूप में आज है। हमारे जो संत लोग है, भगवान तुकाराम महाराज ने संत ने कहा है गणपति विट्ठल नाही दूजा, वो एक ही है,
4: एक ही है।
3: तो इसमें वो प्रतीक लोगों को दर्शाता है।
0: वृंदावन के प्रेम मंदिर की इस विशाल छवि में राधा कृष्ण के प्रति समर्पण और दिव्य प्रेम को बेहद खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। विशाल आकार, आकर्षक नक्काशी, भव्य खम्बे, देवी देवताओं के स्वरूप और ब्रज की संस्कृति से जुड़े प्रसंग इसे खास बना रहे हैं।
3: उनके द्वारा ये पूरा चैतन्यमय प्रेम मंदिर हो गए, नहीं तो वो एक सेट हो सकता था, लेकिन गणेश जी के स्थापना से यहाँ चैतन्य
4: उसे जिंदा दिल बनाया गया।
3: जी, यहाँ भक्तों की चैतन्य की लकीर ये भक्तों की श्रद्धा से ये बढ़ गई।
0: सामने दिखाई दे रहा ये भव्य नजारा बिल्कुल ऐसा एहसास कराता है जैसे पुणे में ही वृंदावन की पावन धरती साकार हो गई। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से सराबोर प्रेम मंदिर की प्रतिकृति को बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसकी वास्तुकला में संगमरमर की खूबसूरती दिखाई देती है, तो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मंदिरों की शैली भी अपनी छाप छोड़ती है। जैसे जैसे नजरें इस भव्य रचना के अलग अलग हिस्सों पर जाती है, कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई देने लगती है। कहीं रामलीला का भाव है, कहीं गोवर्धन लीला का दृश्य, तो कहीं झूला उत्सव की मनमोहक छटा। दर्शनीय हिस्से में राधा कृष्ण की विशाल प्रतिमाएं तैयार की गई है, जो पूरी प्रस्तुति के आध्यात्मिक आकर्षण को और बढ़ा रही है। दूर से देखने पर पूरी संरचना अपनी भव्यता से आकर्षित करती है और करीब पहुंचने पर इसकी बारीक कारीगरी नजर आती है। यही वजह है कि यहां पहुंच रहे श्रद्धालु बाबा के दर्शन के साथ इस अद्भुत प्रस्तुति को निहार रहे हैं। इस विशाल प्रतिकृति को कला निर्देशक नितेश कुमार और ग्लिटरी इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से तैयार किया गया है। सैकड़ों फीट में फैली ये रचना गणेश उत्सव की रौनक में एक अलग ही रंग भर रही है। यानी दगडूशेठ के दरबार में इस बार भक्ति का स्वरूप कुछ ऐसा है जो आंखों को भव्यता देता है, मन को आध्यात्मिक एहसास कराता है और दिल में प्रेम जगा रहा है। पुणे से ओमकार बाबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गणपति बप्पा की भक्ति में आपने मिट्टी, प्लास्टर और अलग अलग धातुओं से बनी प्रतिमाएं तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी घर की बेकार समझी जाने वाली चीजों से बने गणेश जी देखे हैं? दिल्ली के कलाकार राजेश कुमार ने ऐसी ही बेकार समझी जाने वाली चीजों को अपनी कला के जरिए नया रूप दिया है। बिल्कुल, दावा ये किया जा रहा है कि वो अब तक 4000 से ज्यादा वेस्ट मटेरियल से बप्पा की कलाकृतियां बना चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट।

भक्त की आस्था सच्ची हो तो कंकड़ में भी शंकर नजर आते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिसे कणकण में गणेश नजर आते हैं। इन भाई साहब ने दुनिया भर के वेश से गणेश जी बनाए हैं। अब तक वो गणेश जी बनाने में लगभग 300 से ज्यादा वेस्ट की चीजों का इस्तेमाल कर चुके हैं।

300 से ज्यादा मटेरियल यूज करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज करके। रो में हम जो सब्जियां यूज करते हैं, फल यूज करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज करके इसको बनाया है।

0: की वायर हम डालते हैं तो उनके कट पीस बच जाते हैं और वो बच जाते हैं, वो फिर हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ये उस वायर से इनको बनाया गया है,
1: इलेक्ट्रिक वायर से।
2: ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पज़ल होते हैं उन पज़ल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है।

मैं जो अपने दोस्तों के घर में भी जाता हूँ, मुझे उनके यहाँ भी कोई अगर वेस्ट मिलता है तो मैं उनसे भी ले लेता हूँ। मुझे स्कूल में कोई वेस्ट मिलता है मैं वहाँ से ले लेता हूँ। किसी की शॉप पर मिलता है तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ। जहाँ भी मुझे दिखता है तो मैं वहाँ से उठा करके कुछ से मैं बनाता हूँ, कुछ मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो उसमें प्रयोग करता हूँ।

0: ये दुबई में लगी है, श्रीलंका में लगी है, थाईलैंड में लगी है, कनाडा में लगी है, इस तरह से ये 9 देश में लगी है और भारत के अनेक राज्यों में प्रतिवर्ष मेरे हर मंथ लगभग कहीं ना कहीं पर एग्जीबिशन लगती रहती है। देखिए अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ स्टूडियो के साथ। नमस्कार।

0: मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहां पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।

0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दो लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन न्यूज टुडे से मनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी, गजानन की 30 से 35 फीट की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट पर दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। संसद बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी, आकिब और नमन धीर को मिला मौका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: गणपति बप्पा के दर्शन पूजन के साथ बप्पा की विसर्जन का सिलसिला भी हुआ शुरू। गुड न्यूज टुडे की टीम ने भी अपने गणपति को धूमधाम से किया विदा। गुड न्यूज टुडे के स्टाफ ने ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच बप्पा को किया विदा। अगले बरस तू जल्दी आ की कामना के साथ बप्पा की विदाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घर में सजा आस्था का अद्भुत संसार, बर्फीली पहाड़ों के बीच विराजे बप्पा। बल्लारपुर में शिंतावार परिवार के पंडाल में पप्पा की अनोखी भक्ति, पप्पा के साथ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के हो रहे दर्शन। पिछले 50 साल से अलग अलग धार्मिक झांकियां सजाता है यह परिवार। महाराष्ट्र के अकोला में लगा पप्पा के अनोखा दरबार और रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल के पंडाल में लगे चारों धामों की भव्य झांकी। एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बना विशाल पंडाल, पंडाल में बर्फीले पहाड़, हिमालय रास्तों के साथ चारों धामों का भी एहसास, गंगोत्री से बद्रीनाथ तक के दर्शन। 30 से 35 फीट के भव्य शिव बारात वाली गणपति की लगाई गई प्रतिमा। गणपति पंडाल में तैयार किए गए चारों धामों के प्रतीकात्मक स्वरूप बहुत बारीकी और खूबसूरती से तैयार की गई चारों धामों की झांकी। चार धाम यात्रा न कर पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा जैसा अनुभव देने की कोशिश। गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, बप्पा के दर्शन और चरण स्पर्श करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। लालबाग चौराहा दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी लगाई हाजिरी, पत्नी संग लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी किए बाबा लालबाग चौराहा के दर्शन, नाटी का मत्था आशीर्वाद दिया। अकोला में सजा 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की कथा की मिल रही है झलक। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त।

एक्टर सुहेल खान के घर गणपति उत्सव शामिल हुए, कई सितारे विसर्जन के दौरान जमकर हुआ डांस। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान उत्सव में शामिल हुए, बप्पा के सामने टेका मत्था। गणपति उत्सव में हेलन बहन अर्पिता का परिवार और अरबाज खान की बेटी भी शामिल हुए। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में ही किया मूर्ति विसर्जन, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी साथ रहे। पूरी विधि विधान के साथ सचिन ने गणपति की आराधना की, पूजा पाठ में उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की आराधना की, बप्पा की पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया। मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी गणपति विसर्जन किया, एक्टर गोविंदा भी नजर आए। डेजी शाह ने भी किया गणेश विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते झूमते नजर आए। अंबानी परिवार ने भी मूर्ति विसर्जन किया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, बप्पा की सवारी के साथ चलते नजर आए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। टेलीविजन एक्टर गुरमीत ने भी देवीना के साथ किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन, बप्पा से अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना। बुंदेलखंड की धरती पर गणेश उत्सव की धूम, झांसी में 17वीं शताब्दी में बने ऐतिहासिक महाराज गणेश मंदिर में विशेष रौनक। मंदिर में विराजमान भगवान गणेश का श्वेत संगमरमर से विशाल विग्रह। बुंदेलखंड की संस्कृति के साथ देखने को मिलती है महाराष्ट्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की अद्भुत झलक। गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान के साथ गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, 11वें दिन विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई के विवाह से पहले से मौजूद है मंदिर, 1842 में तैयार हुआ। दिल्ली में कलाकार की क्रिएटिविटी का कमाल, ला बेकार समझी जाने वाली चीजों से बनाई गणपति प्रतिमाएं। कलाकार राजेश कुमार ने वेस्ट मटेरियल से बनाई गणपति बप्पा की अलग अलग स्वरूप की झांकियां। एक कला प्रदर्शनी में गणपति बप्पा की 500 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित कर चुके हैं आर्टिस्ट। कलाकार राजेश का दावा, वेस्ट मटेरियल से अब तक 4000 से ज्यादा कलाकृतियां तैयार कर चुके हैं। राजेश की क्रिएटिविटी में धार्मिक आस्था के साथ साथ रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश। कश्मीर में भी दिखी गणेशोत्सव की रौनक, कश्मीरी पंडितों ने काजी कुंड के वैसू में मनाई गणेश चतुर्थी, कश्मीर में शांति और खुशहाली की प्रार्थना। मदुरई में किया गया सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे श्रद्धालु। 17 सितंबर को होने वाली प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के महाकुंभाभिषेकम के लिए फैसला। आस्था के रंग में रंगा मदुरई, जोरों पर मीनाक्षी अम्मन्ना मंदिर महाकुंभाभिषेकम की तैयारियां तेज। पवित्र अनुष्ठान से पहले फूलों से की जा रही पूरे मंदिर परिसर की सजावट। राजस्थान के धौलपुर में शाही स्नान के साथ मच्छकुंड मेले का हुआ शुभारंभ। मेले में ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और दूसरे जिलों से आए संतों की सवारियां बैंड बाजों के साथ शामिल हुई। मंगलवारती मंदिर में मच्छकुंड सरोवर पहुंचे संतों ने सरोवर में किया शाही स्नान। श्री पंचमी से देव छठ तक चलता है ये देव छठ के मौके पर लगने वाला मेला। छठ वाले दिन यहां स्नान से विशेष पुण्य की है मान्यता। देशभर के 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई, कैबिनेट ने ईपीएफओ वेतन की ऊपरी सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी। सरकार के फैसले के बाद 25,000 प्रति माह तक का मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन कवरेज होगा जरूरी है। सरकार ने ईपीएफओ की वेतन सीमा में 12 साल बाद किया बदलाव, इससे पहले साल 2014 में 15,000 रुपए की गई थी वेतन सीमा। सरकार के फैसले से 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारियों को होगा लाभ। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में दिल्ली नंबर 1। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, मानदेय में 50% की बढ़ोतरी। योगी कैबिनेट का जैन अल्फा के लिए बड़ा फैसला, 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चे अब स्मार्ट क्लास और डिजिटल बुक्स की करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 15,012 पदों की शिक्षक वैकेंसी पर भर्ती हो गई शुरू। माध्यमिक और बेसिक

0: शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए होगी। 897 सहायक अध्यापक का संबंध प्राइमरी, 11508 सहायक अध्यापक शहरी और 2607 प्रवक्ता पदों पर होगी भर्ती। अंतिम चरण में सिखों की पवित्र हेमकुंड साहिब यात्रा, 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। पहली बार 324,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर समेत हाई सिक्योरिटी प्रतिष्ठानों पर स्नाइपर तैनाती की व्यवस्था। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तारामंडल इलाके में IMA बिल्डिंग में चैरिटेबल ब्लड सेंटर का उद्घाटन। BCNCC गर्ल कैडेट्स ने सफलतापूर्वक पूरा किया हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता परांगला 2026। उत्तराखंड के चमोली में भारत और अमेरिका सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास 2026 की शुरुआत, पर्वतीय क्षेत्र में सैनिक क्षमता बढ़ाने का मकसद। पौली में शुरू हुए युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण के उद्घाटन में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हुए शामिल, भारत और अमेरिकी सेना के अफसरों ने किया संबोधित। गोरखपुर को 40 करोड़ की लागत वाली कई विकास योजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर रोपवे निर्माण की प्रक्रिया तेज, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ की लागत से रोपवे का किया जा रहा है निर्माण। बिहार के आरा में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंची अभिनेत्री अक्षरा सिंह, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। लोलार्क षष्ठी के मौके पर वाराणसी के प्राचीन लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लोलार्क षष्ठी के विशेष मौके पर लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए 36 घंटे पहले से ही लगने लगी लाइन्स। बारिश पर भी भारी नजर आई आस्था, पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए बारिश के बीच अपने स्थान पर जमे रहे श्रद्धालु। लाखों श्रद्धालु की आस्था को देखते हुए बारिश के बीच पुलिस कमिश्नर ने तैयारियों का निरीक्षण किया। सत्ययुग के वक्त महाभारत में भी मिलता है लोलार केश्वर महादेव मंदिर और रकुंड का जिक्र। अभिनेता अनंतनाग को मिलेगा साल 2024 का दादा साहब पुरस्कार, अनंतनाग ने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में काम किया। अभिनेता अनंतनाग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। सरकार ने सेंसर बोर्ड का किया पुनर्गठन, 18 सदस्यीय नए सेंसर बोर्ड में सिनेमा, टेलीविजन, संगीत, कला समेत तमाम हस्तियों को शामिल किया गया है। सेंसर बोर्ड के नए सदस्यों में अभिनेता सुनील शेट्टी, प्रीति जिंटा भी शामिल है। नए सेंसर बोर्ड में एक्टर पंकज त्रिपाठी, टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी शामिल है। थोड़ी देर बाद 76 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन कर दिए गए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी के लिए रवाना होगी बाइक रैली। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके बचपन के दोस्त ने लिखी चिट्ठी, प्रधानमंत्री को बताया कृष्ण, खुद को बताया सुदामा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मुंगेर में बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथ से परोसा खाना। शिवराज सिंह चौहान बोले, बिहार को बाढ़ के संकट से मिलेगी मुक्ति, मुंगेर से भागलपुर तक बाढ़ से निपटने की चल रही है तैयारियां। चित्रकूट में किसानों के प्राकृतिक खेती अपनाने का असर, कम लागत वाली ऑर्गेनिक खेती से बढ़ी किसानों की आमदनी। रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती अपनाने से घटी किसानों की लागत, गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक तरीके से तैयार कीटनाशकों का हो रहा इस्तेमाल। जैविक खेती से खेतों को हुआ है भारी फायदा, खेत की उर्वरक का शक्ति बढ़ी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: समुद्र की लहरों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक देश की रक्षा का जज्बा अब एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। लहरों और तूफानों से मुकाबला करने वाले तटरक्षक बल के जांबाज अब 7,242 मीटर ऊंची माउंट मुकुट चोटी पर अपने हौसले की परीक्षा देंगे। देखिए 19 सदस्यों की पर्वतारोहण टीम तट से पर्वत अभियान पर रवाना हो चुकी है, लेकिन यह सिर्फ एक चोटी की चढ़ाई नहीं बल्कि 2027 में माउंट एवरेस्ट फतह करने के बड़े मिशन की तैयारी है।

0: लहरों से लड़ना हो तो तटरक्षक तैयार है, तूफानों से टकराना हो तो तटरक्षक तैयार है। समुद्र की लहरों से लड़कर देश की हिफाजत करने वाले जाबाज अब हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराने को तैयार हैं, जहां हर कदम चुनौती है, हर सांस इम्तिहान है और जहां हौसला ही सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय तटरक्षक बल ने अब समुद्र से पहाड़ तक अपनी जाबाजी का परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी है। समुद्र तल से करीब 7,242 मीटर की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, कम ऑक्सीजन और पल पल बदलता मौसम, माउंट मुकुट की चढ़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन 19 सदस्यों वाली तटरक्षक बल की पर्वतारोहण टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम के सदस्यों में इस मुश्किल अभियान को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि ये सिर्फ एक चोटी को फतेह करने की कोशिश नहीं बल्कि एक बड़े लक्ष्य की तैयारी है। दरअसल तट से बर्फ अभियान को तटरक्षक बल की हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का अंतिम चरण माना जा रहा है। माउंट मुकुट की मुश्किल चढ़ाई के दौरान जवानों को अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बर्फीले मौसम और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलेगा, यानी हर कदम उन्हें उस चुनौती के करीब ले जाएगा जिसका लक्ष्य है दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारतीय तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को लेकर पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें समुद्र से लेकर पहाड़ की चोटियों तक नई ऊंचाइयां छूने के जज्बे का जिक्र किया गया है। तटरक्षक बल के मुताबिक 19 जवान 2027 में अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिस फोर्स की पहचान समुद्र में देश की सुरक्षा से है, अब वही जाबाज हिमालय की ऊंचाइयों पर अपनी ताकत और हौसले की परीक्षा देने जा रहे हैं। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान छूती चोटियों तक देश की रक्षा का ये जज्बा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। माउंट मुकुट से शुरू हुई ये चढ़ाई 2027 में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के बड़े मिशन की मजबूत नींव बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की आरुष वर्मा ने। उन्होंने अपने घर में पधारे गणपति बप्पा की तस्वीरें हमें शेयर की। तस्वीरों में दिख रहा है कि देखिए आरुष जी ने कितनी आस्था के साथ बप्पा की स्थापना की है और उनका श्रृंगार किया। फूलों से सजे और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते बप्पा बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए इसी तरह मध्य प्रदेश के ही रायसेन से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की हैं कृष्ण कुमार ठाकुर ने। इनके यहाँ भी बप्पा का दरबार सजा है, यहाँ भी बप्पा की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। बप्पा को एक सुंदर पगड़ी पहनाई गई है, साथ ही साथ बप्पा का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: हो रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। किस राशि को सूर्य देंगे वरदान, किस राशि की समस्या का करेंगे समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई, अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन, गुड न्यूज टुडे संग बनाई है उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी, गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंता नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई, 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी, आखिर और नमन धीर को मिला मौका।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज पंडित जी के साथ हमारी बातचीत होने वाली है सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो ये राशि परिवर्तन तमाम राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके क्या कुछ प्रभाव होंगे, आपके जीवन पर क्या कुछ दशा रहेगी और किस तरह का प्रभाव ये आपकी स्पेसिफिक राशि पर डालेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सूर्य का राशि परिवर्तन कौन सी राशि में होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तमाम उपायों के बारे में बातचीत होगी, महा उपाय आपको बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, जिस किसी दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है उस दिन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। तो जिस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, संक्रांति वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन वाले दिन, तो इससे सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 17 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 7:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, पंडित जी से आज विस्तार से हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कि सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने का आखिर ये मामला क्या है, किस तरह से ये हम सबको प्रभावित करेगा पंडित जी?
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या संक्रांति के बारे में, यानी सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। ये पूरी स्थिति क्या है आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि सूर्य की बड़ी फेवरेबल राशि नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से सूर्य की कमजोरी शुरू हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति कन्या में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। अब सूर्य जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ हो जाएंगे और मंगल और शनि के प्रभाव में हो जाएंगे। सूर्य की ये जो स्थिति है, मंगल शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ेगा, ये स्थिति बहुत शुभ नहीं है। इसका प्रभाव लगभग 1 तक बना रहेगा, दुनिया के लिए और लोगों के लिए। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा और अलग अलग राशियों के जीवन में ये परिवर्तन अगले एक महीने तक असर डालेगा।
0: चलिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर पंडित जी से हम पूछने वाले हैं, उसके जवाब पंडित जी हमें देंगे। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का ये जो मामला है, इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का रहने वाला है वो जानते हैं।
1: तो जैसा आपको बताया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। कैसा प्रभाव होगा? मेष राशि की अगर बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। राशि परिवर्तन शुभ है। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं, सतर्क रहें। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पारिवारिक अशांति हो सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, इस समय चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, मिथुन वाले दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर के लिए अच्छा है। करियर की समस्या आपकी हल होगी, नया मौका नया अवसर मिल सकता है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से बन जाएंगे, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है, शांत रहें और चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि इस समय आप चोट चपेट दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि।

0: करेंगे तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कन्या वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत में काफी दिक्कतें आ सकती हैं।
1: चलिए अगली राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन पर कैसा रहेगा राशि परिवर्तन का सूर्य का ये असर, उसके बारे में विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर वापस और कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: सफलता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ शामिल करते हैं आप सबके भेजे गए सवालों को इस शो में, जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले सूचित कर देते हैं, कोई भी प्रश्न है आपका, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं, आप अपने तमाम सवाल, अपनी क्वेरीज, अपनी परेशानियां ईमेल आईडी के माध्यम से इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें अलका जी ने लिखा है और अलका जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1980। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है छतरपुर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार मेरे साथ लगी हुई हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? अलका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने डाइजेशन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ज्यादातर स्वास्थ्य की समस्याएं पेट से जुड़ी हुई होंगी, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मार्च 2027 तक थोड़ी सावधानी रखिए, उसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है, मतलब दर्शकों का दूसरा सवाल। तो कौन से दर्शक ने भेजा है अपना अगला सवाल, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न राम प्रकाश जी ने हमें लिखा है और राम प्रकाश जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 नवंबर 1995। रात में 10:30। जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राम प्रकाश जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय आने में थोड़ा सा विलंब है। ज्यादातर संभावना लगती है कि अप्रैल 2027 के बाद इनका विवाह होगा, साल 2027 के अंत तक विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो काफी बेहतर रहेगा। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनाएं और अपनी पुत्री से बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करे तो काफी बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि पहली 6 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया, अब सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी शेष 6 राशियों पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है वो जानते हैं विस्तार से।
0: तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जरा भी लापरवाही इस समय मत करिएगा, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखें बिगड़ सकती हैं, धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का और धन का लाभ होगा, करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में बदलाव दिखा रहा है और आगे चल करके ये बदलाव फायदेमंद साबित होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ऑफिस के कार्यों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पैरों में चोट चपेट लग सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन चोट चपेट दे सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। इस समय करियर के मामले में, विवाह के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें ला सकता है, करियर में समस्या आपके आ सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें, लीवर की दिक्कतें और डाइजेशन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं।
1: चलिए अब वापस आते हैं अपने राशिफल पर और तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की बारी आ गई है, इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से ही विस्तार से जान लेते हैं।
0: तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी ये बताइए कि आपने किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये राशि परिवर्तन, वो तो बता दिया। अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन अनुकूल ना हो तो उस कंडीशन में, उस हालात में क्या करना चाहिए?
0: तो हमने आपको 12 राशियों के बारे में बताया कि किन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा खराब है। तो अगर राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए, और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। बड़े सारे मंत्र मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, सरलता से आप जप सकें उस मंत्र का जप करिएगा। और सबसे सरल मंत्र आप जानते हैं, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़िएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन का खराब प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: और चलिए इसी के साथ राशिफल के अंत की तरफ हम पहुंच गए हैं और बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी, आप बताएंगे।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त चला है आपका अगला सवाल इस शो में शामिल करने का। इससे पहले आगे बढ़ूं एक बार फिर से आपको बता देती हूं, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवालों को इस शो में आप भेज सकते हैं। तो पंडित जी, अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है आपसे जानते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न विजय चौधरी जी ने हमें लिखा है और विजय चौधरी जी हमें मुजफ्फरनगर से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र की कुंडली के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 21 जून 1978। जन्म का समय दोपहर में 1:50। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के मेरा एक मुकदमा काफी समय से चल रहा है, कब तक हल होगा, क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल सकेगी। विजय कुमार जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगले साल इस मुकदमे का निपटारा होगा आपसी सुलह समझौते से और आपकी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो आपको प्राप्त होगा अप्रैल 2027 के बाद। अगले साल ही इसका निपटारा हो जाएगा। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का। और कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल इस शो में आज का, वो पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न पूजा ने हमें लिखा है और पूजा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1996। जन्म का समय रात में 9:45। जन्म स्थान है गुड़गांव। पूजा कह रही हैं कि मेरी एक शादी अभी तय हुई थी, वो टूट गई है एंगेजमेंट होकर के, क्या मेरी शादी उसी लड़के से दोबारा हो सकती है, वहीं पर मेरा रिश्ता हो सकता है या उस रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी एंगेजमेंट होकर टूटी है उसके दोबारा जुड़ने की संभावना नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगी, कोई और रिश्ता आपको मिलेगा जहां पर आपका विवाह होगा। इस रिश्ते में दिमाग मत लगाइए क्योंकि यहां पर कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी। आगे आपका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 17 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जी, जिन लोगों का जन्मदिन 17 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर और धन की स्थिति मध्यम रहेगी। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में ज्ञान लेने की, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गणेश जी की पूजा से बुध ग्रह की समस्या हल होती है? देखिए, ज्यादातर लोग गणपति की पूजा बुधवार को करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि गणेश जी की पूजा से बुध की समस्या हल होगी, लेकिन वास्तव में बुध की समस्या को दूर करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। गणेश जी की उपासना से केतु नामक ग्रह की समस्या दूर होती है।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं 17 सितंबर 2026 यानी बृहस्पतिवार के शुभ के बारे में।
0: दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे 17 सितंबर बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी आपको बताएंगे कि आज के शो की गुडलक राशि कौन सी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक राशि के बारे में पंडित जी आपको बताते हैं, तो कौन सी है आज की राशि वो आपको बता देते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा करने के दौरान कौन सा काम जरूर करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मेष, एरीस। आपको पूजा में नियमित रूप से आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
1: चलिए तमाम उपायों के बारे में आज के शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की, तो आज का खास उपाय क्या कहता है पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को किसी भी मंदिर में धर्म स्थान

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा छाई हुई है। परंपरा और श्रद्धा के अनुसार लोग डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या दस दिन के लिए गणपति बिठाते हैं, इसलिए बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। न्यूज टुडे के बप्पा की भी पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ विदाई हुई। इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जय घोष से पूरा देश गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। पप्पा के दिव्य रूपों का तो कहना ही क्या, अद्भुत रूप, जबरदस्त श्रृंगार और दिव्य छटा। मुंबई में अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहाँ पर आके बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं।
0: महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जेएनटी न्यूज रूम में विराजे बप्पा को भी पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। गणपति विसर्जन में हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुआ। बप्पा की विदाई का ये पल भावुक करने वाला भी रहा। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी के सितारे पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन में शामिल दिखे। सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान का पूरा परिवार और दूसरे सितारे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। चाहे अभिनेत्री डेजी शाह के घर विराजे बप्पा हो या फिर अभिनेता गोविंदा के घर के गणपति, सबने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदाई दी।
2: विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे, गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: अपने घर में राजे गणपति के विसर्जन में भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ठीक उसी रंग में नजर आई जैसा कि बप्पा की स्थापना को लेकर दिखा था।

0: बॉलीवुड सितारे हों या फिर टीवी स्टार, सभी बप्पा को हंसी खुशी विदाई देते दिखे। हालांकि उनमें भावुकता भी दिखाई पड़ी।
1: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
0: अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। गणेश उत्सव से जुड़ी भक्ति के बीच बप्पा के अलग अलग स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा शहर भाजी बाजार परिसर में विराजे बप्पा को देखिए। श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल ने हर वर्ष की तरह इस साल भी पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाई है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का उपयोग किया गया है। वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहौरा गांव में गणेश उत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यह एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चिचपल्ली स्थित बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर दिख रहा है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बास से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
2: बाम्बू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहां पर दिया जा रहा है।
0: पुणे के फर्गुसन रोड से जुड़े इस भव्य प्रतिमा को देखिए। 13 फीट ऊंची बप्पा की ये प्रतिमा 21,000 पानी पूरी से तैयार की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में बप्पा की ये प्रतिमा सिक्को और चॉकलेट से बनाई गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लोगों को लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठठेरी बाजार इलाके के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई भगवान गणेश के इस भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं।
3: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान। और अगर आशीर्वाद मिले लालबाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लालबाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है। और ये जो पूरा उत्सव है वो 5 दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा।
0: प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। कहीं बप्पा का बाल स्वरूप बच्चों को आकर्षित कर रहा है, तो कहीं एक ही प्रतिमा में 3 भगवानों के दर्शन हो रहे हैं।
4: मोहसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है, और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: हरिद्वार के गीता भवन में श्री महामाया गणपति संगठन की ओर से इस बार विशेष गणपति की स्थापना की गई है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ की थीम पर यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है।
5: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है।
0: गणेश उत्सव के दौरान ऐसे ही दिव्य रंग देश के दूसरे हिस्सों में भी छाए हुए हैं, जिसमें भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाशिम से जका खान, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करते हैं चारधाम यात्रा की। इस दौरान इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है। खास बात देखिए इसमें यह है कि चारधाम यात्रा के इस दूसरे चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो चुकी है।

0: बद्री विशाल का दरबार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरम में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर यात्रा मार्गों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। बारिश का दौर पूरी तरह थमने और मौसम के साफ होने के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: चार धाम यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम ने जहां अब राहत दे दी है, चटक धूप खिली हुई है, वहीं गाड़ियों की कतार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जितनी कठिन ये यात्रा है, इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यात्रा मार्गों पर बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
0: चार धाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी समस्याएं हुई थी, उन सभी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है।
2: बरसात खुल गई है और बरसात के बाद हमारी यात्रा हमेशा बढ़ती है, बड़ी अच्छी संख्या में यात्री आते हैं, क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी हमारा शुरू हो जाता है। तो पिछले और उससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, इस बार भी आएंगे ऐसी उम्मीद है। और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य यात्रा समय है, उस समय भी जो रोड और जो अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, उस पर बड़ा अच्छा काम किया गया था। और बरसात के बाद काफ़ी जगह पे रोड जो जैसी थी, उस पर काम कंप्लीट कर दिया गया है और यात्रा रोड हमारा सुचारू है। अन्य व्यवस्थाएं भी जो पेयजल, बिजली और जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी सुचारू रूप से संचालित हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
0: मानसून के दौरान चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लिहाजा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का लोगों को इंतजार रहता है। बद्रीनाथ धाम में अब प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री पहुंच रहे हैं। यह यात्रा के सीजन में अब तक दर्शनार्थियों की संख्या 17,36,000 को पार कर चुकी है। वहीं केदारनाथ में 14,98,000 से ज्यादा, तो गंगोत्री में 7,89,000 और यमुनोत्री में 7,08,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
3: हेलीकॉप्टर यात्रा भी 15 सितंबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले ही दिन 9,000 के करीब टिकट बुक हो गए और ये 15 तारीख से 30 सितंबर तक का पहले फेज में ये टिकट बुक हुए। तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
0: मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में कुछ समय के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब ये भी शुरू हो चुका है। 15 से 30 सितंबर तक के लिए टिकट की बुकिंग हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 15 से 15 दिनों के लिए टिकट बुकिंग का फैसला लिया गया है।
4: तकरीबन 8,900 टिकट 15 सितंबर से 30 सितंबर की हमने लाइव अभी तक करी है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमने यही डिसीजन लिया कि फेज वाइज ही हम टिकट्स को लाइव करेंगे। अभी जैसे हमने शुरुआती 15 दिनों की करी, तो हम 22 सितंबर 2026 को 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की टिकट्स को लाइव करेंगे। 22 अक्टूबर को भी ये ठीक 11 बजे IRCTC वेबसाइट पर ही टिकट्स आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से और 15-15 दिन के अंतराल में हम लोग टिकट्स को लाइव करते रहेंगे, ताकि एक साथ पूरे सीजन की टिकट एग्जॉस्ट ना हो और जो भी यात्रीगण, श्रद्धालुगण चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त समय मिले टिकट्स को बुकिंग करने।
0: यात्रा के इस दूसरे चरण में अब श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी सुविधा का भी कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लिहाजा इस सीजन में चार धाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। चमोली से कमल नयल सिलोड़ी और देहरादून से अकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुनिश्रे।
5: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बना सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है 7303400992। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर जो है सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: दो लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंता नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आकिब और नमन धीर को मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं नारी शक्ति को नमन का भाव है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किए गए आस्था के भाव भव्य प्रतिमाओं में ढल गए हैं। इनकी अनोखी कलाकारी देखने वालों को हैरान कर रही है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। बप्पा भी एक है लेकिन रूप अनेक, और इस समय तो अनगिनत। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा के सबसे निराले रूप।

0: बाप्पा एक है, रूप अनेक है। देश में जगह जगह गणेशो उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बाप्पा शान से विराजे हैं। और पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ लगी है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बाप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। बाप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप सजा है मुंबई में, जहां बाप्पा की भक्ति करने पंडाल में मार्वल और डीसी के सुपर हीरो भी उतर आए हैं। भक्तों के लिए तो गजानन स्वयं ही सबसे बड़े सुपर हीरो है, लेकिन गणपति पंडाल में अवेंजर्स को देखना भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास है। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्स, वुल्वरीन और इन सब के बीच हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा। अपने जोरदार एक्शन से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बनाने वाले अवेंजर्स को बाप्पा के पंडाल में देखने के लिए बड़ी संख्या में बाप्पा के जूनियर भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को खास बनाने के लिए ये खास झांकी सजाई है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडरमैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: बाप्पा का एक और अद्भुत रूप सजा है गुजरात के सूरत में, जहाँ पंडाल में बाप्पा के साथ साथ भक्तों को द्वार का दर्शन भी हो रहे हैं। सूरत के नानपुरा में बनाए गए इस भव्य गणेश पंडाल को श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हो। नागपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समुद्र की गहराई में होने का आभास करवा रही है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई।
2: सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है, इस यहां पर दिखाया गया है। गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
0: यानी यूनिक थीम के चलते ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बाप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही है।
3: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
2: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
3: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल है।
4: द्वारका तो कई बार हम लोग गए हैं, मगर हमें सूरत में द्वारका मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है हमारे।
0: आप सबको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बापा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। ये है पानी पूरी से बने बाप्पा। तस्वीरें पुणे के FC रोड की है, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जुटे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणपति। इस प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल होसी गणेश मंडल ने ही बनाया है। अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में अगला नंबर ओडिशा के गजपति के इस पंडाल का है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बापा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बापा को इस प्रतिमा में 1 मुख सिक्कों से तैयार किया गया है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। अब आपको दिखाते हैं वो पंडाल जहां सूरत में ब्रज तीर्थ समाया है, जहां तापी यमुना हो गई है, जहां माँ गौरी के लाल मैया यशोदा के बाल गोपाल बन गए हैं। ये ब्रज भूमि नहीं बल्कि सूरत है। सूरत में तापी नदी के ठीक बीच में गणपति की ये अनोखी झांकी तैयार की गई। इस झांकी में जन्म के बाद श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाते वासुदेव की छवि नजर आती है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रज की जगह सूरत है। वासुदेव जी की टोकरी में शेषनाग के फन की छाव में कन्हैया रूप में गजानन विराजमान है। सूरत के मछुआरा समुदाय ने गणेश उत्सव में कृष्ण लीला को जीवंत कर दिया है।
2: इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे ये थीम दिया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होंगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है।
0: चलिए अब महाराष्ट्र के अकोला, जहाँ 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। यहाँ बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में भक्तों को बैम्बू से बने बापा के दर्शन भी हो रहे हैं। बापा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार कर अनूठी सामाजिक पहल की है। बैम्बूजू बाप्पा नाम की इस पहल के तहत तैयार की गई गणेश प्रतिमा की विधि विधान और भक्ति भाव के साथ स्थापना की गई। बांस से बनी 3 फीट ऊंची श्री गणेश की मूर्ति देखते ही बनती है। प्रतिमा में श्री गणेश का मुकुट, सोन, हाथ, पांव, वस्त्र और यहाँ तक कि मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। यहाँ सिर्फ मूर्ति ही बांस की नहीं है, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है। अब महाराष्ट्र से चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां बाप्पा एक नहीं बल्कि 101 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये पंडाल है जहां अब की बार 101 रूपों में गणपति बाप्पा विराजमान है। मंगल मूर्ति की 101 मूर्ति की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब इस पंडाल में एक साथ 101 मूर्तियों की आरती उतारी जाती है तो दृश्य देखने के लायक होता है। भिलाई के इस गणेश मंडल ने साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और अब की बार ये उत्सव बाप्पा की 101 प्रतिमाओं के साथ भव्य रूप ले चुका है। खास बात ये है कि यहाँ स्थापित की गई सभी 101 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। ये तस्वीरें प्रयागराज की गणपति पंडाल की है। प्रयागराज के इस पंडाल की ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि इस एक प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है।
5: प्रयागराज के मोतसिंहगंज में है और यहाँ मोतसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोतसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के दौरान संगम नगरी की तरह ही धर्म नगरी हरिद्वार भी गणेशमय हो गई है। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की थीम पर बाप्पा की मूर्ति तैयार की गई। पौराणिक मान्यता है कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बाप्पा का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्यम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंग को भव्य झांकी के जरिए जीवंत किया गया।
6: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं। उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है और गणपति महाराज का आशीर्वाद है।
0: गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी आई है, जहां मुंबई के लाल बाग 4 राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आलम यह है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
7: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है। और ये जो स्थापना है, ये पूजा है, वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है।
8: दरअसल लगभग 150 मराठी परिवार सभी महाराष्ट्र से आकर काशी के सर्राफा कारोबार से जुड़े थे। ये परिवार पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बापा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबाग चौराहा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर ले। अगर लाल बागचा राजा मुंबई से काशी पहुंचे हैं तो चिंचपोकल की चिंतामणि का स्वरूप राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि मुंबई से विग्रहर्ता दिल्ली में मयूर विहार के राजा कहलाते हैं। मयूर विहार के राजा के पंडाल की सजावट शिवाजी महाराज की थीम पर की गई है। उनका सिंहासन भी राजसी है। दिल्ली के इस पंडाल में बापा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बापा के उत्सव की एक और सुंदर तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां एक कलाकार ने टू वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गणपति बापा की बेहद खूबसूरत आर्ट तैयार की है। ये कलाकार स्ट्रॉ, इलेक्ट्रिक वायर्स, मिरर, चुंबक, जूट, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ों से गिरे पत्ते, पुरानी मैगजीन के कागज और कतरन जैसे वेस्ट सामान से अब तक बापा की लगभग 4000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं।
9: आप ये गणेश जी देखिए, क्या लगता है आपको ये किस चीज से बने होंगे? ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पजल होते हैं उन पजल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो कि अलग अलग वेस्ट से तैयार की गई। तो सर, अब तक कितने अपनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं वेस्ट की?
10: मैंने 300 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ, 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके।
9: कुछ खास चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ आप दिखा दीजिए।
10: देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये घरों में हम जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज़ करके इसको बनाया है।
9: क्या होता है इन पेंटिंग्स का, आप बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं, क्या होता है इनका?
10: देखिए, अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए, उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
9: क्या बात है, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिशन मन में सोच रखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं कभी उनके लिए पूरी पेंटिंग्स को बेचकर सारा पैसा उनके नाम कर देंगे, और एक मिशन जो देखे अनदेखी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कूड़े का पहाड़ है उसमें वेस्ट और कम पहुंच रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बच्चों को भी लगातार सिखा रहे हैं। लगभग 28,000 बच्चों को वो ये कला सिखा चुके हैं, ताकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कूड़े का पहाड़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
11: बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के एक ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं, अनोखे रूप में तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर बप्पा से जुड़े ये वीडियो छाए हुए हैं, यानी बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। अब यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हैं बप्पा मोरिया।

0: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की आरुष वर्मा ने। उन्होंने अपने घर में पधारे गणपति बप्पा की तस्वीरें हमें शेयर की। तस्वीरों में दिख रहा है कि देखिए आरुष जी ने कितनी आस्था के साथ बप्पा की स्थापना की है और उनका श्रृंगार किया। फूलों से सजे और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते बप्पा बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए इसी तरह मध्य प्रदेश के ही रायसेन से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की हैं कृष्ण कुमार ठाकुर ने। इनके यहाँ भी बप्पा का दरबार सजा है, यहाँ भी बप्पा की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। बप्पा को एक सुंदर पगड़ी पहनाई गई है, साथ ही साथ बप्पा का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: दो लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल। विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आकिब और नमन धीर को मिला मौका।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात विघ्नहर्ता की। देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा छाई हुई है। परंपरा और श्रद्धा के अनुसार लोग डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या फिर 10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं, इसलिए अब बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेएनटी के बप्पा की भी पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ विदाई हुई। इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जय घोष से पूरा देश गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। बप्पा के दिव्य रूपों का तो कहना ही क्या, अद्भुत रूप, जबरदस्त श्रृंगार और दिव्य छटा। मुंबई में अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडरमैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहाँ पर आके बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं।
0: महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जेएनडी न्यूज रूम में विराजे बप्पा को भी पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। गणपति विसर्जन में हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुआ। बप्पा की विदाई का ये पल भावुक करने वाला भी रहा। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी के सितारे पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन में शामिल दिखे। सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान का पूरा परिवार और दूसरे सितारे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। चाहे अभिनेत्री डेजी शाह के घर विराजे बप्पा हो या फिर अभिनेता गोविंदा के घर के गणपति, सबने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदाई दी।
2: विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे। गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: अपने घर विराजे गणपति के विसर्जन में भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ठीक उसी रंग में नजर आई जैसा कि बप्पा की स्थापना को लेकर दिखा था। बॉलीवुड सितारे हो या फिर टीवी स्टार, सभी बप्पा को हंसी खुशी विदाई देते दिखे, हालांकि उनमें भावुकता भी दिखाई पड़ी।
3: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
0: अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। गणेशोत्सव से जुड़ी भक्ति के बीच बप्पा के अलग अलग स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा शहर भाजी बाजार परिसर में विराजे बप्पा को देखिए। श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल ने हर वर्ष की तरह इस साल भी पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाई है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का उपयोग किया गया है। वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहौरा गांव में गणेश उत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यह एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चुचपल्ली स्थित बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर दिख रहा है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बांस से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
4: बांबू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है।
0: पुणे के फर्गुसन रोड से जुड़ी इस भव्य प्रतिमा को देखिए। 13 फीट ऊंची बप्पा की ये प्रतिमा 21,000 पानी पूरी से तैयार की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में बप्पा की ये प्रतिमा सिक्को और चॉकलेट से बनाई गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लोगों को लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। खटेरी बाजार इलाके के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई भगवान गणेश के इस भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं।
5: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लालबाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लालबाग के राजा की स्थापना का है जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो पूरा उत्सव है वो 5 दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा।
0: प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। कहीं बप्पा का बाल स्वरूप बच्चों को आकर्षित कर रहा है तो कहीं एक ही प्रतिमा में 3 भगवानों के दर्शन हो रहे हैं।
6: मोहसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है, और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: हरिद्वार के गीता भवन में श्री महामाया गणपति संगठन की ओर से इस बार विशेष गणपति की स्थापना की गई है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ की थीम पर यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है।
7: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है।
0: गणेशोत्सव के दौरान ऐसे ही दिव्य रंग देश के दूसरे हिस्सों में भी छाए हुए हैं, जिसमें भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाशिम से जका खान, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात चारधाम यात्रा की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या 50 लाख से कहीं ज्यादा बढ़कर अब 51 लाख की ओर बढ़ रही है। बारिश के मौसम को लेकर चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा के इस दूसरे चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो चुकी है।

0: बद्री विशाल का दरबार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरम में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर यात्रा मार्गों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। बारिश का दौर पूरी तरह थमने और मौसम के साफ होने के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: चारधाम यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम ने जहां अब राहत दे दी है, चटक धूप खिली हुई है, वहीं गाड़ी

0: केरल में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है यात्रा मार्गों पर। बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
1: चार धाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी समस्याएं हुई थी, उन सभी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है।
2: बरसात खुल गई है और बरसात के बाद हमारी यात्रा हमेशा बढ़ती है, बड़ी अच्छी संख्या में यात्री आते हैं, क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी हमारा शुरू हो जाता है, तो पिछले और उससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इस बार भी आएंगे ऐसी उम्मीद है और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य यात्रा समय उस समय भी जो रोड और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उस पर बड़ा अच्छा काम किया गया था, और बरसात के बाद काफी जगह पे रोड जो जैसी थी उसके काम कंप्लीट कर दिया गया है और यात्रा रोड हमारा सुचारू है। अन्य व्यवस्थाएं जो पेयजल, बिजली और जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं वो भी सुचारू रूप से संचालित हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
1: मानसून के दौरान चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लिहाजा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का लोगों को इंतजार रहता है। बद्रीनाथ धाम में अब प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री पहुंच रहे हैं। यहां यात्रा के सीजन में अब तक दर्शनार्थियों की संख्या 17,36,000 को पार कर चुकी है। वहीं केदारनाथ में 14,98,000 से ज्यादा, तो गंगोत्री में 7,89,000 और यमुनोत्री में 7,08,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
3: हेलीकॉप्टर यात्रा भी 15 सितंबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले ही दिन 9,000 के करीब टिकट बुक हो गए और ये 15 तारीख से 30 सितंबर तक का पहले फेज में ये टिकट बुक हुए, तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
1: मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में कुछ समय के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब ये भी शुरू हो चुका है। 15 से 30 सितंबर तक के लिए टिकट की बुकिंग हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 15 से 15 दिनों के लिए टिकट बुकिंग का फैसला लिया गया है।
4: तकरीबन 8,900 टिकट 15 सितंबर से 30 सितंबर की हमने लाइव अभी तक करी हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमने यही डिसीजन लिया कि फेज वाइज ही हम टिकट्स को लाइव करेंगे। अभी जैसे हमने शुरुआती 15 दिनों की करी, तो हम 22 सितंबर 2026 को 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की टिकट्स को लाइव करेंगे। 22 अक्टूबर को भी है ठीक 11 बजे IRCTC वेबसाइट पर ही टिकट्स आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से और 15-15 दिन के अंतराल में हम लोग टिकट्स को लाइव करते रहेंगे, ताकि एक साथ पूरे सीजन की टिकट एग्जॉस्ट ना हो और जो भी यात्रीगण, श्रद्धालुगण चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त समय मिले टिकट्स को बुकिंग करने।
1: यात्रा के इस दूसरे चरण में अब श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी सुविधा का भी कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लिहाजा इस सीजन में चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और देहरादून से अकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज़ टुडे।
5: और अब बात चार धाम यात्रा के साथ चल रहे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जिसके समापन की तारीख नजदीक आ रही है। 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का समापन हो जाएगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच और बढ़ती ठंड के बीच सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना प्रकृति को चुनौती देने जैसा है। फिर भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु साहिब के दर्शन कर चुके हैं। पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु

0: मत्था टेक चुके हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का पांचवा सबसे पवित्र धाम माना जाता है।
1: श्री हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। करीब 2.5 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास, श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जहां दर्शन करने पहुंचना साक्षात तपस्या की तरह है। ज्यादा ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के कारण श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर पर अपनी हाजिरी लगाना, किसी भी श्रद्धालु के लिए यहां तक पहुंचना उसके धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा के समान है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब तक आध्यात्मिक सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि किसी भी श्रद्धालु की आत्मा और शरीर को झकझोर देने वाली एक कसौटी है। हेमकुंड साहिब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। इसके समापन में करीब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहिब के दरबार में माहौल पहले से ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। आधा सितंबर बीत जाने की वजह से हेमकुंड साहिब के आसपास ठंड बढ़ती जा रही है। अटूट आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से आस्था के इस कठिन मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह बरकरार है। गुरु साहिब के दर्शन के लिए उनकी श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है। गुरु के प्रति समर्पित भक्तों के कदमों को मार्ग की रुकावटें और मौसम की मार भी रोक नहीं पा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार इस साल 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं।
2: आज तक लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं, और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, भले हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यात्री जो हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आ रहे हैं।
1: हर बार की तरह मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से इस बार भी अगले साल होने वाली यात्रा को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ये पवित्र धाम सर्दियों में भारी बर्फबारी की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से रास्तों के बंद होने से पहले राशन, ईंधन और दूसरी जरूरी मेडिकल और लॉजिस्टिक सामग्री को घांघरिया और हेमकुंड साहिब के बेस कैंपों में सुरक्षित रूप से स्टॉक कर लिया जाता है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की ये दूरदर्शिता अगले साल मई में कपाट खुलने पर तीर्थयात्रियों के लिए लंगर और ठहरने की व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने में मदद करती है।
2: ट्रस्ट के द्वारा इस यात्रा के लिए तो जो काम करने थे वो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए, अगले साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब घांघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है, ताकि जो अगले साल की यात्रा का सामान जो है, क्योंकि जून माह में आपको पता है कि पूरा बर्फ से ट्रैक लबालब भरा होता है, तो उसमें घोड़ा खच्चर आदि नहीं जाता, तो ये सारा हेमकुंड साहब में लगभग 1.5-2 महीने का स्टॉक है जो पहले ही यात्रा के समय ही स्टॉक करना पड़ता है।
1: गोविंद घाट से शुरू होने वाली ये यात्रा गोविंदा धाम यानी घांघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक जाती है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुँचते हैं। इस दौरान उनको सरकार और प्रशासन की तरफ से पालकी, घोड़ा खच्चर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वहीं ये गुरुद्वारा स्थापित हुआ। गुरुद्वारे के साथ ही अमृत सरोवर भी मौजूद है। गुरुद्वारे में गुरु साहिब के सामने माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु नियम से बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में पुण्य कमाने के लिए स्नान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये पवित्र धाम करीब 7 से 8 महीने तक कई फीट बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि गुरुद्वारे के कपाट केवल गर्मियों के महीने खासकर मई या जून से अक्टूबर तक के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं, फिर करीब 6 महीनों के लिए गुरुद्वारे के कपाट बंद रहते हैं, तब तक अगली यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है और जगह जगह भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। कई जगह पर आकर्षक पंडाल भी श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत भी गणेशोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश पंडालों के जरिए आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूरत के नानपुरा इलाके में तैयार किया गया एक अनोखा गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और खासकर युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की थीम पर विराजमान किया गया है। पंडाल में जिस तरह जलमग्न द्वारका नगरी का दृश्य तैयार किया गया है, उसे देखकर ऐसा एहसास होता है मानो श्रद्धालु समुद्र की गहराइयों में उतरकर प्राचीन द्वारका के दर्शन कर रहे हैं। सूरत शहर के नानपुरा इलाके में बनाए गए इस विशेष पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी थीम है और भव्य सजावट है। पंडाल के भीतर प्रवेश करते ही चारों तरफ समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण नजर आता है। प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टाने, प्राचीन स्थापत्य और समुद्र जीवों के मॉडल को बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल्स इफेक्ट इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
5: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ही अपने काम को अंजाम दे रहा है वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में यह रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं, लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारी अभी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
9: लगाड़ों के साथ। गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई, अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी, गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंता नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी, आकिब और नमन धीर को मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जयंती स्पेशल। जयंती स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं नारी शक्ति को नमन का भाव है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किए गए आस्था के भाव भव्य प्रतिमाओं में ढल गए हैं। इनकी अनोखी कलाकारी देखने वालों को हैरान कर रही है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। बप्पा भी एक है, लेकिन रूप अनेक, और इस समय तो अनगिनत। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा के सबसे निराले रूप।

0: पापा एक है, रूप अनेक है। देश में जगह जगह गणेशो उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बाप्पा शान से विराजे हैं। और पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ लगी है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बाप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। बाप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप सजा है मुंबई में, जहां बाप्पा की भक्ति करने पंडाल में मार्वल और डीसी के सुपर हीरो भी उतर आए हैं। भक्तों के लिए तो गजानन स्वयं ही सबसे बड़े सुपर हीरो है, लेकिन गणपति पंडाल में अवेंजर्स को देखना भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास है। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्स, वुल्वरीन और इन सब के बीच हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा। अपने जोरदार एक्शन से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बनाने वाले अवेंजर्स को बाप्पा के पंडाल में देखने के लिए बड़ी संख्या में बाप्पा के जूनियर भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को खास बनाने के लिए ये खास झांकी सजाई है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहां पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुँच रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: बाप्पा का एक और अद्भुत रूप सजा है गुजरात की सूरत में, जहाँ पंडाल में बाप्पा के साथ साथ भक्तों को द्वार का दर्शन भी हो रहे हैं। सूरत के नानपुरा में बनाए गए इस भव्य गणेश पंडाल को श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हो। नागपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समुद्र की गहराई में होने का आभास करवा रही है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई।
2: सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है, इस यहां पर दिखाया गया है। गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
0: यानी यूनिक थीम के चलते ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बाप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही है।
3: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
2: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
3: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा, और बहुत ब्यूटीफुल है।
4: द्वारका तो कई बार हम लोग गए हैं, मगर हमें सूरत में द्वारका मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है हमारे।
0: आप सबको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बापा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। ये है पानी पूरी से बने बाप्पा। तस्वीरें पुणे के FC रोड की है, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जुटे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणपति। इस प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल होसी गणेश मंडल ने ही बनाया है। अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में अगला नंबर उड़ीसा के गजपति के इस पंडाल का है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बापा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बापा को इस प्रतिमा में 1 मुख सिक्कों से तैयार किया गया है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। अब आपको दिखाते हैं वो पंडाल जहां सूरत में ब्रज तीर्थ समाया है, जहां तापी यमुना हो गई है, जहां माँ गौरी के लाल मैया यशोदा के बाल गोपाल बन गए हैं। ये ब्रज भूमि नहीं बल्कि सूरत है। सूरत में तापी नदी के ठीक बीच में गणपति की ये अनोखी झांकी तैयार की गई। इस झांकी में जन्म के बाद श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाते वासुदेव की छवि नजर आती है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रज की जगह सूरत है। वासुदेव जी की टोकरी में शेषनाग के फन की छाव में कन्हैया रूप में गजानन विराजमान है। सूरत के मछुआरा समुदाय ने गणेश उत्सव में कृष्ण लीला को जीवंत कर दिया है।
2: इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे ये थीम दिया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है।
0: चलिए अब महाराष्ट्र के अकोला, जहाँ 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। यहाँ बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में भक्तों को बैम्बू से बने बापा के दर्शन भी हो रहे हैं। बापा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार कर अनूठी सामाजिक पहल की है। बैम्बूजू बाप्पा नाम की इस पहल के तहत तैयार की गई गणेश प्रतिमा की विधि विधान और भक्ति भाव के साथ स्थापना की गई। बांस से बनी 3 फीट ऊंची श्री गणेश की मूर्ति देखते ही बनती है। प्रतिमा में श्री गणेश का मुकुट, सूंड, हाथ, पांव, वस्त्र और यहाँ तक कि मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। यहाँ सिर्फ मूर्ति ही बांस की नहीं है, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है। अब महाराष्ट्र से चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां बाप्पा एक नहीं बल्कि 101 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये पंडाल है जहां अब की बार 101 रूपों में गणपति बाप्पा विराजमान है। मंगल मूर्ति की 101 मूर्ति की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब इस पंडाल में एक साथ 101 मूर्तियों की आरती उतारी जाती है तो दृश्य देखने के लायक होता है। भिलाई के इस गणेश मंडल ने साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और अब की बार ये उत्सव बाप्पा की 101 प्रतिमाओं के साथ भव्य रूप ले चुका है। खास बात ये है कि यहाँ स्थापित की गई सभी 101 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। ये तस्वीरें प्रयागराज की गणपति पंडाल की है। प्रयागराज के इस पंडाल की ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि इस एक प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है।
5: प्रयागराज के मोहसिमगंज में है और यहाँ मोहसिमगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिमगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के दौरान संगम नगरी की तरह ही धर्म नगरी हरिद्वार भी गणेशमय हो गई है। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की थीम पर बाप्पा की मूर्ति तैयार की गई। पौराणिक मान्यता है कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बाप्पा का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्यम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंग को भव्य झांकी के जरिए जीवंत किया गया।
6: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो है आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है और गणपति महाराज का आशीर्वाद है।
0: गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी आई है, जहां मुंबई के लाल बाग 4 राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आलम यह है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
7: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है और ये जो स्थापना है, ये पूजा है, वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है।
0: दरअसल लगभग 150 मराठी परिवार सभी महाराष्ट्र से आकर काशी के सर्राफा कारोबार से जुड़े थे। ये परिवार पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बाबा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबाग चौराहा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर ले। अगर लाल बागचा राजा मुंबई से काशी पहुंचे हैं तो चिंचपोकल की चिंतामणि का स्वरूप राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि मुंबई से विग्रहर्ता दिल्ली में मयूर विहार के राजा कहलाते हैं। मयूर विहार के राजा के पंडाल की सजावट शिवाजी महाराज की थीम पर की गई है, उनका सिंहासन भी राजसी है। दिल्ली के इस पंडाल में बापा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बापा के उत्सव की एक और सुंदर तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां एक कलाकार ने टू वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गणपति बापा की बेहद खूबसूरत आर्ट तैयार की है। ये कलाकार स्ट्रॉ, इलेक्ट्रिक वायर्स, मिरर, चुंबक, जूट, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ों से गिरे पत्ते, पुरानी मैगजीन के कागज और कतरन जैसे वेस्ट सामान से अब तक बापा की लगभग 4000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं।
8: आप ये गणेश जी देखिए, क्या लगता है आपको ये किस चीज से बने होंगे? ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पजल होते हैं उन पजल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो कि अलग अलग वेस्ट से तैयार की गई। तो सर, अब तक कितने अपनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं वेस्ट की?
9: मैंने 300 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ, 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके।
8: कुछ खास चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ आप दिखा दीजिए।
9: देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये घरों में हम जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज़ करके इसको बनाया है।
8: क्या होता है इन पेंटिंग्स का, आप बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं, क्या होता है इनका?
9: देखिए, अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए, उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
8: क्या बात है, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिशन मन में सोच रखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं कभी उनके लिए ये पूरी पेंटिंग्स को बेचकर सारा पैसा उनके नाम कर देंगे, और एक मिशन जो देखे अनदेखी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कूड़े का पहाड़ है उसमें वेस्ट और कम पहुंच रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसका इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बच्चों को भी लगातार सिखा रहे हैं। लगभग 28,000 बच्चों को वो ये कला सिखा चुके हैं, ताकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कूड़े का पहाड़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
10: बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के एक ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं, अनोखे रूप में तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर बप्पा से जुड़े ये वीडियो छाए हुए हैं, यानी बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। अब यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हैं बप्पा मोरिया।

0: वुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की आरुष वर्मा ने। उन्होंने अपने घर में पधारे गणपति बप्पा की तस्वीरें हमें शेयर की। तस्वीरों में दिख रहा है कि देखिए आरुष जी ने कितनी आस्था के साथ बप्पा की स्थापना की है और उनका श्रृंगार किया। फूलों से सजे और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते बप्पा बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए इसी तरह मध्य प्रदेश के ही रायसेन से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की हैं कृष्ण कुमार ठाकुर ने। इनके यहाँ भी बप्पा का दरबार सजा है, यहाँ भी बप्पा की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। बप्पा को एक सुंदर पगड़ी पहनाई गई है, साथ ही साथ बप्पा का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: दो लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाई है उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल। विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आखिर और नमन धीर को मिला मौका।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात विघ्नहर्ता की। देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा छाई हुई है। परंपरा और श्रद्धा के अनुसार लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं, इसलिए अब बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेएनटी के बप्पा की भी पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ विदाई हुई। इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जय घोष से पूरा देश गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। पप्पा के दिव्य रूपों का तो कहना ही क्या, अद्भुत रूप, जबरदस्त श्रृंगार और दिव्य छटा। मुंबई में अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहाँ पर आके बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं।
0: महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जेएनटी न्यूज रूम में विराजे पप्पा को भी पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। गणपति विसर्जन में हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुआ। पप्पा की विदाई का ये पल भावुक करने वाला भी रहा। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी के सितारे पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन में शामिल दिखे। सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान का पूरा परिवार और दूसरे सितारे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। चाहे अभिनेत्री डेजी शाह के घर विराजे बप्पा हो या फिर अभिनेता गोविंदा के घर के गणपति, सबने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदाई दी।
2: विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे, गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: अपने घर विराजे गणपति के विसर्जन में भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ठीक उसी रंग में नजर आई जैसा कि बप्पा की स्थापना को लेकर दिखा था। बॉलीवुड सितारे हो या फिर टीवी स्टार, सभी बप्पा को हंसी खुशी विदाई देते दिखे, हालांकि उनमें भावुकता भी दिखाई पड़ी।
3: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
0: अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। गणेशोत्सव से जुड़ी भक्ति के बीच बप्पा के अलग अलग स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा शहर भाजी बाजार परिसर में विराजे बप्पा को देखिए। श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल ने हर वर्ष की तरह इस साल भी पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाई है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का उपयोग किया गया है। वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहौरा गांव में गणेश उत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यह एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चुचपल्ली स्थित बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर दिख रहा है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बास से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
4: बांबू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है।
0: पुणे के फर्गुसन रोड से जुड़े इस भव्य प्रतिमा को देखिए। 13 फीट ऊंची बप्पा की ये प्रतिमा 21,000 पानी पूरी से तैयार की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में बप्पा की ये प्रतिमा सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लोगों को लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठठेरी बाजार इलाके के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई भगवान गणेश के इस भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं।
5: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लालबाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लालबाग के राजा की स्थापना का है जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो पूरा उत्सव है वो 5 दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा।
0: प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। कहीं बप्पा का बाल स्वरूप बच्चों को आकर्षित कर रहा है तो कहीं एक ही प्रतिमा में 3 भगवानों के दर्शन हो रहे हैं।
6: मोहसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है, और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: हरिद्वार के गीता भवन में श्री महामाया गणपति संगठन की ओर से इस बार विशेष गणपति की स्थापना की गई है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ की थीम पर यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है।
7: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है।
0: गणेश उत्सव के दौरान ऐसे ही दिव्य रंग देश के दूसरे हिस्सों में भी छाए हुए हैं, जिसमें भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाशिम से जका खान, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात चारधाम यात्रा की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या 50 लाख से कहीं ज्यादा बढ़कर अब 51 लाख की ओर बढ़ रही है। बारिश के मौसम को लेकर चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा के इस दूसरे चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो चुकी है।

0: बद्री विशाल का दरबार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरम में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर यात्रा मार्गों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। बारिश का दौर पूरी तरह थमने और मौसम के साफ होने के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: चार धाम यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम ने जहां अब राहत दे दी है, चटक धूप खिली हुई है, वहीं गाड़ियों की कतार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जितनी कठिन ये यात्रा है, इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यात्रा मार्गों पर बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
0: चार धाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी समस्याएं हुई थी, उन सभी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है।
2: बरसात खुल गई है और बरसात के बाद हमारी यात्रा हमेशा बढ़ती है, बड़ी अच्छी संख्या में यात्री आते हैं, क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी हमारा शुरू हो जाता है। तो पिछले और उससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इस बार भी आएंगे ऐसी उम्मीद है और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य यात्रा समय उस समय भी जो रोड और जो अन्य व्यवस्थाएं

0: लोग बिल्कुल तैयार हैं।
1: मानसून के दौरान चार धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लिहाजा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का लोगों को इंतजार रहता है। बद्रीनाथ धाम में अब प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री पहुंच रहे हैं। यह यात्रा के सीजन में अब तक दर्शनार्थियों की संख्या 17,36,000 को पार कर चुकी है। वहीं केदारनाथ में 14,98,000 से ज्यादा तो गंगोत्री में 7,89,000 और यमुनोत्री में 7,08,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
2: हेलीकॉप्टर यात्रा भी 15 सितंबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले ही दिन 9,000 के करीब टिकट बुक हो गए और ये 15 तारीख से 30 सितंबर तक का पहले फेज में ये टिकट बुक हुए। तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
1: मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में कुछ समय के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब ये भी शुरू हो चुका है। 15 से 30 सितंबर तक के लिए टिकट की बुकिंग हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 15 से 15 दिनों के लिए टिकट बुकिंग का फैसला लिया गया है।
3: तकरीबन 8,900 टिकट 15 सितंबर से 30 सितंबर की हमने लाइव अभी तक करी है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमने यही डिसीजन लिया कि फेज वाइज ही हम टिकट्स को लाइव करेंगे। अभी जैसे हमने शुरुआती 15 दिनों की करी, तो हम 22 सितंबर 2026 को 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की टिकट्स को लाइव करेंगे। 22 अक्टूबर को भी ये ठीक 11 बजे IRCTC वेबसाइट पर ही टिकट्स आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से और 15-15 दिन के अंतराल में हम लोग टिकट्स को लाइव करते रहेंगे, ताकि एक साथ पूरे सीजन की टिकट एग्जॉस्ट ना हो और जो भी यात्रीगण श्रद्धालुगण चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त समय मिले टिकट्स को बुकिंग करने।
1: यात्रा के इस दूसरे चरण में अब श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी सुविधा का भी कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लिहाजा इस सीजन में चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और देहरादून से अकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुंभ।
4: और अब बात चार धाम यात्रा के साथ चल रहे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जिसके समापन की तारीख नजदीक आ रही है। 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का समापन हो जाएगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच और बढ़ती ठंड के बीच सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना प्रकृति को चुनौती देने जैसा है। फिर भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु साहिब के दर्शन कर चुके हैं। पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का पांचवा सबसे पवित्र धाम माना जाता है।
5: श्री हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। करीब 2.5 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास, श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जहां दर्शन करने पहुंचना साक्षात तपस्या की तरह है। ज्यादा ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के कारण श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर पर अपनी हाजिरी लगाना, किसी भी श्रद्धालु के लिए यहां तक पहुंचना उसके धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा के समान है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब तक आध्यात्मिक सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि किसी भी श्रद्धालु की आत्मा और शरीर को झकझोर देने वाली एक कसौटी है। हेमकुंड साहिब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। इसके समापन में करीब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहिब के दरबार में माहौल पहले से ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। आधा सितंबर बीत जाने की वजह से हेमकुंड साहिब के आसपास ठंड बढ़ती जा रही है। अटूट आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से आस्था के इस कठिन मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह बरकरार है। गुरु साहिब के दर्शन के लिए उनकी श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है।

0: गुरु के प्रति समर्पित भक्तों के कदमों को मार्ग की रुकावटें और मौसम की मार भी रोक नहीं पा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार इस साल 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं।
1: आज तक लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, भले हल्की बारिश भी हो रही है लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यात्री जो हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आ रहे हैं।
0: हर बार की तरह मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से इस बार भी अगले साल होने वाली यात्रा को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ये पवित्र धाम सर्दियों में भारी बर्फबारी की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से रास्तों के बंद होने से पहले राशन, ईंधन और दूसरी जरूरी मेडिकल और लॉजिस्टिक सामग्री को घांघरिया और हेमकुंड साहिब के बेस कैंपों में सुरक्षित रूप से स्टॉक कर लिया जाता है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की ये दूरदर्शिता अगले साल मई में कपाट खुलने पर तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर और ठहरने की व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने में मदद करती है।
1: ट्रस्ट के द्वारा इस यात्रा के लिए तो जो काम करने थे वो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए अगले साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब घांघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है ताँ जो अगले साल की यात्रा का सामान जो है, क्योंकि जून माह में आपको पता है कि पूरा बर्फ से ट्रैक लबाला भरा होता है तो उसमें घोड़ा खच्चर आदि नहीं जाता, तो ये सारा हेमकुंड साहब में लगभग 1.5-2 महीने का स्टॉक है जो पहले ही यात्रा के समय ही स्टॉक करना पड़ता है।
0: गोविंद घाट से शुरू होने वाली ये यात्रा गोविंदा धाम यानी घांघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक जाती है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुँचते हैं। इस दौरान उनको सरकार और प्रशासन की तरफ से पालकी, घोड़ा खच्चर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वहीं ये गुरुद्वारा स्थापित हुआ। गुरुद्वारे के साथ ही अमृत सरोवर भी मौजूद है। गुरुद्वारे में गुरु साहिब के सामने माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु नियम से बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में पुण्य कमाने के लिए स्नान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहां भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये पवित्र धाम करीब 7 से 8 महीने तक कई फीट बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि गुरुद्वारे के कपाट केवल गर्मियों के महीने खासकर मई या जून से अक्टूबर तक के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। फिर करीब 6 महीनों के लिए गुरुद्वारे के कपाट बंद रहते हैं, तब तक अगली यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: देशभर में गणेश उत्सव की धूम है और जगह जगह भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। कई जगह पर आकर्षक पंडाल भी श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत भी गणेश उत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश पंडालों के जरिए आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूरत के नानपुरा इलाके में तैयार किया गया एक अनोखा गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और खासकर युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की थीम पर विराजमान किया गया है। पंडाल में जिस तरह जलमग्न द्वारका नगरी का दृश्य तैयार किया गया है उसे देखकर ऐसा एहसास होता है मानो श्रद्धालु समुद्र की गहराइयों में उतरकर प्राचीन द्वारका के दर्शन कर रहे हैं। सूरत शहर के नानपुरा इलाके में बनाए गए इस विशेष पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी थीम है और भव्य सजावट है। पंडाल के भीतर प्रवेश करते ही चारों तरफ समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण नजर आता है। प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टाने, प्राचीन स्थापत्य और समुद्र जीवों के मॉडल को बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
5: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो, लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के इस हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है, लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ये अपने काम को अंजाम दे रहा है, वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में यह रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है, जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं। लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारियां भी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
10: लगाड़ों के साथ। गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई, अगले परस्तु जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंता नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आखिर और नमन धीर को मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं नारी शक्ति को नमन का भाव है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किए गए आस्था के भाव भव्य प्रतिमाओं में ढल गए हैं। इनकी अनोखी कलाकारी देखने वालों को हैरान कर रही है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। बप्पा भी एक है लेकिन रूप अनेक, और इस समय तो अनगिनत। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा के सबसे निराले रूप।

0: पापा एक है, रूप अनेक है। देश में जगह जगह गणेशो उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बाप्पा शान से विराजे हैं। और पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ लगी है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बाप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। बाप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप सजा है मुंबई में, जहां बाप्पा की भक्ति करने पंडाल में मार्वल और डीसी के सुपर हीरो भी उतर आए हैं। भक्तों के लिए तो गजानन स्वयं ही सबसे बड़े सुपर हीरो है, लेकिन गणपति पंडाल में अवेंजर्स को देखना भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास है। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्स, वुल्वरीन और इन सब के बीच हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा। अपने जोरदार एक्शन से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बनाने वाले अवेंजर्स को बाप्पा के पंडाल में देखने के लिए बड़ी संख्या में बाप्पा के जूनियर भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को खास बनाने के लिए ये खास झांकी सजाई है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई मैंने देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: बाप्पा का एक और अद्भुत रूप सजा है गुजरात के सूरत में, जहाँ पंडाल में बाप्पा के साथ साथ भक्तों को द्वार का दर्शन भी हो रहे हैं। सूरत के नानपुरा में बनाए गए इस भव्य गणेश पंडाल को श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हो। नागपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समुद्र की गहराई में होने का आभास करवा रही है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई।
2: सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीर वगैरह देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है, इस यहां पर दिखाया गया है। गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
0: यानी यूनिक थीम के चलते ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बाप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही है।
3: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
2: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
3: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा, और बहुत ब्यूटीफुल है।
4: द्वारका तो कई बार हम लोग गए हैं, मगर हमें सूरत में द्वारका मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है हमारे।
0: आप सबको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बापा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। ये है पानी पूरी से बने बापा। तस्वीरें पुणे के FC रोड की है, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बापा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जुटे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणपति। इस प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल होसी गणेश मंडल ने ही बनाया है। अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में अगला नंबर ओडिशा के गजपति के इस पंडाल का है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बापा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बापा को इस प्रतिमा में 1 मुख सिक्कों से तैयार किया गया है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। अब आपको दिखाते हैं वो पंडाल जहां सूरत में ब्रज तीर्थ समाया है, जहां तापी यमुना हो गई है, जहां माँ गौरी के लाल मैया यशोदा के बाल गोपाल बन गए हैं। ये ब्रज भूमि नहीं बल्कि सूरत है। सूरत में तापी नदी के ठीक बीच में गणपति की ये अनोखी झांकी तैयार की गई। इस झांकी में जन्म के बाद श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाते वासुदेव की छवि नजर आती है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रज की जगह सूरत है। वासुदेव जी की टोकरी में शेषनाग के फन की छाव में कन्हैया रूप में गजानन विराजमान है। सूरत के मछुआरा समुदाय ने गणेश उत्सव में कृष्ण लीला को जीवंत कर दिया है।
2: इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे ये थीम दिया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होंगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है।
0: चलिए अब महाराष्ट्र के अकोला, जहाँ 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। यहाँ बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में भक्तों को बैम्बू से बने बापा के दर्शन भी हो रहे हैं। बापा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार कर अनूठी सामाजिक पहल की है। बैम्बूजू बाप्पा नाम की इस पहल के तहत तैयार की गई गणेश प्रतिमा की विधि विधान और भक्ति भाव के साथ स्थापना की गई। बांस से बनी 3 फीट ऊंची श्री गणेश की मूर्ति देखते ही बनती है। प्रतिमा में श्री गणेश का मुकुट, सूंड, हाथ, पांव, वस्त्र और यहाँ तक कि मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। यहाँ सिर्फ मूर्ति ही बांस की नहीं है, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है। अब महाराष्ट्र से चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां बाप्पा एक नहीं बल्कि 101 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये पंडाल है जहां अब की बार 101 रूपों में गणपति बाप्पा विराजमान है। मंगल मूर्ति की 101 मूर्ति की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब इस पंडाल में एक साथ 101 मूर्तियों की आरती उतारी जाती है तो दृश्य देखने के लायक होता है। भिलाई के इस गणेश मंडल ने साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और अब की बार ये उत्सव बाप्पा की 101 प्रतिमाओं के साथ भव्य रूप ले चुका है। खास बात ये है कि यहाँ स्थापित की गई सभी 101 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। ये तस्वीरें प्रयागराज की गणपति पंडाल की है। प्रयागराज के इस पंडाल की ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि इस एक प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है।
5: प्रयागराज के मोतसिंहगंज में है और यहाँ मोतसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोतसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के दौरान संगम नगरी की तरह ही धर्म नगरी हरिद्वार भी गणेशमय हो गई है। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की थीम पर बाप्पा की मूर्ति तैयार की गई। पौराणिक मान्यता है कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बाप्पा का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्यम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंग को भव्य झांकी के जरिए जीवंत किया गया।
6: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है और गणपति महाराज का आशीर्वाद है।
0: गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी आई है, जहां मुंबई के लाल बाग 4 राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आलम यह है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
7: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो स्थापना है ये पूजा है वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है।
0: दरअसल लगभग 150 मराठी परिवार सभी महाराष्ट्र से आकर काशी के सर्राफा कारोबार से जुड़े थे।
8: ये परिवार पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बाप्पा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबाग चौराहा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर लें। अगर लाल बागचा राजा मुंबई से काशी पहुंचे हैं तो चिंचपोकल की चिंतामणि का स्वरूप राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि मुंबई से विग्रहर्ता दिल्ली में मयूर विहार के राजा कहलाते हैं। मयूर विहार के राजा के पंडाल की सजावट शिवाजी महाराज की थीम पर की गई है। उनका सिंहासन भी राजसी है। दिल्ली के इस पंडाल में बापा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बापा के उत्सव की एक और सुंदर तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां एक कलाकार ने टू वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गणपति बापा की बेहद खूबसूरत आर्ट तैयार की है। ये कलाकार स्ट्रॉ, इलेक्ट्रिक वायर्स, मिरर, चुंबक, जूट, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ों से गिरे पत्ते, पुरानी मैगजीन के कागज और कतरन जैसे वेस्ट सामान से अब तक बापा की लगभग 4000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं।
9: आप ये गणेश जी देखिए, क्या लगता है आपको ये किस चीज से बने होंगे? ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पजल होते हैं उन पजल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो कि अलग अलग वेस्ट से तैयार की गई। तो सर अब तक कितने अपनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं वेस्ट की?
10: मैंने 300 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके।
9: कुछ खास चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ आप दिखा दीजिए।
10: देखिए अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये घरों में हम जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज़ करके इसको बनाया है।
9: क्या होता है इन पेंटिंग्स का, आप बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं, क्या होता है इनका?
10: देखिए अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
9: क्या बात है, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिशन मन में सोच रखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं कभी उनके लिए ये पूरी पेंटिंग्स को बेचकर सारा पैसा उनके नाम कर देंगे। और एक मिशन जो देखे अनदेखी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कूड़े का पहाड़ है उसमें वेस्ट और कम पहुंच रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसका इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बच्चों को भी लगातार सिखा रहे हैं। लगभग 28,000 बच्चों को वो ये कला सिखा चुके हैं, ताकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कूड़े का पहाड़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
11: बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के एक ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं, अनोखे रूप में तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर बप्पा से जुड़े ये वीडियो छाए हुए हैं, यानी बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। अब यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी सुपर हिट हैं बप्पा मौर्या।

0: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की आरुष वर्मा ने। उन्होंने अपने घर में पधारे गणपति बप्पा की तस्वीरें हमें शेयर की। तस्वीरों में दिख रहा है कि देखिए आरुष जी ने कितनी आस्था के साथ बप्पा की स्थापना की है और उनका श्रृंगार किया। फूलों से सजे और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते बप्पा बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए इसी तरह मध्य प्रदेश के ही रायसेन से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की हैं कृष्ण कुमार ठाकुर ने। इनके यहाँ भी बप्पा का दरबार सजा है। यहाँ भी बप्पा की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। बप्पा को एक सुंदर पगड़ी पहनाई गई है, साथ ही साथ बप्पा का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्टइंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आकिब और नमन धीर को मिला मौका।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात विघ्नहर्ता की। देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा छाई हुई है। परंपरा और श्रद्धा के अनुसार लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं। इसलिए अब बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेएनटी के बप्पा की भी पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ विदाई हुई। इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं।

0: विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जय घोष से पूरा देश गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। पप्पा के दिव्य रूपों का तो कहना ही क्या। अद्भुत रूप, जबरदस्त श्रृंगार और दिव्य छटा। मुंबई में अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहाँ पर आके बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं।
0: महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जेएनटी न्यूज रूम में विराजे बप्पा को भी पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। गणपति विसर्जन में हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुआ। बप्पा की विदाई का ये पल भावुक करने वाला भी रहा। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी के सितारे पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन में शामिल दिखे। सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान का पूरा परिवार और दूसरे सितारे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। चाहे अभिनेत्री डेजी शाह के घर विराजे बप्पा हो या फिर अभिनेता गोविंदा के घर के गणपति, सबने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदाई दी।
2: विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे, गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: अपने घर विराजे गणपति के विसर्जन में भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ठीक उसी रंग में नजर आई जैसा कि बप्पा की स्थापना को लेकर दिखा था। बॉलीवुड सितारे हो या फिर टीवी स्टार, सभी बप्पा को हंसी खुशी विदाई देते दिखे, हालांकि उनमें भावुकता भी दिखाई पड़ी।
3: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
0: अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। गणेशोत्सव से जुड़ी भक्ति के बीच बप्पा के अलग अलग स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा शहर भाजी बाजार परिसर में विराजे बप्पा को देखिए। श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल ने हर वर्ष की तरह इस साल भी पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाई है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का उपयोग किया गया है। वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहौरा गांव में गणेश उत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यह एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चुचपल्ली स्थित बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर दिख रहा है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बास से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
4: बांबू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है।
0: पुणे के फर्गुसन रोड से जुड़े इस भव्य प्रतिमा को देखिए। 13 फीट ऊंची बप्पा की ये प्रतिमा 21,000 पानी पूरी से तैयार की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में बप्पा की ये प्रतिमा सिक्को और चॉकलेट से बनाई गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लोगों को लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ठठेरी बाजार इलाके के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई भगवान गणेश के इस भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं।
5: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान। और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है। और ये जो पूरा उत्सव है वो 5 दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा।
0: प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कहीं बप्पा का बाल स्वरूप बच्चों को आकर्षित कर रहा है तो कहीं एक ही प्रतिमा में 3 भगवानों के दर्शन हो रहे हैं।
6: मोहसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: हरिद्वार के गीता भवन में श्री महामाया गणपति संगठन की ओर से इस बार विशेष गणपति की स्थापना की गई है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला होना है और उसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ की थीम पर यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है।
7: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है।
0: गणेश उत्सव के दौरान ऐसे ही दिव्य रंग देश के दूसरे हिस्सों में भी छाए हुए हैं, जिसमें भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाशिम से जका खान, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात चारधाम यात्रा की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या 50 लाख से कहीं ज्यादा बढ़कर अब 51 लाख की ओर बढ़ रही है। बारिश के मौसम को लेकर चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा के इस दूसरे चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो चुकी है।

0: बद्री विशाल का दरबार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरम में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर यात्रा मार्गों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। बारिश का दौर पूरी तरह थमने और मौसम के साफ होने के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: चार धाम यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम ने जहां अब राहत दे दी है, चटक धूप खिली हुई है, वहीं गाड़ियों की कतार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जितनी कठिन ये यात्रा है, इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यात्रा मार्गों पर बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
0: चार धाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी समस्याएं हुई थी, उन सभी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है।
2: बरसात खुल गई है और बरसात के बाद हमारी यात्रा हमेशा बढ़ती है, बड़ी अच्छी संख्या में यात्री आते हैं, क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी हमारा शुरू होता है, तो पिछले और उससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इस बार भी आएंगे ऐसी उम्मीद है और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य यात्रा शुरू हुई उस समय भी जो रोड और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं थी, इस पे बड़ा अच्छा काम किया गया था। और बरसात के बाद काफी जगह पे रोड जो जैसी थी उस पे काम कंप्लीट कर दिया गया है और यात्रा रोड हमारा सुचारू है। अन्य व्यवस्थाएं जो पेयजल, बिजली और जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी सुचारू रूप से संचालित हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
0: मानसून के दौरान चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लिहाजा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का लोगों को इंतजार रहता है। बद्रीनाथ धाम में अब प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री पहुंच रहे हैं। यह यात्रा के सीजन में अब तक दर्शनार्थियों की संख्या 17,36,000 को पार कर चुकी है। वहीं केदारनाथ में 14,98,000 से ज्यादा, तो गंगोत्री में 7,89,000 और यमुनोत्री में 7,08,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
3: हेलीकॉप्टर यात्रा भी 15 सितंबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले ही दिन 9,000 के करीब टिकट बुक हो गए और ये 15 तारीख से 30 सितंबर तक का पहले फेज में ये टिकट बुक हुए, तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है। और

0: बनाए रखने के लिए 15 से 15 दिनों के लिए टिकट बुकिंग का फैसला लिया गया है।
1: तकरीबन 8,900 टिकट 15 सितंबर से 30 सितंबर की हमने लाइव अभी तक करी है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमने यही डिसीजन लिया कि फेज वाइज ही हम टिकट्स को लाइव करेंगे। अभी जैसे हमने शुरुआती 15 दिनों की करी, तो हम 22 सितंबर 2026 को 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की टिकट्स को लाइव करेंगे। 22 अक्टूबर को भी है ठीक 11 बजे IRCTC वेबसाइट पर ही टिकट्स आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से और 15-15 दिन के अंतराल में हम लोग टिकट्स को लाइव करते रहेंगे, ताकि एक साथ पूरे सीजन की टिकट एग्जॉस्ट ना हो और जो भी यात्रीगण श्रद्धालुगण चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त समय मिले टिकट्स को बुकिंग करने।
0: यात्रा के इस दूसरे चरण में अब श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी सुविधा का भी कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लिहाजा इस सीजन में चार धाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और देहरादून से अकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुनिश्रे।
2: और अब बात चार धाम यात्रा के साथ चल रहे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जिसके समापन की तारीख नजदीक आ रही है। 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का समापन हो जाएगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच और बढ़ती ठंड के बीच सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने पहुंचना प्रकृति को चुनौती देने जैसा है। फिर भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु साहिब के दर्शन कर चुके हैं। पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का पांचवा सबसे पवित्र धाम माना जाता है।
3: श्री हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। करीब 2.5 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास, श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जहां दर्शन करने पहुंचना साक्षात तपस्या की तरह है। ज्यादा ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के कारण श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर पर अपनी हाजिरी लगाना, किसी भी श्रद्धालु के लिए यहां तक पहुंचना उसके धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा के समान है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब तक आध्यात्मिक सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि किसी भी श्रद्धालु की आत्मा और शरीर को झकझोर देने वाली एक कसौटी है। हेमकुंड साहिब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। इसके समापन में करीब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहिब के दरबार में माहौल पहले से ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। आधा सितंबर बीत जाने की वजह से हेमकुंड साहिब के आसपास ठंड बढ़ती जा रही है। अटूट आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से आस्था के इस कठिन मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह बरकरार है। गुरु साहिब के दर्शन के लिए उनकी श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है। गुरु के प्रति समर्पित भक्तों के कदमों को मार्ग की रुकावटें और मौसम की मार भी रोक नहीं पा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार इस साल 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं।
4: आज तक लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं, और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, भले हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यात्री जो हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आ रहे हैं।
3: हर बार की तरह मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से इस बार भी अगले साल होने वाली यात्रा को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ये पवित्र धाम सर्दियों में भारी बर्फबारी की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से रास्तों के बंद होने से पहले राशन, ईंधन और दूसरी जरूरी मेडिकल और लॉजिस्टिक सामग्री को घांघरिया और हेमकुंड साहिब के बेस कैंपों में सुरक्षित

0: रूप से स्टॉप कर लिया जाता है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की ये दूरदर्शिता अगले साल मई में कपाट खुलने पर तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर और ठहरने की व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने में मदद करती है।
1: ट्रस्ट के द्वारा इस यात्रा के लिए तो जो काम करने थे वो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए अगली साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब है घाघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है ताँ जो अगले साल की यात्रा का सामान जो है, क्योंकि जून माह में आपको पता है कि पूरा बर्फ से ट्रैक लबालब भरा होता है तो उसमें घोड़ा खच्चर आदि नहीं जाता, तो ये सारा हेमकुंड साहब में लगभग 1.5-2 महीने का स्टॉक है जो पहले ही यात्रा के समय ही स्टॉक करना पड़ता है।
0: गोविंद घाट से शुरू होने वाली ये यात्रा गोविंदा धाम यानी घाघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक जाती है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचते हैं। इस दौरान उनको सरकार और प्रशासन की तरफ से पालकी घोड़ा खच्चर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वही ये गुरुद्वारा स्थापित हुआ। गुरुद्वारे के साथ ही अमृत सरोवर भी मौजूद है। गुरुद्वारे में गुरु साहिब के सामने माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु नियम से बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में पुण्य कमाने के लिए स्नान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहां भारी बर्फबारी होती है जिसकी वजह से ये पवित्र धाम करीब 7 से 8 महीने तक कई फीट बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि गुरुद्वारे के कपाट केवल गर्मियों के महीने खासकर मई या जून से अक्टूबर तक के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। फिर करीब 6 महीनों के लिए गुरुद्वारे के कपाट बंद रहते हैं, तब तक अगली यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: देशभर में गणेशोत्सव की धूम है और जगह जगह भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। कई जगह पर आकर्षक पंडाल भी श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत भी गणेशोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश पंडालों के जरिए आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूरत के नानपुरा इलाके में तैयार किया गया एक अनोखा गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और खासकर युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की थीम पर विराजमान किया गया है। पंडाल में जिस तरह जलमग्न द्वारका नगरी का दृश्य तैयार किया गया है उसे देखकर ऐसा एहसास होता है मानो श्रद्धालु समुद्र की गहराइयों में उतरकर प्राचीन द्वारका के दर्शन कर रहे हैं। सूरत शहर के नानपुरा इलाके में बनाए गए इस विशेष पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी थीम है और भव्य सजावट है। पंडाल के भीतर प्रवेश करते ही चारों तरफ समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण नजर आता है। प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टाने, प्राचीन स्थापत्य और समुद्र जीवों के मॉडल को बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल्स इफेक्ट इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
5: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ही अपने काम को अंजाम दे रहा है वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में यह रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है, जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं। लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारियां भी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग।
12: अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंता नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आकिब और नमन धीर को मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं नारी शक्ति को नमन का भाव है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किए गए आस्था के भाव भव्य प्रतिमाओं में ढल गए हैं। इनकी अनोखी कलाकारी देखने वालों को हैरान कर रही है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। बप्पा भी एक है, लेकिन रूप अनेक, और इस समय तो अनगिनत। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा के सबसे निराले रूप।

0: पापा एक है, रूप अनेक है। देश में जगह जगह गणेशो उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बाप्पा शान से विराजे हैं। और पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ लगी है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बाप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। बाप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप सजा है मुंबई में, जहां बाप्पा की भक्ति करने पंडाल में मार्वल और डीसी के सुपर हीरो भी उतर आए हैं। भक्तों के लिए तो गजानन स्वयं ही सबसे बड़े सुपर हीरो है, लेकिन गणपति पंडाल में अवेंजर्स को देखना भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास है। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्स, वुल्वरीन और इन सब के बीच हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा अपने जोरदार एक्शन से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बनाने वाले अवेंजर्स को बाप्पा के पंडाल में देखने के लिए बड़ी संख्या में बाप्पा के जूनियर भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को खास बनाने के लिए ये खास झांकी सजाई है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: बाप्पा का एक और अद्भुत रूप सजा है गुजरात के सूरत में, जहाँ पंडाल में बाप्पा के साथ साथ भक्तों को द्वार का दर्शन भी हो रहे हैं। सूरत के नानपुरा में बनाए गए इस भव्य गणेश पंडाल को श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हो। नागपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समुद्र की गहराई में होने का आभास करवा रही है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई।
2: सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है, इस यहां पर दिखाया गया है। गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
0: यानी यूनिक थीम के चलते ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बाप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही है।
3: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
2: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
3: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल है।
4: द्वारका तो कई बार हम लोग गए हैं, मगर हमें सूरत में द्वारका मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है हमारे लिए।
0: आप सबको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बापा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। ये है पानी पूरी से बने बाप्पा। तस्वीरें पुणे के FC रोड की है, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जुटे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणपति। इस प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल होसी गणेश मंडल ने ही बनाया है। अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में अगला नंबर ओडिशा के गजपति के इस पंडाल का है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बापा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बापा को इस प्रतिमा में 1 मुख सिक्कों से तैयार किया गया है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। अब आपको दिखाते हैं वो पंडाल जहां सूरत में ब्रज तीर्थ समाया है, जहां तापी यमुना हो गई है, जहां माँ गौरी के लाल मैया यशोदा के बाल गोपाल बन गए हैं। ये ब्रज भूमि नहीं बल्कि सूरत है। सूरत में तापी नदी के ठीक बीच में गणपति की ये अनोखी झांकी तैयार की गई। इस झांकी में जन्म के बाद श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाते वासुदेव की छवि नजर आती है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रज की जगह सूरत है। वासुदेव जी की टोकरी में शेषनाग के फन की छाव में कन्हैया रूप में गजानन विराजमान है। सूरत के मछुआरा समुदाय ने गणेश उत्सव में कृष्ण लीला को जीवंत कर दिया है।
2: इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे जो थीम दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होंगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है।
0: चलिए अब महाराष्ट्र के अकोला, जहाँ 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। यहाँ बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में भक्तों को बैम्बू से बने बापा के दर्शन भी हो रहे हैं। बापा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार कर अनूठी सामाजिक पहल की है। बैम्बूजू बाप्पा नाम की इस पहल के तहत तैयार की गई गणेश प्रतिमा की विधि विधान और भक्ति भाव के साथ स्थापना की गई। बांस से बनी 3 फीट ऊंची श्री गणेश की मूर्ति देखते ही बनती है। प्रतिमा में श्री गणेश का मुकुट, सूंड, हाथ, पांव, वस्त्र और यहां तक कि मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। यहां सिर्फ मूर्ति ही बांस की नहीं है, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है। अब महाराष्ट्र से चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां बाप्पा एक नहीं बल्कि 101 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये पंडाल है जहां अब की बार 101 रूपों में गणपति बाप्पा विराजमान है। मंगल मूर्ति की 101 मूर्ति की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब इस पंडाल में एक साथ 101 मूर्तियों की आरती उतारी जाती है तो दृश्य देखने के लायक होता है। भिलाई के इस गणेश मंडल ने साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और अब की बार ये उत्सव बाप्पा की 101 प्रतिमाओं के साथ भव्य रूप ले चुका है। खास बात ये है कि यहाँ स्थापित की गई सभी 101 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। ये तस्वीरें प्रयागराज की गणपति पंडाल की है। प्रयागराज के इस पंडाल की ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि इस एक प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है।
5: प्रयागराज के मोहसिमगंज में है और यहाँ मोहसिमगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिमगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के दौरान संगम नगरी की तरह ही धर्म नगरी हरिद्वार भी गणेशमय हो गई है। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की थीम पर बाप्पा की मूर्ति तैयार की गई। पौराणिक मान्यताएं हैं कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बाप्पा का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्यम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंग को भव्य झांकी के जरिए जीवंत किया गया।
6: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो है आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है और गणपति महाराज का आशीर्वाद है।
0: गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी आई है, जहां मुंबई के लाल बाग 4 राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आलम यह है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
7: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है और ये जो स्थापना है, ये पूजा है, वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है।
0: दरअसल लगभग 150 मराठी परिवार सभी महाराष्ट्र से आकर काशी के सर्राफा कारोबार से जुड़े थे।
8: ये परिवार पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बाबा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबाग चौराहा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर ले। अगर लाल बागचा राजा मुंबई से काशी पहुंचे हैं तो चिंचपोकल की चिंतामणि का स्वरूप राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि मुंबई से विग्रहर्ता दिल्ली में मयूर विहार के राजा कहलाते हैं। मयूर विहार के राजा के पंडाल की सजावट शिवाजी महाराज की थीम पर की गई है, उनका सिंहासन भी राजसी है। दिल्ली के इस पंडाल में बाप्पा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बाप्पा के उत्सव की एक और सुंदर तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां एक कलाकार ने टू वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गणपति बाप्पा की बेहद खूबसूरत आर्ट तैयार की है। ये कलाकार स्ट्रॉ, इलेक्ट्रिक वायर्स, मिरर, चुंबक, जूट, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ों से गिरे पत्ते, पुरानी मैगजीन के कागज और कतरन जैसे वेस्ट सामान से अब तक बाप्पा की लगभग 4000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं।
9: आप ये गणेश जी देखिए, क्या लगता है आपको ये किस चीज से बने होंगे? ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पजल होते हैं उन पजल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो कि अलग अलग वेस्ट से तैयार की गई। तो सर, अब तक कितने अपनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं वेस्ट की?
10: मैंने 300 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके।
9: कुछ खास चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ आप दिखा दीजिए।
10: देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये घरों में हम जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज़ करके इसको बनाया है।
9: क्या होता है इन पेंटिंग्स का, आप बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं, क्या होता है इनका?
10: देखिए, अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
9: क्या बात है, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिशन मन में सोच रखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं कभी उनके लिए ये पूरी पेंटिंग्स को बेचकर सारा पैसा उनके नाम कर देंगे, और एक मिशन जो देखे अनदेखी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कूड़े का पहाड़ है उसमें वेस्ट और कम पहुंच रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसका इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बच्चों को भी लगातार सिखा रहे हैं। लगभग 28,000 बच्चों को वो ये कला सिखा चुके हैं, ताकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कूड़े का पहाड़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
11: बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के एक ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं, अनोखे रूप में तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर बप्पा से जुड़े ये वीडियो छाए हुए हैं, यानी बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। अब यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हैं बप्पा मौर्या।

0: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की आरुष वर्मा ने। उन्होंने अपने घर में पधारे गणपति बप्पा की तस्वीरें हमें शेयर की। तस्वीरों में दिख रहा है कि देखिए आरुष जी ने कितनी आस्था के साथ बप्पा की स्थापना की है और उनका श्रृंगार किया। फूलों से सजे और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते बप्पा बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए इसी तरह मध्य प्रदेश के ही रायसेन से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की हैं कृष्ण कुमार ठाकुर ने। इनके यहाँ भी बप्पा का दरबार सजा है, यहाँ भी बप्पा की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है। बप्पा को एक सुंदर पगड़ी पहनाई गई है, साथ ही साथ बप्पा का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई। अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी। गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी, आकिब और नमन धीर को मिला मौका।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
4: और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात विघ्नहर्ता की। देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा छाई हुई है। परंपरा और श्रद्धा के अनुसार लोग डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या फिर 10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं, इसलिए अब बप्पा की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेएनटी के बप्पा की भी पूरे विधि विधान और भक्तिभाव के साथ विदाई हुई। इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं।

0: विघ्न हरता है, मंगल मूर्ति है। बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जय घोष से पूरा देश गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक चमक रहे हैं। पप्पा के दिव्य रूपों का तो कहना ही क्या। अद्भुत रूप, जबरदस्त श्रृंगार और दिव्य छटा। मुंबई में अलग अलग थीम पर पंडाल सजे हुए हैं।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहाँ पर आके बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं।
0: महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के भव्य रंगों के बीच बप्पा की विदाई का दौर भी शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जेएनडी न्यूज रूम में विराजे पप्पा को भी पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी गई। गणपति विसर्जन में हर कोई पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुआ। पप्पा की विदाई का ये पल भावुक करने वाला भी रहा। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी के सितारे पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ गणपति विसर्जन में शामिल दिखे। सोहेल खान के घर गणपति विसर्जन में सलमान खान का पूरा परिवार और दूसरे सितारे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। चाहे अभिनेत्री डेजी शाह के घर विराजे बप्पा हो या फिर अभिनेता गोविंदा के घर के गणपति, सबने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें विदाई दी।
2: विघ्न हरता है, वो सुख करता है, दुख हरता है, और प्रथम पूजन के देवता है, वो सदैव कृपा रहे। गणपति बापा से यही प्रार्थना है।
0: अपने घर विराजे गणपति के विसर्जन में भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ठीक उसी रंग में नजर आई जैसा कि बप्पा की स्थापना को लेकर दिखा था। बॉलीवुड सितारे हो या फिर टीवी स्टार, सभी बप्पा को हंसी खुशी विदाई देते दिखे, हालांकि उनमें भावुकता भी दिखाई पड़ी।
3: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि हमें मौका मिलता है गणपति जी की सेवा करने का, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं हम यही आशा करते हैं कि हम वापस आए।
0: अंबानी परिवार भी अपने घर विराजे विघ्नहर्ता को विदाई देने धूमधाम के साथ गिरगांव चौपाटी पहुंचा। इसमें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ ही कई विशेष चेहरे भी दिखे। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदाई दी गई, तो कहीं भक्त भावुक होकर अपने आराध्य को विदाई देने निकले। गणेशोत्सव से जुड़ी भक्ति के बीच पप्पा के अलग अलग स्वरूप के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले का कारंजा शहर भाजी बाजार परिसर में विराजे बप्पा को देखिए। श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल ने हर वर्ष की तरह इस साल भी पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाई है। विशेष बात यह है कि इस प्रतिमा में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का उपयोग किया गया है। वहीं जालना जिले के जाफराबाद तहसील के माहौरा गांव में गणेश उत्सव का एक अलग ही नजारा दिखा। यह एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने पेड़ पर गणपति बप्पा का मनमोहक स्वरूप साकार किया है। उधर चंद्रपुर में चुचपल्ली स्थित बास अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का परिसर भी गणपति भक्ति से सराबोर दिख रहा है। महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र के विद्यार्थियों ने बास से भगवान गणेश की आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमा तैयार की है।
4: बांबू टू बाप्पा यानी बांस टू बाप्पा के इस अनोखे उपक्रम के माध्यम से भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है।
0: पुणे के फर्गुसन रोड से जुड़ी इस भव्य प्रतिमा को देखिए। 13 फीट ऊंची बप्पा की ये प्रतिमा 21,000 पानी पूरी से तैयार की गई है। ओडिशा के गजपति जिले में बप्पा की ये प्रतिमा सिक्को और चॉकलेट से बनाई गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी लोगों को लालबाग के राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। खटेरी बाजार इलाके के शेर वाली कोठी में स्थापित की गई भगवान गणेश के इस भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से भी भक्त पहुंच रहे हैं।
5: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लालबाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लालबाग के राजा की स्थापना का है जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो पूरा उत्सव है वो 5 दिनों तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा।
0: प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की आकर्षक और अनोखी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कहीं बप्पा का बाल स्वरूप बच्चों को आकर्षित कर रहा है तो कहीं एक ही प्रतिमा में 3 भगवानों के दर्शन हो रहे हैं।
6: मोहसिंहगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिंहगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: हरिद्वार के गीता भवन में श्री महामाया गणपति संगठन की ओर से इस बार विशेष गणपति की स्थापना की गई है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला होना है और उसी को ध्यान में रखते हुए कुंभ की थीम पर यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है।
7: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो हैं आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है।
0: गणेश उत्सव के दौरान ऐसे ही दिव्य रंग देश के दूसरे हिस्सों में भी छाए हुए हैं, जिसमें भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, वाशिम से जका खान, जालना से गौरव विजय साली, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात चारधाम यात्रा की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों की संख्या 50 लाख से कहीं ज्यादा बढ़कर अब 51 लाख की ओर बढ़ रही है। बारिश के मौसम को लेकर चारधाम यात्रियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। खास बात यह है कि चारधाम यात्रा के इस दूसरे चरण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो चुकी है।

0: बद्री विशाल का दरबार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार है। चार धाम यात्रा अपने दूसरे चरम में प्रवेश कर चुकी है, जिसकी वजह से एक बार फिर यात्रा मार्गों पर खूब चहल पहल नजर आ रही है। बारिश का दौर पूरी तरह थमने और मौसम के साफ होने के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कुछ ही दिनों बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: चार धाम यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। मौसम ने जहां अब राहत दे दी है, चटक धूप खिली हुई है, वहीं गाड़ियों की कतार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जितनी कठिन ये यात्रा है, इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है। यात्रा मार्गों पर बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
0: चार धाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछली बार सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी समस्याएं हुई थी, उन सभी को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी है।
2: बरसात खूब गई है और बरसात के बाद हमारी यात्रा हमेशा बढ़ती है, बड़ी अच्छी संख्या में यात्री आते हैं, क्योंकि पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भी हमारा शुरू होता है, तो पिछले और उससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। इस बार भी आएंगे ऐसी उम्मीद है और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो हमारी मुख्य यात्रा शुरू हुई उस समय भी जो रोड और जो अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, इस पे बड़ा अच्छा काम किया गया था। और बरसात के बाद काफी जगह पे रोड जो जैसी थी उस पे काम कंप्लीट कर दिया गया है और यात्रा रोड हमारा सुचारू है। अन्य व्यवस्थाएं जो पेयजल, बिजली और जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी सुचारू रूप से संचालित हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं।
0: मानसून के दौरान चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती है, लिहाजा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने का लोगों को इंतजार रहता है। बद्रीनाथ धाम में अब प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री पहुंच रहे हैं। यह यात्रा के सीजन में अब तक दर्शनार्थियों की संख्या 17,36,000 को पार कर चुकी है। वहीं केदारनाथ में 14,98,000 से ज्यादा, तो गंगोत्री में 7,89,000 और यमुनोत्री में 7,08,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने पर एक बार फिर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
3: हेलीकॉप्टर यात्रा भी 15 सितंबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले ही दिन 9,000 के करीब टिकट बुक हो गए और ये 15 तारीख से 30 सितंबर तक का पहले फेज में ये टिकट बुक हुए, तो देखा जा सकता है कि भक्तों में जो उत्साह है बाबा केदार के दर्शन के लिए या बद्रीनाथ जाने के लिए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, वो देखते ही बनता है और हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
0: मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में कुछ समय के लिए हेली सेवाओं का संचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब ये भी शुरू हो चुका है। 15 से 30 सितंबर तक के लिए टिकट की बुकिंग हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 15 से 15 दिनों के लिए टिकट बुकिंग का फैसला लिया गया है।
4: तकरीबन 8,900 टिकट 15 सितंबर से 30 सितंबर की हमने लाइव अभी तक करी हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमने यही डिसीजन लिया कि फेज वाइज ही हम टिकट्स को लाइव करेंगे। अभी जैसे हमने शुरुआती 15 दिनों की करी, तो हम 22 सितंबर 2026 को 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की टिकट्स को लाइव करेंगे। 22 अक्टूबर को भी ये ठीक 11 बजे IRCTC वेबसाइट पर ही टिकट्स आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से और 15-15 दिन के अंतराल में हम लोग टिकट्स को लाइव करते रहेंगे, ताकि एक साथ पूरे सीजन की टिकट एग्जॉस्ट ना हो और जो भी यात्रीगण, श्रद्धालुगण चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ जी धाम की शटल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त समय मिले टिकट्स को बुकिंग करने।
0: यात्रा के इस दूसरे चरण में अब श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ी सुविधा का भी कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लिहाजा इस सीजन में चार धाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और देहरादून से अकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुनिश्रे।
5: और अब बात चार धाम यात्रा के साथ चल रहे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की, जिसके समापन की तारीख नजदीक आ रही है। 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का समापन हो जाएगा। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच और बढ़ती ठंड के बीच सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब

0: पांचवा सबसे पवित्र धाम माना जाता है।
1: श्री हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल। करीब 2.5 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास, श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, जहां दर्शन करने पहुंचना साक्षात तपस्या की तरह है। ज्यादा ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन चढ़ाई के कारण श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर पर अपनी हाजिरी लगाना, किसी भी श्रद्धालु के लिए यहां तक पहुंचना उसके धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा के समान है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब तक आध्यात्मिक सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि किसी भी श्रद्धालु की आत्मा और शरीर को झकझोर देने वाली एक कसौटी है। हेमकुंड साहिब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। इसके समापन में करीब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहिब के दरबार में माहौल पहले से ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। आधा सितंबर बीत जाने की वजह से हेमकुंड साहिब के आसपास ठंड बढ़ती जा रही है। अटूट आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प की वजह से आस्था के इस कठिन मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह बरकरार है। गुरु साहिब के दर्शन के लिए उनकी श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है। गुरु के प्रति समर्पित भक्तों के कदमों को मार्ग की रुकावटें और मौसम की मार भी रोक नहीं पा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहली बार इस साल 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं।
2: आज तक लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं, और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, भले हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यात्री जो हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने आ रहे हैं।
1: हर बार की तरह मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से इस बार भी अगले साल होने वाली यात्रा को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से ये पवित्र धाम सर्दियों में भारी बर्फबारी की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से रास्तों के बंद होने से पहले राशन, ईंधन और दूसरी जरूरी मेडिकल और लॉजिस्टिक सामग्री को घांघरिया और हेमकुंड साहिब के बेस कैंपों में सुरक्षित रूप से स्टॉक कर लिया जाता है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की ये दूरदर्शिता अगले साल मई में कपाट खुलने पर तीर्थ यात्रियों के लिए लंगर और ठहरने की व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने में मदद करती है।
2: ट्रस्ट के द्वारा इस यात्रा के लिए तो जो काम करने थे वो कर ही रहे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए अगले साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब घांघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है ताँ जो अगले साल की यात्रा का सामान जो है, क्योंकि जून माह में आपको पता है कि पूरा बर्फ से ट्रैक लबाला भरा होता है, तो उसमें घोड़ा खच्चर आदि नहीं जाता, तो ये सारा हेमकुंड साहब में लगभग 1.5-2 महीने का स्टॉक है जो पहले ही यात्रा के समय ही स्टॉक करना पड़ता है।
1: गोविंद घाट से शुरू होने वाली ये यात्रा गोविंदा धाम यानी घांघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक जाती है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचते हैं। इस दौरान उनको सरकार और प्रशासन की तरफ से पालकी, घोड़ा खच्चर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था वहीं ये गुरुद्वारा स्थापित हुआ। गुरुद्वारे के साथ ही अमृत सरोवर भी मौजूद है। गुरुद्वारे में गुरु साहिब के सामने माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु नियम से बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में पुण्य कमाने के लिए स्नान करते हैं।
3: श्री हेमकुंड।

0: साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से यहां भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये पवित्र धाम करीब 7 से 8 महीने तक कई फीट बर्फ से ढका रहता है। यही वजह है कि गुरुद्वारे के कपाट केवल गर्मियों के महीने, खासकर मई या जून से अक्टूबर तक के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। फिर करीब 6 महीनों के लिए गुरुद्वारे के कपाट बंद रहते हैं, तब तक अगली यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: देशभर में गणेश उत्सव की धूम है और जगह जगह भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। कई जगह पर आकर्षक पंडाल भी श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत भी गणेश उत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश पंडालों के जरिए आस्था के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूरत के नानपुरा इलाके में तैयार किया गया एक अनोखा गणेश पंडाल इन दिनों श्रद्धालुओं और खासकर युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की थीम पर विराजमान किया गया है। पंडाल में जिस तरह जलमग्न द्वारका नगरी का दृश्य तैयार किया गया है, उसे देखकर ऐसा एहसास होता है मानो श्रद्धालु समुद्र की गहराइयों में उतरकर प्राचीन द्वारका के दर्शन कर रहे हैं। सूरत शहर के नानपुरा इलाके में बनाए गए इस विशेष पंडाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी थीम है और भव्य सजावट है। पंडाल के भीतर प्रवेश करते ही चारों तरफ समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण नजर आता है। प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टाने, प्राचीन स्थापत्य और समुद्र जीवों के मॉडल को बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किया गया है। पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल्स इफेक्ट इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
4: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो, लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है, लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ये अपने काम को अंजाम दे रहा है, वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में यह रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है, जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं। लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारियां भी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।